हमने इस आसमान और जमीन को और जो कुछ इनमें है कुछ खेल के तौर पर नहीं बनाया है। अगर हम कोई खिलौना बनाना चाहते और बस यही कुछ हमें करना होता तो अपने ही पास से कर लेते, मगर हम तो बातिल पर हक की चोट लगाते हैं जो उसका सर तोड़ देती है और वो देखते देखते मिट जाता है, और तुम्हारे लिए तबाही है उन बातों की वजह से जो तुम बनाते हो। जमीन और आसमानों में जो मखलूक भी है अल्लाह की है, और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो न अपने आप को बड़ा समझकर उसकी बंदगी से सरताबी करते हैं और न मलूल होते हैं। शब रोज उसकी तस्बीह करते रहते हैं, दम नहीं लेते। क्या इन लोगों के बनाए हुए अर्जी खुदा ऐसे हैं कि बेजान को जान बख्श कर उठा खड़ा करते हों? अगर आसमानों जमीन में एक अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा भी होते तो जमीन व आसमान दोनों का निजाम बिगड़ जाता। बस पाक है अल्लाह रब्बुल अर्श उन बातों से जो ये लोग बना रहे हैं। वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाब दे नहीं है और सब जवाब दे हैं। क्या उसे छोड़कर इन्होंने दूसरे खुदा बना लिए हैं? ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि लाओ अपनी दलील। ये किताब भी मौजूद है जिसमें मेरे दौर के लोगों के लिए नसीहत है, और वो किताबें भी मौजूद हैं जिनमें मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहत थी, मगर इनमें से अक्सर लोग हकीकत से बेखबर हैं, इसलिए मुंह मोड़े हुए हैं। हमने तुमसे पहले जो रसूल भी भेजा है उसको यही वही की है कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, बस तुम लोग मेरी ही बंदगी करो। ये कहते हैं रहमान औलाद रखता है, सुभान अल्लाह। वो यानी फरिश्ते तो बंदे हैं जिन्हें इज्जत दी गई है, उसके हुजूर बढ़कर नहीं बोलते और बस उसके हुक्म पर अमल करते हैं। जो कुछ उनके सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो बाखबर है। वो किसी की सिफारिश नहीं करते बजुज उसके जिसके हक में सिफारिश सुनने पर अल्लाह राजी हो, और वो उसके खौफ से डरे रहते हैं। और जो उनमें से कोई कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं भी एक खुदा हूं तो उसे हम जहन्नम की सजा दें। हमारे यहां जालिमों का यही बदला है।

जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद को पैदा किया, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमेशगी तो हमने तुमसे पहले भी किसी इंसान के लिए नहीं रखी है, अगर तुम मर गए तो क्या ये लोग हमेशा जीते रहेंगे? हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सब की आजमाइश कर रहे हैं, आखिरकार तुम्हें हमारी ही तरफ पलटना है। ये मुनकरीन हक जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं, कहते हैं कि क्या यह है वो शख्स जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करता है? और इनका अपना हाल यह है कि रहमान के जिक्र से मुनकिर हैं। इंसान जल्दबाज मखलूक है। अभी मैं तुमको अपनी निशानियां दिखाई देता हूं, मुझसे जल्दी न मचाओ। ये लोग कहते हैं, आखिर ये धमकी पूरी कब होगी अगर तुम सच्चे हो? काश इन काफिरों को उस वक्त का कुछ इल्म होता जबकि ये न अपने मुंह आग से बचा सकेंगे, न अपनी पीठें, और न इनको कहीं से मदद पहुंचेगी। वो बला अचानक आएगी और इन्हें इस तरह यक लख्त दबोच लेगी कि ये ना उसको दफा कर सकेंगे और न इनको लम्हा भर मोहलत ही मिल सकेगी। मजाक तुमसे पहले भी रसूलों का उड़ाया जा चुका है, मगर उनका मजाक उड़ाने वाले उसी चीज के फेर में आकर रहे जिनका वो मजाक उड़ाते थे।

कामों की और नमाज कायम करने और ज़कात देने की हिदायत की और वो हमारे इबादत गुजार थे। और लूत को हमने हुक्म और इल्म बख्शा और उसे उस बस्ती से बचाकर निकाल दिया जो बदकारियां करती थी। दर हकीकत वो बड़ी ही बुरी फासिक कौम थी। और लूत को हमने अपनी रहमत में दाखिल किया, वो सालेह लोगों में से था। और यही नेमत हमने नूह को दी। याद करो जबकि इन सब से पहले उसने हमें पुकारा था, हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे और उसके घर वालों को कर्बे आजीम से नजात दी और उस कौम के मुकाबले में उसकी मदद की जिसने हमारी आयात को झुटला दिया था। वो बड़े बुरे लोग थे, बस हमने उन सब को गर्क कर दिया। और इसी नेमत से हमने दाऊद और सुलेमान को सरफराज किया। याद करो वो मौका जबकि वो दोनों एक खेत के मुकदमे में फैसला कर रहे थे जिसमें रात के वक्त दूसरे लोगों की बकरियां फैल गई थीं और हम उनकी अदालत खुद देख रहे थे। उस वक्त हमने सही फैसला सुलेमान को समझा दिया, हालांकि हुक्म और इल्म हमने दोनों ही को अता किया था। दाऊद के साथ हमने पहाड़ों और परिंदों को मुसख़र कर दिया था जो तस्बीह करते थे। इस फेल के करने वाले हम ही थे और हमने उसको तुम्हारे फायदे के लिए जिरह बनाने की सनत सिखा दी थी ताकि तुमको एक दूसरे की मार से बचाए। फिर क्या तुम शुक्रगुजार हो? और सुलेमान के लिए हमने तेज हवा को मुसख़र कर दिया था जो उसके हुक्म से उस सरजमीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकतें रखी हैं। हम हर चीज का इल्म रखने वाले थे और शयातीन में से हमने ऐसे बहुत सों को उसका ताबे बना दिया था जो उसके लिए गोते लगाते और उसके सिवा दूसरे काम करते थे। इन सब के निगरान हम ही थे।

0: عقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے۔ روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صلی

खामोश घरों में जिंदगी वापस ले आते हैं और थके हुए इंसान के दिल को सुकून दे देते हैं। आज की दुनिया में लोग एक दूसरे के बहुत करीब होकर भी दूर हैं। एक ही घर में रहने वाले लोग पूरा दिन एक दूसरे से बात नहीं करते। ऑफिस में लोग साथ बैठे होते हैं मगर सिर्फ काम की हद तक महदूद रहते हैं और बाज़ औकात दोस्तियां सिर्फ सीन तक रह जाती हैं। और अजीब बात यह है कि हम सबको मोहब्बत भी चाहिए, तवज्जो भी चाहिए, अपनाइयत चाहिए, मगर पहल कोई नहीं करना चाहता। हम इंतजार करते हैं कि दूसरा पहले बात करे, दूसरा पहले सलाम करे, दूसरा पहले झुके, और इसी इंतजार में फासले बढ़ते जाते हैं। इस्लाम ने इस मसले का हल 1400 साल पहले दे दिया था। इस्लाम ने कहा तुम सलाम में पहल करो, क्योंकि सलाम सिर्फ लफ्ज नहीं, ये दुआ है, ये अमन का पैगाम है, ये मोहब्बत का ऐलान है, ये तकब्बुर को तोड़ने का तरीका है। जब आप किसी को अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो गोया आप कह रहे होते हैं आप पर सलामती हो, आप महफूज रहें, अल्लाह आपको सुकून दे। जरा सोचें कितनी खूबसूरत तालीम है ये। आजकल लोग जो हैं वो मोटिवेशनल कोट्स ढूंढते हैं ताकि दिलों को सुकून मिले, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, रिलेशनशिप पॉडकास्ट सुनते हैं, लेकिन इस्लाम ने आपकी डेली लाइफ में इतनी सादा और ताकतवर आदतें दी हैं कि अगर इंसान उन्हें अपना ले तो पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। सलाम उन्हीं आदतों में से एक है। आज के शो में हम बात करेंगे कि सलाम में पहल करना क्यों जरूरी है, ये सुन्नत हमारे रवैयों को कैसे बदलती है, कैसे एक छोटा सा सलाम दिलों की बर्फ पिघला देता है, और क्यों आज के दौर में यह आदत पहले से ज्यादा जरूरी हो गई। और शायद आपने महसूस किया कभी कभी इंसान को लंबी तकरीर नहीं चाहिए होती, सिर्फ ये एहसास चाहिए होता है कि कोई उसे नोटिस करता है, कोई उसकी मौजूदगी को अहम समझता है। एक शख्स पूरा दिन थका हुआ काम करता है, घर वापस आता है, अगर घर में दाखिल होते ही कोई मुस्कुरा कर सलाम कर ले तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। एक बच्चा स्कूल से वापस आता है, अगर माँ मोहब्बत से सलाम करे तो उसका दिन बेहतर हो जाता है। एक मुलाजिम दफ्तर में दाखिल हो और वहाँ खुश चेहरों के बजाय कोई खुलूस से अस्सलामु अलैकुम कह दे तो माहौल बदल जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि आज सलाम भी रस्म बनता जा रहा है। लोग बगैर देखे बगैर महसूस किए सिर्फ जबान से अल्फाज अदा कर देते हैं और ये जा वो जा, कभी फोन में देखते हुए सलाम, कभी जल्दी में और कभी सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए सलाम कर लिया। हालांकि सलाम दिल से दिया जाए तो असर करता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जब सलाम करते हैं तो वाकई दिल खुश हो जाता है, उनकी आवाज में खुलूस होता है, चेहरे पर नरमी होती है, लहजे में एक दुआ का सा एहसास होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बरसों साथ रहते हैं मगर कभी खुद सलाम नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर वो पहले सलाम करेंगे तो शायद उनकी इज्जत कम हो जाए, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इस्लाम में पहले सलाम करना आजजी की अलामत है, कमजोरी की नहीं, ये मजबूत किरदार की निशानी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ सलाम की तालीम दी बल्कि खुद भी हर उम्र हर तबके के लोगों को सलाम करते थे, बच्चों को सलाम करते थे, रास्ते में मिलने वालों को सलाम करते और घर में दाखिल

होते वक्त सलाम करते। सोचिए अगर हम इस एक सुन्नत को सच्चे दिल से अपनी जिंदगी में ले आए तो कितने घर बदल सकते हैं, कितने ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, कितनी गलत फहमियां कम हो सकती हैं। और आज जो सोशल मीडिया पे लोग गुड वाइब्स ढूंढते हैं, हालांकि एक मुखलिस सलाम खुद बजाते खुद एक बहुत ही बड़ी गुड वाइब है। ये दिलों में रोशनी पैदा करता है। और एक और अहम बात, सलाम सिर्फ जान पहचान वालों के लिए नहीं, सलाम हमें सिखाता है कि सलाम को आम करो, क्योंकि जब माशरे में सलाम बढ़ता है तो दिलों में नफरतें कम होती हैं। आपने कभी गौर किया, जहां लोग एक दूसरे को इग्नोर करते हैं वहां सर्दमेहरी बढ़ जाती है, और जहां लोग मुस्कुरा कर सलाम करते हैं वहां अपनाइयत पैदा होती है। आज के इस सफर में हम सिर्फ इस मौजू पे बात नहीं करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि सुन्नत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आदत के तौर पे ढालें, जैसे कि हमारे शो का मकसद है। क्योंकि हदीस टू हैबिट का मकसद सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि खुद को बदलना है। अपनी जिंदगी में छोटे छोटे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं उनको शामिल करना है। तो चलिए दिल को थोड़ा खोलते हैं, आना को थोड़ा सा पीछे रखते हैं और इस खूबसूरत सुन्नत को समझने की कोशिश करते हैं कि जब सलाम की अहमियत बयान की गई है तो किस तरह से आज के मसरूफ थके हुए इमोशनली डिसकनेक्टेड दौर में कैसे सलाम पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है और कैसे आजकल के मसाइल से हमें बचा सकता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक ईमान वाले ना बन जाओ, और तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं कि अगर तुम उसे करो तो आपस में मोहब्बत बढ़ जाए? आपस में सलाम को आम करो। कितनी गहरी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम को सिर्फ एक तहजीब या माशरती आदत के तौर पर बयान नहीं किया, बल्कि इसे ईमान, मोहब्बत और जन्नत से जोड़ दिया। यानी सलाम सिर्फ जबान से अदा होने वाले अल्फाज नहीं, ये दिलों को जोड़ने का जरिया है। आज अगर हम अपने माशरे को देखें तो एक चीज बहुत कॉमन हो चुकी है, इमोशनल डिस्टेंस। लोग साथ रहते हैं मगर दिल में फासला होता है। घर बड़े हो गए हैं मगर हमारे दरमियान गुफ्तगू छोटी हो गई। दोस्तों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है मगर सच्चे ताल्लुक कम हो गए। और इन सब के दरमियान इस्लाम एक निहायत सादा मगर ताकतवर हल देता है, सलाम को आम करो। जरा तसव्वुर करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का, लोग एक दूसरे से मिलते तो खुलूस से सलाम करते। उस सलाम में दुआ भी थी, मोहब्बत भी, तवज्जो भी और एहतराम भी। वो माशरा सिर्फ कानून से नहीं बल्कि अखलाक से जुड़ा हुआ था। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है, फोन है, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स हैं, लेकिन सुकून कम हो गया। क्यों? क्योंकि राबता तो बढ़ गया है मगर ताल्लुक कमजोर हो गया है। कितने लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं लेकिन अपने घर वालों को सलाम नहीं करते। ऑफिस पहुंचते हैं तो कंप्यूटर ऑन करते हैं मगर बराबर में बैठे हुए अपने कॉलीग को मुस्कुरा कर सलाम नहीं करते। कभी लिफ्ट में लोग साथ साथ खड़े होते हैं मगर खामोशी इतनी अजीब होती है कि हर कोई एक दूसरे से नजरें चुरा रहा होता है, हालांकि

0: सिर्फ एक अस्सलाम वालेकुम माहौल बदल सकता है। कभी आपने महसूस किया जब कोई शख्स खुलूस से सलाम करता है तो दिल के अंदर एक अजीब सी नरमी आ जाती है। चाहे आप थके हुए हो, परेशान हो या जहनी दबाव में हो, एक अच्छा लहजा इंसान के मूड को बदल देता है और यही इस्लाम चाहता है। इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं है, ये इंसानों के दरमियान ताल्लुक बेहतर बनाने वाला दीन भी है। आज स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है, लोग फाइनेंशियल प्रेशर में हैं, जहनी थकन आम हो गई है। कितने ही लोग हैं जो कि एंजाइटी का शिकार है। कई घरों में खामोश थी एक टेंशन चल रही होती है। ऐसे में एक छोटी सी सुन्नत, एक सलाम इंसान के लिए इमोशनल सपोर्ट बन सकता है। सोचिए, एक बाप पूरा दिन काम करने के बाद घर आता है, वो ज़हनी तौर पे एग्जॉस्टेड है। अगर बच्चे दौड़ कर अस्सलाम वालेकुम अब्बू, अस्सलाम वालेकुम पापा कहें तो कैसे एक बंदे की थकन आदि हो जाती है। एक माँ पूरा दिन घर संभालती है, अगर शौहर घर आकर मोहब्बत से सलाम करे तो उसके दिल में कदर का एहसास पैदा होता है। एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाता है, अंदर से एंजाइटी में है, उसके दोस्त उसको मुस्कुरा कर सलाम करते हैं तो वो खुद को अकेला महसूस नहीं करता। यही सलाम की ताकत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमने सलाम को भी ईगो के साथ जोड़ दिया। बाज लोग सोचते हैं, भाई मैं क्यों पहले सलाम करूं, वो भी तो कर सकता है, उसने पिछली बार भी नहीं किया था, पहले वो बात करे फिर मैं करूंगा। और यहीं से दिलों में दीवारें बनना शुरू हो जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस अना से निकालने के लिए सलाम में पहल करने की तालीम दी, क्योंकि जो शख्स पहले सलाम करता है वो दरअसल अपने नफ्स को कंट्रोल कर रहा होता है। यह आसान नहीं होता, खास तौर पर उस वक्त जब किसी से नाराजगी हो, दिल में शिकायत हो। लेकिन इस्लाम इंसान को सिर्फ आसान वक्त में अच्छा बनने की तालीम नहीं देता, बल्कि मुश्किल वक्त में भी इखलाक कायम रखने का तर्ज देता है। एक और खूबसूरत बात यह है कि सलाम सिर्फ जान पहचान वालों की हद तक महदूद नहीं है। आज हम अक्सर सिर्फ अपने सर्कल के लोगों को ग्रीट करते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम को आम करने की बात की। क्यों? क्योंकि जब माशरे में लोग एक दूसरे के लिए खैर ख्वाही महसूस करते हैं तो नफरत कम होती। आज सोशल मीडिया ने हमें अजीब तरह से आइसोलेट कर दिया। हर शख्स ऑनलाइन है मगर इमोशनली डिस्कनेक्टेड। लोग रील्स देखते देखते घंटों गुजार देते हैं मगर अपने घर वालों से 5 मिनट बात नहीं करते। आजकल तो लोग डाइनिंग टेबल पे भी मोबाइल में मसरूफ होते हैं। एक कमरा होता है लेकिन दुनियाएं अलग अलग होती हैं। ऐसे वक्त में सलाम एक रिमाइंडर बन सकता है कि हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे की जरूरत है। कभी कभी एक शख्स सिर्फ इसलिए खामोश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसे अहम नहीं समझता, और कभी सिर्फ एक सलाम उसे दोबारा कनेक्टेड महसूस करा देता है।
1: आप सुन रहे हैं हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ, ओनली ऑन एफएम 107.7।
0: इस्लाम में सलाम को इबादत का दर्जा दिया गया, क्योंकि ये सिर्फ मैनर्स नहीं कि दिलों की इस्लाह है। और याद रखिए, सलाम सिर्फ अल्फाज नहीं, टोन भी इसकी अहम है। बाज लोग सलाम ऐसे करते हैं जैसे कोई फॉर्मल ड्यूटी अपना रहे हो, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका गर्मजोशी से भरा होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मिलते तो पूरी तवज्जो देते, मोहब्बत से बात करते, मुस्कुरा कर सलाम करते। आज अगर हम सिर्फ एक सुन्नत अपना लें, लोगों को इम्पोर्टेंस देना

0: थोड़ा सा नरम होगा। कुछ लोग पहले से इस बात के लिए ना मतलब एक तरह से इंतजार करने लगेंगे कि अभी वो बंदा आएगा सलाम करेगा, और कुछ लोग सोचेंगे कि हर बार वो ही क्यों सलाम करे, हम भी कभी कर लेते। तो ये कोई जादू नहीं होगा कि आहिस्ता आहिस्ता माहौल बदलने लगेगा, ये सिर्फ एक सुन्नत है और इस सुन्नत की बरकत है। अब तसव्वुर करते हैं घर का जहां सब रहते हैं लेकिन हर कोई अपने कमरे में बंद है। माँ किचन में रहती है, बाप थका हुआ खामोश घर पे आके अपने कंप्यूटर पे बैठ जाता है, बच्चे तो हैं ही अपनी लैपटॉप पे अपने मोबाइल पे बिजी। घर है लेकिन घर जैसा एहसास नहीं। लेकिन अगर कोई इस फैमिली में से सलाम करने का आगाज शुरू करे, इसको आदत बना ले, पहले दिन तो यकीनन सब चौंकेंगे क्योंकि ये आवाज सुनाई ही कम देती है। लोग शायद हैरान हो, माँ मुस्कुरा के सलाम का जवाब देते, बाप देखे हैरान परेशान नजरों से कि क्या हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगा ये कि माहौल बदलने लगेगा। कभी कभी बड़ी तब्दीलियां बड़े फैसलों से नहीं आती, एक मासूम सलाम से आ जाती है। एक और शख्सियत जो हमारी जिंदगी में बहुत अहम होता है लेकिन हम अक्सर उनको इग्नोर करते हैं। अक्सर हमारी जो ऑफिसेस होते हैं उनके बाहर कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है, हमारे पास औकात जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसका भी कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है। लोग आते जाते हैं लेकिन उसे देखकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं। वो बेचारा जो दूसरों को सिक्योर करने के लिए पूरा दिन थकन में है, जैसे वो हर दिन खुद को इनविजिबल महसूस करता है। अगर आप उसको सलाम करना शुरू कर दें, एक सादा सा बस अस्सलामुअलैकुम, थोड़ी खैर खैरियत पूछ ली, शुरू में वो हैरान होगा, फिर आपको देख के मुस्कुराने लगेगा और यहाँ से आपका ताल्लुक उसके साथ मुकम्मल तौर पे बदल जाएगा। और हो सकता है कि आपको देखा देखी दूसरे लोग भी उसको सलाम करने लगे। एक छोटा सा सलाम होगा लेकिन एक इंसान की पूरी पर्सनालिटी बदल जाएगी। वो बंदा जो पूरे दिन आपको किसी ना किसी तरीके से बचाने की कोशिश करता है, वो वहीं बैठा रहेगा लेकिन उसके दिल के जज्बात ऐसा साथ बदल जाएंगे, वो अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करेगा। ये है सलाम की ताकत। जी लिसनर्स, ये था हमारा आज का शो जिसमें हमने बात की एक बहुत ही खूबसूरत हदीस की, एक सुन्नत की, कि जब भी मिलें एक दूसरे से तो कोशिश करें कि आपकी गुफ्तगू का आगाज सलाम से हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का शो पसंद आया होगा और इंशाल्लाह ताला आप सलाम को अपनी जिंदगी का लाजिम मलजूम हिस्सा बना लेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से

रहमान और रहीम से इज्जत ले, उसकी असल इज्जत हमेशा बाकी व दायम रहती है। यही मंजर हमें बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी में दिखाई देता है। एक हबशी गुलाम मक्के के ताकतवर लोगों के मुकाबले बज़ाहिर बिल्कुल बेबस, गर्म रेत जिस्म पर अजियत, ताकत का कोई जाहिरी वसीला नहीं मगर जबान पर अहदुन अहदुन, एक अल्लाह, जिस्म जमीन पर था मगर ईमान आसमान से बुलंद, गुलामी बदन पर थी दिल पर नहीं। ये है इस्लामी इज्जत कि ताकत का माना ये नहीं कि तुम्हारे पास हमेशा वसाइल हों, कभी ताकत ये है कि तमाम वसाइल छीन लिए जाएं फिर भी तुम्हारे दिल से रब न छीना जा सके। अगर तुम्हारे लिए कोई तकलीफ या अजियत मुकद्दर है तो वो बाइज्जत इंसान को भी पहुंचेगी और जलील इंसान को भी। फर्क यह है कि पहला अजर के साथ उसे बर्दाश्त करेगा, दूसरा अपनी इज्जत भी खो देगा और मुसीबत फिर भी आ सकती है। तो जब तकदीर से बचना तुम्हारे इख्तियार में नहीं, कम से कम अपनी इज्जत क्यों बेचोगे। अब इज्जत का एक और दुश्मन सामने आता है, ये दाखिली अंदरूनी दुश्मन है और वो है हवाए नफ्स। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ख्वाहिशें, जज्बात, रगबतें और मुहर्रिकात रखे हैं ताकि वो जिंदगी तामीर करे, खानदान बनाए, रिज़्क तलाश करे, मुआशरे में अच्छा किरदार अदा करे। तो इस्लाम ख्वाहिश को ख़त्म तो नहीं करता लेकिन उसे तरबियत देता है, उसके लिए हदूद मुकर्रर करता है, क्योंकि ख्वाहिश अगर हद में रहे तो तवानाई है और अगर बेलगाम हो जाए तो गुलामी। नफ्स को अगर लगाम न दी जाए तो इब्तिदा में आप उसे लेकर चलते हैं, फिर एक वक्त आता है कि वो आपको लेकर चलने लगता है। और कुरान, जैसे कि हमने पिछले हलके में भी कहा था कि मज़मूम ख्वाहिश के लिए जो इस्तेमाल लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो है हवा, और इस लफ्ज़ में गिरने और नीचे जाने का एक मानवीय रिश्ता भी महसूस होता है। गोया जो शख्स हवाए नफ्स को बगैर रोक टोक के अपना रहनुमा बनाता है वो समझता है कि मैं आज़ाद हूँ, लेकिन दरअसल वो नीचे उतर रहा होता है। ख्वाहिश इंसान को उस वक्त तक तबाह नहीं करती जब तक इंसान उसके सामने अपनी पुश्त न झुका दे, लेकिन जब वो कहता है जो नफ्स चाहेगा वही होगा, तब नफ्स सवार हो जाता है और इंसान सवारी। फिर जिंदगी का रास्ता अकल, वही और किरदार नहीं बनाते, ख्वाहिश बनाती है। दुनिया की लज्जतें भी उसी मकाम पर इम्तिहान बनती हैं। हर लज्जत हराम नहीं, बहुत सी चीजें मुबाह और जायज़ हैं, लेकिन जायज चीज भी जब हद से बढ़ जाए तो इंसान को असीर बना सकती है, यानी कैदी बना देती है। तफरी, खाना, खरीदारी, सोशल मीडिया, गेम्स, शोहरत, दिखावा, हर वक्त कुछ नया देखने की तलब, हर वक्त कुछ नया खरीदने की ख्वाहिश। इंसान पहले एक चीज इस्तेमाल करता है, फिर वही चीज उसकी तवज्जो इस्तेमाल करने लगती है। पहले फोन आपके हाथ में होता है, फिर आपका वक्त फोन के हाथ में आ जाता है। तो ये एडिक्शन सिर्फ हराम चीजों की नहीं, मुबाह चीजों की भी तो एडिक्शन हो सकती है। जदीद कंज्यूमर कल्चर की एक बड़ी ताकत यही है कि वो ख्वाहिश को ज़रूरत का नाम दे देती है। आपको मुसलसल बताया जाता है कि तुम उस चीज़ के मुस्ताहिक हो, तुम्हें ये ख़रीदना चाहिए, ये तजुर्बा न किया तो ज़िंदगी अधूरी है, अपनी ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारी आज़ादी है। जबकि इस सिलसिले में मसरी मुफक्किर अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ने जदीद सारफियत किसी ज़हनियत की तरफ तवज्जो दिलाई कि इंसान को ये बावर कराया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन और लज्जत की तकमील ही इंफरादी आजादी का बुलंद तरीन इजहार है। सवाल यह कि अगर मैं किसी ख्वाहिश को नहीं ही न कह सकूं तो क्या वाकई मैं आजाद हूं? अगर इश्तिहार मेरी ख्वाहिश बनाए, एल्गोरिदम मेरी तवज्जो तय करे, मार्केट मेरी जरूरत बनाए और नफ्स मेरे फैसले करे तो आजादी कहाँ है? हकीकी आजादी शायद उसके बिल्कुल बरक्स है, आपके अंदर ख्वाहिश हो फिर भी आप उसे नहीं कहने की ताकत रखते हो। इसलिए इंसान के रोज की हिम्मत के साथ ऊपर और नीचे जाती है, जिसकी पूरी फिक्र सिर्फ क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या खरीदूं, क्या देखूं, लोग मुझे कैसा देखते हैं, मेरा अगला प्लेजर क्या है, उसकी जिंदगी का उफुक भी आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं चीजों तक सिकुड़ जाता है। और जिसका दिल इल्म, इबादत, खिदमत, अखलाक, जिम्मेदारी और अल्लाह की रजा के लिए बुलंद हो, उसका नफ्स भी बुलंद होना शुरू हो जाता है। जबकि रिवायत में आता है कि अल्लाह बुलंद और शरीफ उमूर को पसंद फरमाता है और घटिया व हकीर उमूर को नापसंद करता है, यानी मुमिन की हिम्मत भी बुलंद हो, उसकी गुफ्तगू बुलंद, मकासद बुलंद, उसकी पसंद बुलंद हो और उसके ख्वाब भी सिर्फ दुनियावी कंजम्पशन के गिर्द न घूमें। अलबत्ता हवाए नफ्स का सबसे खतरनाक मरहला उस वक्त शुरू होता है जब इंसान सिर्फ गुनाह नहीं करता बल्कि अपनी ख्वाहिश को शरीयत पर हाकिम बनाने लगता है।
एक बात यह है कि इंसान कहे मैं जानता हूँ ये हराम है।

0: मगर मुझसे कमजोरी हो गई। ये गुनाह है मगर कम से कम हक अपनी जगह बाकी है और तौबा का दरवाजा खुला है। लेकिन दूसरी बात यह कि इंसान कहे चूंकि मुझे ये पसंद है इसलिए हराम नहीं होना चाहिए, यहां मसला कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मसलन कोई शख्स अपने माली मफाद की वजह से सूद के वाज़ह शरई हुक्म को बदलना चाहे और कहे आज की मईशत में ये तो नागुजीर है इसलिए असल हुक्म ही माना नहीं रखता, माज़अल्लाह। कोई हिजाब के वाज़ह शरई असल को सिर्फ सकाफती आदत कहकर उसकी दीनी हैसियत ही खत्म करना चाहे, कोई नाजायज ताल्लुक को मोहब्बत का नाम देकर यह समझ ले कि जज्बात शरई हुदूद से वालातर हैं, या कोई नमाज छोड़ दे और दलील ये बनाए कि अल्लाह गफूर रहीम है। हालांकि अल्लाह की रहमत ये नहीं कि उसके नाम पर अल्लाह ही के फराइज छोड़ दिए जाएं, तो कमजोरी और तहरीफ एक चीज नहीं है। मोमिन से गुनाह हो सकता है मगर वो कहता है या अल्लाह मैं गलत हूं मुझे माफ कर दे। हवाए नफ्स का गुलाम कहता है मैं गलत नहीं, हुक्म ही बदलना चाहिए, माज़ अल्लाह। और कभी बात यहां तक भी पहुंचती है कि जो चीज ख्वाहिश के मुताबिक हो उसे जदीद कहकर कबूल किया जाता है और जो ख्वाहिश के खिलाफ हो उसे पुराना कहकर रद्द कर दिया जाता है। फिर अगर वाज़ह शरई नस सामने आ जाए तो सिर्फ इस वजह से फौरन मुतालबा किया जाता है कि उसकी ऐसी नई तफसीर होनी चाहिए जो पहले से तयशुदा ख्वाहिश के मुताबिक निकल आए। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस्लामी इल्मी रिवायत में नुसूस की तफसीर, इज्तिहाद, मकासिद शरीयत और नए हालात के इतलाक के हकीकी इल्मी मबाहिस मौजूद हैं। हर नई ताबीर ख्वाहिश परस्ती नहीं, लेकिन फर्क वहां पैदा होता है जहां नतीजा पहले ख्वाहिश तय करे और दलील बाद में तलाश की जाए। यही वो कैफियत है जिस पर कुरान का सख्त तंबीह आता है, अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपने ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया। यानी वो ख्वाहिश के सामने सजदा शायद न करे लेकिन हुक्म उसी का मानता है। और अगर हक में इंसानी ख्वाहिशात के पीछे चलने लगे तो फिर कोई मुस्तकिल मीजान बाकी नहीं रहता। इसीलिए अल्लाह फरमाता है وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ, अगर हक उनकी ख्वाहिशात के पीछे चलता तो आसमान और जमीन और जो कुछ इनमें है सब का निजाम बिगड़ जाता। हक की अजमत यही है कि वो हमारे मूड के साथ नहीं बदलता है, हमें उसके सामने अपने आप को दुरुस्त करना पड़ता है, उसे अपने नफ्स के मुताबिक नहीं ढालना। कुरान इस पूरी बहस का खुलासा यूं बयान करता है وَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। अब कुरान ने ये नहीं कहा कि उस शख्स के अंदर ख्वाहिश नहीं थी, ख्वाहिश थी लेकिन उसने उसे रोक लिया, यही बंदगी है। दिल चाहा मगर अल्लाह ज्यादा महबूब था, नफ्स ने खींचा मगर आखिरत ज्यादा अहम थी। फिर इज्जत के उस मरकजी उसूल की तरफ लौटते हैं कि मोमिन अपने हाजत के सामने पस्त नहीं होता, शिद्दत में टूट नहीं जाता, रिज़्क और अजल के खौफ से अपनी इज्जत फरोख्त नहीं करता। एक मरतबा उसी आयत को दोहराते हैं मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा, तो मतलब क्या बना? खुलासा ये निकला कि इज्जत सिर्फ लोगों के सामने सीना तानने का नाम नहीं, असल इज्जत यह है कि आपका नफ्स भी आपको गुलाम न बना सके। क्या फायदा कि इंसान बादशाह के सामने न झुके मगर अपनी शहवत के सामने झुका हुआ हो, लोगों से न डरे मगर पैसे का गुलाम हो, किसी आमिर के सामने सर न झुकाए मगर अपने फोन, शोहरत, लज्जत या ख्वाहिश के बगैर एक दिन न गुजार सके।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
0: सबनी करम, अब जरा अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। अक्सर हमारी जिंदगी एक ख्वाब से दूसरे ख्वाब तक चलती है, पहले इम्तिहान में कामयाबी, फिर अच्छी मुलाजमत, फिर ज्यादा तनख्वाह, फिर शादी, फिर घर, गाड़ी, अगली प्रमोशन, एक ख्वाब पूरा होता है, जहन फौरन दूसरे की तरफ चला जाता है। साल गुजरते हैं और इन्हीं अदाव के बीच हमारी जिंदगी की सतरें लिखी जाती हैं। इसमें बजाते खुद कोई बुराई नहीं, जायज ख्वाब इंसानी जिंदगी का हिस्सा है, वो कोशिश को हरकत देते हैं, बस खतरा यह है कि हम वसीले को मंजिल समझ बैठते हैं। हम सोचते हैं बस वो नौकरी मिल जाए फिर मैं मुतमैन हो जाऊंगा, शादी हो जाए फिर जिंदगी मुकम्मल, इस तरह गाड़ी मिल जाए फिर खुशी, फिर वो चीज मिल भी जाती है, चंद लम्हों के लिए लगता है कि मैं पहुंच गया, मैं मैच खत्म, नतीजा मेरे हक में, लेकिन कुछ वक्त गुजरता है और तस्वीर बदलने लगती है। जिस मुलाजमत को ख्वाब समझा था

0: जी अपने ही लश्कर के दिए हुए हथियार से अपने ही लश्कर के खिलाफ लड़ने लगे तो ये कितनी बड़ी बेवफाई है। उससे भी ज्यादा दर्दनाक सूरत यह है कि बंदा अल्लाह के दी हुई नेमत से ही अल्लाह ही की नाफरमानी करे। आंख अल्लाह ने दी है और उसी से हराम देखा, जबान अल्लाह ने दी और उसी से झूठ, गीबत और दिल आजारी की, माल अल्लाह का है और उसी को गुनाह के रास्ते में खर्च किया, जवानी अल्लाह ने दी और उसी को नाफरमानी में जला दिया। ये नेमत का शुक्र नहीं, नेमत को उसके अता करने वाले के खिलाफ इस्तेमाल करना है। इसीलिए उसूल बहुत वाज़े है कि जो कुछ अल्लाह से आया उसे अल्लाह की तरफ जाने का वसीला बनाऊं। माल है तो खैर में, ताकत है तो अदल में, असर और रसूख है तो खिदमत में, नेमत है तो शुक्र में। सबनिक्रम प्रोग्राम के इस मरहले में एक अहम अखलाकी पहलू पर गुफ्तगू करते हैं और वो है लोगों के ऐबों पर पर्दा। हज़्ज़ाल अस्लमी रज़ी अल्लाह अन्हु से मुतालिक एक मारूफ वाक़े में एक शख्स ने उनके सामने अपने एक संगीन गुनाह का जिक्र किया। उन्होंने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर एतराफ़ करने का मशवरा दिया। बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़्ज़ाल रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ए हज़्ज़ाल, अगर तुम उसे अपनी चादर से ढांप लेते तो तुम्हारे लिए बेहतर होता। यहाँ एक अजीम समाजी तरबियत यह है कि किसी की खता मालूम हो जाए तो पहला सवाल ये ना हो कि उसे कितने लोगों तक पहुँचाया जाए, बल्कि ये सवाल हो कि उसकी इसलाह कैसे हो सकती है। आज मसला यह है कि किसी से गलती हो जाए तो कभी उसका गुनाह उससे पहले पूरी दुनिया में पहुंच जाता है कि उसकी तौबा अल्लाह तक पहुंचे। एक स्क्रीनशॉट, एक पोस्ट, एक पुरानी बात और फिर लोग उसे बरसों उठाए फिरते हैं। वो शख्स इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, मुमकिन है अल्लाह उसे माफ़ भी कर दे, लेकिन लोग कहते हैं नहीं, हम नहीं भूलेंगे। हर मौके पर पुराना किस्सा, हर नई बात के साथ पुराना इल्ज़ाम, हर कामयाबी पर पुरानी लग्जिश। गोया लोगों ने अपने आप को ऐसी मुस्तकिल अदालत बना लिया हो जहाँ न तौबा की मुद्दत खत्म होती है न सजा। क्या हम कभी सोचते हैं कि जिस बंदे का गुनाह हम उछाल रहे हैं, हो सकता है अल्लाह ने उस पर पर्दा डालना चाहा हो। कुरान मुतनब्बे करता है, इन्नल्लज़ीन युहिब्बूना अन तशीअ अल-फाहिशतु फिल्लज़ीन आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम। जो चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई और बुराई की बात फैले उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। हर रुसवाई हक गोई नहीं, हर ऐब की तशहीर इस्लाह नहीं, हर स्कैंडल दीन की खिदमत नहीं। कभी हमारी जबान इस्लाह से ज्यादा फजीहत चाह रही होती है, फजीहत यानी रुसवाई। और हमें अपने नफ्स से ये सवाल जरूर करना चाहिए, अगर मेरा मकसद वाकई इस्लाह है तो क्या ये काम तन्हाई में नहीं हो सकता था? किसी के ऐब दरियाफ्त करके खुश होना भी कैसी अजीब बात है। आपने आखिर क्या दरियाफ्त किया? ये कि इंसान खता करता है, ये तो इंसान होने की बुनियादी हकीकत है। क्या आप जब अपने भाई की 10 लग्जिशें गिनवाते हैं तो खुद कामिल हो जाते हैं? नहीं, बस अवकात दूसरों की खामियों के मुसलसल ताकुब में इंसान अपनी ही खामी का ऐलान कर रहा होता है। किसी नाज़िम ने खूब कहा, उमन दल्लज़ी तुर्दा सजायाहु कुल्लुहा कफ़ल मरअ नुबलन अन तुअद्दा मआइबुहु। ऐसा कौन है जिसकी तमाम खसलतें पसंदीदा हों? आदमी के शर्फ के लिए यही काफ़ी है कि उसके ऐब गिने जा सकें। तो अगर एक भाई से खता हो गई तो क्यों ना उस पर पर्दा रखा जाए और उसे तन्हाई में नसीहत की जाए। वो हम ही में से हैं, वो भी इंसान है और हम भी बशर और इंसान हैं। शैतान पहले ही इंसान के गिर्द घूम रहा है, वो चाहता है कि गुनाह दूसरे गुनाह तक ले जाए। फिर वो दिल में मायूसी फूंकता है, तुम तो खराब इंसान हो, तुम्हारी वापसी मुमकिन नहीं, अल्लाह तुम्हें क्यों माफ करेगा, लोग तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे। अगर उसी वक्त हम उस शख्स की रसवाई भी कर दें तो कहीं ऐसा ना हो कि हम शैतान का आधा काम खुद कर दें। वो जिस इंसान को गुनाह के दलदल में खींचना चाहता था, हमने उसके लिए रास्ता मजीद आसान कर दिया। इसीलिए इस्लाम में एक बड़ी हिकमत यह है कि इंसान को गुनाह से अलग किया जाए, न कि उसे हमेशा के लिए गुनाह ही बना दिया जाए। इसीलिए असबाब हाथ में रखें, दिल अल्लाह के साथ, नेमत इस्तेमाल करें मगर शुक्र के साथ, लग्जिश देखें तो इस्लाह चाहें, रसवाई नहीं। अपनी खता हो तो पर्दा, तौबा और वापसी इख्तियार करें। और शायद आज की हमारी इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि जो कुछ अल्लाह की तरफ से आया है उसे अल्लाह की तरफ लौटा दो, और अगर किसी के आयब पर पर्दा रखने का मौका मिला तो उसे भी अल्लाह की रहमत कमाने का वसीला बना दो। اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا آمين يا رب العالمين। प्रोग्राम कुरान के मोती के आज के हलके से नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ उज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन। नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट। पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान, बनिए कल का चेहरा आज ही। आज सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर। दिल से देसी।
3: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैत्राश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैत्राश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैत्राश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियाँ, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियाँ, उनकी मेहनत, उनके इम्तहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
5: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
1: ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 टाइम चेक।
1: आज एक साथ सुबह सुबह 6:01 पे सुबह के मैदान में उतर रहे हैं अपने खूबसूरत थर्मस के साथ दोहा वाले कबीर बल्लेबाजी के लिए तैयार। पूरे स्टेडियम में खचाखच भीड़, सब अपने व्हाट्सएप हाथ में थामे हुए और जोर से गुड मॉर्निंग का शोर। इसी के साथ पहली गेंद दोहा वाले कबीर क्रीज पर

0: नींद पूरी हो चुकी है अभी उम्र में, ये तो नहीं कह सकता कि मैं, मुझे तो 8 घंटे की नींद ही चाहिए, ऐसी से तो मैं नहीं पालता भाई। तो साफ सीधी बात है, जो है बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। आप आ जाओ व्हाट्सएप पे, सबसे पहले तो आप नहीं आएंगे व्हाट्सएप पे तो गाड़ी आगे को नहीं बढ़ेगी भाई। 666-22107 नंबर है, 666-22107। आज मैंने भाई रस्ते में यार एक भाई को देखा और मैंने उनसे पूछा, क्योंकि हम सिग्नल पे आपस में टकरा गए, नजरें मिली, मैंने कहा भाई क्या बात हो गई, शीशा नीचे करके चला रहे हो भाई, उसकी हालत ऐसी हो रही, कह रहा भाई एसी नहीं चल रहा। मैं सही बता रहा हूँ, मैं रो दिया भाई के लिए, फिर ग्रीन सिग्नल हो गया, आगे जाना पड़ा। भाई प्लीज, इस मौसम में किसी का भी एसी उसी खराब हो रहा है ना, जरा सा भी सबसे पहले ठीक करा लो भाई, छोड़ना नहीं, बता रहा हूँ मैं। अभी सुबह ये हाल है उस बंदे का, पता नहीं, अल्लाह करे भाई उसका एसी जल्दी से ठीक हो जाए। भाई आपका नाम नहीं पूछा मैंने पहली बात तो आप जानते ही नहीं होंगे मुझे, पर अगर ये बात सुन के आपको लग रहा है कि अच्छा ये वही था जो गाड़ी में था, तो या आई होप सो ठीक हो जाए। और सवेरे सवेरे जो अपने वॉलेट चाबियां वाबियां सब भूल के जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ पढ़ी उसमें था कि भाई ये जो मिडिल ऑफ द वीक होता है ना, जैसे आज क्या हो गया दिन भाई, आज वेंसडे हो गया, ठीक है, तो टेक्निकली ये मिडिल ऑफ द वीक है और लोग मिडिल ऑफ द वीक में चीज़ें भूल जाया करते हैं, उसमें वॉलेट है, चाबी है, दुनिया जहाँ की चीज़ें हैं भाई। तो जो लोग आज भूल के निकले हैं, क्लैप फॉर यू। आज हम शो में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो बढ़िया बात करेगा और ज्ञान वाली बातें नहीं करेगा और कम वक्त में बड़ी बड़ी बातें कर देगा, अच्छी बातें कर देगा, हंसी भी खेर देगा। उसके लिए बजेगा ये वाला हूटर, ये तैयार है। तो अगर ये हूटर आपको अर्न करना है तो आपने खुश रहना है। अगर किसी ने ज्ञान दिया ना, कहाँ वो कहाँ है, वाइपर कहाँ है, वाइपर निकालो, कोई ज्ञान नहीं देगा मैं बताऊँ। सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, माँ बाप उन्हें छोड़ने के लिए जा रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, और फिर कोई आएगा 15 मिनट की कॉल, उसमें वो ज्ञान ही क्या, ऐसा नहीं करने का है, ठीक है। ओके शांति, अब जरा मैसेज पढ़ लूँ मैं जल्दी से। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाई, आज भाई ने क्रिकेट कमेंट्री कर दी जी भाई हरियाणवी में कर देंगे घर आसिफ भाई, क्या हाल है भाई के। और एक मैसेज है फरद भाई का, फरद भाई कह रहे हैं भाई गर्मी जाने का नाम ले रही भाई, अक्टूबर आने वाला। मैं यही तो हैरान हूँ, मैं कहा ये क्या चल रहा है, ये वैसा वाला है, मौसम कह रहा है कि मैं अक्टूबर बोलूं तुम जून समझना ये वैसा वाला है। बट फरद भाई वालेकुम अस्सलाम, एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाई, और भाई नींद तो पूरी, भाई नींद पूरी हो रही है भाई, अभी आदत डाल ली आपके भाई ने, भाई नेक्स्ट बैटिंग करने का तेरा भाई जाएगा भाई रनिंग पे मौजूद है हमारे सुभाष भाई सुभाष भाई अभी रनिंग, एक रन लेके देता हूँ। एक मैसेज है, एकदम सही बात बोला भाई, आज मैं सुबह मोबाइल रूम में भूल कर निकल गया, वापस गाड़ी में पहुंच के आता है। देखा मैं कह रहा हूँ भाई, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मिडिल ऑफ द वीक लोग भूलते हैं। सुभाष भाई ने इस बात पे एकदम दस्तखत कर दिया, भाई कह रहे हैं मैं भी मोबाइल भूल गया था आज, हो रहा है भाई ये। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम संजीव भाई, क्या हाल है संजीव भाई, गुड मॉर्निंग। और एक मैसेज है, अरे क्या बात है आसिफ भाई, हाजिर लगा दो आसिफ भाई, वालेकुम अस्सलाम। और एक मैसेज, वेटिंग फॉर प्रोफेसर, थैंक यू भाई सलमान भाई, बहुत सारा प्यार, वालेकुम अस्सलाम जान, गुड मॉर्निंग। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, गुड मॉर्निंग सैयद अली हैदर शाह साहब, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और फरद भाई क्या कह रहे हैं, भाई ऐसा हो रहा है आज। मैंने देखो, मैंने आप लोगों से बिना पूछे ये बात पहले बता दिया आपको, क्योंकि कल मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा भाई उसमें लिखा हुआ है मिडिल ऑफ द वीक लोग चीज़ें भूलते हैं घर में, कोई वॉलेट भूलेगा, कोई कुछ भूलेगा, इसलिए ज़रा सावधान रहें, सतर्क रहें। और जैसे मैंने कहा कि अभी जब शो पूरी तरह से शुरू हो जाएगा तो कोई भी ज्ञानवर्धक बातें नहीं करेगा, आपने हंसी मजाक करना है, बढ़िया रहना है, चिल रहना है। और अगर आपने बढ़िया लोगों को हंसाया, चिल कराया, तो आपके लिए मेरे पास ये है, ये आपको अर्न करना पड़ेगा। यस यस यस यस, तो ये आपके लिए बजेगा। एक मैसेज है, भाई मेरी मॉर्निंग रूटीन है, मैं गर्म पानी पीता हूँ, बहुत बहुत बढ़िया भाई, शानदार ये एक भाई मेरे पास आके भी मैसेज किया, उन्होंने कुछ महीनों पहले मैसेज किया था, और वो कह रहे थे कि आपकी स्किन का रूटीन बताओ। भाई मैं किसी, मेरा कोई रूटीन नहीं है भाई, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम, आज भी यही पूछा इन्होंने। एक मैसेज है, भाई आज की स्टोरी क्रिकेट बेस्ड है, ना ना ना ना ना ना, आज की स्टोरी बहुत खास है भाई, आग ला देंगे। फरद भाई कह रहे हैं, जिसके पास दो मोबाइल होते हैं वो तो पक्का एक मोबाइल लिए बगैर जाता नहीं है, फिर अंदर जाने के लिए सोच रहा था कि क्या ज़रूरी है लेना मेरे साथ, मैं ये वो मैं हूँ फरद भाई, आई डोंट हैव टू मोबाइल फोन्स, लेकिन अगर होते तो एक तो खो जाता, पक्का हो जाता। मेरी कैपेसिटी किसी चीज़ को होल्ड करने की जो महंगी है वो दो हफ्ते की है, दो हफ्ते के बाद वैलिडिटी चली जाती है और मैं चीज़ें खो देता हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि दैट मैं कुछ भी खरीदूँ तो आई बाय चीप, चीप प्रोडक्ट, एकदम चीप कि कोई ऐसा गम ना हो, क्योंकि मुझे पता है मैं खो दूंगा। तो अब मैं उस उम्र के पड़ाव पे आ गया हूँ जहाँ मैं सेल्फ अवेयर हूँ इस चीज़ को लेके कि ये तो फैक्ट है। एक मैसेज है, भाई बोल दो आपका सीक्रेट जो आप तीन टाइम्स एवोकाडो खाते हो। ये देखो सुभाष भाई, ये आसिफ भाई कहने से एवोकाडो, सुभाष आसिफ भाई मैं नहीं खाता, आसिफ भाई एवोकाडो से मुझे चिड़ है, चिड़। मैं ये नहीं कह रहा बाकियों को मत खाओ, मुझे टेस्ट नहीं समझ में आया भाई। मैंने ट्राई किया था एक दिन, मैं उठा और मुझे मन किया कि आज मैं रईसों की तरह थोड़ा सा हरकतें करूं, तो मैंने एवोकाडो को टोस्ट पे लगाया प्रॉपर, उस पर चिली फ्लेक्स डाल दिए, सब करके देख लिया भाई, लेकिन नहीं हो पा रहा। पढ़ाई इसलिए नहीं हो पा रही है आसिफ भाई, समझने की कोशिश कीजिए। ऑन दैट वेरी नोट, सुबह की शुरुआत ऑफकोर्स सुबह के अधिकार से होगी, और अभी हमारे तला भाई की आवाज़ में अधिकार सुनेंगे, उसके बाद मैं वापस आऊँगा। आज की कहानी इज़ अ मेडिकल मिस्ट्री, बहुत कमाल की है भाई, मतलब बस दिमाग घूम जाएगा आपका। ठीक है, तो 666-22107 नंबर है, 666-22107। आसिफ भाई के लास्ट मैसेज कहते हैं, भाई मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, बदनाम मत करो मुझे। अरे आप नहीं, दो दो आसिफ हैं भैया, एक तो बड़ी बड़ी परेशानी है। एक मैसेज है, फरद भाई कह रहे हैं एवोकाडो जूस फिर भी अच्छा लगता है लेकिन सैलेड नहीं चाहिए, मुझे तो एवोकाडो ही नहीं चाहिए, बात यहीं पे ख़त्म। ठीक है, एक मैसेज आ रहा है मोहम्मद भाई, मैं थोड़ी देर में सारे रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अधिकार चलाने ज़रूरी है, स्टे का ट्यून्ड हो गया।
1: एक पुरसकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अज़कार FM 107 पर।

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك

0: प्लीज जाने दो ना बच्ची को, प्लीज। मतलब अलीना कितनी प्यारी है माशाल्लाह, इतनी होनहार बच्ची है आपकी, अगर होनहार नहीं होती तो फिर भी कहता, इतनी प्यारी नेक, प्लीज जाने दो उसको। हैं अलीना, ऑल द बेस्ट। हो जाए तो मेरे को रिपोर्ट करने का, एक कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जनाब खैरियत से हैं?
0: सुबह हो गई मामू। हाँ जी, मैं तो जग गया, आप बताइए।
1: सुबह हो गई
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बस बढ़िया है जैस भाई।
1: अरे भाई आपके लिए कल जो है ना, हाँ। दो जनों से ना खुसूसी वाला सलाम आया था।
0: खुसूसी वाला सलाम आया, ये वही दो लोग हैं जो डेढ़ बजे आते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई
0: साहब। अच्छा, दोनों को मेरा वापस सलाम दीजिएगा, और एक से तो मैं भागता फिर रहा हूँ। हाँ, तो मैं जो हूँ, एक को मैंने बहुत ज्यादा छेड़ दिया है, मुझे लग रहा है कि कहीं मेरी रीढ़ की हड्डी ना टूट जाए, इसलिए मैं उनसे दूरी बना के चल रहा हूँ। सो वो एक चीज है।
1: कल कह रहे थे भाई साहब, ऑन एयर बैठा उन्हें तो अभी बता देता, नहीं बोल रहा
0: नहीं, मैं आज उनको दोबारा छेड़ने वाला हूँ। आई हैव समथिंग रियली रियली स्पेशल फॉर हिम, वो कहानी के बाद में बताऊंगा। बट जैस भाई, आज ये बताओ यार, आपका कोई छोटा मोटा फेयर है? लोग बता रहे हैं, कुछ लोग मेरी तरह हैं जो वाइट टी शर्ट पहनने से, शर्ट पहनने से डर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं यार फोन चार्जिंग पे लगा के बटन नहीं दबाया तो फिर क्या होगा। आपका ऐसा कोई छोटा मोटा डर और डर है?
1: मेरा छोटा मोटा डर बस यही है भाई साहब, अगर मैं कहीं रोड पे जो है ना एक्सीडेंट देख लेता हूँ ना, तो बस एक मिनट के लिए थोड़ा सा डर लगता है, उसके बाद में फिर गायब हो जाता है।
0: ओके, बस यही डर है आपका?
1: बस एक मिनट के लिए भाई,
0: यार
1: थोड़ा रिग्रेट होता है कि यार हाँ। मैं देखता हूँ ना कहीं एक्सीडेंट होता ना, अरे यार इतनी ये तेज चला रहा होगा,
0: हाँ।
1: बाद में सोचता हूँ मैं भी तो तेज ही चला रहा हूँ ना,
0: हाँ।
1: एक मिनट तक रिग्रेट करता हूँ उसका, उसके बाद में फिर नॉर्मल हो जाता है। हाँ, कोई बात नहीं है, तो होता रहता है।
0: सुधरने का स्कोप है नहीं आपका, मुझे ऐसा लगता
1: है। नहीं है भाई, बिल्कुल।
0: हाँ, वो समझ में आ रहा
1: है। बहुत डांट पड़ती है इस चीज पे यार, बहुत डांट पड़ती है भाई, घर से भी, यहाँ पे भी।
0: हाँ,
1: अभी तो उन्हें यहाँ वालों को भी ना आदत हो गई है ना, इससे तो कहना कोई फायदा ही नहीं है, सुनता तो है नहीं।
0: हाँ, तो वही है, एक बार गुद्दी पे आपके टैटू बनाएगा ना कोई, तो समझ में आएगा। क्यों जैसे भाई, ऐसा तो नहीं मानोगे?
1: कोई नहीं कुछ कहता, अब तो कोई भी कुछ नहीं कहता। पहले क्या था ना भाई, क्या है ना, मैं 80 की स्पीड में जा रहा हूँ, हाँ थोड़ा आराम से चलो, तेज जा रहा हूँ बहुत ज्यादा। 80 में जाता था ना तब भी तेज होता था, अभी मैं 140-130 जाता हूँ, कुछ नहीं बोलता
0: यार। आपको कुछ इलाज करना पड़ेगा जैस भाई, कोई और डर पैदा करना पड़ेगा आप में, मजा नहीं आ रहा। मैं
1: यार डर आता ही नहीं, पता नहीं क्या बात है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है।
0: अल्लाह का शुक्र तो है, लेकिन कुछ डर पैदा करना पड़ेगा मुझे, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इतने सुकून से कोई आदमी मुझे दिखता है, मुझे परेशानी होने लगती है। कुछ तो करना पड़ेगा। करते हैं जुगाड़, करते हैं आपका। बाकी आसिफ भाई ने आपके मैसेज किया, आसिफ भाई कह रहे हैं जैस भाई बहुत कमजोर दिल के हैं, ये कहा है आसिफ भाई ने आपके लिए। एक आध मिनट के, फिर ये जिंदगी में धनिया बो देते हैं भाई, एक आध मिनट के लिए कमजोर दिल है इनका। ठीक है जैसे
1: भाई, नहीं तो दूसरे वाले को, सामने वाले को, अगर भाई को हमारे आगे जा रहा हो ना, उसको तो हम बिना वजह में हार्ट अटैक देके चले जाएं।
0: बस यही परेशानी है। ठीक है जैसे भाई, मैं आपके लिए कोई डर ढूंढता हूँ, एंड ऑफ द शो मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। डन डन डन डन, मैं जरूर ढूंढता हूँ। ठीक है मेरा भाई, ख्याल रखिए। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। तो इनके लिए तो उल्टा डर ढूंढना पड़ेगा। एक मैसेज है, बहुत याराना लगता है कबीर भाई रिकॉर्डिंग सुनना, क्या है वो डेली ड्रॉप करते हैं, एंजॉय करते हैं क्योंकि मैं अच्छा। ओके, मैं अभी सुनता हूँ। एक मैसेज है, भाई सोच रहा कोई याद नहीं आ रहा फिर। नहीं, सोचिए थोड़ा और, दिमाग पे जोर डालिए उसामा शफीक भाई, क्योंकि कुछ तो होगा, समथिंग शुड बी देयर। एक स्मॉल स्मॉल डर की बात कर रहे हैं हम, जो अक्सर आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
0: नदीम भाई, सुबह सुबह उठ के कैसा लग रहा है आपको मेरे भाई?
2: सुबह सुबह उठ के कैसा लगता है कबीर भाई, वापस नींद आ रही है।
0: तो नींद लेने से पहले मुझे बताइए आपका क्या स्मॉल फेयर है मेरे भाई, वो छोटे छोटे जो डर
2: मेरा था। अभी तो ये डर है मेरा, वो जो 65 रियाल आपकी गाड़ी में मेरे पड़े हुए, आप खर्च ना कर दे।
0: ये तो जेन्युइन डर है भाई, ये डर तो मुझे भी है कि कहीं मैं खर्च ना कर दूं। और मुझे ये भी डर है कि कहीं वो एक दिन मैं उसका गाड़ी का कैबिनेट खोलूं अंदर और मुझे पता लगे कि वो है ही नहीं वहां पे, तो वो भी एक बहुत बड़ा डर है।
2: वो भी हो सकता है,
0: वो भी हो सकता है, करेक्ट। और कोई है आपका स्मॉल फेयर नदीम भाई?
2: सबसे दो जो नॉर्मल डल जो रोज ही लगते हैं, एक तो सिग्नल तक पहुंचते पहुंचते जब वो ब्लिंक करने लगता है,
0: अरे भाई
2: वो डर रहता है कि भाई निकल पाएगी या नहीं, हमेशा डबल वाइड रहता है, लेकिन हर बार निकलते हैं
0: भाई। मेरी हार्ट बीट तेज कर दी आपने वो बता के।

0: हार्ट बीट तेज कर दिया आपने बता के, वो जो जब लाइट ब्लिंक करती है ना, रे रे रे रे रे
1: हाँ, एक तो वो रहता है, दूसरा फिर लेटे लेटे मोबाइल यूज करने का डर रहता है कि मुंह पे ना गिर जाए।
0: ये कैसा डर है यार। वैसे जेन्युइन फियर
1: है थोड़ा। अब अभी देखो, अभी जैसे ये हालत है ना नींद वाली, तो अब सुबह हाँ। लेटे लेटे अगर मोबाइल यूज कर रहे हो आप, तो हाथ धीरे धीरे वो ढीले होने लगते हो
0: भाई। मैंने मैंने मैंने बेड के साइड में एक बढ़िया सा स्टैंड लगा रखा है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। उसको कैसे मोड़ माड़ के रख लो और करवट लो और देखना शुरू कर दो। तो ये आप अपना सकते हैं अगर आपको सच में ऐसे कुछ चाहिए, उसमें गिरने गुरने का डर नहीं है।
1: देखना पड़ेगा
0: इलाज फौरन। एक चलिए, एक डर तो हटा पड़ेगा।
1: लगाने की जगह भी होनी चाहिए ना आपके यहाँ पे, तो खैर माशाल्लाह से।
0: अरे जमीन से, जमीन से निकलेगा भाई, जमीन से वो स्टैंड है।
1: इतना पड़ा है?
0: हाँ जी भाई, क्या समझ रहे हैं आप, कलाकार हैं हम। आपको बताएंगे, मैं आपको भेजूंगा जरूर। देखना उसको काम का है आपके। ठीक है भाई,
1: ओके
0: ठीक है मेरा भाई, ख्याल रखिए नदीम भाई, और नींद खींच लेना भाई। आज मुझे लग रहा है नींद ज्यादा है।
1: नहीं अभी तो, आज हाँ। तो एक नई चीज आई है,
0: क्या?
1: तो हम जाके बैठे हैं पीसी पे भाई।
0: अच्छा, ओ ओके, मुझे जरा फोटो जरूर भेजिएगा, मैं देखना चाहूंगा। ठीक है मेरा भाई, ख्याल रखिए नदीम भाई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ नदीम भाई। के बाद उसामा भाई ने मैसेज किया है, भाई आपने 65 रियाल इसलिए तो नहीं रखे कि डबल हो जाएंगे? वही भाई मैंने सोच रखा है कि एक दिन मैं गाड़ी में देखूंगा और ये 65 जो है वो पूरे 130 बन के निकलेंगे भाई। ऐसी खामखा का सपना है। एक मैसेज है खाजा साहब का, सैयद खाजा साहब लिखते हैं, इंजेक्शन से डर लगता है, इवन अ स्मॉल प्रिक फॉर चेकिंग ब्लड ग्रुप। अरे भाई, ये जर डर जिनको है इवन आफ्टर उनकी कितनी भी उम्र हो गई हो, उनके लिए मेरा हूटर है। गुड गुड वन, गुड वन। ये डर बहुत लाजमी होना भी चाहिए। एक मैसेज है, ये डर है कि ऑर्डर देने जाएं, कस्टमर ने जो रूम नंबर लिखा है तो वो उसमें से ना निकले और दूसरे रूम से निकल आए। ये डर मुझे समझना पड़ेगा आपसे मोहसिन भाई, ये ऐसा हुआ है कभी? एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग कतर वालों, शाहिद सईद साहब ने मैसेज किया है, थैंक यू। जैस भाई लिखते हैं, भाभी को बताता हूँ कि भाई की कार में डैशबोर्ड में 65 रियाल पड़े हैं, मौका मिलते ही निकाल लो। हाँ जैस भाई, मेरी वाली भी नहीं ढूंढ पाएगी, वो 65 रियाल कहाँ रखे हैं। क्या समझते हो, ये थ्रिलर कहानी सुनाने वाला खुलेआम रख देगा 65 रियाल? इतनी तेज हो रही है तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये उमर शहजाद साहब का मैसेज है। फिर मैसेज आया प्रिंस साहब का, प्रिंस भाई वालेकुम अस्सलाम, आई एम हेयर फॉर हिम। अच्छा वो वाली याजा भाई ने मैसेज किया है, भाई जो भी टॉपिक है बस ये बात ये क्या वेद भाई, क्या अब नहीं, नहीं वेद भाई अभी इंडिया शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि मेरा बेटा रोहन पूछ रहा है रिडल वाले अंकल कब आएंगे। रिडल वाले अंकल उड़ चुके हैं और क्या, और बोल रहे हैं ये अंकल वो स्टोरीज में। अच्छा, थैंक यू सो मच। हर अंकल की क्वालिटी होती है, ये वाले अंकल बहुत बुरे हैं बेटा, तो अभी जो अच्छे वाले अंकल हैं वो तो नहीं आने वाले, सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट, पर देट इज़ व्हाट इट इज़। रोहन, आई एम रियली रियली सॉरी एंड फीलिंग बैड फॉर यू ब्रो। एक कॉल आ रही है, रुको। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग।
0: मुझे लगा सारे के सारे आज मॉर्निंग की ग्रीटिंग एक साथ हो जाएगी। कैसे हैं भाई, आपका नाम?
2: मॉर्निंग मेरे को सुबह 4 बजे हो गया था।
0: हाँ, अरे रेडियो की वॉल्यूम थोड़ी कम कर दो, डबल डबल सुनाई दे रहा है मेरे को, मैं यहाँ से सर घूमता हो जाऊंगा मैं घर।
2: हाँ, बहुत अच्छा लगता है ना, इधर इधर गाड़ी में सुन रहा हूँ रेडियो और उधर मोबाइल में बात कर रहा हूँ, तो अपना बात खुद सुन रहा हूँ, बहुत मजा आता है।
0: ये जो मजा आपको आ रहा है मुझे तो डबल सुनाई दे रहा है, आपके मजे के चक्कर में मैं घूम जाऊँ।
2: अभी
0: ठीक है, अभी ठीक है। हाँ भाई, आपका नाम क्या है, नाम बताइए पहले। तो
2: मेरा नाम नूरुल इस्लाम है, मैं बांग्लादेश से हूँ।
0: हाँ बांग्लादेश से। नूरुल भाई, क्या छोटे छोटे डर क्या हैं आपके, ये बताइए, स्मॉल फेयर क्या है आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह डर होना चाहिए, और पूरा टाइम ही डर है, जैसे कि गाड़ी चलाता हूँ डर होना चाहिए।
0: कैसा डर?
2: जैसे कतर में मैं 1 साल हो गया, अगले महीने में मेरे को 6 तारीख में 1 साल हो जाएगा।
0: ठीक है।
2: और पहले मैं 12 साल था दुबई में गाड़ी चलाया था।
0: ठीक है, फिर
2: तो डर लगता था, मतलब दुबई में तो हर टाइम आपको एक्सीडेंट नजर आता है, मतलब हाईवे में आपको जाएगा तो हर 20 किलोमीटर बाद आपको नजर आएगा एक्सीडेंट हो गया, तो ये हर टाइम ये डर रहता है।
0: और कोई छोटा डर है तो बड़ा डर है भाई, ये छोटा डर नहीं है, ये तो बड़ा डर है।
2: ये डर रहता है, मतलब पूरा टाइम रहता है, लेकिन कोई कोई आदमी, मेरा दोस्त लोग है बहुत ऐसा है, बात करता है, भाई हम तो बहुत तेज गाड़ी चलाता है, मतलब हम 180 लगा लेता है, कई कई रोड है दुबई में 160 तक चलता है।
0: हाँ।
2: तो बोलते है भाई हम तो बहुत तेज चलाते हैं, बड़ा बड़ा बात करता है, बोलता है हम इतना चलाता है, मैं सोचता है भाई क्या फायदा है।
0: नूरुल भाई, आप इन लोगों से दूर रहे मेरा भाई, मुझे आपसे काफी

0: उम्मीदें हैं तो इन लोगों से दूरी बना कर
1: इन लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 12 साल दुबई में है और अभी तकरीबन 1 साल होने वाला है और 15-20 दिन बाकी है।
0: पूरा रिज्यूमे
1: अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं है मेरा।
0: पूरा रिज्यूमे दे दिया मुझे आपने। 12 साल यहाँ होगा, 1 साल यहाँ होगा, तीसरी बार बताया भाई आपने। ठीक है नूरुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल करी मेरे भाई, और जब 2 साल हो जाए तो मुझे बताइएगा जरूर, अपडेट दीजिएगा। ठीक है, ओके भाई, वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे भी 15 साल हो चुके हैं रेडियो में। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कहता कबीर भाई आपका छोटा डर चाचा का फोन ना आ जाए, दैट इज माई फेयर एक्चुअली में भाई। मुझे बहुत डर लगता है उनकी कॉल से, और वो इतने शाते नहीं कि अलग अलग नंबरों से कॉल करते। एक मैसेज है अभी हुआ ना, 5 नंबर लिखा था, 6 से निकल रहा था, ऐसा हुआ क्या? अरे भाई, एक मैसेज है ये हमारी बहन है समीरा, उन्होंने मैसेज किया, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, अनियन कट करने से डर होता है, बहुत रुलाता है। मैं बताऊं, मेरे घर में अगर कोई प्याज काट रहा है तो मुझे उसको देखते ही एक खौफ दिल में बैठ जाता है, मुझे पता है कि मेरे आंसू रुकने नहीं वाले। तो बहन थैंक यू सो मच फॉर रिवाइविंग दैट फेयर इन मी राइट नाउ, जबकि मेरे आसपास भी प्याज नहीं है। इरशादुल्लाह यूसुफ जैसा लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, क्या खाना बनाते वक्त नमक ज़्यादा ना हो जाए। ज्यादा ना हो जाए, जिनको खाना बनाना आता है भाई उनका डर है, हमें तो कोई डर नहीं है, हमें तो क्रिटिसाइज करना है ये क्या बना दिया भाई, इतना ही है, उसके बाद जीवन बचे ना बचे। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई,
0: क्या हाल है भाई के?
2: अरे बढ़िया मेरे भाई, बढ़िया,
0: बस बढ़िया हो रही चाहिए, बस
2: आवाज सुना देते हो और फिर पूछते हो हाल कैसे हैं, तो हाल
0: अरे प्रिंस भाई
2: नहीं सुने वो जिनके हो जाएंगे पंगे।
0: प्रिंस भाई के लिए क्या बात है, क्या बात है प्रिंस भाई। अब बताइए प्रिंस भाई, क्या क्या है आपका छोटा छोटा मोटा डर, क्या है स्मॉल फेयर जो होते हैं
2: भाई? बहुत कॉमन सा डर है,
0: क्या है?
2: बिल्कुल कॉमन सा, किसी को होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, कि मैं जब भी मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने जाता हूँ ना, तो जो बंदा क्या कहते हैं उसको हल्ला, यानी नाई नाई जब नाखून काटता है ना, तो मुझे वो अंदर से स्किन या कुछ कट जाने का डर होता है बहुत।
0: मेडिक्योर पेडिक्योर कराने जाते हैं प्रिंस भाई, माशाल्लाह। अच्छा
2: हाँ भाई, यानी मैं ऑब्वियसली बॉस करवाना पड़ता है।
0: अच्छा वेरी नाइस,
2: अपना ख्याल रखना है तो
0: ओके ओके। तो क्या डर रहता है नाखून काटते हुए?
2: नाखून काटते वक्त भाई अंदर से गोश्त या चमड़ा कुछ कट ना जाए।
0: अच्छा तो नाखून तो खुद काट लो भाई, क्या दिक्कत है?
2: अरे नहीं भाई, हम खुद काट लेंगे, नो टेंशन। लेकिन जब बंदे से करवाते हैं ना, तब डर लगा रहता है।
0: अच्छा ओके।
2: यार
0: कभी
2: मम्मी भी जब नाखून काटती थी बहुत डर लगता था कि वो
0: कभी ऐसा हुआ ना काट दे, कभी ऐसा हुआ है वैसे?
2: हाँ कई बार हुआ है, लेकिन अम्मी के हाथ से हुआ है।
0: अच्छा फिर तो
2: क्योंकि हिलते थे
0: वो, मुझे लग रहा है वो जानबूझ के हुआ होगा। अब हिल
2: क्योंकि बार बार में तो इतनी हिम्मत है नहीं भाई,
0: फार्मिंग हो रही है भाई आज तो शो पे।
2: नहीं सच, मैनिक्योर पेडिक्योर सिर्फ लड़कियों का नहीं होता है, लड़कों का भी होता है, क्यूटिकल्स वगैरह कट करना, वो सारी चीजें, यानी आपके हाथ और पैर दोनों मुरतब कर दिए जाते हैं, नॉट वैक्सिंग ओनली, जो भी होता है स्क्रब वगैरह।
0: भाई मैं आपको बताता हूँ, आई डोंट नो, यहाँ पे जितने लौंडे मुझे सुन रहे हैं उनका पता नहीं, पर मुझे भाई थोड़ी वो शर्म आ जाएगी, पता नहीं मैं जाके ना नर्वस हो जाऊंगा, किसी ने मुझे बोला ना मेडिकल वाले, मैं नर्वस हो जाऊंगा। हां
2: जेंट्स सैलून्स हैं भाई इसके लिए
0: भाई, ये
2: वेरी कॉमन थिंग फॉर गल्फ सिटीजंस, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग।
0: ओके ये आज मुझे आपने
2: छोड़ दिया, अबाउट द रेजिडेंट्स एज़ अ सिटीजंस इट्स अ कॉमन थिंग।
0: ओके ओके ठीक है, नहीं देसी जनता में मैंने बहुत कम सुना है, इसलिए मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, समझ रहे हैं आप, तो इसीलिए बस। तो कोई बात नहीं,
2: इधर ये इधर रियली वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि हम लोग करवाते ही हैं, तो फिर
0: ठीक है भाई, बढ़िया है। तो
2: होते हैं भाई अपने।
0: अच्छा मैं जेन्युइन सवाल है, कितना टाइम में कराते हैं आप ये, मतलब कितना टाइम लगता है इसमें, मतलब टोटल प्रोसेस में, और कितने वक्फे में कराते हैं?
2: आपने अपनी मर्जी वाला अच्छे से करवाना है, ताकि वो बंदा हर चीज का ख्याल रखे, तो फिर not

0: मोर देन 400, इट्स अ सिंपल थिंग.
1: मैं मोजी से कटवा लूंगा.
0: क्या मजाक कर रहे हो क्या भाई सुबह सुबह?
1: अरे भाई साहब, अच्छा ठीक है, तो ये अच्छा हुआ आपने बता दिया, क्योंकि पता नहीं था बहुत लोगों को, आई एम प्रीटी श्योर नहीं पता होगा.
0: नहीं भाई, बहुत अच्छी चीज है.
1: ओके,
0: क्या अगर करवा देना तो एक तो आपके नेल्स शाइन शाइन रहते हैं और बिल्कुल मुरतब रहते हैं, यानी जो ऊपर से रफ टाइप जो हो जाते हैं ना वो नहीं रहते. इवन वो लोग क्या बोलते हो यार उसको, बैक साइड पैर का जो लास्ट.
1: भाई इतनी नॉलेज मिल चुकी है मुझे, इतना भी याद रहे तो बहुत बड़ी बात है. मैं मुझसे एक बंदा सुबह सुबह पूछ रहा था स्किन केयर रूटीन आपके पास भेजता हूँ, क्या निकाली जाती है?
0: अरे डेड स्किन निकाली जाती है पैर और हाथ की.
1: अच्छा, आज मुझे लग रहा है किसी रईस जगह पे बैठा हूँ. चाय मंगाओ
0: भाई,
1: चाय मंगाओ भाई, कहाँ गए? अच्छा ठीक है. अच्छा भाई, कमाल की बात है, आज आपने जो है मतलब कमाल कर दिया ये सब बता के. बहुतों को ये सुन के हैरानी भी होगी और बहुत लोग करवा रहे होंगे, तो मैं अच्छी बात है, आई विल टेक दिस टॉपिक, मुझे इसमें से एक मुद्दा मिला है. मैं जरूर इस पे बात करूंगा प्रिंस.
0: बढ़िया,
1: थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द कॉन्टेंट भाई, थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह प्यार भाई. वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम. तो मेरे पास तो कुछ है नहीं कहने को भाई, बता नहीं मैं तो इसकी बात में क्या कह सकता हूँ, मैं है नहीं कुछ. हाँ भाई, क्या कह रहे थे? इधर आओ, एक क्या पहले कॉल से आज ऐसा किसी के सांस क्या, पहली कॉल से आज ऐसा लगा कि किसी ने सांस लेते ही मुंह दबा दिया है. नौशाद कासमी साहब, इसका क्या मतलब हुआ? सईद भाई ने मैसेज किया, वालेकुम अस्सलाम. अप्रिंस भाई, यू टुक इट अवे मैन, मैं अभी भी सोच में हूँ जो आपने मुझे बताया. अस्सलाम वालेकुम, मेरा डर है कि बेगम के बर्थडे ना भूल जाऊँ, क्योंकि एक दफ़ा भूल चुका हूँ. या अल्लाह, आगे लिखते हैं नेक्स्ट डे विश किया. सेकेंड डर है कि एनिवर्सरी आ रही और डेट याद नहीं रही. तो आतिफ भाई, फॉर यू मेरा भाई, अब एनिवर्सरी मत भूलना वरना बहुत याद आओगे भाई. बहुत याद आओगे आतिफ भाई, बहुत याद आओगे. एक मैसेज है भाई, मेरे को सोते वक्त डरावना ख्वाब आता है तो उठकर डर जाता हूँ बहुत. उमर शहजाद साहब हाथ में लाइए. अस्सलाम वालेकुम. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, सर्दी में नहाने के टाइम हीटर ख़राब ना हो जाए. जासिम भाई, ये तो बहुत ही, आप देख रहे हैं डर दूसरा. अभी प्रिंस भाई बता के गए आपको हीटर का डर है, आप हमारे वाले इधर आइए. अस्सलाम वालेकुम. शहजाद सलीम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अभी मैं आपको कॉल करता हूँ रुको. और समीरा बहन भी हैरान हो गई, ये क्या कहेगा प्रिंस भाई? समीरा बहन आप भी हैरान हो गई, लड़कों को हैरान होना समझ में आता है, आप हैरान हो गई तो फिर तो बड़ी बात होगी. भाई असल में हम देसी लोग करवाते नहीं है ना, वही तो हम मुंह ही धो लेते हैं, बहुत बड़ी बात है. सैटरडे को दूसरे दिन छुट्टी के. जैस भाई कह रहे हैं भाई बहुत रिच इंसान है प्रिंस भाई, पासवर्ड पता करो जल्दी. एक मैसेज है, नाइस कवर विद द वर्ड कम ऑन है. एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग कबीर जानी, लगता है प्रिंस भाई कोरियन जेंजी से बहुत इंप्रेस्ड हैं. तौकीर अहमद भट्ट साहब, जानते नहीं हैं आप उन्हें भी. एक मैसेज है, मैरिड हजरात को सिर्फ एक बात ही का खौफ हो सकता है, स्पेशली व्हेन वाइफ नोज द पासवर्ड ऑफ योर फोन. पासवर्ड हमारे घर में भाई साहब फेस आईडी लगा रखी है, फेस आईडी. पासवर्ड की बात करें ताहिर भाई, एक मैं सिद्धरा बहन का लिखते हैं, हाई फाइव टू प्रिंस भाई, इट्स अ गुड थिंग, कराना चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रूमिंग, इसलिए नाखून पीले होने का डर रहता है. ये डर पता है सिद्धरा बहन आप लोगों ने, आपने और प्रिंस भाई ने मुझे दिया है, मुझे अभी तक था नहीं ये. मैंने नाखूनों के बारे में जिंदगी में कभी नहीं सोचा, लेकिन आज जो है आप दोनों ने मिल के सोचने में मुझे मजबूर कर दिया है. एक मैसेज है, कबीर भाई लोगों को छोटे छोटे डर सुन के बड़ी बड़ी हंसी निकल रही है. भाई कौन है, कहाँ से आते हैं लोग? हैट्स ऑफ टू देम. सैयद अली हैदर शाह साहब, एग्जैक्टली. एक मैसेज है, भाई प्रिंस ने हरकत ही प्रिंस वाली है भाई की. भाई नाम को जी रहे हैं प्रिंस भाई, समझ में, नाम को जी रहे हैं, क्या बात है प्रिंस भाई, माशाल्लाह. हुसैन अहमद भाई ने मैसेज किया, बहुत बढ़िया. और एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, विनीश, माय फेयर वुड बी सम टाइम इन द ट्रैफिक सिग्नल, आई टेक अ नैप, फेयर इज आई डोंट वांट टू टर्न इनटू डीप स्लीप. विनीश भाई आई टेल यू व्हाट, आपके फेयर से ऑपोजिट है मेरा मामला, मुझे यकीन है कि मुझे ट्रैफिक में नींद नहीं आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं आती मुझे. इवन इफ मैं 24 घंटे जगाऊंगा, मुझे पता नहीं ट्रैफिक में क्या हो जाता है, एक एड्रेनलिन रश होता है, मुझे नहीं आती नींद. एक मैसेज है, मैं अपने नेल्स देख रहा हूं, ठीक लग रहे हैं कबीर भाई. क्या बात है, क्या बात है.

0: मैं कह रहा हूँ अपनी नेल्स देख रहा हूँ, नाखून ठीक ही लग रहे हैं। एक मैसेज है, टू मच इज बैड फॉर योर स्किन, ऑल्सो यू शुड डू ट्वाइस अ मंथ और वंस अ मंथ, नॉट मोर देन दैट। किस बारे में बात हो रही है फाद भाई? और लिखते हैं, आई डू दिस वंस अ मंथ फुल फेशियल हाइड्रा मेडिकल केयर। मैं ही हूँ क्या सबसे पीछे, क्या चल रहा है ये? एक कॉल आ रही है, रुको भाई। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई।
0: पहले ठीक है, बाकी बात बात होंगे, नाखून दिखाओ, हाथ आगे करो पहले। तुम
1: जस्ट नाखून मुंह से काट के आया हुआ है, मैं नील कलर भी नहीं है मेरे पास।
0: मैं अभी मूंछ के पास जाने वाला हूँ, चलना तो बताओ, दूसरा हाथ रह गया हो तो।
1: नहीं नहीं भाई, अभी जस्ट मुंह से काट के आया, बता तो रहा भाई,
0: मुंह से काट के। अरे यस भाई, क्या हाल है भाई के?
1: भाई गरीबों का सहारा कबीर भाई हमारा।
0: बहुत बढ़िया, तुम मत होने देना मुझे पैसे वाला, ठीक है?
1: नहीं नहीं भाई, वो 65 रियाल जो है डैशबोर्ड में वो रखे रखो, बस काम आएगा अपने, वो चाय पीने।
0: बस इसीलिए मैं रईस नहीं हो पा रहा, मुझे पता लग गया कृपा कहाँ रुकी हुई है। ये समझ आ गया।
1: नहीं मैं, भाई हाँ। मैं बता सच्ची में मैं शॉक्ड हो गया, जो इससे पहले जो कॉलर था ना आपके पास,
0: प्रिंस भाई,
1: सच्ची में उनका नाम ही प्रिंस है, वो खुद प्रिंस है, एक है
0: भाई, ही इज लिविंग अप टू हिज नेम भाई।
1: भाई सोचो, नाम से बंदा प्रिंस है और काम से भी प्रिंस है बंदा।
0: हाँ ये देखो, ये होता है नाम, नाम तो हमारा भी कबीर है। क्या करें लेकिन।
1: नहीं तो सीखो भाई, तुम सीखो, तुम कबीर भाई है मानते ठीक है, वो प्रिंस भाई है, देख लो।
0: देखो आप आ, आप तो मान रहे हो कि है कबीर, मुझे भी तो मानना पड़ेगा ना। मैं नहीं मान पा रहा।
1: भाई
0: कृपा यहाँ रुकिए
1: भाई, हमको भी इतना अमीर हमको भी बनना है कि एक दिन जाके सलून में स्थान से आके बैठे, भाई एक चाय ले गया और भाई नाखून काट मेरे।
0: ये देखो क्या बात है प्रिंस भाई, आप लोगों को मोटिवेशन दे गए हैं एक अलग किस्म का, क्या बात है।
1: अरे भड़का के चले गए भाई, मोटिवेशन नहीं, भड़का के चले।
0: मजा आ गया, मजा आ गया। तो क्या आपका क्या छोटा वाला फेयर क्या है, छोटा छोटा फेयर?
1: मेरा फेयर यही है भाई, सिग्नल से पहले गाड़ी स्टॉप करने से पहले सिग्नल बंद हो जाता है हम लोग का।
0: क्या बात है, ये सिग्नल वाला फेयर हर किसी चीज का है, वो हर किसी का है, वो जो है ना वो जब ब्लिंक करते है ना लाइट पीली वाली, तब भाई साहब हार्ट रुक जाता है, दिल रुक जाता है, ये बात तो है।
1: अभी तो यहाँ पर ऐसे ऐसे सिग्नल देखा मैंने, एक ही मतलब पहले सिग्नल होता है ग्रीन, तीन बार मतलब बिलिंग बिलिंग होता है, फिर येलो बिलिंग बिलिंग होता है, अभी ऐसा नहीं होता, डायरेक्टली येलो फिर सीधा रेड।
0: ये अब मुझे डर दे दिया आपने, थैंक यू सो मच आसिफ भाई, ये डिस्कवरी मुझे हुई नहीं थी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बाकी क्या हाल चाल भाई साहब, खैरियत तबीयत पानी कैसी है?
0: बस नाखून काट रहा हूँ भाई, बाकी सब बढ़िया है, आप बताइए। नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम कबीर है ना, तो उस हिसाब से मुझे जीने दीजिए प्लीज। बहुत सारे मैसेज, प्रिंस भाई यू हैव डन इट भाई, आज आपने जो कॉन्टेंट दिया है जनता को, मेरी जगह आप आज आ जाओ, कुर्सी खाली है भाई दूसरी वाली। मजे करा दे भाई।

0: FM 107. टाइम चेक।
1: भाई साहब घड़े में हो रहे हैं 7:02 और आपको तो पता ही मैं क्या कहूंगा, आप मेरा 7:02 बस ये चाहिए। प्रिंस भाई ने जो किया अभी नदीम भाई का मैसेज आया, नदीम भाई कह रहे हैं किसी को अगर नाखून कटवाने हैं तो मैं 50 कतरे रियाल में नाखून काट दूंगा ग्लव्स पहन के।

0: Wake up. Hey, Doha wala mein kabir.
1: Yehi kahunga. Subah subah.
0: Wake up.
2: Wake up, bhai. Sabse pehle, lekin Nadeem bhai, you deserved this, bro. You deserved this, bhai. Inke liye to banta hai. Kya baat hai Nadeem bhai? You totally deserved it. Ek call aa rahi hai. Assalamu alaikum. और फवाद भाई, क्या हाल है भाई के?
3: बस ठीक है भाई साहब, बच्चों को छोड़ा है, अब रस्ते में है अलखोल के.
2: हाँ, तो बताइए क्या सीन है फवाद भाई आपका? आप भी बड़ा ज्ञान दे रहे थे अभी मैसेज में, मैं उस ज्ञान को जानना चाहता हूँ.
3: सर, पहले शुरू शुरू में तो हमें बड़ा अजीब लगता था, लेकिन जब एक दफा कराया उसके बाद से मंथली एक दो तो करा ही लेते हैं.
2: मेडिक्योर पेडिक्योर?
3: फुल बॉडी.
2: क्या बात है यार, क्या बात है यार भाई. मैं तो बहुत अच्छा जी भाई, मैं तो बताऊं फवाद भाई, मैं तो एक्स्ट्रा सॉस नहीं मांग सकता बर्गर लेने के बाद. आप ही कैसे कर पा रहे भाई? सलूट है भाई, सलूट है भाई.
3: लेकिन मजा आता है. अच्छा. एक दफा झिझक होती है, लेकिन एक दफा अगर आप सही तरह को बंदा अच्छा करने वाला, मसाज या कोई चीज करने वाला हो ना, फेशियल का भी, तो मैं तो लिटरली कई दफा सो गया हूँ, मसाज की चेहरे भी सो गया हूँ खराटे मारते.
2: नहीं, मसाज तो बहुत अलग चीज है. मसाज तो चलो ठीक है, चंपे उम्पे तो करा लेते.
3: मसाज फेशियल वाला भी कराते हुए सो गया.
2: बहुत बढ़िया भाई. जीते रहो, जीते रहो. तो फवाद भाई, आपका स्मॉल फेयर क्या है, लेकिन मुझे बताइए, व्हाट इज योर स्मॉलेस्ट फेयर?
3: स्मॉलेस्ट फेयर जिंदगी में पहला एक था कि जब पहली दफा बंजी जंपिंग की थी, वो एक फेयर था. आखिरी टाइम जब एज पे खड़े होते हो ना, जब वो जो एक डाउट आता है ना,
2: सीटी बज जाती है,
3: रस्सी टूट जाए.
2: सीटी बज जाती है. मैंने भी ट्राई किया, मुझे तो प्रॉपरली धक्का दिया था उसने कि भाई नहीं कूदेगा तो धक्का दे दूंगा.
3: मैंने भी कहा था, सर कर रहा हूँ, सब ये धक्का दे रही भाई तू, बाकी छोड़ दे, बाकी देखी जाएगी.
2: बाकी देखी जाएगी. ट्रू भाई, ट्रू. और कोई ये मंडेन लाइफ में, रूटीन में कुछ है ऐसा स्मॉल फेयर, जैसे लोगों का रहता है कि भाई व्हाइट शर्ट टी शर्ट पहनने से? थोड़ा सा
3: जितनी दफा मैं गलत साइड से जाता हूँ, फाइन का सबसे बड़ा डाउट रहता है.
2: नहीं, ये अभी आएगा पर्ची, मुझे लग रहा है जब आपने कह दिया एक बारी, यू सेड इट आउट लाउड, तो कुछ ना कुछ तो होगा. बच के रहिए आप.
3: दूसरा ये कि कभी दोस्त को भी छुप के कोई चीज मैसेज कर दे और बेगम देख ले और समझे कि कुछ और हो रहा है. फिर
2: अरे रे, ये जो आपने बोला है, कितनों के दिल अभी जोर से धड़के होंगे गाड़ी के अंदर, बता रहा हूँ. कितनों के दिल धड़के होंगे जोर से. वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर अनलॉकिंग दिस. बहुत बहुत शुक्रिया.
3: आप ऐसे ऑफिस से आ गए हो और आपने बेगम को ना बताए हो, तो बोनस शोनस से चीज किया और आपने गलत बताए, और कभी बेगम के सामने राज खुल जाए, फिर
2: ये आप करते होंगे भाई. ठीक है, हमें फंसवा रहे हैं काम काम में.
3: आप तो कर ही नहीं सकते ना.
2: ये जो आप कर रहे हैं ना, ये जो ये खेल रहे हैं आप, ये खेल बहुत भारी पड़ सकता है ये औरों को आपके चक्कर में. पता है आपको, आज सबके सबका वो पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड निकाल लिया जाएगा घर पे जाके.
3: और कई आपसे मेरी तरह गेमों पे जो खर्च करते हैं ना,
2: हाँ
3: ठीक है, वो अगर बेगम देख ले मैसेज ग्रुप में, कहते हैं कभी मोबाइल पे,
2: हाँ
3: अच्छा इस चीज के लिए पैसे हैं.
2: देखो, वो छुप के करने की ट्रिक है मेरे पास, लेकिन मैं बताऊं क्यों. समझ रहा हूँ. मैं बताऊं क्यों, साफ सीधी बात. फहद भाई,
3: तो इसलिए बस वो ये वाले जो फेयर है ना, ये वाले आप कभी नहीं जाएंगे.
2: थैंक यू. ये आपने दो तीन चीजें बता के औरों के भी फेयर अनलॉक किए, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फवाद भाई आपका. थैंक यू सो मच भाई, कॉल करिए आपने, हो सके तो कहानी जरूर सुनिएगा. ठीक है
3: सर, बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल उठाने का.
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
3: आपके बहुत मशकूर, आपके बहुत क्या कहते हैं गुजारिश करम आपका. और आपकी इज्जत से माँ सबके लिए इज्जत हो.
2: ये मुशायरा करके जाओगे क्या? मैंने कहा मुशायरा शुरू हो रहा है, कुर्ते लगाओ भाई. क्या बात हो गई.
3: मुकर
2: वाह वाह वाह वाह.
3: अगर आपने शायरी सुनी हो तो कभी अनर मकसूद, यानी वो हमारे हैं बड़े कॉमेडी
2: वाले, ऑफ कोर्स
3: तो वो कभी बनैन लेन जानते हो तो बनैन लेके आंदे हो, पांदे हो तो पहनदी नहीं, पै जाए तो लेंदी नहीं, पै जाए तो ले जाए तो दूजी बारी पान जोगी रहंदी नहीं.
2: हां,
3: इतना वाला काम.
2: यस यस, बहुत बहुत
3: वो वाले फियर बात कर रहे.
2: बहुत बहुत खतरनाक हो रहे हैं फवाद भाई आजकल, मुझे लग रहा है यूरोप की ट्रिप एक और बनती है भाई.
3: गाड़ी अनलॉक है ना सर, मेरे पास जेब में पैसे नहीं है.
2: अच्छा, ऐसा है क्या? मैं 65 इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपकी ट्रिप के लिए, बाकी अपने आप जुगाड़ कर लेना भाई, ठीक है? ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और क्या है कि इनकी कॉल के बाद मुझे सारे मैसेजेस पहले पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि बहुत इकट्ठे हो चुके हैं अभी मैसेज। इरफान भाई कह रहे हैं मुझे दूर का फिजूल खर्च पे के फिर क्या लूटना। अच्छा, अक्सर मैं तो दोस्तों के पास शॉपिंग करके रखवा देता हूँ, बाद में कहता हूँ प्रमोशन में मिला है। इरफान भाई घर का नंबर देना मुझे, कह रहे हैं मुझे एक डर और भी है कि कोई मुझे पीछे से हाथ मार के ना बुलाए, मेरा मीटर आउट हो जाता है। तो कोई भी अगर पीठ तब तब आगे इरफान भाई को बुलाएगा तो आपकी चोटों के जिम्मेदार आप हैं। और लिखते हैं आगे का नहीं पड़ा, मोबाइल पे पासवर्ड तो दूर की बात है, मैंने तो क्या है आपस में भी कोड और डिसअपीयर लगा रखा है, बहुत डर लगता है, मोबाइल फोबिया है इनको। ये डर कहाँ से निकल रहा है मैं समझ पा रहा हूँ। एक मैसेज है, कल ही मैंने बैकरूम्स मूवी देखी, भेजा फ्राई हो गया और सुबह सुबह क्या सुनना पड़ रहा है मैंने की, और ये क्या हो रहा है भाई। कह रहे हैं भाई एक और डर लगता है भाई, स्टोरी सुन रहा हूँ किसी की कॉल ना आ जाए, जेन्युइन डर है सुभाष भाई आपका। और एक मैसेज है फराज भाई का, फराज भाई क्या कह रहे हैं, लिख रहे हैं बिगेस्ट फियर फॉर हस्बैंड्स व्हेन वाइफ सेज कुछ पूछना है, इसके बाद साइलेंस। अगर पॉज आ गया, देखो क्या है ख्वातीन के साथ क्या होता है, अगर उन्होंने आपसे कहा ना कि कुछ पूछना है और इसके बाद पॉज आया, तब तो भाई साहब खत्म कहानी। पर अगर पॉज नहीं आया देन इट इज ओके। एक बजे अस्सलाम वालेकुम भाई, हम लोग कतर एयरवेज के स्टाफ से हैं, डर है जो फ्लाइट पुशबैक करते हैं उनमें लास्ट वर्क हमारा होता है, बहुत क्रिटिकल होता है, ये तो बात है। नाम मैं नाम नहीं ले रहा आपका, पर ये जो आपने बताया आई टोटली गेट इट, इतनी एयरवेज की कहानी सुना दी है मैंने भाई, मैं भी आप ही की तरह ही हूँ। एक मैसेज है, यहाँ तो भाई नाखून बढ़ते ही नहीं, कितने की ज़रूरत नहीं होती, डर होने का डर लगता है और हमेशा ही लेट होता हूँ, लेट होने का। अच्छा फैसल भाई थैंक यू सो मच। और एक मैसेज है कबीर भाई, आज मैंने सब देख लिया। कह रहे आज मैंने सब देख लिया भाई, कहाँ कहाँ से आते हैं लोग। मोहम्मद वकास इकबाल साहब ने मैसेज किया है, और नदीम भाई ने बोला 50 रियाल में नाखून काट दूंगा और ग्लव्स पहन के। अबू अहमद साहब कह रहे हैं मैं 40 रियाल में काट दूंगा, यार मैं 40 रियाल में काट दूंगा। एक भाई है यही कहूँगा सुबह सुबह साथ दो, शाहिद भाई ने मैसेज किया है। और एक मैसेज जावेद साहब का, वालेकुम अस्सलाम फरहत भाई को मजे आ रहे हैं। फरहत भाई मैं आपको वॉइस नोट अभी तक सुना नहीं, आई नो दैट, अभी प्ले करता हूँ। और उस्मा बहन ने मैसेज किया है, प्रिंस भाई ने तो बहुत सारों को परेशान कर दिया है, सारे लिसनर्स आज अपने हाथ और पैर देख रहे होंगे। इंसानों वाले हाथ हैं भी कि नहीं। एक मैसेज ताहिर भाई का, बाय द वे वी हैव फेस्ड बोथ फेयर्स ऑफ ब्रेकिंग समथिंग इन द शोरूम एंड स्पिलिंग वाटर ऑन लैपटॉप, सन ब्रोक अ वुडन टेलीफोन डेकोरेशन सेट इन अ शॉप, बाप रे। और आगे लिखते हैं, एंड वी हैड टू बाय दैट, उफ, नाउ इट्स प्लेस्ड ऑन द कंसोल टेबल एज अ डेकोरेशन पीस, एंड डॉटर स्पिल्ड वाटर ऑन हर मैकबुक प्रो, ओके लकीली इट गॉट रिपेयर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को डर लग गया बाबा। एक मैसेज है शाहिद भाई का, सर मर्द को दर्द नहीं होता, ये क्यों कहा आपने। एक मैसेज कमाल भाई का, भाई मैं तो पॉलिश पेपर से ही क्या, मैं समझा नहीं। और ये मैसेज किया है आसिफ भाई के, पैर के नाखून चेक करवा लो, मैं क्यों चेक कराऊँ, कैसी कैसी बातें हो रही हैं आप। एक मैसेज है सादिक भाई का, लिखते हैं प्रिंस भाई की बातों के बाद लड़कियां हैरान होंगी ये सोच के कि लड़के हमसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। और आगे लिखते हैं कयामत करीब है। और एक मैसेज सिद्रा बहन का, एक बार मैनीक्योर करा लो अपने हाथों से प्यार हो जाएगा आप लोगों को। बहन मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ, नहीं हो पा रहा मैं करवीन, आई एम रियली सॉरी। एक मैसेज है सरप्राइज भाई, बहुत अमीर पब्लिक है आपके पास, थैंक यू सो मच, क्या बात है, ये तो है भाई अमीर पब्लिक तो है भाई। तला भाई फ्रॉम मलखोर ने मैसेज किया है, भाई बेगम के बर्थडे में मैंने क्या है भूल गया था, फर्स्ट टाइम ये हुआ कि सास ने बताया आज बर्थडे है, गिफ्ट नहीं दिया, मैंने तो विश भी नहीं किया था, उन्होंने सूट दिया ये दे दो अपनी तरफ से, वो छोटा निकल आया और वाट लग गई। लिखते हैं बाकी डर सिर्फ यहाँ ड्राइव करते हुए फ्लैश ना हो जाए और हाईवे पे आंख लगने का डर रहता है। पर ये जो आपने पहला बताया है ना तला भाई, आई एम इम्प्रेस्ड। एक मैसेज भाई, हम तो बचपन में भी नेल्स खुद ही कट करते थे, इसलिए

अब आदत हो गई है आतिफ भाई, रईस नहीं होने दे रहे लोग हमें भाई। एक मैसेज, हाँ मैं तो खुद भी हैरान हूँ, बहुत सारे लोग हैरान हैं। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, मुझे रोलर कोस्टर से बहुत डर लगता है, बचपन में नहीं था लेकिन आफ्टर टीनेज ये डर फुल हो गया है, छोटे छोटे डर हैं। हकीम भाई का मैसेज है। एक मैसेज, कबीर भाई हम एक दूसरे के नेल कटर से कट करके 400 रियाल पे कर रहे हैं। ये मेरे समझ पूछो, ठीक है, मेरे पास नहीं 400 रियाल साहब से दी बात। नहीं तो एक मैसेज है, मैं अपने नेल्स देख रहा हूँ, सब अपने नाखून देख रहे हैं, सारे लड़के नाखून देख रहे जा रहे हैं अपने। गुड मॉर्निंग कबीर भाई, गुड मॉर्निंग मेरी जान, थैंक यू सो मच फॉर टेक्सटिंग, थैंक यू सो मच। और कोई मैसेज रहता है हमारे, क्या है, एक चीज और का डर है, कोई भी हो ये कहना कि आपसे कुछ शेयर करना है, कुछ कहना है, चाहे वाइफ हो या उसकी माँ। इरफान भाई, इस पे मेरा पंच लाइन ये है, आई अग्री। ये नोमी भाई कह रहे हैं हमारे हाथ ऐसे ही ठीक है। सादिक भाई कह रहे हैं आज से हम अपने नाखून सैंड पेपर से शाइन करेंगे। मेरे पास ही ऐसी जनता, आई एम सो प्राउड ऑफ इट। एक मैसेज है, मुझे मेरा एक डर जस्ट अभी अनलॉक हुआ है कि ऑफिस जाना हो और आपको पता भी ना हो कि आपका काम हो गया है कि नहीं। ये क्या क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर में जी रहे हो गए, ये कि बहुत ही, एक बार कहना दहशत का माहौल है, व्हेन वाइफ सेज ओनली दिस मच कि कुछ बात करनी है। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो हिदायत भाई, यू विल अग्री, अगर वाइफ आपसे कह रही है कि कुछ बात कर रही है और उसके बाद वो पॉज नहीं ले रही है, देन इट इज़ फाइन, इफ इट इज़ अ फुल कंप्लीट सेंटेंस इट इज़ ओके। पर अगर उसने बोला कि कुछ बात करनी है उसके बाद शांति है, तो फिर आपकी शांति छिनने वाली है। एक मैसेज है, सलाम, क्या कह रहे हैं, मेरे दोस्त इकबाल को बोलो, क्या डर है कि चाचा से बात, मैं नहीं कर रहा चाचा से। अच्छा आसिम भाई, एक मैसेज है, क्या टॉपिक भाई चल रहा है कि सबके अपने अपने छोटे छोटे डर होते हैं। माज भाई आपका क्या छोटा सा डर है, जैसे व्हाइट शर्ट पहनने में कुछ गिर जाने का डर है, लेकिन प्रिंस भाई अभी ऐसा एक रईसों वाला डर दे गए हैं कि मैं डर गया हूँ। आसिम भाई थैंक यू। एक मैसेज है, मनी ट्रांसफर के टाइम रिसीव तक पहुँचा के नहीं, इस बात का डर। आई कंप्लीटली अग्री, यू डिजर्व द हॉर्न भाई, यू डिजर्व द हॉर्न, वेरी गुड वेरी गुड। ये सईद खाजा साहब ने बहुत जेन्युइन डर बताया। एक मैसेज, 10 रियाल का फेस मसाज बेस्ट रहता है भाई, वो जो पेड़ के नीचे चंपी करते हैं ना सर की, उससे बढ़िया मसाज दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूँ, महंगे से महंगे नहीं कर सकते। एक मैसेज, आई डोंट नो इट्स अ फेयर या एंग्जाइटी बट इट इज, नहीं जेन्युइन है आपका इरफान भाई, आई कंप्लीटली अग्री विद यू जो आपने बताया है। एक मैसेज है, जब वाइफ व्हाट्सएप पर मैसेज करती है कुछ पूछना था आपसे, तो ऐसा आता है मन में कि आप कौन सा कांड करके बैठा हूं मैं। अरमान भाई अपनी जिंदगी को, अपने हाथों को, पैरों को, नाखूनों को देखते हैं, यार मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। एक मैसेज है, मैं जा रहा हूं नाखून ग्राइंड करवाने। भाई बनता है इनके लिए भी। भाई कह रहे हैं वकास भाई, मैं जा रहा हूं नाखून ग्राइंड करवाने। एक मैसेज है भाई, टॉपिक बार बार स्विच हो रहा है। प्रिंस भाई आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। एक मैसेज है, हैट्रिक टुडे, हैट्रिक तो हो गई आज। एक मैसेज है इरफान भाई का, वालेकुम अस्सलाम, होप यू वेल। बॉस का आपसे पूछने का, आपसे है बॉस का अपने पहुंचने से पहले का डर, ये तो है, आई कंप्लीटली अग्री। तो छोटे छोटे डर लोग शेयर कर रहे हैं, आपका डर क्या है ये बता सकते हैं 666-22-107 पर, 666-22-107 पर। मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पर, और क्या चलाने वाला था मैं, ये चलाने वाला था मैं, एक सेकंड रुका, ये चलेगा भाई, चलो। छोटे छोटे डर जो हैं आपके वो जरूर शेयर कीजिएगा 666-22-107 में, दो हवाला कबीर FM 107 में, क्या डॉल साइन और ठाणा न्योली वाला भाई जी। 7:16 मैच जी, दो हवाला कबीर, आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड।

क्या गाना था भाई, गाने के लिए हो जाए। जबरदस्त जबरदस्त, पूरी हाई एनर्जी। आसिफ भाई कह रहे हैं ट्रैफिक के बारे में पूछो, नहीं पूछ रहा मैं, मुझे क्या मतलब, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं क्यों पूछूं आसिफ भाई। आए बड़े, देखो तो सही ट्रैफिक के बारे में पूछ ले।

0: Let's go.
1: सुबह सुबह.
0: Wake up. Good morning. Good morning. Good morning. 7:20 हो लिए. कुछ मैसेज पढ़ देता हूँ मैं. लास्ट प्रिंस भाई ने वापस एंट्री मारी. प्रिंस भाई का मैसेज पढ़ देता हूँ मैं. किधर गए प्रिंस भाई? आपका मैसेज किधर गया? हाँ ये रहा मैसेज उसका. हाँ तो ये कह रहे हैं, माय वाइफ नोज माय फोन्स पासवर्ड. इवन वी वर हैप्पी टू से एंड आस्क टू ईच अदर. देयर इज नथिंग पर्सनल इन बिटवीन अस. वाइफ इज बेटर हाफ. डोंट डू एनीथिंग दैट मेड हर बिटर बिटर हाफ. ओए ओए ओए ओए. अच्छा वर्ड प्ले. हाई लिविंग एंड हाई थिंकिंग. प्रिंस भाई आज आपने बहुत ज़्यादा ही हाई थिंकिंग दे दी है ऑलरेडी और लोग जो है थोड़े से टेंशन में जी रहे हैं. एक मुझे मैसेज है, कमाल का मैसेज है भाई. जेन्युइन बात कही है भाई ने. जेन्युइन बात. ये मैसेज है उमर खान साहब का. उमर भाई कह रहे हैं, भाई सबके छोटे छोटे डर होते होंगे, मेरा तो डर ये है कि जब भी कोई कुत्ता साइड में से निकलता मुझे लगता काट लेगा. ये बचपन से दिया हुआ डर है. होता कह रहे हैं जब आप बचपन में तो आपको डरा देते हैं लोग, काट लेगा बेटा ऐसे नहीं करती. पर आप जब बड़े हो जाते हैं, जस्ट इमेजिन कि आप वॉक करते हुए जा रहे हैं, एक डॉगी जो है वो साइड से आया और आपकी चाल जो है स्लो हो गई, उसने आपको घूरा, आपने उसे घूरा और कुत्ते ने अपनी भाषा में बोला, अरे जाना नहीं काट रहा जा. तो दैट हैपेंस अ लॉट. तो भाई उमर भाई थैंक यू सो मच. काफी ये रिलेटेबल बात थी ये आपके लिए. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. बहुत बढ़िया भाई. हैट्रिक मार चुके ऑलरेडी. खाजा साहब हूटर पाके एक मैसेज है. क्या है बता देना, अब जाना पड़ेगा क्या? अब बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. एक मैसेज, हमारा फोन तो हमेशा से खुली किताब है, जब जो चाहे यूज कर लेता है. इतनी भी खुली किताब मत करो जब जो चाहे यूज कर ले भाई. इतनी खुली किताब नहीं होनी चाहिए. फरद भाई कैसे हैं? एक मैसेज इश्तियाक उस्मानी साहब का, अस्सलाम वालेकुम भाई. मुझे डर लगता है जब साइट पर कोई बोलता है, सर एक छोटा सा प्रॉब्लम है. क्योंकि साइट पर छोटा प्रॉब्लम कभी छोटा नहीं होता, बिकॉज आई एम अ सिविल इंजीनियर. ये तमाम सिविल इंजीनियर्स को शाउट आउट, शाउट आउट मेरे भाइयों. मैं भी बहुत सारे लोगों जानता हूँ जो सिविल इंजीनियर्स है. मैं आपका डर समझ सकता हूँ. माजिद भाई वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग मेरे जान, कैसे हैं आप? और एक मैसेज क्या है नौशाद आलम साहब ने, उनको भी बहुत सारा प्यार. एक मैसेज है न्यू रैप, वाओ थैंक यू सो मच. जकी भाई, जकी भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, जस्ट बैक फ्रॉम पाकिस्तान. व्हाई डिड दे चेंज योर टाइम? भाई ऐसे ही क्या करें भाई, इतनी सुबह एनर्जी नहीं होती. इधर मिलेगी जकी साहब, आप आया करें और रैप की भी तारीफ करें उन्हें. थैंक यू. कि अनटोल्ड डर ऑफ कुत्ता, मैं बता रहा हूँ ये होता है. अगर ये जो डर है ना, हल्के में लेते हैं हम, बहुत ही अंडररेटेड है ये. नो मैटर आप कितने भी फेयरलेस हो, लेकिन अगर एक तगड़ा सा ऊंची कद का एक कुत्ता आपके साइड से निकल गया तो भाई आपकी चाल बता देगी कि लुब लुब तो हुई. इरफान भाई कह रहे हैं, रोड पर सिडान गाड़ी में 4x4 को ओवरटेक करके रेड सिग्नल पर खड़ा होना और स्टैचू बन के बैठ जाना, अगले शीशे नीचे करके सुबह सुबह वो सुनाई, लेकिन आपको पता है आपकी गलती है डर के मारे. भाई साहब पिक्चर पेंट कर दी. इरफान भाई यू डिजर्व दिस. क्या बात बोले भाई, क्या बात बोले, सॉलिड. इरफान भाई 10/10 भाई, 10/10 भाई ने बोला रोड पर सिडान गाड़ी में 4x4 को ओवरटेक करके रेड सिग्नल पर खड़ा होना और स्टैचू बन के बैठ जाना, अगला शीशा नीचे कर सुबह सुबह, कि आपको पता है आपकी गलती है लेकिन आप सुमड़ी बैठे. अरे भाई प्रिंस क्या प्रिंस भाई का फरमान पहुंच क्या पूछ रहा हूँ. 7 के बाद ऑन किया था मैं, वही बता रहा हूँ कि मैं अभी कैसे बताऊँ आपको. उन्होंने ये कहा था मेडिक्योर और पेडिक्योर की बात कर रहे थे, ये थी बात. उनको बेचैनी होंगे, क्या कहा प्रिंस भाई ने, मुझे बताओ मेरी जान जा रही है. मलिक वकास साहब ने मैसेज क्या क्या कह रही, अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग कहते हैं. फास्ट लेन पर जाते हुए पीछे से फुल स्पीड से आते हुए बंदे के का पीछा से ठोकने का डर, ये वाला डर मुझे नहीं है मलिक वकास साहब. अगर कोई पीछे से गाड़ी ठोकेगा उसकी गलती है. मैं तो कहता हूँ हाँ ठोक ना, गाड़ी मार, कोई दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस तो ही भरेगा. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम. अभी बोला भाई लिखते हैं, काफ़ी मुल्क में क्या कफील मुल्क भेजे तुम, बोला अभी टिकट निकाला नहीं, अगर बुक नहीं किया कोई रास्ता दिखाओ. ये मुझे नहीं पता भाई इस बारे में, आई हैव नो क्लू. एक मैसेज, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, लव यू. जहाँ से भाई, गुड मॉर्निंग, लव यू टू मेरे भाई. और क्वेश्चन क्या माजिद भाई, तो निकल गया सवाल. सवाल ये था कि छोटा छोटा डर होता है ना लोगों का, हम लोगों का, जैसे वाइट शर्ट पहन ली तो उस पर कुछ गिर ना जाए, जूते पहन लिए वाइट डर है, फ़ोन चार्जिंग भी लगा दिया बटन नहीं ऑन, क्या ऐसे वाले. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम गुड फैनी वाला. चलिए फिर स्लो, ये तो मैं वही कह रहा हूँ ना, दुनिया के लिए नहीं, क्या घर वालों के लिए खुली किताब है, दुनिया के लिए नहीं. अच्छा वैसा, ओके फिर ठीक है. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है कबीर भाई, मैं जब वॉशरूम जाता हूँ ना जैसे पब्लिक टॉयलेट में, तो मुझे डर लगता है कि मेरी चाबी ना गिर जाए। मेरा भाई बहुत जेन्युइन डर है ये। आपके साथ हूँ भाई मैं। ये जो मैसेज किया है, ये डर बताते हुए जुल्फिकार अंसारी साहब ने मैसेज किया, आई कैन टोटली रिलेट टू यू मेरा भाई। आरिफ अंसारी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो, और तबसुमैन कहते हैं आई कैन रिलेट बिकॉज एक कुत्ता जो चुपचाप बैठा था और हमारी बाइक पास हो रही थी वो अचानक हमारे पीछे भागने लगा, सो इट्स हॉरिबल। ओह माय गॉड इट इज हॉरिबल। फैंसी हो रहे हैं लोग बताने में, इट्स सो हॉरिबल यार, दैट डॉग यू नो स्टार्टेड भागो फाई बिहाइंड माय बाइक या he was doing all the time bobo bobo and I was like no please no mat karo yaar. ek message yaar is dar, ab main isi bhasha mein kyun baat kar raha hu, kya yaar is dar, yeah dar is baat ka hota hai ki kaam karne jata hu kahin kuch galti na kar baithu. ye dar to banta hai, isko main chhota sa hooter bajaunga, high five mere bhai. यार ये बंदा चाबी पर चलता है। सखी भाई और एक मैसेज क्या है, लिफ्ट में कीज ना गिर जाए स्पेशली व्हेन किड्स होल्डिंग द की। ये जब बच्चे आ जाएंगे तो मैं डर आपसे शेयर कर पाऊंगा, अभी तक मैंने ऐसा किस्सा सुना नहीं, होता जरूर होगा, तो आपके डर को मेरा सलाम है माजिद भाई। एक मैसेज है दूसरा, पीली लाइट ब्लिंक हो रही, सिग्नल के बीच से निकलना है और रेडार पार करने का डर, उफ इतना जोर से दिल धड़कता है भाई, मैं अग्री करता हूँ इरफान भाई। So yeah, so the dog was behind my back. It was like bow bow all the time. Yeah, I was not doing good. Yeah, I said don't do it. एक message. अरे यार. Bro, वो खाला वाला voice में बात करता था, बहुत miss कर रहा हूँ. अरे लोग फिर कहते हैं मैं काकी हूँ, मैं काकी नहीं हूँ भाई. अब तक तो पता लग जाना चाहिए। एक मैसेज, स्टोरी कब स्टार्ट हो रही है, बस भाई 3 मिनट में स्टार्ट हो रही है स्टोरी। एक मैसेज, सुबह जल्दी उठना हो ऑन टाइम अलार्म लगा के और फिर भी सोने से पहले बार बार फोन चेक करना। मेर भाई यू एंड मी आर ऑन द सेम पेज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये हूटर उन लोगों के लिए है जिनकी बात हमसे रिलेट कर पा रहा हूँ। तला भाई कह रहे हैं ट्रेन में विंडो सीट पर बैठ के मोबाइल गिरने का डर, या अल्लाह। तला भाई मैं, मेरी सांस अटक गई है पढ़ने के साथ ही, समझ रहे हैं आप, मैं ना बैठ रहा आपसे ट्रेन में। कह रहे हैं जकी भाई, कह रहे हैं बच्चों का फर्स्ट डे टू स्कूल ड्रॉप करके आ रहा। अच्छा जकी साहब ऑल द बेस्ट मेरे भाई, और बच्चे कैसे हैं, सब बढ़िया। समीर भाई ने मैसेज किया है, कुत्ते काटने का खौफ है मुझे, बट मुझे बिल्ली ने भी काटा है तो बिल्ली से भी डर लगता है बहन। ये जो रेयर किस्से होते हैं, मैं सोचता हूँ कि बिल्ली ने क्या सोचा होगा, तमाम बिल्लियों ने कम्युनिटी ने कि अभी तक हमने इंसानों को बहुत कम काटा है, मैं इसको क्यों काटूं, क्या सोच के बिल्ली ने काटा होगा। तो इसमें मुझे लगता है कि इंसानों की गलती है बहन, आप बताइए कि आपने क्या किया था, जुर्म क्या था आपका। मुझे आप पे शक है। तो बस मैं लिखती है कि जब कुत्ता पीछा पड़ता है इतनी फैंसी इंग्लिश नहीं निकलती, मैं निकलती है दिल्ली में, कभी साउथ दिल्ली जाइए आप। दैट डॉग यार आफ्टर माय बाइक यार ऑल द टाइम भाओ भाओ भाओ भाओ, आई वाज लाइक डोंट डू दैट, सो इरिटेटिंग यार। एक मैसेज है, टुडे सिग्नल इज वेरी क्लियर इन सऊदी अरेबिया, खूबर एक्साइटेड फॉर टुडे स्टोरी, डेफिनेटली भाई थैंक यू सो मच। और एक मैसेज है सैयद हमजा साहब का, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग कबीर भाई, कीज गिरने का डर तो सोचा है 2 दफ़ा, बेगम से 1 बार, मुझसे गिर के लिफ्ट के नीचे जा चुका है। वेरी गुड, बेगम से जब गिरेगा तो आदमी थोड़ी कुछ कर सकता है। एक मैसेज, दिस इज ऑलरेडी हैपन टू मी, क्या व्हाट्सएप पे बच्चे किसी अननोन से पुराने कॉन्टेक्ट को उल्टे सीधे मैसेज कर रहे थे। माजिद भाई बच्चों को पता है किसको मैसेज करना है। आरिफ अंसारी साहब, भाई डर इस बात का होता है कि सीरियस बात चल रही है मेरी हसीना निकल जाए। आरिफ भाई डर नहीं है, ये रियलिटी है। मेहर भाई कह रहे हैं फ्लाइट में नींद आ रही है तो हैंड बैग से कुछ चोरी ना हो जाए। फ्लाइट में चोरी करने का डर, चोरी होने का डर है मेहर भाई आपको, ते यार। तला भाई कह रहे हैं द डॉग बिट, ओ माय गॉड हॉरिबल यार। या तला यू डोंट नो यार, यू डोंट नो, बिल्ली जब काट ली थी ना यार, दो बाइट मार्क्स यार, सो हॉरिबल। एक मैसेज है कबीर भाई, जब आपने लाइसेंस नहीं लिया था आपकी गाड़ी की बात करते करते, वेरी रेयर वो ली के नहीं। हाँ भाई ले ली हो गाड़ी जहाँ से भाई, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, 5 साल हो गए भाई। एक है फैंसी लैंग्वेज पे बोलते ही हैं, बोलते हैं डॉगी डोंट पीछा करो यार। कह रहे हैं फैंसी लैंग्वेज पे, डॉगी प्लीज डोंट पीछा करो यार, डोंट डू इट। आसिफ भाई कह रहे हैं भाई मैंने कैट मैडम मेरी मैडम को लिख दिया है, मैं डिलीट भी मार दिया आपके आज जो हैं बेटे बुरे नक्षत्र चल रहे हैं तारे आपके साथ नहीं हैं मिस्टर आसिफ ओके तो अब मैं क्या मैडम ने देख लिया बस आसिफ भाई हमें बहुत याद आएंगे हम एक गाना चला के उनको याद करेंगे किधर गया गाना ये गाना है दो मिनट का हम मौन रखेंगे आसिफ भाई की मैडम ने देख लिया है उन्होंने उनको कैट मैडम लिख दिया है इसके बाद कहानी आ रही है सुन तैयार हो जाइए कहानी आ रही है भाई साहब दो मिनट 45 सेकंड के बाद कह रही खाला की आवाज़ निकालो अच्छा तब उसमें मैं निकाल लेता हूँ तो मेरी खाला है उनका नाम बेबी खाला है पता नहीं हर मुसलमान घर में बेबी खाला कहाँ से होती है पर है तो वो ऐसी बात करती हूँ अरे मैं कह रही थी सीलमपुर तो आते ही ना है ऐसा बढ़िया सा गाना चलाऊंगी ना चीखे निकल जाएंगी ऐसा बढ़िया गाना है कहानी आ रही है और तनहा चाहिए मत बहुत बड़ा गाना तो नहीं है या खुदा सुनते भी नहीं है तो मेरी मार दूंगी जो चला गया हाँ ओ तलहा मैं सिर्फ टाइप करियो आ जाऊंगी अभी

अजय ऐसी है अपनी भाई भाई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो बाकी मैसेज अभी पढ़ूंगा मैं, क्योंकि कई काफी सारे मैसेज हैं अभी भी। आई होप आपको मजा आया हो, अभी तक तो शो में आपको मजा आया होगा, आई रियली होप सो। तो थैंक यू सो मच कि आप मिलके हंसे, इतना हंसी मजाक हुआ है। सो मुझे बता दिया करें बीच में कि अब मजा आ रहा है नहीं आ रहा। तो इफ यू आर एंजॉइंग द शो राइट नाउ, थैंक यू सो मच आप मेरे साथ सुबह से जो लोग हैं, बहुत सारा प्यार। अब क्योंकि कहानी का वक्त है, आज की कहानी जो है मेडिकल मिस्ट्री है, ठीक है? तो तैयार हो जाइए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। ओके जी, शुरू करेंगे। तो रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी किसी किस्म के जेंडर प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती है। एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता है और ना ही कभी देगा। लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है। तैयार? चलो भाई शुरू करते हैं आज का ये किस्सा। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और आज का जो किस्सा है इसे सुनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं साल 1983 में, 1983। इस वक्त एक 21 साल का लड़का टॉम स्टैम्पी अपनी जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा खुश था। अभी तक तो ही वॉज डूइंग वेल, कॉलेज में भी एकदम बढ़िया उसने परफॉर्मेंस दी। अभी करियर बनाने के लिए बाहर आ चुका था, ही वॉज ऑलरेडी वर्किंग, और उसकी एंगेजमेंट तक हो चुकी थी अपने हाई स्कूल स्वीट हार्ट से। तो लाइफ एकदम सेट चल रही है, और हेल्थ वाइज भी एकदम बढ़िया, एथलेटिक बॉडी एकदम। ही वॉज अ डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट हेल्थ। 1983 जुलाई तक उसकी लाइफ वैसी चल रही थी जिसके लोग सपने देखते हैं। जिस जगह पे वो रहता था, इट इज़ कॉल्ड लॉन्ग आइलैंड, और आसपास जो भी उसके रहा, चाहे उसके माँ बाप हों या उसके दोस्त हों, उसके बारे में हमेशा यही कहते आए कि यार बंदा कुछ है, इसकी एनर्जी कुछ अलग है। एक तो लॉयल है, ऊपर से एनर्जी बहुत इसकी ज़बरदस्त है, और टेंशन नहीं लेता ये। बट एवरीथिंग वॉज अबाउट टू चेंज जब अगस्त का महीना आया। अगस्त के महीने में अराउंड 3 तारीख को अराउंड 3 PM जब वो घर वापस आया, और इस वक्त वो काम से जल्दी वापस आया, तो सबसे पहले तो घर वाले शॉक थे कि यार इतना मेहंदी लड़का हमारा वक्त से पहले आ गया, ये तो कभी हुआ ही नहीं। तो उन्होंने जेन्युइनली पूछा कि टॉम इज एवरीथिंग ओके? एंड टॉम स्टैम्पी, पूरा नाम थॉमस स्टैम्पी, हम उसे पूरी कहानी में टॉम बोलेंगे। तो टॉम ने कहा नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, पर पता नहीं मेरा आज मन नहीं कर रहा है काम करने का। तो माँ बाप ने कहा ठीक है, होता है कभी कभार, इट्स ओके। लेकिन टॉम जो था, उसके बाद खाना खाने के बाद जब अपने कमरे में गया तो उसे दर्द होने लगा सर में। और आमूमन जब सर में दर्द होता है तो आपके दिमाग में आगे की चीज इतनी आती नहीं है, यू ओनली से कि यार सर बहुत दर्द कर रहा है यार। देसी आदमी को तो बोलेगा भाई चाय पिला दो, कॉफी पिला दो। एंड वही टॉम के साथ था, सर में दर्द हो रहा था, इट वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेंज। ऐसा लग रहा था कि माइग्रेन वाला पेन है लेकिन उससे भी कहीं गुना ज्यादा है।

ये हो क्यों रहा है, इसके साथ भी ये हुआ, ये अपने रेगुलर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास गया तो वो एकदम चिल थे, उन्होंने बोला टॉम अरे यार पेन किलर्स लिखे, और बोला अरे कोई दिक्कत नहीं है ठीक हो जाएगा, तुम स्ट्रेस ले रहे हो, मुझे लग रहा है सगाई की बात ना तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस हो गया है। और हंस के उसको गोली पकड़ाई, उसका प्रिस्क्रिप्शन लिख के और कह दिया ये खाते रहो ठीक हो जाओगे। टॉम वॉज वेरी चिल, उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। टॉम घर की तरफ गया, उसने खाना खाया, दवाई ली, दर्द थोड़ा सा कम हुआ उन पेन किलर से, लेकिन फिर जब दर्द उठा तो फिर वो बद से बदतर होता गया। ये दर्द 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता क्रॉस कर रहा था और कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। और उसके बाद 6ठे 7वें दिन कुछ बहुत ही अलग हुआ, बहुत ही अलग हुआ। हुआ दरअसल ये, उसका जो पूरा सर है, पूरा का पूरा सर, वो ट्विच करने लगा, हल्के हल्के राइट की तरफ हिलने लगा, राइट हैंड साइड की तरफ। तो उसने ये प्रॉब्लम अपनी मां को बताई, मां ने बोला बेटा शायद तुम गलत सो गए होगे, इस वजह से गर्दन में झटका आ गया होगा, तुम्हें ऐसा लग रहा है, बट डोंट वरी यू विल बी फाइन। पर ये जो चीज थी ये बढ़ती ही जा रही थी। अब ऐसा हो रहा था कि उसको दर्द के साथ साथ लग रहा था जैसे उसका सर जो है वो राइट हैंड की साइड कोई खींच रहा है, और ये हर आधे घंटे 15 मिनट के बाद उसका सर धीरे धीरे राइट की तरफ खींचा चला जा रहा, जैसे कोई सच में पकड़ के खींच रहा हो। और तब तक वो समझ पाता कि क्या हो क्या रहा है, उसका राइट की तरफ सर जाते जाते राइट शोल्डर पे जाके जैम हो गया। अब आपको अगर मैं बोलूं कि भाई अपनी गर्दन को है पूरा राइट अपने कंधे पे बिल्कुल तरफ करके बैठे रहो, आप बामुश्किल शायद 2 मिनट बैठ पाएंगे, अगर कोई टास्क हो, कोई इनाम विनाम हो तो शायद आप थोड़ी देर और बैठ लें, मगर जस्ट इमेजिन खुदा ना खासा जैम हो जाए तो क्या होगा। तो उसका जो सर था वो राइट पे शोल्डर पे आके जैम हो गया, और ऐसा लग रहा था कि वो अपने सर को वापस सीधा भी नहीं कर पाएगा, कोई चीज जैसे पकड़ के रखी हुई है, और इतना दर्द हो रहा था कि समझ के बाहर था। उसने फौरन, एक तो रोना आ रहा था, वो अपने आप को रोक रहा था, फिजिशियन को दिखाया, फिजिशियन ने बोला कुछ नहीं है, मसल पुल है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, हो जाएगा ठीक। उन्होंने फिजिकल थेरेपी के लिए बोल दिया, तो फिजिकल थेरेपी जो थी वो 3 महीने चली। पर जो पूरा सर था वो चिपक गया था राइट शोल्डर पे, और वो थेरेपी के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। थेरेपी से हुआ है कि टेम्पररीली थोड़ा सा दर्द जरूर कम हो गया, लेकिन पूरा का पूरा सर बस राइट कंधे पे रखा हुआ था और चिपक गया था, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसे हटा भी नहीं पा रहा था। अब ये भी लगने लगा था कि लेफ्ट साइड की तरफ से उसकी गर्दन को कोई दबा रहा हो राइट शोल्डर पे। अब काम पे कैसे जाएगा, बट ही स्टिल ट्राइड। टॉम उनमें से था जो बहुत रेजिलियंट बच्चे होते हैं ना, यंगस्टर्स जिनको जोश होता है नो मैटर व्हाट, उनको आप आलसी नहीं देख सकते। इतने दर्द के बाद, इतना अजीब हो जाने के बाद, जहां उसकी गर्दन को वो सीधा भी नहीं कर पा रहा है, राइट शोल्डर पर चिपक गई है गर्दन उसकी, उसके बावजूद वो 50 किलोमीटर ड्राइव करके स्पेशल मिरर लगा के जा रहा था डेली ऑफिस। कैसे चला रहा होगा गाड़ी, जस्ट इमेजिन। ऑफिस में लोग कुछ हंस रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि ये नाटक कर रहा है, क्योंकि ये नाटक ही लगेगा ना कि गर्दन जो है बिल्कुल राइट शोल्डर पर रखी हुई है और वो हट नहीं रही है, तो लोगों को पता भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है, एंड उनके हिसाब से ये नाटक ही चल रहा था। उन्होंने बोला कि भाई तुम डॉक्टर के पास जाओ, कुछ बताया उन्होंने, बट कोई कुछ मदद नहीं कर पा रहा था। इसने डिसाइड किया कि भाई मैं डॉक्टर के पास वापस जाता हूँ, क्योंकि मामला सीरियस हो रहा है। उसने अपने फैमिली डॉक्टर के पास वापस जाकर बोला, डॉक्टर साहब कोई दवाई काम नहीं आ रही, मुझे प्लीज़ बताइए कि क्या करना है। तो उन्होंने कहा, एक काम करो, जो स्पोर्ट्स और मेडिसिन डॉक्टर होते हैं ना उनके पास जाओ, उनके पास स्पेशल टीम होती है जो इस चीज़ को देखती है, तो शायद उन्हें कुछ दिख जाए जो हमें नहीं पता लग रहा। तो ये वहाँ पर भी चला गया, नंबर लगा के बैठ गया वेटिंग रूम में। अब जो नए डॉक्टर साहब थे वो आए,

उन्होंने कहा मेरे पास इसका इलाज तो नहीं है पर मुझे पता है कि हुआ क्या है तुम्हें और इलाज भी ऐसा है जो लंबा चलेगा। तो बड़ा खुश हुआ टॉम कि फाइनली चलो किसी ने तो बताया कि मुझे कोई प्रॉब्लम भी है। तो इन्होंने कहा कि हाँ तुम्हें एक प्रॉब्लम है और तुम्हें प्रॉब्लम जो है उसका नाम है टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस क्या होता है? ये सिंपल गर्दन की मूवमेंट जो होती है ना, मसल अटक जाती है तो होती है ये प्रॉब्लम। ये पर उसने पूछा डॉक्टर साहब आगे क्या करना है, मतलब आपने बीमारी को नाम तो दे दिया पर आगे क्या करना है। तो डॉक्टर साहब ने बोला आगे थेरेपी चलेगी तो पेन थोड़ा सा कम होगा, उसके बाद मसल रिलीज होंगे। तो उसने बोला ठीक है। पहला राउंड थेरेपी का कुछ नहीं हुआ, सेकंड राउंड फेल्ड, गर्दन वहीं की वहीं है, राइट कंधे पर रखी हुई, ही कुड नॉट मूव। अब वो काम पे जा तो रहा था लेकिन काम वालों को, जिनको लग रहा था कि भाई नौटंकी कर रहा है, उन्होंने ऑफिस के फिजिशियन को भी दिखाया जो कि ऑब्वियसली इस काबिल नहीं था कि वो समझ पाए क्या हो रहा है। और उसने कहा सब कुछ ठीक है यार तुम्हारे साथ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। एंड उसके इस बयान की वजह से नौकरी से हाथ धो बैठा टॉम। एक ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे जब उसे नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त उसे नौकरी से निकाल दिया गया सिंपल सॉरी बोल के। कहा कि तुम परफॉर्म कैसे करोगे यार। और टॉम स्टैम्पी का ये बुरा वक्त और भी बुरा होता चला जा रहा था। टॉम अभी डिप्रेस हो चुका था बहुत ज्यादा, अपने आप को कमरे में लॉक कर देता था, दिल उसका पूरा चकना चूर हो गया था। वो किसी भी कॉल नहीं उठाना चाहता था क्योंकि हर कोई उसे कॉल पे दो चीजें बोलता था, या तो सामने वाले को लगता था कि ये नाटक कर रहा है और वो सरकास्टिक होकर बात करते थे, या फिर दूसरे जो लोग होते थे वो सिर्फ यही बोलते थे बेटा हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, दैट इज ऑल। और वो सुन सुन के थक चुका था बिकॉज उसने खुद इतने डॉक्टर्स को ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। अब जब उसे लग रहा था टॉम को कि इससे बुरा मेरी लाइफ में क्या ही हो जाएगा, इससे बुरा क्या हो जाएगा, तभी उसकी फियांसे जिससे एंगेजमेंट करी थी, जो हाई स्कूल से उसे जानती थी, उसने सवाल करने शुरू कर दिए कि तुम सपोर्ट कैसे करोगे हम दोनों को, हम कैसे रहेंगे। आई एम रियली सॉरी टॉम बट वी कैन नॉट कंटिन्यू, आई एम रियली सॉरी। और उसने सगाई तोड़ दी और वो भी टॉम की जिंदगी से चली गई। टॉम ऑलरेडी टूटा हुआ था, उसको और ज्यादा बिखेर दिया उसके आसपास के लोगों ने। एक साल हर रोज इस दर्द में टॉम जी रहा था। माँ बाप उसके बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा। जब वो कमरे से बाहर आना छोड़ चुका था तो उसके जो डैड थे उन्होंने कहा नहीं मेरा बेटा ऐसे नहीं रहेगा। और उन्होंने फिर हिम्मत बांधी, उन्होंने कहा बेटा अभी हमें डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा, मैं ढूंढ के निकालूंगा, कोई तो होगा जो समझ पाएगा। रिश्तेदारों ने तो हाथ पीछे खींच लिए थे, उनके लिए टॉम अभी एक फ्रीक था। होता ना जैसे म्यूजियम में कोई रखी हुई चीज़, लोगों को बताने की चीज़ कि तुम्हें पता है एक ऐसा भी लड़का है हमारे ख़ानदान में जिसकी गर्दन उसके सीधे कंधे पे चिपक गई है, और वो एक शोपीस बना के बताते थे जो माँ बाप को समझ में आ गया था, इसलिए उन्होंने भी बैन कर दिया था कि कोई रिश्तेदार ना आए। मगर माँ बाप हमेशा साथ में रहे टॉम के। और माँ ने एक चीज नोटिस करी कि रात के वक्त जब उनका बेटा गहरी नींद में होता है तो कुछ अलग होता है। वो एक रात कमरे में गई, उन्होंने देखा उनका बेटा जो है टॉम सो रहा है, और उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया, बोला इधर आइए देखिए टॉम की गर्दन एकदम सीधी है। एंड दोनों के दोनों माँ बाप बड़े हैरान थे कि गर्दन अभी सीधी कैसे यार, ये क्या है। उनको लगा कि जगा के अच्छी खबर देनी चाहिए कि टॉम तुम्हारी गर्दन सीधी हो चुकी है एकदम। पर जैसे ही उन्होंने उसे जगाया माइक्रो सेकंड के अंदर गर्दन वापस राइट साइड की तरफ चली गई। उसके बाप ने कहा बेटा अभी के अभी मेरे साथ चल। और वो रोते रोते अपने आंसुओं को काबू करके उसे लेकर वहां से निकले और एक लोकल हॉस्पिटल में लेके गए। उसी वक्त लोकल हॉस्पिटल में पेशेंट्स और बाकी डॉक्टर्स और स्टाफ बड़ा हैरान था, उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था, एंड दे वर जस्ट वंडरिंग कि क्या चीज़ है, मे बी कोई चोट लगी होगी। लेकिन यहां पर मिले एक न्यूरोलॉजिस्ट
जो न्यूरोलॉजिस्ट इस लोकल हॉस्पिटल में मिले, उन्होंने टॉम पे तमाम टेस्ट कर लिए। दुनिया के जितने भी टेस्ट वो जानते थे उन्होंने सब के सब करके देख लिया, और पहली मरतबा लगा कि कोई ऐसा डॉक्टर है जो टॉम को एक्चुअली में सीरियस ले रहा है, जो ये नहीं कह रहा कि टॉम नाटक कर रहा है। ये पहले डॉक्टर थे जो सीरियस ले रहे थे। उन्होंने बोला कि टॉम मसल कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है और इसमें मैं कुछ इंजेक्ट करूंगा तो आई होप इट वर्क्स। तो टॉम एक्साइटेड हो गया कि हो सकता है ये काम कर जाए। तो वो जो इंजेक्ट कर रहे थे डॉक्टर साहब, उसे कहते हैं वैल्यूम। वैल्यूम जो है वो डोज उसे दी जा रही थी 120 mg की। मैं आपको ये डिटेल क्यों बता रहा हूं, बताता हूं क्यों। इंजेक्ट डायरेक्टली की जा रही थी। वैल्यूम बेसिकली ओरली दी जाती है, ठीक है, सीधा नसों में नहीं दी जाती है, नॉर्मली ओरली दी जाती है। और ये बहुत अलग किस्म की दवाई है, इससे एंग्जाइटी के लिए दी जाती है। किसी को एंग्जाइटी है, कुछ अलग परेशानियां है, तो उसके लिए दी जाती है। मगर हद से हद जो मैक्सिमम डोसेज डॉक्टर्स देते हैं वो 30 mg की होती है, 30 mg मैक्सिमम पर डे की बात कर रहा हूं। पर जो डोज टॉम को दी जा रही थी वो 4 गुना ज्यादा थी, वो भी डायरेक्टली उसके मसल्स में इंजेक्ट की जा रही थी। जो नर्सेस भी थी वो भी हैरान थी कि डॉक्टर साहब ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये ड्रास्टिक मेजर है, ये बिल्कुल लिमिट क्रॉस करने वाली चीज़ है। और नर्स ने बोला कि ये जिंदा कैसे इतनी ज़्यादा वैल्यूम के इंजेक्शन के बाद, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब ये डोज उसे मिलती रही, 1 महीने के बाद शोल्डर पे से जो सर है वो थोड़ा सा हटा, थोड़ा सा, 1/2 inch, पर ये बड़ी बात थी। मगर टॉम जो था वो वैल्यूम क्योंकि इतनी ज्यादा अमाउंट में उसकी बॉडी में जा रही है तो उसको होश नहीं आ रहा था, बेहोशी की हालत में ही रह रहा था मोस्टली, क्योंकि डोसेज बहुत ज्यादा थी। मगर 1 महीने के बाद डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोला कि टॉम की हिम्मत टूट गई। डॉक्टर साहब बोले, टॉम मैंने यार सब करके देख लिया है, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। टॉम आई एम रियली सॉरी, लेकिन तुम्हें इसी कंडीशन के साथ जीना पड़ेगा। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग। और उन्होंने सीधा डिस्चार्ज पेपर तैयार किया और टॉम को डिस्चार्ज कर दिया। टॉम वॉज इन टोटल शॉक। जिंदगी में पहली मरतबा टॉम को लगा था कि शायद वो ठीक हो सकता है, शायद, मगर वो शायद भी छीन लिया गया। टॉम वॉज क्रश्ड पूरी तरह से। टॉम की जो मां थी वो तो ये सोचती थी कि मेरे साथ ही हो जाता, मेरा बेटा जवान है अभी, उसे दुनिया देखनी है, उसके साथ नहीं होना चाहिए था। एंड घर का माहौल ऐसा था कि सबने एक तरह से उन्हें अकेला छोड़ दिया था, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, लोग बस फोन पे पूछते थे, दूर से पूछते थे, किसी को लगता था ये बीमारी ऐसे तो नहीं कि फैल जाएगी, तो लोग पास भी नहीं आ रहे थे। मगर टॉम के पास माँ बाप थे, सबसे बड़ी ताकत। टॉम की माँ ने अपने कॉन्टेक्ट्स खंगाले और दिस इज 1984-5 आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उस टाइम पे कॉन्टेक्ट्स ढूंढना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। अभी तो आपके फ़ोन में कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट है, आपको खुद भी नहीं याद होगा कितने हज़ारों में कॉन्टेक्ट्स हैं, बट दैट पॉइंट टाइम ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट्स में एक नंबर देखा जो उन्हें याद आया उनकी दोस्त का है, जिस दोस्त के ख़ानदान में भर के डॉक्टर्स हैं। तो उन्होंने ऐसी हवा में तीर मारा क्योंकि कुछ तो करें, और जिसको वो कॉल करने जा रही थी ये औरत खुद तो डॉक्टर नहीं थी, काफ़ी रिलीजियस थी, पर इनके कनेक्शन में सारे के सारे डॉक्टर्स थे घर में, तो उनको कॉल करके सारे के सारे सिम्टम्स बताए। और उस खातून ने बोला कि डोंट वरी, मेरे ख़ानदान में एक जान पहचान के हैं, मैं उनका नंबर देती हूँ। और उन्होंने नंबर दिया डॉक्टर मिचेल ब्रिन का, डॉक्टर मिचेल ब्रिन का, कि कॉन्टैक्ट याद रखो, इनसे मिलने के लिए चले जाओ। अपॉइंटमेंट ली गई। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वेटिंग रूम में बैठा था, टॉम को तो कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई भी डॉक्टर उसे ठीक कर सकता है। मगर फिर वेटिंग रूम में बैठे बैठे 20-25 मिनट के बाद एक यंग डॉक्टर उनके सामने आए, रेड बाल थे उनके, यंग डॉक्टर थे, और जो बैच लगा हुआ था उनके सीने पे डॉक्टर मिचेल ब्रिन, छोटी छोटी मूछें थी, हल्की सी दाढ़ी थी, और उन्होंने एक बहुत ही वार्म वेलकम दिया। उन्होंने देखा और बोला टॉम को, टॉम हाय, कैसे हो टॉम, तुम्हारे बारे में बहुत सुना यार मैंने, एंड आई कैन क्लियरली सी कि तुम दर्द से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, मैं समझना चाहता हूं तुम्हें, तो मुझे जरा शुरुआत से बताओ टॉम, क्या हुआ, मतलब सिम्टम्स क्या क्या हैं। और टॉम ने डॉक्टर के इस अप्रोच को देख के, ना जाने उसके दिल ने कहा कि मैं
अच्छे से बात करूं, आई शुड नॉट बी रूड. और उसने अच्छे से बात करी. डॉक्टर मिचेल ब्रिन ने कहा ओके ठीक है, कुछ स्कैन करेंगे. उन्होंने स्कैन जो था वो चालू किया, गर्दन का, सर का और स्पाइनल टैप. बेसिकली स्पाइनल फ्लूइड को चेक किया जाता है कि उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, और पूरा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा उन्होंने. मेडिकल रिकॉर्ड सारे के सारे देखे और बहुत ध्यान से देखे. और फिर सब कुछ करने के बाद डॉक्टर मिचेल ब्रिन ने कहा कि यू नो व्हाट टॉम, मुझे पता है कि तुम्हें क्या हुआ है. एंड टॉम वाज लाइक, है आपको पता है क्या हुआ? बिकॉज वो उम्मीद ही नहीं कर रहा था कोई डॉक्टर समझ पाएगा. और अचानक से सामने वो डॉक्टर था जो कह रहा है कि उसे एग्जैक्टली पता है कि क्या हुआ है. तो उसने बोला यस डॉक्टर, क्या क्या हुआ, क्या है? और उन्होंने बोला कि आपको सर्वाइकल डिस्टोनिया है. अब सर्वाइकल डिस्टोनिया क्या है? सर्वाइकल डिस्टोनिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. इसकी वजह से गर्दन की मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, अपने आप ट्विच करने लग जाती है, अपने आप एबनॉर्मल पोस्चर बन जाता है उसके हिलने से. और ये होता क्यों है आपका सवाल होगा, तो ये होता इसलिए जब ब्रेन जो हमारा दिमाग है उसकी जड़ का एक हिस्सा होता है, बेसल गैंग्लिया कहते हैं उसको, बेसल गैंग्लिया अगर काम ठीक से ना करे, डैमेज हो जाए, तब ऐसा होता है. अब डैमेज कैसे होता है, किसी को चोट लग जाती है, कोई जो है किसी डिजीज की वजह से शिकार हो जाता है. तो अगर ये जड़ जो है ये खराब हो जाए तो दिक्कत होती है, क्योंकि ये बेसल गैंग्लिया ये रिस्पॉन्सिबल उठता है आपके मूवमेंट्स के लिए, हाथ पैर गर्दन चलना फिरना, इसके मूवमेंट की जिम्मेदारी होती है इसकी. मगर हाफ केसेस ऐसे होते हैं जहां पता नहीं चलता कि बेसल गैंग्लिया डैमेज कैसे हुआ, इस पे चोट कैसे आई, पता नहीं लग पाता. टॉम बहुत खुश था कि यार डॉक्टर साहब ने ये पता कर लिया, इट्स अ ह्यूज थिंग. और उसने सीधा बोला डॉक्टर साहब पे ठीक कर दीजिए ना, प्लीज ठीक कर दीजिए. बिकॉज वो डेस्परेट था, साल भर के ऊपर हो चुका था मामला और उसकी गर्दन राइट शोल्डर पे चिपकी हुई थी. ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू. वो इसी बात से खुश था कि डॉक्टर ब्रिन ने कम से कम नाम तो बताया इस चीज का. तो डॉक्टर ब्रिन से मां ने पूछा टॉम की कि डॉक्टर साहब लेकिन जब ये रात में सोता है तो उसकी गर्दन सीधी हो जाती है. तो डॉक्टर ब्रिन ने इसका भी आंसर दिया. वो बोले कि देखो गर्दन स्ट्रेट इसलिए हो जाती है क्योंकि ब्रेन सो रहा होता है. जब ब्रेन सो रहा होता है तो बेसल गैंग्लिया डैमेज हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मूवमेंट नहीं होता है. मगर जब वो जग जाता है, ब्रेन जाग जाता है, तो इसलिए ऐसा होता है. कई सारे डॉक्टर्स सालों से इसे साइकोजेनिक प्रॉब्लम कहते आए हैं, कुछ समझ पाते हैं कुछ नहीं समझ पाते. और ये सुन के तो टॉम और भी खुश कि वाह डॉक्टर साहब को कितनी डेप्थ में चीज़ें पता है. उसने बोला डॉक्टर साहब बस पता ही आप क्या करना है, फैंटास्टिक, मुझे बस ठीक कर दीजिए, आई एम टायर्ड ऑफ दिस. लेकिन फिर डॉक्टर मिचेल ब्रिन के चेहरे पर एक शिकन थी. उन्होंने बोला कि वेल टॉम, दिक्कत यही है कि इसका कोई भी क्योर नहीं है, इसका कोई भी इलाज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. बहुत टाइम हो चुका था उसे ऐसे रहते हुए, दिल टूट गया टॉम स्टैम्पी का. बोले डॉक्टर साहब मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा, क्योंकि इतने सालों में किसी ने जवाब नहीं दिया था. और अब फाइनली डॉक्टर मिचेल ब्रिन ने इतनी डिटेल में बताया डिसऑर्डर का, ही फेल्ट गुड कि चलो शायद किसी के पास इलाज होगा. क्योंकि ये जो बीमारी होती है, डिसऑर्डर है, सर्वाइकल डिस्टोनिया, ये 11,000 में एक को होता है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होती है. जब उसे उदास देखा डॉक्टर मिचेल ब्रिन ने, तो उन्होंने बोला ओके टॉम तुम थोड़ी देर रुकोगे यहाँ पे? एंड टॉम ने बोला ठीक है डॉक्टर साहब. उसको रोक के मिचेल ब्राउन ने कुछ सोचा, थोड़ा सा घूम फिर के वापस आए और फिर बोले टॉम एक इलाज है, अभी मेडिकल फील्ड में अप्रूव्ड नहीं है, पर तुम शायद परफेक्ट कैंडिडेट हो सकते हो. तो बोला डॉक्टर साहब इलाज है? तो बोला हाँ इलाज है मगर ये अप्रूव्ड नहीं है, तो देख लो, यू वांट मी टू ट्राई. तो बोला ठीक है, माँ बाप ने भी कहा ठीक है, अब क्या कर सकते हैं. और जो वो इलाज था वो आज की तारीख में बहुत कॉमन है. इलाज जानते हैं क्या था? बोटॉक्स, जो आज कॉस्मेटिक्स और कॉस्मेटिकली बेसिकली यूज किया जाता है. बोटॉक्स कहां से आई ये बताऊं आज आपको. बोटॉक्स आया है एक टॉक्सिक बैक्टीरिया से जिसका नाम है बोटुलिनम.
बोचोलिनम, तो ये कंटेमिनेटेड खाने वाने में इधर उधर हो जाता है और बहुत डेडली होता है। ये क्या करता है, पैरालिटिक बीमारियां पैदा करता है, लकवा मार जाता है ना कभी कभार खुदा ना खासा, तो ये वैसी बीमारियां पैदा करता है और उसे कहते हैं बोचोलिज्म। तो ये बहुत डेंजर बैक्टीरिया है, मगर इसका जो प्यूरिफाइड फॉर्म है, प्यूरिफाइड फॉर्म इसी जहर को दवाई की तरह बना देता है। तो मेडिकल ग्रेड फॉर्म में जो बोचोलिनम होता है, ये मसल्स को, हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है। अब जरूरत थी कि मसल्स में लगा के देखना कि कैसे काम करेगा, क्योंकि अभी तक ये टेस्ट नहीं किया गया था, इनफैक्ट अप्रूव भी नहीं था। पर डॉक्टर मिशेल ब्रिन ने एक कॉन्फिडेंस दिखाया इस चीज में, और उन्होंने, माइंड यू ये आपको चीज हैरान कर देगी, उन्होंने बोटॉक्स के 30 के आसपास इंजेक्शंस उसकी गर्दन के दोनों साइड लगाए, राइट और लेफ्ट में 30 तकरीबन। अब इससे हो ये रहा था कि थोड़ी सी वो जो ना टिकलिश सी होती, थोड़ी अंदर से गुदगुदी सी महसूस होती है, तो वो टॉम को हो रही थी। एंड टॉम फिर भी उदास हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं। तो डॉक्टर मिशेल ब्रिन ने उसे जोकिंगली कहा भी कि ये कोई नट टाइट करने जैसा सीन नहीं है, इट विल टेक सम टाइम, लेट मी ट्राई, पैनिक मत करो, तुम पैनिक करोगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसके साथ। तो टॉम को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया क्योंकि उन्होंने मजाक करके ऐसा बोला, एंड ज़्यादा मत सोचो बोला, उन्होंने बोला कि 3 महीने बाद वापस आओ। तो 3 महीने के बाद वो वापस आया, सेकेंड राउंड वापस वो कोलंबिया जाके प्रॉपर वापस 30 बोटॉक्स इंजेक्शंस लगवाए उसने गर्दन के लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड पे। इस बार उसकी जो गर्दन थी जो 2.5 सालों से चिपकी हुई थी उसके राइट शोल्डर पे, वो थोड़ी सी और ऊपर हुई। टॉम की माँ बेहद खुश थी देखकर, क्योंकि ये किसी मेरिकल से कम नहीं था। हर रोज ऐसे देख के वो भी तड़प रही थी, मगर ये जो बोटॉक्स के इंजेक्शन थे ये लगते चले गए। 3 महीने, हर 3 महीने में डोज बड़ा बड़ा के डॉक्टर मिशेल ब्रिन लगाते चले गए। जब तीसरी ट्रीटमेंट का आखिर आया तो गर्दन हिलने लगी, पेन बेहद कम हो गया, एब्सोल्यूट फ्रीडम। मेडिकल साइंस में ये गोल्ड मेडल के बराबर था, क्योंकि इससे पहले किसी ने किया ही नहीं था, ये बेहद रेयर था, बेहद रेयर। और धीरे धीरे डोसेज फिर कम करते करते देखा गया कि गर्दन जो है अब एकदम ठीक हो चुकी है टॉम की, अब वो काम कर पा रहा था, एंड लाइफ एकदम अलग अलग रुख ले चुकी थी। आगे जाके थॉमस टैम्पी उर्फ टॉम ने एक पूरी फाउंडेशन खोली, डिस्टोनिया फाउंडेशन, ताकि उसके जैसे और भी केसेस इलाज ले सके, ताकि किसी को दौलत की कमी होने की वजह से प्रॉब्लम ना हो। इस तजुर्बे ने थॉमस टैम्पी की पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। उसकी शादी भी हुई, उसे एक सही पार्टनर मिली, 3 बच्चियां हुई, 3 लड़कियां, एंड ही बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर देन एवर। और थॉमस टैम्पी से पूछा गया कि आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या अपनी लाइफ को बदलना चाहेंगे, तो थॉमस टैम्पी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही जो मैं शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई कहे कि अपनी जिंदगी को क्या तुम बदलना चाहोगे जो बीच में खराब पीरियड आया, तो उसने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं बदलना चाहूंगा, 1% भी चेंज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो दर्द मुझे 2.5 साल तक मिला है, इसी की वजह से मुझे वो जिंदगी मिली है जो शायद मैं सोच भी नहीं सकता था, इससे बेहतर जिंदगी तो शायद मैं बना भी नहीं पाता जब मैं पूरी तरह से हेल्दी था। उनकी जिंदगी का एटीट्यूड, रवैया पूरी तरह से बदल चुका था। एंड ये केस मेडिकल फील्ड में भी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक गोल्ड मेडल की तरह है, बिकॉज देन बोटॉक्स बिकेम फेमस एंड नाउ सबको पता है इसके बारे में। तो बट शुरुआत कहां से हुई इस चीज की और इस डिजीज की, सो दिस वॉज अ मेडिकल मिस्ट्री। और अब आपकी बारी है, आप बताएंगे कि आपको किस्सा कैसा लगा 666-22107 पर, 666-22107 नंबर है आपके मैसेजेस के इंतजार में। मैं दोहा वाला कबीर, आई होप आपको अच्छी लगी हो कहानी, बिकॉज भाई अगर गर्दन राइट शोल्डर पे चिपकी रहे तो मैं सोच भी नहीं सकता। स्टे ट्यून्ड।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: आज अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे 8:04 एंड आई होप आपको आज का किस्सा अच्छा लगा हो, बिकॉज मुझे बहुत बढ़िया लगा भाई। मैं जब इसके बारे में तैयारी भी कर रहा था तो मैं बड़ा शौक था कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं भाई। मतलब जब भी मुझे लगता है ना कि ये लिमिट है, इससे ऊपर तो नहीं जा सकती कोई मेडिकल मिस्ट्री, तभी होता है कि अरे बाप रे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दिस वॉज वन ऑफ देम। ये एक किस्सा सुनाने का मकसद ही नहीं था किसी मिर्च मसाला के, वो किसी की गर्दन टक गई राइट हैंड साइड पे, बट ऑल्सो द ओरिजिन वाई आज की तारीख में कुछ चीज़ कामयाब है, वो इसलिए कामयाब है क्योंकि किसी एक शख्स ने रिस्क उठाया और दूसरे शख्स ने रिस्क उठाने की हिम्मत करी, यू नो व्हाट आई मीन। सो इस वजह से आज एक चीज़ का इलाज है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज जो मेडिकल फील्ड में हुई हैं, जिसकी वजह से आज लोगों को आसानी है। That is why ये बहुत important थी। एक call आ रही है, उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई।
2: वालेकुम सलाम।
3: कैसे हो भाई?
2: बढ़िया भाई, आप सुनाइए।
3: अल्हम्दुलिल्लाह भाई।
2: जी भाई।
3: भाई कहानी तो बहुत बढ़िया थी, जैसा सेम घटना मेरे साथ हो चुका है।
2: हैं, आपके साथ हो चुका है? क्या हुआ था?
3: भाई मेरी गर्दन तो नहीं पर हाथ अटक गई थी एकदम पूरी।
2: हाथ कैसे अटक गया था?
3: भाई दाहिने हाथ पे, वो मतलब वो हिल ही नहीं रहा था, जैसे एक जगह पे रख दिया।
2: हाँ हाँ।
3: वो थोड़ा भी एकदम भी मतलब उसमें थोड़ा भी हलचल हो रहा था, वो हाथ पे वो हिफाजत कर रहा था।
2: फिर क्या किया? फिर क्या किया?
3: वो हॉस्पिटल गया मैंने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उधर एक सुई या दो सुई उन्होंने लगाई और ठीक हो गया। फिर कितना उधर मैं 2-3 घंटे रुका, उन्होंने 2-3 सुई दी थी पेट में।
2: अल्लाह खैर करे मेरे भाई।
3: और okay. वो हुआ कैसे था मैं आपको बता रहा हूँ। वो ऐसा कुछ नहीं था, हमारे यहाँ तो खेती करते ना हम लोग, तो मैं खेत में क्या था, तो धान लगाने का टाइम था, धान का टाइम।
2: अच्छा।
3: तो उस टाइम पे पानी डालते हैं खेत में, वो पानी डालने का जो फिर वो एक क्या बोलते हैं कुछ बड़ा बर्तन का सेंसर साइज होता है ना, उसके हम लोग ऐसे हाथ से पानी निकाल के डाल रहे थे। अब वो मैंने 2-3 घंटे किया, फिर एकदम वो हाथ इतना चढ़ा कि वो हिल नहीं रहा, जैसे तैसे मैंने बर्दाश्त की, फिर वो सो गया। जब रात को और दर्द करने लगा, फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाया, तो भाई को बोला गाड़ी में डालो। रात को 2 बजे जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुई लगाई, फिर वो ठीक हुआ। इतना दर्द था।
2: उन्होंने बताया किस लिए, किस वजह से? उन्होंने बताया किस वजह से हुआ था?
3: उन्होंने वैसे कुछ नहीं, वो बस उधर ज्यादा महंगा भी नहीं था सुई, और उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। वो बोलते कि ऐसा चढ़ जाता है कभी कभार, होता है ज्यादा, कभी काम नहीं किया हो ज्यादा दिन तक, या फिर हाँ आराम करने वाले बंदे काम कर ले तो फिर जानते हो ना बीमार ज्यादा होते हैं।
2: अच्छा ठीक है, मैं समझ गया क्या होगा। डॉक्टर तो नहीं हूँ पर मुझे समझ में आ रहा क्या होगा, बट ठीक है मेरा भाई, थैंक यू सो मच।
3: दर्द मैं रिलेट कर पाया उसका, क्यों?
2: हाँ भाई,
3: मेरा थोड़ा सा हुआ था तो मैं बहुत डर था भाई, वो बस बर्दाश्त ना होने वाला डर था।
2: समझ रहा हूँ भाई, ये रिलेट तो कर गए, क्योंकि जब
3: ढाई साल
2: झेला है उसने तो भाई।
3: हाँ भाई,
2: सो डेफिनेटली। पर थैंक यू सो मच भाई, आपने अपनी कहानी भी शेयर करी मेरी जान, थैंक यू सो मच। ख्याल रखो अपने भाई, अल्लाह खैर करे भाई। थैंक यू मेरा भाई, बहुत प्यार भाई को, थैंक यू भाई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। और भाई के बाद कोई मैसेज है? अस्सलाम वालेकुम। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा है जैसे इंग्लिश मूवी का रोमांटिक सीन पर अचानक 1983 कह दिया, क्या यार कबीर भाई डरा दिया, थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, आई लाइक इट। शेख इरफान अल-खास मिसा, मज़ा आ गया मुझे। एक मैसेज है, रईसल गुड मॉर्निंग, नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, माई सेल्फ शकील फ्रॉम हैदराबाद, अल्लाह का शुक्र है आप इलाज ढूंढ लिए, जब से मैं भी गर्दन टेढ़ी करके सुन रहा था उसका पेन फील कर रहा था मैं। भाई डोंट ट्राई दिस, अरे बाप रे, मुझे कहीं ना कहीं पता था कि लोग ये ट्राई कर रहे होंगे किसी ना किसी कोने में ना। शकील भाई आपने मुझे मेरे डर को सही साबित कर दिया। अब्दुल करीम भाई वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। जमाल शेख साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे डर लगता है जब गैर क्या घर से बाहर निकलें और कुछ देर बाद स्क्रीन पर बीवी का कॉल देख लूं। और आगे लिखते हैं, वाह यार कबीर भाई जबरदस्त नोवर्ट, थैंक यू सो मच जमाल भाई, बहुत बहुत सारा प्यार आपको। तबस्सुम है लिखती हैं, इंस्पायरिंग ब्यूटीफुल स्टोरी कबीर भाई, वो पार्ट बहुत अच्छा लगा जब डॉक्टर ने उसे प्रॉब्लम पूछी और एक्नॉलेज किया टॉम खुशी बता रहे, आप टॉम की खुशी बता रहे थे, चलो ये पूछ तो रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना. वो क्या ना मुन्ना भाई मूवी जो है वो एक्चुअली में सही है, थोड़ा पूछने पाछने का भाई. एक मैसेज, स्टोरी के बाद सबसे सब ये क्वेश्चन पूछना, कौन कौन गाड़ी चलाते हुए राइट शोल्डर पर सर लगा के चेक कर रहे थे, मैंने तो देखा, मुझे पता है देखा होगा लोगों ने. मेहर भाई मैं एकदम सही कह रहा हूँ, यही मेरा डर था अभी, और स्टोरी सुनते हुए मेरी नेक लेफ्ट साइड में पेन होने लगा. आप सोचो, मुझे पता था लोग ये टेस्टिंग तो कर रहे होंगे. भाई कह रहे हैं वेरी गुड स्टोरी, 1 in 11,000 केस. जी भाई अमजद भाई थैंक यू सो मच. और नावी भाई लिखते हैं, वो टूटा हुआ था लेकिन और बिखेर दिया उसके आसपास के लोगों ने. क्या लाइन बोली भाई, थैंक यू सो मच भाई. है आपका भाई राइटर है, राइटर क्या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम भाई, जब कहानी आती है तो फिर आपका भाई घुस जाता है राइटिंग में. और लिखते हैं एन अमेजिंग टू लर्न ओरिजिन स्टोरीज, मेरे भाई को बहुत सारा प्यार, छह दिल भेज रहा हूँ नावी भाई, कबूल करूँ. और एक मैसेज है माशाल्लाह, थैंक्स, थैंक यू सो मच अबू साद साहब. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, भाई आज की स्टोरी भेज दें. और डॉक्टर समीउल्लाह साहब ने मुझे मैसेज किया है, वो लिखते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी, मिस्ड अ पार्ट ऑफ इट, काइंडली सेंड मी द ऑडियो. ओके नियाजी साहब, मैं ज़रूर भेजूंगा आपको. और एक मैसेज, भाई इमेजिन करो उसकी गर्दन देखने में कैसी लगती होगी. आप फोटो देखिए, फोटो अवेलेबल है, पूरी फोटो अवेलेबल है भाई, आप देखिए उसकी फोटो बाकायदा, थॉमस स्टैम्पी टाइप कीजिए, आपको पूरी फोटो दी जाएगी, इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं है. जैसे स्टीफन हॉकिंग भी क्या सोचता होगा, मेरे डुप्लीकेट कहाँ से. भाई बहुत डार्क था ये. एक मैसेज है, मैंने भी ट्राई किया कार चलाते हुए, मुझे पता है भाई, मुझे पता है सबने ट्राई किया होगा. मोहसिन भाई मैं कहानी सुनाते हुए सोच रहा था कि कहीं लोग जो है ये एक्सपेरिमेंट ना कर रहे हो गाड़ी में बैठे बैठे. खादिम साहब वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है. और एक और मैसेज है, मैं नहीं सुन पाया, वालेकुम अस्सलाम, ये आपने बहुत अच्छी कहानी मिस करी है, पर कोई गल नहीं, एक बाकी मैसेज कुछ देर मिलेंगे. एक कॉल आ रही है, उठा लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
4: सलाम, क्या हाल है कैप्टन.
2: बढ़िया भाई, कैप्टन साहब तो कहते हैं आसमान में है भाई, अभी धरती आया हूँ भाई. हाँ जी भाई, क्या हाल है भाई.
4: सेफ लैंडिंग
2: भाई, नहीं उपट खापट लैंडिंग है भाई, एकदम आड़ी टेढ़ी. और बताओ कबू भाई, क्या चल रहा
4: है. कबीर भाई वो गाना तो सुना होगा ना आपने, वो
2: कौन सा,
4: ये छोरी धाकड़ है धाकड़ है.
2: हाँ भाई,
4: भाई मना छोरी का तो बेरा नहीं है.
2: हाँ.
4: मगर मारा कबीर भाई
2: छोरा धाकड़ है. आ रहा है मेरा भाई, बहुत प्यार कबू जी. और क्या चल रहा है भाई जिंदगी में, सब सेट है.
4: हाँ कबीर भाई, यार मैंने ना एक बात नोटिस की पिछले कुछ दिनों से.
2: हाँ हाँ,
4: आपने भी नोटिस की हुई
2: क्या?
4: की होगी भाई, ये जो हिडन जैम वाले बंदे थे वो आजकल नहीं दिखा रहे हिडन जैम्स.
2: अब उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया ना भाई. दूसरा
4: मैं बताता हूँ ना.
2: हाँ.
4: मैं बताता हूँ भाई. हाँ. कबीर भाई आपकी बात यार सच में ही बहुत असर करती है.
2: अच्छा क्या ये अगर हुआ है तो मेरे लिए हैप्पी, पर मुझे पता है कि अभी बहुत जल्दी कतर में कुछ पॉडकास्ट आएंगे जिन्हें सुन के आपको यकीन नहीं होगा कि ये लोग कह क्या रहे. सोच रहे
4: हैं क्या रहे हैं.
2: तो वो भी आएगा, अब भी आएगा, ज्ञान का सागर आएगा भाई अभी.
4: हाँ जैसे ही कबीर भाई आप लोगों ने या हमने बात की ना उसके ऊपर. हाँ. भाई वो धीरे धीरे धीरे धीरे बंदे अलोप ही हो गए यार. मैं अभी खुद तरसा हूँ हिडन जैम देखने को यार.
2: नहीं नहीं भाई मत तड़पो हिडन जैम देखने के लिए भाई. ऐसा नहीं करो गाबा जी. और कहानी सुनी आपने गाबा भाई, वैसे नहीं सुन पाया.
4: मैं यार कबीर भाई मैंने सुनी है आज. हाँ. ना मैंने सुना प्रोग्राम आपका किस्तों में ही है भाई
2: जी. अच्छा,
4: काम की वजह से.
2: कोई नहीं काम जरूरी है भाई, काम इम्पोर्टेंट
4: जी. थोड़ा पहले सुना था 7 से 7:30 बजे तक, तो अभी 5 या 10 मिनट पहले ही ट्यून इन
2: की. अच्छा कोई बात नहीं. आप आज की कहानी गाबा जी बहुत कमाल की, मैं आपको अलग से भेजूंगा, सुनना जरूर, इम्पोर्टेंट कहानी है भाई, मजा आ जाएगा. और क्या आपने सवाल सुना होगा फिर तो 7 से 7:30 का, तो क्या क्या सीन था आपका, क्या छोटे छोटे.
4: अच्छा, वो वाला यार मैं कबीर भाई सच बताऊं आपको, जैसे मान लो मैं दोहा में ड्राइविंग करता हूं.
2: हाँ हाँ.
4: और गाड़ी मेरे नाम पे है, ठीक है
2: ठीक है.
4: और आप और हम अभी बिल्कुल बात अच्छे से कर रहे हैं, अपनी बातों में खुपे हुए हैं, ठीक है. और सडनली यार मेरे मोबाइल पे से जा जाए और उसका टाइटल हो मित्राश. यार कबीर भाई यकीन मानिए उसके अंदर कुछ भी हो सकता है से रिगार्डिंग आईडी के रिगार्डिंग, मगर जब वो टाइटल ऊपर आता है ना. हाँ, मित्राश का. हाँ. भाई हार्ट बीट का
2: भाई, गाबा जी
4: यकीन मानिए ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है
2: आपके लिए भाई. ये आप डिजर्व करते हैं. बात कहिए भाई, बात कहिए भाई. डिजर्व करते हो भाई. सही बात बोली
4: भाई. ये नई एंट्री हुई है सायरन की.
2: ये सायरन भाई अर्न करना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं दिया जाता, इसको कमाना पड़ता है. तो आज आपने कमा लिया है इस चीज को, क्योंकि आपका डर जो है बहुत रिलेटेबल है भाई. ये बिल्कुल सही बात कही आपने, इसलिए आपको सायरन दिया.
4: यार कबीर भाई यार यकीन मानिए यार आप ना एक ऐसे ऊद या इतर की तरह हो ना यार, आपका टैलेंट ऐसा है ना, जब तक बंदा पास में होता है नहीं पता चलता है,
2: भाई
4: जब थोड़ी सी देर के बाद बंदा आपके पास से चला जाता है ना,
2: हाँ।
4: फिर उस चीज की महक बंदे को आती है, हाँ यार वाकई बंदे ने कुछ लगाया
2: भाई। यार क्या बात कह दी बाबाजी, यार क्या बात कह दी भाई, आप पूरा चाय का थर्मस आज आज आप पे कुर्बान मेरे भाई, क्या बात की भाई, क्या
4: इलायची वाला,
2: अरे भाई साहब इलायची वाला भाई मजा आ जाएगा। अरे गावा जी क्या बात है मेरा भाई, क्या सीन है फिर दिन का, क्या सेट है आपका, क्या चल रहा है मामला
4: दिन का? भाई कबीर भाई वही यार, बस मजदूरी में लगे हुए हैं अपना, रोजी रोटी के चक्कर में भाई
2: लगे रहो भाई, कुछ होना चाहिए, रोजी रोटी चलती रहनी चाहिए भाई, बहुत प्यार आपको भाई।
4: जी बिल्कुल कबीर भाई, और मैं प्लानिंग का वेट कर रहा हूँ यार, क्योंकि मैंने ना नेक्स्ट मंथ थोड़ा सा फिर बिजी हो जाना
2: है। नहीं उससे पहले भाई, जाने से पहले सरोवर भाई को पकड़ेंगे भाई, टेंशन नहीं,
4: नहीं जाना नहीं है कहीं भी, यहीं पे हैं।
2: अच्छा मुझे मुझे मुझे जाना, मुझे मुझे मेरी छुट्टी है अगले,
4: वाह जी वाह, नेक्स्ट मंथ,
2: हाँ जी नेक्स्ट मंथ,
4: चलो कबीर भाई फिर मैं करता हूँ शाम को,
2: डन डन डन, ठीक है मेरा भाई,
4: भाई रिप्लाई कर देना यार।
2: हाँ भाई, अरे बिल्कुल ऑफ कोर्स,
4: मैं नहीं भेजता वो चीज,
2: अरे भाई टेंशन,
4: पता है आपने इसके लिए रिप्लाई,
2: नहीं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास कोई रीजन नहीं होता भाई, मैं इतना नहीं सोचता मैं, ठीक है
4: चलिए ठीक है भाई, लव यू आपके लिए,
2: ओके भाई लव यू भाई, बहुत सारा प्यार,
4: ओके भाई टेक केयर,
2: ओके भाई टेक केयर, भाई टेक केयर। तला भाई क्या कह रहे हैं, एक सेकंड, गाबा का जीवन सफल हो गया भाई, तुम चले जाओ ये तला भाई के लिए। और एक और भाई कह रहे हैं, ये साइरन कमा के कहीं रिडीम कर सकते हैं, ये मेरे शो में रिडीम कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मुझे दो सायरन मिले हैं, अगर आप ये बता देंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे और भी फीचर्स मिले, अभी हमने फीचर्स लिखे नहीं, अभी अभी कंपनी खोली है तो बता देंगे, और फीचर मिलेंगे आपको इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लो ठीक है। बाकी एक भाई ने मैसेज किया, नाइस स्टोरी भाई, स्टोरी के साथ साथ मैं भी फील कर रहा था कि क्या मेरा भी पेन हो रहा, नहीं भाई खुदा ना करे किसी को भी ऐसा पेन हो मेरी चार, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, सबने आज अपनी गर्दन टेढ़ी करी है ये तो मुझे अंदाज़ा हो गया है, गर्दन टेढ़ी करके बैठे भाई। एक मैंने कॉल लगाई जमाल साहब को, जमाल साहब मैं थानू कॉल कर दा, एक सेकेंड रुको, जमाल साहब ये लो मेरी कॉल लग गई, जमाल साहब को जा रही है, जमाल साहब फोन तो चक्को भी रे, अरे जमाल कॉल उठाओ, अस्सलाम वालेकुम जमाल,
4: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू,
2: अरे जमाल भाई क्या हाल है कैसे जमाल भाई सब बढ़िया?
4: अरे यार भाई हार्ट बीट बढ़ा देते हो यार
2: कैसे लगे आपको कहानी जमाल भाई?
4: एक चीज याद आया यार, हाँ। कि वो है ना दिल से और एक दिमाग से सोच कर एकदम गहराई से देखे के ढाई साल नहीं ढाई घंटा भी अगर आदमी को उस हालत में रहना पड़े ना और फिर वो अपने पहले की जिंदगी को सोचे तो उसे लगेगा कि यार अब
2: भाई आप तो ढाई घंटे कह रहे हैं जमाल भाई, पांच मिनट अगर गर्दन आपने इधर रख ली ना राइट पे तो चीखे निकल जाएंगी भाई, तो वो तो ढाई साल से उसकी तो चिपकी हुई है बेचारे की, और कैसे रहा होगा वो?
4: मुझे तो मतलब ये लगता है कि इस स्टोरी को सुनने के बाद एटलीस्ट कम से कम ये है कि आदमी को ये तो बहुत केयरफुली इस बात को सोचना चाहिए, फोर्सली जो भी कुछ बन पड़े ना हकीकत में वो हमेशा ही कहना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है,
2: बहुत ये तो है,
4: बहुत ज्यादा मतलब शुक्रगुजारी आ जानी चाहिए बंदे के अंदर।
2: हाँ ऐसी कहानी सुन के तो भाई मैं बता रहा हूँ, ये पता है कहानी मुझे मिल रही है तो हर पल ये होता है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह भैया ये चीजें नहीं है, ये बहुत भाई ये कहानियां मुझे खुद हिला के रख देती है, तो सही कहा आपने, कल की भी कहानी ऑलमोस्ट ऐसी थी मगर वो जगह के लिए थी
4: भाई,
2: ये हेल्थ की वजह से है
4: भाई, मुझे तो लगता है कल की कहानी और आज की कहानी सुनने के बाद मुझे लगता है कि मुबल्लिग का खिताब बड़ा जल्दी मिलने वाला है
2: क्या जमाल भाई यार क्या कह जाते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जमाल भाई क्या चल रहा है, बाकी सब सेट है?
4: हाँ भाई
2: बाकी तो आपने बोला जमाल भाई आप भाभी का फोन देख के डर जाते हैं, ऐसा है क्या
4: भाई? जब छुट्टी जाते हैं ना, सच बताएं आपको, जब छुट्टी जाते हैं दिन भर तो घर होते हैं, लेकिन शाम को अगर किसी वजह से कहीं दोस्त दोस्त अगर एक आध है तो उनसे मिलने के लिए चले जाओ, या फिर कुछ खरीदने के लिए ही भेज दिया जाए उन्हीं की तरफ से कि जाओ, और फिर कुछ देर के बाद अगर स्क्रीन पे दिख जाए मैडम का नाम हाँ या उनका कॉल आ रहा है,
2: हाँ।
4: तो भाई एक बार छोटा सा डर तो पैदा हो जाता है कि यार कुछ भी होगा जो
5: मेरे हक में तो एटलीस्ट नहीं होगा।
2: फोन उठा देख साथी मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया।
5: नहीं आप एक बार सोच के देखो जो प्रैक्टिकल है भाई वो।
2: नहीं भाई सच है, सच है, मैं
5: या तो चीज घट गई होगी वो एड करना होगा, या तो फिर ये सवाल होगा अरे इतनी देर होगी कब आओगे। बंदे को लगता है यार कि बस ये फोन उठाऊं नहीं उठाऊं क्या करूं।
2: नहीं उठाने का तो सवाल ही पता नहीं था जमाल भाई, ऐसे
5: नहीं उठाने का तो सवाल ही नहीं,
2: ऐसा रिस्क नहीं लेते भाई,
5: लौट के घर जाना होता है। हाँ। तो नहीं उठाने का तो नहीं।
2: देखो ये बताना, बात करना ज्यादा आसान है ये बताने से कि भाई मैंने फोन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि ये बता नहीं पाएंगे फोन क्यों नहीं उठाया।
5: लेकिन भाई छोटा सा डर लग जाता है।
2: नहीं भाई रिलेटेबल है, रिलेटेबल है जमाल भाई। जमाल भाई आपके लिए भी मैं चलाना चाहूंगा भाई, एक सेकंड। जमाल भाई के लिए भी भाई वेरी रिलेटेबल थॉट, बहुत बढ़िया जमाल भाई। थैंक यू सो मच भाई क्या आपने कॉल करी जमाल भाई, ऐसे खुश रहिए भाई।
5: हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हम लोग बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा वो रहता है, वो भी देखिए वो भी एक तरह का प्यार है।
2: ऑफ कोर्स आप कवर अप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। करिए करिए
5: कवर अप नहीं, अच्छा देखिए नहीं, सोचने का एक तरीका होना चाहिए कि अगर फर्ज कर लीजिए कि, और मैं तो कहता हूँ कि मतलब चाहे उसको बहालत मजबूरी समझ लें आप, या ये कि जिस भी हालत में समझ लें कि अगर बीवियां गरजती हैं आपके बाहर निकलने पर आपके फोन पर, है ना, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, बेबस हो भाई आप। उस कटघरे में आप बेबसी के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो दिल की तसल्ली के लिए ये बड़ा अच्छा है कि यार ये भी तो बीवी का प्यार है
2: भाई। आपने उम्मीद देके छीन ली तो यार बहुत डेंजर आदमी हो, उम्मीद देके छीन ली वाले प्यार की बात करी फिर बोले तुम बेबस इंसान हो। बहुत डेंजर हो रहे हो जवान भाई आज। आज लगता नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह जम के क्या भाई ने, क्या सीन है भाई।
5: नहीं नहीं भाई देखो ये आपकी मेहरबानी है कबीर भाई कसम से, है ना, कि एकदम पूरी तरह से चूर चूर है।
2: अरे भाई थैंक यू भाई,
5: पूरी तरह से चूर चूर है, लेकिन वो आवाज कान में पड़ती है लोगों की चहचहाट, भाइयों की, तमाम दोस्तों की और आपकी, तो थोड़ी सी एनर्जी अंदर से आ जाती है
2: बस भाई।
5: और फिर एनर्जी भी ऐसी आती है ना कि बिल्कुल एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं, सोचते हैं चलो यार अभी दो चार
2: भाई मुझे मैं उन्हें बाकी आज आपको कड़वा सच बताता हूँ मैं, मुझे कड़वा सच तो नहीं है, अच्छा वाला सच है। ये आपका ये वाला वर्जन अच्छा लगता है, जब आप सीरियस हो जाते हो ना, मगर नहीं यार जमाल भाई को सीरियस नहीं होना चाहिए, आदमी उर्दू बोलता है थोड़ी सीरियस हो जाएगा, तो अच्छी बात है आपका ये जो वर्जन है, जब आप खुश नजर आते हैं, खुश सुनाई देते हैं सॉरी, तो अच्छा लगता है। ऐसे रहा करो जमाल भाई यार, मजा आते हैं वो हंसते
5: हुए। यार भाई देखिए हाँ। किसी ने कहा था ना कि हुजूमे गम मेरी फितरत बदल नहीं सकती।
2: क्या है
5: हुजूमे गम हाँ। मेरी फितरत बदल नहीं सकती
2: हाँ।
5: मैं क्या करूं, मेरी आदत है मुस्कुराने।
2: आए, आए, आए, आए, आए। ये सही है।
5: दूसरे बंदे ने हाँ। दूसरे बंदे ने कलम उठाया तो यूं लिखा हाँ। कि मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है, हमें नाकामियों पे अश्क बरसाना नहीं आता।
2: किसमें उलझ के पहला वर्ड क्या था, मैं वो नहीं सुन पाया, क्या वर्ड?
5: मसाइब, मुसीबत की जमा है मसाइब।
2: अच्छा मसाइब, अच्छा फिर ठीक है।
5: मसाइब में उलझ के मुस्कुराना मेरी फितरत है
2: हाँ।
5: और एक गांव, छोटे से गांव से निकलकर एक छोटा सा शायर जब कलम उठाता है तो वही लिखता है कि हंसा करो कि उदासी भली नहीं होती। मुझे दिए कि कोई जिंदगी नहीं होती।
2: जमाल भाई
5: शराब बुझ जाए तो बेमाना हो जाता है।
2: लट गाड़ दिया भाई, लट गाड़ दिया भाई। ये जमाल भाई आपके लिए दोबारा भाई, बहुत प्यार मेरे भाई, थैंक यू सो मच।
5: आप बहुत हंसाते हैं, सोचता हूँ कि लोगों के लम्हों पे मुस्कुराहट का एक छोटा सा हिस्सा ही अगर अपने हिस्से में आए, अपने दामन में गिर जाए, अब भाई बड़ी बात हो जाएगी।
2: बस भाई मैं तो कहता हूँ मुस्कुराओ नहीं हंसो। बस कुछ हाँ, हाँ,
5: मुझे इसका गम नहीं कि मैं काम आ गया
2: हाँ।
5: तेर है कि कातिलों में मेरा नाम आ गया।
2: अरे यार तो चेयर पटक शेर था भाई साहब, बहुत बढ़िया। जमाल भाई थैंक यू सो मच, जमाल भाई आपने बहुत मजा करा दिया।
5: बहुत शुक्रिया भाई, सब प्यार सारे सारा कुछ आपका है।
2: थैंक यू भाई,
5: हम लोगों के लिए
2: बहुत प्यार,
5: आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: ठीक है मेरा भाई, अस्सलाम वालेकुम,
5: सलामत रखे,
2: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे,
5: याद रखे।
2: आमीन आमीन मेरे भाई,
5: आमीन,
2: ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और भाई मजा दिला दिया जमाल भाई ने, मतलब मैं क्या ही बताऊं। मेरे पास शब्दों की कमी हो रही है, कुछ मैसेज पढ़ता हूं फिर कॉल लगा रहा हूं मैं। खादर अब्दुल राजी भाई कहते हैं कबीर भाई रियली हैव टेकन अ गुड सायरन फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द कॉलर। मैं ये सायरन जो है मैंने बताया ये अर्न करना पड़ेगा आपको शो के अंदर ही वाला, ये अच्छी बात पे, कोई सीरियस होगा तो मैं दूसरा हॉर्न लेके आऊंगा जो बहुत ज्यादा सीरियस होगा। एक मैसेज, कबीर भाई शादीशुदा बंदा भी खुद एक करता है, मैं इसे खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। एक मैसेज, जमाल भाई खुलकर बोल पा रहे हैं क्योंकि भाभी जी इंडिया में है, ऑल्सो करेक्ट। एक मैसेज है, भाई आतिफ फेयर योर फैन नंबर वन, वेलकम बैक टू द मॉर्निंग शो, आप हमारे दिन की शुरुआत कराते हो करवाते हो, सात जन्म मुबारक जियो मेरे शेर, ऑफिस में सुन रहा हूँ आपको, आप हंसते बड़ा फनी हो। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, वेरी हंसी बहुत बुरी मुझे बताया। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई,
2: क्या हाल है प्रिंस भाई, क्या हाल चल रहा है? अभी आपने जो सुबह एकदम जलजला लेकर आए हैं उसका क्या किया जाए?
6: क्या बताएं भाई, अब बहुत अफसोस की बात है कि एक तो स्टोरी में सुन नहीं पाया,
2: अरे रे रे
6: मॉर्निंग बिजी हो गया। सेकंड थिंग, मैंने आपको बताया कि कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अकेला जा नहीं सकता और जाना भी नहीं चाहता, इसलिए रिन्यू करवाना जरूरी है सरों के पास हो जाए।
2: अरे रे रे,
6: ट्रिप प्लान कर रहे हैं थोड़ी सी।
2: आज आज की प्रिंस भाई आप सुनेंगे ना, आपको मजा आ जाएंगे, बहुत बढ़िया कहानी है, इम्पोर्टेंट स्टोरी।
6: जरूर सुनेंगे भाई, जरूर सुनेंगे, वक्त निकाल के सुनते हैं हम आपकी।
2: हाँ, ये
6: सुनी हुई दोबारा भी सुन लेते हैं कभी कभी, बहुत ज्यादा अच्छी लगती
2: है।
6: ऐसा नहीं है कि ना समझ में आती, लोग फिर बोलेंगे अरे भाई को समझ में नहीं आती, इसलिए दोबारा सुन लेते हैं, ऐसा नहीं है जब लगता है।
2: अच्छा, ये भी सही है, ये भी एक अलग मोड है जिंदगी का, उसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ प्रिंस भाई, इस मोहब्बत के लिए। और काम हो गया आपका जिस काम के लिए गए थे? डन?
6: आप लोगों की तरफ थोड़ी ना बता दी और गायब हो गए।

0: कुछ नहीं कर सकते, गरीब लोग हैं, सुन लेते हैं।
1: चलो हाँ, मेडिक्योर पेडिक्योर कराने वाले गरीब लोग हैं भाई साहब, मुझे ले चलो यहाँ से। सही है भाई।
0: नहीं पर हमारे कबीर भाई, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि बात इतनी अचानक से वायरल हो जाएगी।
1: हाँ, आपकी बात वायरल हो गई है भाई, मेडिक्योर पेडिक्योर वाली बात बहुत ज्यादा वायरल हुई है, आपको अंदाजा नहीं है जो सुबह आपने किया है।
0: कॉमन थिंग मैं यही सोचता था आज तक।
1: नहीं नहीं भाई, ये मत सोचिए कॉमन थिंग है ये, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सच्चाई से मिलाना चाहूंगा, सच्चाई मीट प्रिंस भाई, प्रिंस भाई मीट सच्चाई। ये फैक्ट है भाई।
0: मैंने बताया, खैर मैंने जो बता दिया बता दिया, लेकिन मुझे इतने बड़े रेस्पॉन्स का तो और वायरल अंदाजा ही नहीं था।
1: हाँ भाई, तो अब अंदाजा हो गया होगा आपको।
0: अरे होता ही चला जा रहा है।
1: हाँ, ये होता ही,
0: नाम ही नहीं ले रहा,
1: होता ही चला जाएगा।
0: मेरे भाई ने एक टॉपिक पूछा था,
1: हाँ,
0: एक सवाल निकाला था।
1: हाँ,
0: वो सवाल किस राह चल दिया, उसने अपना ट्रैक ही चेंज कर लिया, बार बार कई बार कुछ होता गया।
1: तो मैं तो बस मुबारक हो, आज जो है कंटेंट आप ले गए भाई, आज तो मेरी जरूरत थी भी नहीं, जो आपने वो छोड़ दिया था ना बस एक पटाखा, वही पटता आ रहा है अभी तक। तो मजा आ गया भाई, थैंक यू सो मच।
0: आई होप काम होता है, वो एक अलग बात है भाई, लेकिन सूरज की जरूरत हमेशा पड़ती है।
1: अरे अरे भाई, बहुत प्यार, बहुत प्यार प्रिंस भाई, थैंक यू भाई, बहुत
0: खुश। कभी हमारी लाइट जल जाए, थोड़ी कमरे में रोशनी हो जाए, थिंग इज डिफरेंट,
1: थैंक यू
0: भाई, लग और चांस होता है।
1: थैंक यू भाई, थैंक यू।
0: आप तो अपना काम करते हो, यू आर द सन ब्रदर।
1: अरे रे रे,
0: जो रोशनी फैलानी है वो तो, दैट थिंग इज डिफरेंट है ना,
1: मनी फॉलोज ब्रदर। ठीक है,
0: मनी मेरा भी ये फंडा है कि मनी हमें फॉलो करे ना कि हम मनी को।
1: क्या बात है,
0: जो के पीछे
1: क्या बात है भाई, क्या बात है। थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए भाई। यू टू भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो दो लोगों मुझे कॉल करनी है प्रिंस भाई के बाद, मैं अभी एक गाने के बाद कॉल लगाऊंगा। शहजाद सलीम, तुम्हारा ही नंबर है शेखू, गाना चलाया जाए करण ओझला नेहा कक्कड़। भाई साहब, मेडिक्योर पेडिक्योर आज मुझे बहुत कुछ पता लगा है, जीवन के नए द्वार खुले। अस्सलाम वालेकुम।

भाई कल आज आज वेंसडे हो गया, कल थर्सडे है। क्या बात है यार, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मुझे अभी रियलाइज हुआ ये सुबह, हालांकि मैंने बोला वेंसडे, मैंने कहा अरे कल वीकेंड, माय गॉड।

0: ऐसा एक्सीडेंट है ना, एक रियल हुआ था मेरे साथ वहाँ पे जब मैं सऊदी में था। तो मैं ऐसे ही जा रहा था एक रेसिडेंट एरिया में, तो फुटपाथ होती ना फुटपाथ, उस पे एक बच्चा है ना, बहुत बहुत हैवी बॉडी थी, अरबियन था वो, बहुत हैवी बॉडी थी। अब वो दोनों हाथ घुटने पे रख कर है ना उठने को कोशिश कर रहा है ना, उसके बाजू में ये लाइट का कोई पोल था कुछ नहीं था, ऐसे ही था। तो मेरी नजर पड़ी उस पे, अब दोनों हाथ घुटने पे रख के उठने की बहुत कोशिश कर रहा है, उठ नहीं पा रहा है। तो फिर मैं ना थोड़ा आगे निकल गया, तो मैं रुका, रुक के ना उसके पास आया, पूछा, तो उसने डायरेक्ट मेरे पास है ना हाथ बढ़ाया। तो जैसे हाथ मैंने आगे किया ना, तो उसने हाथ मेरे कंधे पे डाल के उठ के खड़ा हुआ और बोला शुक्रान, फिर वो चल के जाने लगा। तो यानी अगर देखते हैं ना किसी और को, मतलब इस तरह का कुछ है ना बॉडी लैंग्वेज होता कुछ ना, कितना अल्लाह का शुक्र है
1: भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करें, बहुत जरूरी चीज है भैया। मैं तो डर में जी रहा हूँ आजकल कहानी सुना सुना के।
0: और दूसरे जो टॉपिक है डर के हिसाब से, तो डर इतना, मतलब यहाँ मैं निकलता हूँ ना स्पेशल, जो कतर में लुसेल में जाता हूँ, जो है ना वो मैंने वो ट्रम चल रही है ना अंदर, ट्रम भी चलती है ना इधर उधर,
1: बिल्कुल
0: पटरियां हैं वो, अल्लाह बेहतर जाने। मैंने तो सारे सिग्नल फॉलो किए, मेरा एक टायर है ना वो जो व्हाइट के पट्टे से इधर था या उधर था, बहरहाल जैसा भी था, 1000 रियाल मेरे को फाइन गिरा उसका।
1: अरे सलीम बेटे, ये क्या किया आपने, 1000 रियाल का फाइन भर के आए आप?
0: 1000 रियाल यकीन करो वो मिल जाए अभी तक भी मेरे, हालांकि मेरे को पूरा उसने हमारे जो ये है ना GPS जहाँ वगैरह देखते हैं ना, उन्होंने पूरा बताया कि देखो तुम्हारा गाड़ी ऐसा टर्न हुआ था, ये टायर तुम्हारा यहाँ था, इसके लिए तुमको है ना डायरेक्ट रिडार मारा है।
1: तो क्या पटरी का टायर क्या था?
0: नहीं, पटरी टायर फिर व्हाइट है वहाँ पे, कुछ टाइम ग्रीन होने के बाद मूव हुआ, तो अभी

0: बुधा जाना छोड़ दो, वकरा घुमा करो गाड़ी लेके, ठीक है।
1: कितने प्रोजेक्ट बाकी है ना वहाँ पे, जो बड़े बड़े सिलेंडर दो तीन टावर एक साथ है ना, वो हमारा ही प्रोजेक्ट है। हाँ अभी भी वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस चल रहा है, ठीक तो जाना पड़ता है कभी।
0: ठीक है सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी और भी लोगों को वक्त दे रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कमी है, बट थैंक यू सो मच सलीम भाई, बहुत सारा प्यार भाई को,
1: थैंक यू सो मच
0: भाई, नो प्रॉब्लम मेरी जान, थैंक यू, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो शेखू इनके बाद जो है अगली कॉल लगाई जाए, किधर है किधर है, तलावाई कॉल लगाई जा रही है, एक सेकंड, किधर गया भाई ये नंबर क्यों खो जाते हैं मेरे, तो ये समझ में नहीं आता है। हाँ ओके दिख गया, वो एक्चुअली में क्या है कि आज मेडिक्योर पेडिक्योर की इतनी बातें हो गई है कि मैं जानना चाह रहा था कि लोगों के टेक क्या होंगे, किधर गया आपका नंबर भाई, मैं बार बार गलत क्यों डायल कर देता हूँ नंबर, ये फ़ोन भी चाहता है कि मैं तला भाई को कॉल ना लगाऊँ, ये कुछ है, ये मैंने नोटिस किया है, अंदरूनी ताकत है ये। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: अस्सलाम भाई, नाखून दिखाइए तला भाई, पहले टेबल पर रखिए, नाखून दिखाइए पहले, तो
2: मैंने छिलवा दिए,
0: छिलवा दिए मोची के पास,
2: छिलवा दिए, निकलवा दिए मैंने, खुदवा दिए हथौड़े से, ना होंगे ना मुझे मैनिक्योर पेडिक्योर कराना पड़ेगा।
0: हाँ बात तो सही है, नहीं मैं आज पता है मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा,
2: कर रहा हूं मैं
0: आज लोग जो है सरवर भाई से पूछेंगे, सरवर भाई से नाखून दिखाइए, बात तभी होगी, नाखून दिखाइए उसके बाद बात होगी, उससे पहले बात नहीं होगी।
2: माशाल्लाह सरवर भाई का बोटियां अच्छी है, नाखून दब चुके होंगे बोटियों, वो ढूंढने पड़ेंगे, अरे कहाँ चलेगा भाई।
0: हाँ ये तो क्या बात है, क्या बात है, तो आज जो हुआ आज जो हुआ उस पे क्या कहना है आपका, क्या आपका डर क्या है तला भाई, डू यू हैव अ स्मॉल फियर?
2: यार देखो बहुत सारे, एक तो मैंने ट्रेन वाला बताया तुम्हें ना,
0: हाँ
2: ट्रेन में बैठो विंडो साइड पे, ऐसा लग रहा होता मोबाइल गिर जाएगा अभी,
0: वो डर है भाई,
2: और वो कुत्ते वाला लाजमी है, और एक वो सोते से उठने वाला ना, एक आप सो रहे हो, अंदाजा हो रहा होता है, एकदम लग रहा होता है कि आप गिर रहे हो कहीं पे ना,
0: अरे भाई
2: झटके साहब उठती है ना, वो उसके बाद
0: सबसे सबसे कॉमन सपना है भाई, वो सबसे कॉमन सपना है, वो सभी को आ रहा है, पर वो लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, कुत्ता मेरे पीछे लग गया, आई वाज डूइंग बॉब बॉय ऑल द टाइम, या
2: यार वहाँ की माँ, आई वाज डर गया मैं,
0: Jarian four legs bro, he was running like dar dar dar dar, I was like what is this,
2: कुत्ते ने बोला वो तेरा क्या बचा लिया।
0: अरे यार तला भाई मुझे पता है बहुत काबू करके बोल रहे हैं आप,
2: कुत्ते ने बोला तू तो गया देखे,
0: वो भी नहीं पर हाथ मलते हुए, हाथ मलते हुए कुत्ता थोड़ी देर के लिए बैठा, हाथ मलते हुए अब से तू गया बीठे,
2: कुत्ते ने बोला कि तू गया बीठे, बस यार ये कुछ तो क्यूट बट हॉरिबल,
0: क्यूट बट हॉरिबल,
2: यार कहाँ से आते हो भाई तुम,
0: अरे भाई साहब क्या बात है, इस पे तो पूरा एक शो बन सकता है, इस भाषा पे कोई कैरेक्टर बनाया जा
2: भाई
0: सकता
2: है, तुम्हारी तो रोजी बंदी है भाई, नहीं करो तुम, तुम्हारी रोजी बंदी हमारा क्या, हम तो बोल बाले निकल जाएंगे, तुम तो सड़क पे आ जाओगे,
0: कंट्रोल उदय कंट्रोल,
2: तो फिर तो कुत्ते वाली रहनी और कुछ नहीं,
0: इतना भी सच नहीं बोलना था मिस्टर तला, इतना भी सच नहीं बोलना था। बात तो सही है, इसी बात पे हाथ मिलाइए, अस्सलाम वालेकुम।
2: बाकी भाई वो ये स्टोरी सुनाई ना बड़े, उससे मैं रिलेट करता हूँ, मुझे ना कोल्ड शोल्डर का इशू है 2013 से,
0: अच्छा
2: अभी तक है, मतलब कभी भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता हूँ या रेस्टलेस होता हूँ, काम को थोड़ा सा होता है, तो मुझे कोल्ड शोल्डर का इशू है दोनों शोल्डर का,
0: अरे यार तो इस पे
2: कोल्ड शोल्डर ऐसी चीज है,
0: मेडिकेशन लगता है, थेरेपी लगती है, क्या लगता है, कोल्ड शोल्डर है ना बहुत,
2: नहीं भाई मेडिकेशन भी है वो काम नहीं करती ज्यादातर, फिर थेरेपी लाजमी है, फिर उसके और थेरेपी के साथ इंजेक्शन होते हैं,
0: अरे यार
2: वो लगते हैं, और वो बिल्कुल मस्कुलर इंजेक्शन होता है, आईवी नहीं होते हैं, वो क्या कहते हैं मसल्स में लगते हैं, और जैसे आप चाकू मार रहे हो किसी को ना, वैसे वो पॉइंट पोजीशन बना के मसल फिर आगे पिंच होते हैं वो इंजेक्शन,
0: तो तला भाई बेहतर हुआ है इससे, मतलब क्या क्या सीन रहता है ये थेरेपीज वगैरह आप ले रहे होंगे?
2: यार टाइमली सही हो जाता है, उसके बाद फिर वापस ट्रिगर ऑन हो जाता है ये 8-10 महीने बाद ना, वो हो जाता है ये,
0: अल्लाह
2: ये लॉन्ग टर्म है इसका कोई वो नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है जिस टाइम पे हो रहा होता है, मतलब लिटरली आप बैठ के सो जाओ, मतलब जिस पोजीशन में आपको सुकून मिल जाए ना उस पोजीशन पे सोना पड़ता है, वो वाली सिचुएशन होती है।

0: भाई लगा करे भाई,
1: तो मतलब आप 5 मिनट भी सो, 5 से 10 मिनट भी सोना, ऐसा लग रहा था पता नहीं 4-5 घंटे की नींद कर दी आपने, वो वाला होता है
0: भाई।
1: यूरिक एसिड का ख्याल रखे इंसान ना, यूरिक एसिड का मसला रहता है ऐसा ना, जब यूरिक एसिड बढ़ता है ना।
0: हाँ हाँ ये मैंने
1: तभी
0: यस हाँ यस यस यस दैट्स रीजन भाई। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे और लंबी उम्र दे तला भाई, ऐसी हंसते रहे आप, ये चाहिए अपने को। थैंक यू मेरा भाई, खुश रहे मेरा भाई,
1: अच्छे रहे।
0: Okay, very
1: well. Kutta was horrible, but
0: horrible, very horrible, cute but horrible.
1: Cute but horrible. Because the way he said to the guy, "Dekhi," I was like, "Oh my God, he's so cute, but he might kill me."
0: ठीक है तला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, थैंक यू,
1: अल्लाह
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और तला भाई के बाद एक और कॉल करनी थी मुझे, क्योंकि मुझे बोला था ये कमाल भाई ने, कमाल भाई की थे गाई नहीं, कमाल भाई मैं थानू कॉल कर दा, कमाल भाई एक सेकंड नंबर, हाँ नंबर लग गया है, कमाल भाई कॉल करें भाई, कुछ मैसेज हैं बड़े कमाल के, कह रहे हैं कौन गाने सुनने के लिए रेडियो सुनता है, हम तो सुनते हैं कि कबीर भाई को सुन सके। थैंक यू मेरा भाई, बहुत प्यार, ये मैसेज क्या है, अपने नाम लिखा, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई?
0: बढ़िया कमाल भाई, थोड़ा सा लेट हो गया मैं, लेकिन मैं कॉल तो जरूर करता कमाल भाई, इतना तो आपको पता ही है।
2: नहीं कल भी किया तो कल आपने किए नहीं, तो मोला चलो।
0: अरे कल मैंने किया था, माजरत कमाल भाई, बताइए।
2: कोई बात नहीं, 2 दिन से बैलेंस नहीं है ना भाई, कल कराऊंगा
0: जी, बताइए भाई।
2: बस कहानी तो भाई कल की तो बहुत भयानक कहानी थी भाई, अपने ही देश में आदमी कैदी, इतनी बड़ी जेल।
0: हाँ भाई फैक्ट है भाई, और आज
2: सुना था कोरिया के बारे में, लेकिन जब आपने जो सच्चाई जो बताई ना, तो रोंगटे खड़े हो गए
0: जी भाई, ऐसा ही है भाई, तो इसलिए कल की कहानी ऐसी थी। आज तो मेडिकल वाली लेके आए थे हमने, कहा चलो आज थोड़ा मेडिकल सुनते हैं,
2: बहुत टाइम मेडिकल वाली थी
0: जी जी,
2: और जितनी आप मेडिकल वाली ज्यादातर लेके आ रहे हैं तो समझ लो कि वो दिमाग से ही जो जुड़ी हुई कहानी है, और वाकई में दिमाग इतना खतरनाक भी होता है भाई,
0: सारा खेल खोपड़ी का है मेरा भाई। समझ रहे हैं आप, तो इसलिए जो है
2: कहानी बहुत जबरदस्त, लेकिन बस यही है कि दिमाग को बचा के रखो भाई,
0: बेशक बेशक बेशक बेशक,
2: इस्तेमाल करने से नहीं बचाओ लेकिन लगने से बचाओ।
0: इस्तेमाल करने से परहेज,
2: मतलब निकाल लिया,
0: इस्तेमाल फुल करो, इससे परहेज मत करो, पर संभाल के रखो। थैंक यू
2: भाई, भाई जो आज आज जो प्रिंस भाई ने जो छेड़ा है भाई
0: जी जी,
2: अपने आप पे जो है वो होने लगा भाई, अपने पास भी इतना होना चाहिए
0: है ना, मैं खुद
2: जमा करना चाहिए,
0: मैंने कभी इतना करीब से नाखून के बारे में सोचा नहीं भाई,
2: पैर मालूम है तो पॉलिश पेपर आता रिंगमाल उससे घसना पड़ता मुझे।
0: भाई ये सबका अलग, ये आप अलग नहीं है, प्रिंस भाई अलग है। समझिए बात को, तो पर उन्होंने जो किया बहुत लोगों को रियलाइज हुआ कि अच्छा ऐसा भी होता है, मुझे भी नहीं पता था, मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझे खुद नहीं पता था ऐसा भी हो रहा है। बट समझ सकता हूँ भाई, ये तो आप कराने की सोच रहे हैं, कभी कराएंगे कभी मौका लगेगा तो?
2: नहीं भाई, ऑयल भी लगाता हूँ या क्रीम भी लगाता हूँ, फिर मेरे चेहरे पे दाग पड़ने लगते हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करता भाई।
0: वेरी गुड वेरी गुड कमाल भाई, बस जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं कमाल भाई। बस
2: आज वैसे भी जो है जब से आप सुबह आ रहे हैं भाई, सबके दिन बन जा रहे हैं,
0: थैंक यू,
2: उसी वक्त कट रहे हैं भाई,
0: बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई,
2: वो कैसे भी उठो लेकिन उसके बाद जो फ्रेशनर आ रही है ना भाई,
0: थैंक यू,
2: मजा आ जाती है।
0: थैंक यू भाई, बहुत प्यार कमाल भाई, हमेशा की तरह इतनी इतनी इज्जत देने के लिए, मोहब्बत देने के लिए, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत प्यार आपको
2: भाई। हाँ सुन रहा हूँ कि भाई अभी छुट्टी जाने वाले हैं, ये अगले महीने जाएंगे, उसके बाद फिर मोर इवनिंग में आ जाएंगे
0: जी मेरा भाई, वो पता नहीं भाई वो क्या होगा, मुझे पता नहीं है, अभी मैंने बोल तो दिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी।
2: नहीं भाई आपका ऐसा रहता ही है, आज से नहीं देख रहा हूँ, जब से आप इधर आए हुए हैं ना, सुबह आते हैं उसके बाद जब छुट्टी लेते हैं चले जाते हैं, फिर सामने आ जाते हैं, और नहीं रहेगा तो जबरदस्ती छुट्टी लेके जाते हैं भाई, कि सामने ड्यूटी मिले आपको।
0: अरे नहीं भाई
2: आप भी सोना चाहते हैं।
0: अरे नहीं भाई यार आपने तो बातों में फंसा लिया मुझे, ऐसा नहीं है भाई। पर देखते हैं इंशाल्लाह क्या होगा, अब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अभी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है भाई, देखते हैं अभी कब शाम में क्या सुबह आएगा, ये अपने
2: करके फिक्स में हो जाइए ना भाई,
0: देखते हैं
2: तकलीफ तो है।
0: हाँ मोटी
2: अच्छा रहेगा हम लोग के लिए भी,
0: ठीक है इंशाल्लाह,
2: सबकी सुबह बनी रहे ना भाई,
0: इस बात पे जोर दिया जाएगा कमल भाई, डेफिनेटली। थैंक यू मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं आज, माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक मैंने मैसेज किया है भाई, आप जो हैं छुट्टी पे जाएंगे तो कब आएंगे? भाई मैं सीधा 6 दिसंबर को आऊँगा, 12 अक्टूबर को जाके, सिंस यू आर आस्किंग इसलिए मैंने बता दिया। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, आज की कहानी ने गर्दन तोड़ दी भाई, मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच, गर्दन तोड़ दी, मज़ा आ गया। और डीपी भाई लिखते हैं, सीसीटीवी कैमरा में कौन आता है भाई, इतना बैड लक।

तो किसी का नहीं होगा। ये लोकेशन है जायदा ब्रिज के ऊपर जाने के समय है, सलवा रोड जाने की। आपका जुर्माना आया है भाई साहब। अरे रे रे रे रे रे, हाँ वो जो वाइट लाइन है उसको क्रॉस नहीं करने का। इरफान भाई क्या लिखते हैं, भाई ऐसे तो हमें कभी कभी होता है, ये प्रॉब्लम भी एड्रेस करना चाहिए, नहीं तो सायरेंस बजा दो प्लीज़, आज तो हद ही हो गई यार। बंदा लुकिंग ग्लास कैसे देखता होगा। ये जो है सायरन हम बजा रहे हैं भाई के लिए, इरफान आजमी साहब के लिए, और कहाँ गया हमारा सायरन, गिरा हूटर। आज बहुत लोगों ने अर्न किया है, आपने भी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सारा प्यार। और यूसुफ भाई ने मैसेज किया है, कबीर कब जा रहे, 12 अक्टूबर 12। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैसेज किया है वो साउथ अहमद साहब ने। ओके तो जी, मारे जाने का तो वक्त आ लिया है, उससे पहले कुछ मैसेज ज़रा पढ़ दूँ। हिस्ट्री बहुत अच्छा, स्टोरी बहुत अच्छी थी, थैंक यू। सायरन के बाद बेबी काम डाउन भी चला दूँ। ये बारे से मैसेज आया जुबैर भाई का। जुबैर भाई थैंक यू। और एक भाई ने मैसेज किया, कबीर भाई क्या कह रहे हैं, बीवी का नंबर जब फ़ोन में फ्लैश होता है तो ये डर लगता है। हाई फाइव। एक मैसेज, अच्छा खैरियत से जाके खैरियत से वापस आइए। भाई बहुत सारा प्यार आपको, ठीक है। तो अभी तो खैरियत से जाके खैरियत से कल वापस आएंगे, कल वीकेंड भी है, सो ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी समथिंग रियली रियली स्पेशल। अभी 9 बजे सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar। एंड फॉर नाउ दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ, कल सुबह 6 बजे मिलेंगे। बाकी काम करना, सरोवर भाई आए तो उनसे पूछना, सरोवर भाई नाखून दिखाओ पहले, फिर बात होगी। मिलते सीधा कल सुबह 6 बजे। दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी है। मा सलामा।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: दोस्तों, फायरवर्क्स या फायर क्रैकर्स को लाइसेंस के बगैर यूज करना या अपनी कस्टडी में रखना कानूनन मना है और ये एक जुर्म है जो आर्टिकल नंबर 18 ऑफ लॉ नंबर 7 ऑफ 2020 ऑन फायरवर्क्स के तहत पनिशेबल है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स फायरवर्क्स को बिना इजाजत इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना हत्ता के जेल तक की सजा लग सकती है। आपकी अवेयरनेस और कानून की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए भी बेहद अहम है। फायरवर्क्स जाहिरी तौर पर फन लगते हैं लेकिन बिना कंट्रोल के वो पब्लिक सेफ्टी रिस्क भी बन सकते हैं, इसलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रॉपर लाइसेंस लेना लाजमी है। वजारत दाखिला का कहना है कि कानून का एहतराम करना हम सब की जिम्मेदारी है ताकि हम अपनी कम्युनिटी को सेफ और रिस्पॉन्सिबल बना सकें।

0: FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
2: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: में अरेबियन ट्रैवल मार्केट 2026 के मौके पर रशिया और सीआईएस मार्केट के नुमाया टूर ऑपरेटर टीटी ट्रैवल एलएलसी फन एंड सन के साथ एक स्ट्रेटेजिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे का मकसद सियाहती तआवुन को फरोग देना और कतर को इन मार्केट में मजीद नुमाया बनाना है। ओल्ड दोहा पोर्ट 23 से 26 सितंबर तक मुनक़द होने वाले मोनाको यॉट शो 2026 में शिरकत करेगा, जहां वो मुसलसल दूसरे साल शो के अपर डेक लॉन्च का रस्मी स्पॉन्सर होगा। इस शिरकत का मकसद दोहा पोर्ट की बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाइश और मैरीटाइम टूरिज्म के फ़रोग को मजबूत बनाना है। कतर डायमंड एक्सचेंज ने इटली के डायमंड बोस बोसा डेमांटी डी इटालिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए हैं, जिसके जरिए दोनों डायमंड एक्सचेंज के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत कायम की गई है। ये मुआहदा इटली के शहर में 4 से 7 सितंबर 2026 तक मुनक़द CIBGO सीनेटरी कांग्रेस के दौरान तय पाया गया। वाज़े रहे कि इस कदम से डायमंड ट्रेड और तिजारती तआवुन को मजीद फरोग मिलने के तवक्का की जा रही है। और कतर स्टॉक एक्सचेंज का जनरल इंडेक्स ट्रेडिंग सेशन के अख्तिताम पर 50.18 प�या 0.51% के साथ 9773.75 प�(† पर बंद हुआ। सेशन के दौरान तमाम शोबों में 17,458 ट्रांजैक्शंस के नतीजों में 12 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ और 32 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी आई, जबकि 9 कंपनियों ने अपनी साबिका क्लोजिंग प्राइसेस को बरकरार रखा। ये थी अभी तक की बिजनेस न्यूज अपडेट्स, आइए अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज का।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद मोहम्मद अमीन।
2: अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स हेडलाइंस में जापान में जारी आइची नागोवा शहर में एशियन गेम्स के मर्दों के फुटबॉल टूर्नामेंट में जनूबी कोरिया ने मंगल को अपना पहला मैच कतर के खिलाफ 1-1 में 4 गोल से जीता। इस कामयाबी के साथ जनूबी कोरिया ने मुसलसल चौथी गोल्ड मेडल जीतने की अपनी मुहिम का शानदार आगाज किया। AFC चैंपियंस लीग फुटबॉल में सऊदी अरब के अल हिलाल ने कतर के अल गराफा को 1-2 में 2 गोल से शिकस्त दी। AFC चैंपियंस लीग फुटबॉल के सेकेंड टीयर कंपटीशन में आज कतर के अल रयान क्लब का सामना जॉर्डन के अल फैसली क्लब से होगा। दो UEFA चैंपियंस लीग फाइनल म्यूनिक के अलायंस एरिना में खेला जाएगा, जबकि 2029 चैंपियंस लीग का फाइनल बार्सिलोना में होगा। तीन मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में इंडिया ने मंगल को अफगानिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसला को बरतरी हासिल कर ली। केन्या के दारुल हुकूमत नैरोबी शहर 2029 वर्ल्ड आउटडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने मंगल को इस फैसले का ऐलान किया है। और इंग्लिश फुटबॉल लीग कप के में आर्सेनल और लिवरपूल चौथे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आर्सेनल ने इप्सविच टाउन को 2-1 में 4 गोल से और टॉटनहम हॉटस्पर को 1-1 में 3 गोल से शिकस्त मिली। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही, आप सुन रहे FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: FM 107 पर न्यूज हेडलाइंस विद मोहम्मद नफीस।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। समीन, आज की दुआ है मूसा अलैहिस्सलाम की, जो हमें जहालत और नादानी से बचने की तलकीन करती है। ये दुआ मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कही जब उनकी कौम ने गायें ज़बह करने के हुक्म के बारे में गैर जरूरी शुरू कर दिए और जिद में आ गए। उस मौके पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, अऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अन अकून मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहिलों में शुमार हो जाऊँ, यानी बेवकूफ़ी, जिद और नाफरमानी करने वालों की राह इख्तियार करूँ। इस दुआ में इस बात की तरफ इशारा है कि जहालत सिर्फ इल्म की कमी नहीं बल्कि हक वाज़ह होने के बावजूद हट धर्मी करना और अल्लाह के हकाम के सामने सरकशी करना भी जहालत है। तो यूं इस दुआ के कई अहम पहलुओं में एक तो ये है कि अल्लाह की पनाह सबसे बड़ी हिफाजत है। मजीद, जहालत सिर्फ लाइल्मी नहीं बल्कि जिद, सरकशी और बिलावजह सवालात भी जहालत में शामिल हैं। इसी तरह इल्म के बावजूद दुआ ज़रूरी है, उसी तरह मुसलमान को जहालत से दूर रहना चाहिए। इस तरह यह दुआ हमें यह सबक देती है कि हमें हर हाल में अल्लाह से यह दुआ करते रहना चाहिए कि वह हमें जहालत, हट धर्मी और नाफरमानी से बचाए और इल्म, हिकमत और इताअत की राह पर कायम रखें। आइए हम सब मिलकर यह दुआ पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107Qatar। दिल से देसी।
3: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रैवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स

0: कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर्स यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन। नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट। पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान। बनिए कल का चेहरा आज ही। सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर। दिल से देसी। स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर। आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
2: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर। यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107। दिल से देसी।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107। दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों फुटबॉल में हैट्रिक करना किसी भी स्ट्राइकर के लिए खास अचीवमेंट होती है। एक मैच में 3 गोल स्कोर करना ही मुश्किल काम है, लेकिन सोचिए अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ चंद सेकेंड्स के अंदर 3 गोल्स कर दे। या आज हम आपको एक ऐसे फुटबॉलर की कहानी सुना रहे हैं जिन्होंने फुटबॉल की तारीख में सबसे तेज हैट्रिक का रिकॉर्ड अपने नाम किया। नाम है एलेक्स टोर। इंग्लैंड के एमेच्योर फुटबॉलर एलेक्स टोर के नाम फुटबॉल की तारीख की सबसे तेज तरीन हैट्रिक का रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड 8 अप्रैल 2013 को बनाया गया जब टोर अपनी टीम रॉसन स्प्रिंग की तरफ से मिडहोल संडे लीग में विन गार्डन्स के खिलाफ खेल रहे थे। मैच शेफील्ड के लोकल संडे लीग फुटबॉल का था। रॉसन स्प्रिंग ने इस मैच में विन गार्डन्स को 1 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। लेकिन मैच की सबसे खास कहानी टीम की 7 गोल वाली विक्ट्री नहीं बल्कि टोर के वो 70 सेकेंड्स थे जो फुटबॉल की रिकॉर्ड बुक्स का हिस्सा बन गए। टोर ने मैच के 11th मिनट में पहला गोल स्कोर किया। अभी ऑपोजिशन को संभालने का मौका ही नहीं मिला था कि टोर ने सिर्फ 30 सेकेंड बाद यानी 11 मिनट्स और 30 सेकेंड्स पर दूसरा गोल कर दिया और फिर आया वो लम्हा जिसने इस हैट्रिक को हिस्टोरिक बना दिया। सिर्फ 40 सेकेंड बाद 12 मिनट और 10 सेकेंड्स पर टोर ने अपना तीसरा गोल स्कोर किया, यानी 3 गोल सिर्फ 70 सेकेंड्स में। सोचिए एक तरफ डिफेंडर्स को पहले गोल के बाद अपनी स्ट्रेटेजी समझने का वक्त नहीं मिला और दूसरी तरफ टोर मुसलसल अटैक करते रहे।

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये फुटबॉल में फास्टेस्ट हैट्रिक का रिकॉर्ड है, लेकिन एलेक्स तोर के लिए ये कोई पहली एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी। इस हिस्टोरिक हैट्रिक

लगाया जा सकता है लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है क्या प्रोफेशनल फुटबॉल में भी किसी खिलाड़ी ने इतनी तेज तरीन हैट्रिक की है वेल इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें तो इस कैटेगरी में रिकॉर्ड सादियो माने के नाम है 2015 में साउदम्पटन की तरफ से खेलते हुए माने ने एस्टन विला के खिलाफ सिर्फ 2 मिनट और 56 सेकंड्स में 3 गोल्स स्कोर किए माने की परफॉर्मेंस प्रीमियर लीग की तारीख में एक लेजेंडरी मोमेंट बन गई उन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल के हाईएस्ट लेवल पर अपनी इनक्रेडिबल फिनिशिंग स्पीड और मूवमेंट का सबूत दिया लेकिन एलेक्स तोड़ का रिकॉर्ड एक डिफरेंट वजह से खास है उनकी 72nd हैट्रिक एक एमेचर संडे लीग मैच में हुई थी और इसीलिए दोस्तों ये कहानी हमें याद दिलाती है कि फुटबॉल में कभी कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोमेंट्स किसी बड़े स्टेडियम या इंटरनेशनल टूर्नामेंट में नहीं बल्कि लोकल फुटबॉल ग्राउंड पर भी हो सकता है एलेक्स तोर शायद दुनिया भर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो लियोनल मेसी या सादियो माने जैसी शोहरत ना रखते हों लेकिन फुटबॉल रिकॉर्ड्स में उनका नाम एक खास वजह से हमेशा जिंदा रहेगा 3 गोल्स 70 सेकंड्स और फुटबॉल की तारीख का एक अनफॉरगेटेबल रिकॉर्ड दोस्तों फुटबॉल में अक्सर कहा जाता है कि रिकॉर्ड्स टूटने के लिए बनाए जाते हैं लेकिन एलेक्स तोर का 70 सेकंड रिकॉर्ड अब तक इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई स्ट्राइकर उनसे भी तेज 3 गोल्स स्कोर कर सके सवाल यह है कि क्या कोई फुटबॉलर कभी 70 सेकंड से भी कम वक्त में हैट्रिक कर पाएगा यह रिकॉर्ड शायद टूट जाए लेकिन जब तक नहीं टूटा एलेक्स तोर का नाम फुटबॉल की फास्टेस्ट हैट्रिक के साथ जुड़ा रहेगा उम्मीद है आपको आज का हमारा ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा फुटबॉल के मैदान पर कुछ रिकॉर्ड्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते वो ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो खेल की तारीख का हिस्सा बन जाते हैं एलेक्स तोर की 72nd हैट्रिक भी ऐसा ही एक मोमेंट है अगली बार फिर एक नए और दिलचस्प स्पोर्ट्स अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत खुश रहें सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें

0: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
1: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूजडे एट 3 PM, एट 3 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
3: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
4: Assalamualaikum, welcome to Tech Update. मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड अब वक्त है जल्दी जल्दी अपडेट देने का. तो मैं आपको दो वेबसाइट्स बताऊंगा आज जो बड़ी कमाल की हैं, एंड उनसे आपका काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है. बस आपको सब्र की जरूरत है. अगर आपके पास सब्र है तो बता देता हूँ आपको. शुरू करते हैं पहली दो पावरफुल वेबसाइट से और फिर आऊंगा खबरों पे, बिकॉज व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस आपके लिए मुझे लगता है कि एप्पल का आईफोन रिलीज हो चुका होगा. बट लेट्स बिगिन विद द वेबसाइट्स. सबसे पहले बात करूंगा एक वेबसाइट की जिसका नाम है QWEN, क्वेन. ये चाइनीज वेबसाइट है, AI है. वैसे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे चाइनीज ही निकल आते हैं. QWEN, अगर आपको इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन देखना है और आपको जल्दी करना है, मेरा मतलब फ्री में करना है मोस्टली, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा सब्र चाहिए, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इमेज जनरेशन में, लेकिन काफी सिनेमेटिक काम हो जाएगा. इमेज जनरेशन से लेकर वीडियो जनरेशन दोनों यहाँ पर होते हैं. पर अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, आपको सब्र चाहिए. अगर आपके अंदर सब्र है तब तो इस AI पे जाइए, आपका काम हो जाएगा. QWEN, क्वेन या क्वेन, ठीक है. आगे बढ़ते

0: करते हैं अगली वेबसाइट की तरफ। टैक अपडेट। अगली वेबसाइट का नाम है, इसको अब मैं कैसे पढ़ूं, हुन वन वीडियो, मैं स्पेल आउट कर देता हूं, HUNYUAN, हुन यूएन, HUNYUAN AI। अब ये वाला AI क्या करता है, ये टेक्स्ट टू वीडियो और इमेज टू वीडियो क्रिएट करता है। अगेन थोड़ा टाइम लगेगा जनरेशन में, लेकिन जो रिजल्ट है वो बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही कमाल का निकलेगा। तो अगर आपको जल्दी नहीं है और आपके पास है टाइम, आप आराम से बैठ के निकाल सकते हैं इमेज और वीडियो, तो फिर आपके लिए ये बनी है, एंड गो फॉर इट। ठीक है, अब जरा अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ना चाहूंगा, जिसका नाम है, मैं आपका इसका नाम मैं कैसे बताऊं आपको, ओके लेट मी ट्राई, osrisai.live। दोबारा ट्राई करता हूँ, अब मैं स्पेल आउट कर देता हूँ, osrisai, osrisai.live। जब इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने पूरा ग्लोब आ जाएगा, उसमें कई सारी एक्टिविटीज होंगी, उसमें कुछ एक्टिविटीज ब्लू मार्कर से होंगी, ग्रीन मार्कर से होंगी, रेड मार्कर से होंगी, इसमें सब बताएगा आपको। और आप जो मेजर सैटेलाइट जो हैं वो भी आप इसके जरिए देख सकते हैं, आप सीसीटीवी कैमरास कई जगहों पे जो ओपन एआई एक्सेसिबल है वो आप देख सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की और बहुत ही यूनिक किस्म की वेबसाइट है, सो ट्राई दिस वन आउट, आई एम प्रीटी श्योर आपको कुछ अलग किस्म की वेबसाइट मिलेगी, टाइम पास के लिए आराम से देख सकते हैं आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से खबरों की तरफ। तो टेक न्यूज में सीधी सीधी बात ये है, सब सारे के सारे टेक आपको महंगे होते हुए नजर आएंगे। आईफोन वालों ने यानी एप्पल वालों ने बहुत टाइम से कोशिश करी थी कि वो अपने जो मेजर जो फ्लैगशिप फोन है उसके प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, स्पेशली प्रोज के और प्रो मैक्स के, वो $1000 के आसपास रहेगा, यानी कतरी रियाल में बात करूं तो वही 3500-4000 के आसपास रहेगा। पर अभी वो थ्रेशहोल्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है विद द लॉन्च ऑफ एप्पल फोल्ड एंड एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड। और जैसे मैंने कहा था, वही रिजल्ट आया जो एप्पल का फोल्ड फोन है उसका जो रिव्यू है वो ऐसा ही है जैसा मैंने सोचा था। उसमें एक हद तक मेहनत की जा सकती है और उसमें सैमसंग ये वॉर जीत चुका है अगर फोल्डेबल्स की बात की जाए, और फॉलोड बाय उसके बाद जो नंबर आएगा हुआवी का आएगा। अभी एप्पल, आई डोंट थिंक सो एक आम आदमी इतना ज्यादा दीवाना होगा एप्पल के फोल्ड के लिए, हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है उस पर, बट द प्राइसिंग ऑन इट इज अ लिटिल टू मच। ठीक है, वो बात दूसरी है, बट जब पूरी तरह से मैं रिव्यू करूंगा एप्पल का तो बहुत खुल के करूंगा, वो आप सुनेंगे कुछ दिनों में। बट इसके अलावा जो बाकी टेक है वो महंगा होता चला जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये टेक अभी नहीं लेता, सस्ता हो जाएगा जब मैं ले लूंगा, तो आई हाईली डाउट दैट। हम उस जमाने में जी ही नहीं रहे जहां पे चीज अभी आई है तो सही है, बाद में सस्ती होगी तो ले लेंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी गैजेट्स ये महंगे ही होने वाले हैं अभी, बिकॉज ऑफ द रीजन जो मैंने आपको बताया, मेमोरी का खर्चा, चिप्स का खर्चा। ऑलराइट, सो ये थी टेक अपडेट, मैं दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिए, आप बेहद बेहद जरूरी हैं।
1: नया जमाना और अनप्लग गाने, दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें, छोटी सी कहानी हो या तरक्की के किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से।
2: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद आरजे फजील, संडे टू थर्सडे 6 PM टू 7 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
4: दिल से देसी।
5: स्कैम अलर्ट।
6: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको हर रोज इत्तला करता रहता हूं, बताता रहता हूं। और आज का एक ऐसे ही जो स्कैम है या कहें फ्रॉड है, वो बहुत ही चालाकी से भरा हुआ है। ऐसे स्कैम इतने ज्यादा हो गए कि लोगों को सिर्फ मिलियन का नहीं बल्कि बिलियन का नुकसान हो रहा है, और ये क्यूमुलेटिव यानी कि मिलाकर इतना नुकसान है, और ये रिपोर्ट भी आजकल सोशल मीडिया पे आपको पढ़ने को मिलती होगी। और ये है स्कैम, वर्कप्लेस गिफ्ट कार्ड स्कैम। कैसे काम करता है सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। वर्कप्लेस गिफ्ट कार्ड स्कैम का जो मेन मकसद है वो कॉर्पोरेट या किसी भी ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज को अपना शिकार बनाना है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स कंपनी के हायरार्की या सीनियोरिटी लेवल का पूरा फायदा उठाते हैं।

हैमर सबसे पहले आपके ऑफिस के मैनेजर, बॉस, सीईओ या किसी भी बहुत ही क्लोज कोवर्कर का नाम और डिटेल्स ना वो पता करते हैं, फिर वो एक नया अनजान ईमेल आईडी या फोन नंबर यूज करके आपको टेक्स्ट या मेल भेजते हैं, जिसमें डिस्प्ले नेम आपके उसी बॉस या मैनेजर का होता है जो आपके असली में बॉस है। जब आप मैसेज देखते हैं तो आपको लगता है कि आपके सीनियर लेवल के बॉस हैं और आपको याद किया गया है। मैसेज में स्कैमर्स बहुत ही चालाकी से एक झूठी स्टोरी बनाते हैं। वो लिखता है कि मैं अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, क्लाइंट प्रेजेंटेशन में बिजी हूँ, कॉल नहीं उठा सकता, मुझे तुमसे एक बहुत अर्जेंट छोटा सा फेवर चाहिए। इसके बाद वो आपसे कहते हैं कि कंपनी के किसी बड़ी क्लाइंट को गिफ्ट देने के लिए या फिर किसी एम्प्लॉई रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए मार्केट से या ऑनलाइन जाकर महंगा गिफ्ट कार्ड खरीदो क्लाइंट के लिए। तो आपसे वो कुछ खरीदने को नहीं कहता, लेकिन गिफ्ट कार्ड खरीदने को जरूर कहता है, क्योंकि गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है कैश के लिए। वो आपसे कहेंगे कि उन गिफ्ट कार्ड को खरीद कर उनके पीछे का स्क्रैच ऑफ पिन जो है वो नंबर तुरंत टेक्स्ट मैसेज कर दो और फोटो खींचकर मुझे या तो भेज दो। वो आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जैसे ही उनकी मीटिंग खत्म होगी कंपनी आपके इस पर्सनल खर्चे को तुरंत रिइंबर्स कर देगी, क्योंकि एम्प्लॉयज अपने बॉस को मना नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि ये ऑफिस का काम है। वो जल्दी में अपने पास से हजारों रुपए का खर्च कर देते हैं, ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं और पीछे का जो कोड है वो बता देते हैं, पिन बता देते हैं, और हैकर के पास वो पिन जब पहुंच जाता है गिफ्ट कार्ड के जरिए तो वो गिफ्ट कार्ड को रिडीम करके गायब हो जाते हैं। और बाद में रियल बॉस से पूछने पर पता चलता है कि उन्होंने तो ऐसा कोई मैसेज किया ही नहीं है। लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए सॉल्यूशन है, कुछ चार ये सॉल्यूशंस हैं जो मैं बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आपका कोई स्टोर है, कोई ऑफिस है, किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, इस तरह के फ्रॉड से आप बच सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। ये मैंने आपको हर तरह के या नए जमाने के जो नए स्कैम होते रहे हर बार बताया है। अगर आपको ऐसा कोई भी मैसेज आता है तो उनके पर्सनल टेक्स्ट या अनजान ईमेल का रिप्लाई करने के बजाय ऑफिस के ऑफिशियल कम्युनिकेशन टूल जैसे कि यू नो माइक्रोसॉफ्ट टीम है, स्लैक है, ऑफिशियल कंपनी की ईमेल्स एड्रेस है, ये सारे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बॉस को पर्सनल कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। कई बार मैसेज भी यानी कि पर्सनल मोबाइल भी उनका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो आप डायरेक्ट कॉल करें। डायरेक्टली जब आप मैसेज करेंगे तब वहां से आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा तरीका है कंपनी पॉलिसी को समझें। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा कर रखें, कोई भी जेन्युइन और लीगल कंपनी कभी भी अपने किसी एम्प्लॉय को टेक्स्ट मैसेज पर बिजनेस का सामान अपने पर्सनल पैसों से खरीदने के लिए नहीं बोलता है। ऑफिस के खर्चे के लिए हमेशा कॉर्पोरेट कार्ड या ऑफिशियल प्रोसीजर होता है। उसके अलावा तीसरा तरीका है पिन नंबर सीक्रेट रखें। अगर आपने खुदा ना खास्ता गिफ्ट कार्ड खरीद भी लिया है ना, एक बार अगर आपने स्क्रैच ऑफ पिन की फोटो किसी को भेज दी तो समझ लीजिए आपका पैसा चला गया। इसलिए कभी भी किसी को या किसी के कहने पर भी पिन नंबर टेक्स्ट ना शेयर करें, अगर आपने गिफ्ट कार्ड खरीद भी लिया है तो। चौथा तरीका है एचआर को रिपोर्ट करें। ऐसे किसी भी सस्पिशियस ईमेल या एसएमएस को तुरंत अपनी कंपनी के आईटी सिक्योरिटी सेल या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करें, ताकि पूरी कंपनी को अलर्ट किया जा सके। अगर ऐसा है कि आपको मैसेज किया गया है तो आम तौर पे सिर्फ आपको नहीं, आपके जैसे कंपनी में और भी एम्प्लॉयज को आम तौर पे टारगेट किया जाता है, और लोग भी लिस्ट में स्कैमर्स के होते। तो दोस्तों इसी के साथ उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा कि आजकल के स्कैमर्स, फ्रॉडस्टर्स किस तरह से काम कर रहे हैं और आपको स्कैम करने के लिए तैयार बैठे हैं। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल नए जमाने के एक नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी स्कैम अलर्ट।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज हम बात करेंगे अर्निंग ग्लोबली एंड स्पेंडिंग लोकली। कितना इंटरेस्टिंग साउंड करता है ना। देखिए, आज के मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड में एक नया लाइफस्टाइल बड़ी तेजी से पॉपुलर हो रहा है, जिसे हम और आप अडॉप्ट भी कर रहे हैं। इस लाइफस्टाइल को कहते हैं डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल उस लाइफस्टाइल की तरह है जो इंटरनेट की मदद से रिमोटली काम करता है और किसी एक ऑफिस या सिटी तक महदूद भी नहीं रहता। वो दुनिया के किसी भी मुल्क से अपना काम कंटिन्यू कर सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को अक्सर अर्निंग ग्लोबली स्पेंडिंग लोकली के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स या फिर कंपनी से इनकम अर्न करते हैं, लेकिन अपने डेली एक्सपेंसेस उस जगह के मुताबिक करते हैं जहां आप रह रहे होते हैं। डिजिटल नोमैड बनने का सबसे बड़ा फायदा फ्रीडम है। पिछली जनरेशंस को ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन आज इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से काफी जॉब्स ऑनलाइन हो चुकी हैं। फ्रीलांस राइटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डिजिटल मार्केटर्स, ऑनलाइन टीचर्स और कंटेंट क्रिएटर्स दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा यूरोप या अमेरिका की कंपनी के लिए काम कर रहा हो और किसी कॉम्पिटिटिव अफोर्डेबल कंपनी में रह रहा हो, तो उसकी सेविंग पोटेंशियल काफी ज्यादा बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पे, अगर कोई फ्रीलांसर एक इंटरनेशनल क्लाइंट से $3,000 पर मंथ कमाता है और उसे ऐसी सिटी में रहने का मौका मिलता है जहां लिविंग कॉस्ट रिलेटिवली कम है, तो उसके पास ज्यादा पैसा सेव करना और इन्वेस्ट करने का चांस बढ़ता है। और शायद इसी वजह से बहुत से डिजिटल नोमैड्स ऐसे मुल्क को पिक करते हैं जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो और इंटरनेट फैसिलिटीज अच्छी हो। लेकिन ये लाइफस्टाइल सुनने में जितना अट्रैक्टिव है, उतना ही फाइनेंशियल प्लानिंग भी रिक्वायर्ड करता है। सबसे पहला चैलेंज जो इसका है वो है इरेगुलर इनकम। ट्रेडिशनल जॉब्स में तो हमारी आपकी सैलरी फिक्स्ड होती है, लेकिन फ्रीलांसिंग या फिर रिमोट प्रोजेक्ट्स में इनकम हर मंथ डिफरेंट हो सकती है। कभी कम कमाया तो कभी ज्यादा कमाया, और शायद कभी कुछ भी नहीं। इसलिए ये लाइफस्टाइल जो है वो बजटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल हमें और आपको सिखाता है। देखिए, बजटिंग का मतलब है हम अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को प्लान करें। स्मार्ट डिजिटल नोमैड्स हर मंथ अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस, जैसे रेंट है, आपका फूड है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, इंटरनेट है, लोग अपने फाइनेंसेस को दुनिया के किसी भी हिस्से से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ सिक्योरिटी का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन, ये तो आप जानते हैं। बस आपसे यही आखिर में जाते जाते कहूंगी कि डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल ट्रैवलिंग का नाम नहीं है। असल सक्सेस स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है। अगर कोई पर्सन ग्लोबली इनकम अर्न करे, लोकल लेवल पर वाइजली स्पेंड करे, रेगुलर सेविंग्स करे, इमरजेंसी फंड मेंटेन करे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करे, तो फाइनेंशियल फ्रीडम की बहुत करीब होता है। लिहाजा डिजिटल नोमैड फाइनेंस का जो बेसिक रूल है वो ये है कि अर्न स्मार्ट, स्पेंड वाइजली, सेव कॉन्स्टेंटली एंड इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर। जो लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ रिमोट लाइफस्टाइल को बैलेंस कर लेते हैं, वो सिर्फ दुनिया एक्सप्लोर नहीं करते बल्कि अपनी वेल्थ भी स्टेडली बिल्ड करते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नाजी और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। एक नई टर्म आपने सीखी ली और किस तरह से उसको समझा है और कितना अप्लाई करने वाले हैं आप, ये मुझे बताइएगा जरूर 666-22-107 पर। फिलहाल आपसे इजाजत लूंगी, कल होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
2: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। ان کی قربانیاں صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے Stories of Prophets Stories of Prophets جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں ان کی محنت ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں
3: سنیے شو آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر بدھ دوپہر ایک بجے سے اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی

0: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाया, थमने ना पाया। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक।

0: की वजह से ऐसा हो गया, ठीक है, और बुरा हो गया। मैंने समझाया था ना उसको ऐसा नहीं करने का, तो मतलब गलत हो गया तो हमारे ऊपर, और सही हो गया तो वो अपना खुद क्रेडिट ले जाते। तो बेहतर ये है कि लोगों को जो कह रहे हैं कहने दो, जो मेरा मन है वो मुझे करना है। मैं किसी को अच्छे या बुरे का क्रेडिट देना ही नहीं चाहता हूँ अपनी लाइफ में।
1: सही हो गया,
0: सीधा सही हो।
1: जी बिल्कुल सही, मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: जी अच्छा हो गया। और दूसरी चीज क्या है कि मैटर ये भी आता है ना कि आप किसी के नजर में बहुत अच्छे हो तो वो आप आपके गलत काम को भी नजरअंदाज कर देगा, ठीक है, उसको भी जो है अच्छाई लगेगी। और दूसरी चीज क्या है, जिसकी नजर में आप गलत हो, अगर अच्छे काम भी आप करोगे ना तो बाई मिस्टेक हो गया होगा, गलतियां तो वो ढूंढने पे लगे रहते हैं। लेकिन अगर अच्छा कुछ कर दिया या किसी के मुंह से उन्होंने सुन लिया फला आदमी ने ऐसा अच्छा किया था, बाई मिस्टेक कर दिया होगा, वरना वो करता थोड़ी ना।
2: उसको क्रेडिट नहीं देना उसी मेहनत का।
0: उसको नहीं देना कुछ, मतलब अच्छा करा तो उसको सपोर्ट नहीं करना। हो सकता है आज तक उसका गलत किया, आगे चल के अच्छा करेगा, ठीक है। जो भी गलतियां हैं तो लोगों के हनत से कोई फायदा नहीं है। और अपने को सुनना, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकालना, मुझे जो करना है मैं अपना काम करता रहूंगा। सक्सेस हो तब भी मैं अपने खुद का क्रेडिट लेना चाहता हूँ, अगर मैं सक्सेस नहीं भी हुआ तब भी मैं अपने आप को, मेरा था, मैंने कुछ भी बर्बाद किया अच्छा किया ये मेरे ऊपर।
2: हाँ, ये बड़े मजे की बात है,
1: ये सही बात है,
0: सीधी बात है। क्योंकि जिसको जो है अपना मेरे अपने मेरे साथ हो चुका है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
2: मतलब घाटा हमारा, नुकसान हमारा, लेकिन लोगों को ये करा है। हमने देखो, हमने तो इसे मना किया था कि फलानी जगह फलाने मुल्क ना जाना, ये फिर भी चला गया। अब काटे सख्ती, अरे भाई वो अपने पैसे से गया था।
0: मैं बिजी हुआ क्या, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया इंडिया के अंदर, ठीक है। बिजनेस जो है एक दिन में नहीं सेट होता है, सालों लग जाते हैं आदमी को करने के लिए, ठीक है। लेकिन गलतियां अपनी भी रही होंगी जिसकी वजह से थोड़ा सा लॉस, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ आना पड़ा। अब घर वाले खुद बोलते हैं कि मैंने तो मना किया था, पैसा लगा के बर्बाद कर दिया सारा। किसी को सपोर्ट नहीं करने करना है, लेकिन जो है ताने देने हैं बस। अपनी जगह खुश है, मैं अपनी जगह खुश हूँ, मुझे कोई मैटर है। सबसे ज्यादा अपने ही लोग करते हैं जो बहुत ज्यादा करीबी होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जो कह रहा है कहने दें, वो ज्यादा बेहतर है, वो अपनी जगह अच्छा है। मैं अपनी जगह अच्छा हूँ, सारा कुछ मुझे करना है, फैमिली मुझे देखनी है, मुझे किस हिसाब से अपने घर को चलाना। जब मैं किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करता हूँ तो मुझे मेरे मैटर में भी कोई इंटरफेयर ना करे तो वो बेहतर रहता है।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
2: और जो इंसान इस चीज को दिमाग में रखता है ना, वो कामयाब भी हो जाता है।
0: सही चीज यही है कि जितना टाइम हम उस चीज को सोचने में लगा देंगे ना, उतने टाइम में हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करके दिखा सकते हैं।
2: सही।
0: हमें किसी की बात का जवाब देने से बेहतर है, उसने ये कहा मैंने ये जवाब दे दिया तो वो जवाब सही नहीं है, उसको थोड़ा सा जो है कामयाब होकर दिखाओ तो उसको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा इस चीज का।
1: बिल्कुल सही, मतलब वाकई सही बात है कि अगर आपने जवाब ही देना है तो जवाब ऐसा दें कि अगले की बोलती बंद हो जाए।
2: हाँ, शट अप कॉल होती है ना।
1: बिल्कुल सही जी। भाई हैं या चले गए?
0: जी
1: जी, अच्छा चले जी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपकी कॉल करने का, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह
2: हाफिज़।
1: अच्छा जी, तो आसिफ हमारे साथ है और कुछ मैसेजेस की तरफ भी नजर डाल लेते हैं, लोग क्या कहेंगे पे, लोग क्या
2: लोग क्या कह रहे हैं।
1: हाँ, अच्छा इससे पहले कि मैं जाऊं उधर, अब हमारे पास आ रही है एक और कॉल अली रजा की सऊदीया से, तो वो भी ले लेते हैं फिर मैसेज पढ़ लेती हूँ।
2: सही। अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम सलाम, सफा एंड नवीद, कैसी हैं आप लोग?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। भाई आपकी क्या हाल हैं?
3: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे लगता है सऊदी अरब से एक ही कॉल आती है.
1: हाँ अभी तो फिलहाल एक ही आ रही है तो आप पहचाने रहते हैं फौरन से.

0: जल्दी से मैं कुछ मैसेजेस पढ़ देती हूँ, फिर मैसेजेस रह देंगे, फिर हम गाने की तरफ बढ़ जाते हैं। मुबीन बुखारी के बहुत सारे मैसेजेस, अस्सलाम वालेकुम और हम लोगों का हालचाल पूछा हुआ है। इसके साथ ही जी हमारे पास मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप लोग, और कहते हैं अच्छा है आज का टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जैसे कि माविश ने कहा कि ये हर इंसान सोचता है उस तरह से ना, कि मतलब अगर हम अपने घर चले गए, छोड़ के चले गए, मैं भी नहीं जाना चाहती, जो सीरियस सी बात है, तो उसमें मतलब आपको जब रिश्तेदारों के करीब रहते हो ना, तो मतलब क्या है ना कि आप ना चाहते हुए भी उनको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर मतलब कोई अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, कोई चीज है, तो आप ना चाहते हुए भी अवॉइड नहीं कर सकते। लोग आएंगे और अपनी अपनी राय देंगे, उससे बेहतर होता है या तो आपको बहुत ही बुरा बन के रहना पड़ेगा, तो मतलब ये वाला सीन होता है। मतलब
1: हमारे अब्बा तो बड़ी सख्त शट अप कॉल देते थे, मुझे याद है मेरी बहन ने जब मेडिसिन पढ़ा था तो उस जमाने में खानदान वाले आके कहा करते थे कि भाई बेटी को एजुकेशन में पढ़ाओगे और बेटी की तनख्वाह खाओगे।
0: मैं ये बात क्यों कह रही हूँ कि हमारे साथ ये हुआ कि हम लोग कुवैत में थे, फिर उसके बाद हम लोग जब वापस आए ना, तो एक जो बंदा हर वक्त का बाहर रहता हो ना, तो वो फिर जब वापस आता है बहुत सालों के बाद, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। तो वहाँ पे मैंने देखी है शुरू में कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से मतलब ना एक अंदाजा हो जाता है आपको कि यार मतलब लोग होते क्या है, उनकी हकीकत क्या होती है। तो मतलब एक आप ना एक बड़े होने के नाते जो आप घर पे आप सबसे बड़े हो, तो आप सबसे ज्यादा चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हो। तो उसके बाद मैंने ये अंदाजा लगाया कि एक दफा अगर आप बाहर निकल जाओ ना, तो फिर पलट के वापस ना जाओ, कोशिश करो कि ना जाओ, दूर रहो, जितना दूर रह सकते हो दूर रहो लोगों से।
1: हमारे अब्बा तो बिल्कुल ऐसे थे, हमारे अब्बा कहते चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे बच्चों ने जो करना है। मैं और खानदान का पहली डॉक्टर मेरी बहन थी, फिर उसी से इंस्पायर होकर ना फिर आगे लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और ये करना। वो एक कहते हैं ना, वो एक चेन ब्रेकर होता है। वो चेन ब्रेकर अगर किसी पॉजिटिव चीज के लिए आपको बुरा बनना पड़े ना, तो वो चीज मैंने अपने वालिद साहब से सीखी कि नहीं बन जाओ फिर।
0: हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा कभी कभी मैं सोचता हूँ ज्यादा केयर नहीं करता, जो मुझे लगता है मैं उसमें कंफर्ट अगर मुझे हो तो मैं वो करता हूँ, मेरे हिसाब से जीता हूँ, बट वी कांट डिनाई एट ऑल टू दिस। समटाइम हमें कुछ सोचना भी होता है कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन के ऊपर। और इसके साथ सऊदी अरब से मैं भी जुड़ता था लेकिन अभी एक साल से नहीं जुड़ पा रहा हूँ। आप दोनों लोगों को सलाम और सुनने वालों को भी सलाम। ये है आजाद अंसारी सऊदी अरब से, और अभी इंडिया छुट्टी में आया हुआ हूँ और प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। आजाद अंसारी सऊदी अरब से जुड़ते थे, अब इंडिया से जुड़ जाए, कोई मसला नहीं है। और अस्सलाम वालेकुम माविश मैम, सफा मैम, कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह पाक आप दोनों को, एफएम 107 के सारी टीम को हमेशा खुश रखे। लोग क्या कहेंगे, लोग तो पूरी जिंदगी भर कहेंगे, लोग के चक्कर में मत पड़ो,
1: कुछ तो काम,
0: अपना आगे बढ़ो भाई, ये मुमताज अहमद कह रहे हैं। और इसके साथ जी तौफीक हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, और मुझे तुम्हें दोनों को सलाम किया है अलवकरा से। और इसके साथ ही जी मुबीन बुखारी कहते हैं वाह धनिया, ओ रियली सफा जी
1: वाह धनिया, वाह धनिया तो मैं कल लेकर आई थी सौदे में,
0: धनिया पुदीना
1: धनिया पुदीना और चटनी।
0: चलिए जी तो हम बढ़ जाते हैं सॉन्ग की तरफ,
1: मैं चटनी बनाने बैठ गई थी। चलिए

0: आप सुन रहे हैं यू मैटर
1: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
0: एफएम 107 पर दिल से देसी।
2: रेडी राइट, हम लोग आ गए एक दफा फिर से और हमारे साथ हैं कॉलर।
3: अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। दोबारा इसलिए कॉल की हमने।
2: जी जी
4: हाँ, महेश बहन, मैंने वो सिर्फ ये बात वो जो मैंने कही थी ना कि तालीम के बारे में, वो इसलिए मैंने कही थी कि 2008 से पहले हमारे सूबे में सिर्फ 9 यूनिवर्सिटी थी, 8 या 9।
2: अच्छा,
4: 2008 से 2013 तक 9 बनी 5 साल में।
2: सही,
4: एशिया में ये 5 साल में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी बनने का रिकॉर्ड है।
2: ग्रेट, जबरदस्त।
4: उसके कैंपस जो है वो अलग 11 कैंपस बने।
2: सही,
4: तालीम की शरह बढ़ गई। दूसरी बात ये कि खवातीन में तालीम की शरह बहुत ज्यादा आया थी, थोड़ी नहीं है,
2: जबरदस्त।
4: वो इलाके जिधर लोग पसंद नहीं करते थे स्कूल में जाना और ये सब चीजें, वो लोग अभी खुशी खुशी जा रहे हैं और लोग वो लोग भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी तालीम हासिल करें।
2: ग्रेट, जबरदस्त।
4: मैं अपनी बात करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे, हमारे जमाने में कॉलेज क्या कि स्कूल भी हमारे नजदीक नहीं था, हम लोगों से 10-12 किलोमीटर दूर हाई स्कूल होता था। अभी हमारे घर से निकल के, दरवाजे से निकल के सामने हायर सेकेंडरी स्कूल बने हुए हैं। ये 2013 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उस टाइम की बात है। 5 साल में जो यूनिवर्सिटियां बनी हुई, रिकॉर्ड आप चेक करो, कंप्लीट यूनिवर्सिटी 9 और 11 उसका 11 कैंपस बने हुए हैं।
2: अच्छा,
4: उसके बाद जो है हालत थोड़ी सी वो बिगड़ी हुई है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे
2: इंशाल्लाह।
4: बहरहाल तालीम की शरह बहुत ज्यादा है और शौक भी बहुत ज्यादा है, स्पेशली जो बच्चों तालीम है उस पे लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं।
2: सही,
4: एक बच्ची शारजा में यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी। एक बच्ची ने उसमें, वो करक से उसका ताल्लुक है वो लड़के का, और उसकी बच्ची ने उधर 99.9% उसमें मार्क्स लिए थे। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये शौक है तालीम का बच्चियों के लिए। हम सब चाहते हैं कि हमारी बच्चियां तालीम। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि पहले सवादी, मर्दान, करक और पेशावर ये एरिया में बहुत ज्यादा तालीम थी। अभी जो है और इलाके भी इसमें आ गए
2: माशाल्लाह।
4: दूसरों को देख के वो लोग भी शौक, उसमें उनमें भी शौक पैदा हुई। और हर घर में आपको अगर डॉक्टर नहीं है तो प्रोफेसर, टीचर ये जरूर मिलेगा हर घर में। और फीमेल तो मैं कहता हूँ कि मेरी तो माशाल्लाह 2 भतीजियां जो है वो हेड टीचर है। सही है, मेरा अपना भतीजा एक माशाल्लाह पीएचडी कर रहे हैं। हमारे बच्चे बोलते हैं कि पीएचडी के अलावा हम लोगों ने कुछ करना ही नहीं है, तो यही शौक होता है। अभी वो जो कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, हम उसी बात पे नहीं जाते, लोगों की परवाह हम नहीं करते, हम आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, मैंने दोबारा इसलिए कॉल किया।
2: नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू हादिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो हमारे साथ हादिम भाई थे और उन्होंने बताया, और बहुत अच्छी बात है कि ये इस तरह से जो ना मामला जो है वो बेहतर होता चला जा रहा है, और मुझे लगता है हर जगह होना चाहिए।
3: मुल्क के किसी भी हिस्से में कुछ भी अच्छा होता है ना, प्रोग्रेसिव होता है, तो उतनी खुशी होती है।
2: और अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि मतलब हमारे कराची में जो शरह खवानदगी थी ना, मतलब लिटरेसी रेट वो कम हुआ है। और उसके पीछे ही लोग ये भी कह रहे हैं कि एक रीजन ये भी है क्योंकि जो पॉपुलेशन होती है वो पूरी की पूरी काउंट की जाती है, तो वो बहुत सी आबादी है, मतलब वो हर जगह की आबादी है।

0: तो ये भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेट है भाई, मतलब जो भी है आपको तालीम के ऊपर और इन सब चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, फोकस करना चाहिए, और फिर उसी सूरत में अपने राइट्स के लिए बंदा फिर बात भी करता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी सिस्टर, कैसे हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: मैं मोहम्मद ईसा।
0: जी मोहम्मद ईसा, क्या हाल है?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सुनाओ।
2: अल्लाह का करम है भाई, क्या कहना चाहेंगे, लोग क्या कहेंगे?
1: लोग तो मुझे पहले से भी कोई मतलब इन बातों पर मैं भरोसा नहीं करता,
0: भरोसा ही नहीं करते।
2: लोग क्या कहेंगे?
1: अभी खादिम भाई थे कि मुदस्सर भाई थे, मैं भूल गया।
2: खादिम भाई थे ना, जो
0: अभी थे उससे पहले मुदस्सर भाई थे।
1: हाँ, तो अभी मुझे नहीं लगता कि जो मतलब आपने जो पहले बोला कि कीपे के जो है ना वो दो हिस्सों में तकसीम है।
0: नहीं, मैंने सुना था ऐसा, मैंने सुना था कहीं पे सुना था, मुझे कंफर्म, क्योंकि मैं केपी के गई हूँ लेकिन मैं नॉर्दर्न एरिया साइड पे गई हूँ ना, तो मुझे वैसे पता नहीं, मैं आज तक पेशावर नहीं गई इसलिए मैं खुद कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हमारे क्योंकि शोज होते रहते हैं ना, तो उसमें हमारे जो कॉलर्स हैं वही आके हमें अपडेट करते हैं मुख्तलिफ हवाले से, तो मेरे जहन में कुछ बात रह गई, किसी ने तो इस तरह का कुछ जिक्र किया था।
1: जी जी, मुझे भी पता नहीं कि दो हिस्सों में तकसीम है कि नहीं है, लेकिन जो तालीम के बारे में है वो अक्सर जो केपीके है, केपीके में जो सिटीज है ना, बड़े बड़े सिटीज जो होते हैं उनमें तालीम ज्यादा होता है, उनमें ज्यादा होता है।
0: ये तो हर जगह का है, हर जगह का है भाई। हाँ, मतलब आप देख लें जितने भी बड़े शहर है ना, हाँ, तो वहाँ पे तालीम भी ज़्यादा होगी, वहाँ पे और जो मामलात हैं वो भी बेहतर होंगे, जो विलेजेस वगैरह हैं वहाँ पे जो ना थोड़ा सा निस्बतन उसके मुकाबले में कमी होता है।
1: हाँ, लेकिन जो पेशावर वाली साइड है उनमें अक्सर ज्यादातर गांव ऐसे है जिनमें अभी तक हम जो है ना लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते, तालीम नहीं करते। हमारे रूल्स कभी कुछ गांव में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन कुछ गांव में, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, जिनके रूल्स अभी भी उतनी ही स्ट्रिक्ट है जो पहले थे।
0: सही।
1: हाँ, हम लड़कियाँ मतलब स्कूल में तो कभी नहीं भेज सकते, लड़कियाँ तो कब्रिस्तान जा सकते या फिर डॉक्टर जा सकते, बस दो।
0: हाँ, ये मैंने सुना था। अच्छा, अस्मत आफरीदी का मैसेज आया, वो कह रहे हैं मैंने कहा था।
2: अच्छा,
0: वो कह रहे मैंने कहा था, तो किसी ने कहा था, मैं यही कह रही हूँ, तो ये वाला सीन है, और वही मैंने सुनी थी ये बात, क्योंकि मुझे इतना आइडिया है नहीं, हम तो मतलब गए घूमने फिरने, गए घूम फिर कर आ गए, और हमें बहुत अच्छी जगह लगती है, प्रोग्रेसिव लगती है जहाँ पे हम लोग गए, लेकिन ये कि बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, हुंजा वगैरह हम गए थे तो उधर भी पता चला था कि वहाँ पे 100% है, मतलब जो लिटरेसी रेट 100%, 1% भी कम नहीं है, तो उन जगहों का गिलगित बल्तिस्तान और वहाँ, वो तुम्हें भी पता होगा सफाई कराची यूनिवर्सिटी में सारे जो बच्चे आए हुए होते थे ना गिलगित के, बल्तिस्तान के, तो वो वाला सीन वो हमने भी देखा है कि हम मतलब कराची की आवाम से ज्यादा सवात और नांगा पर्वत हम बता रहे होते थे कि हम इधर के हैं उधर के हैं, तो वो आबादी तो हमने देखी है, और वाकई वहाँ पे इसी तरह से है कि वहाँ पे लोग जो ना पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन है, उधर का मुझे पता है क्योंकि मैं गई हुई हूँ, अदरवाइज और जगहों का मुझे आइडिया नहीं है। अब इंशाल्लाह कभी पेशावर जाएंगे और जगहों पर जाएंगे तो फिर पता चलेगा। अच्छा, जब बचपन में ना पीटीवी पे ये हुआ करता था कि वो था सेंटर ना डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, हर दिन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, मंडे शायद मेरा ख्याल है कराची का हुआ करता था और संडे किसी कहीं का होता था, तो उस जमाने में ना मतलब क्वेटा सेंटर और पेशावर सेंटर के ड्रामे आया करते थे, तो मुझे पर्सनली याद है कि मैं देखती थी कराची वाला डेफिनेटली, और फिर दूसरा जो है ना क्वेटा और पेशावर, ये मेरे फेवरेट हुआ करते थे जो ड्रामे आते थे, और वो मैंने देखा है कि जितने भी वहाँ मतलब उस वक्त के जो एक्टर्स होते थे जो पेशावर से और क्वेटा दोनों जगहों से आते थे, तो वो उनकी भी ना एक अलग ही क्लास थी जिसमें अयूब खोसो हैं और भी बहुत सारे इस तरह के नाम सबके, तो ये थे अपने ज़ियाले सरहदी के जो ख़याम सरहदी, और ये मतलब बड़े बड़े नाम है भाई, मतलब जो उधर से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग होते हैं, ये मुझे अंदाज़ा है इस बात का, पेशावर और क्वेटा, और ख़ास तौर पे अगर हम पहले की बात कर लें, जितना हम पीछे जाएंगे तो उतना आपको वहाँ पे ना वो मिलेगा। अच्छा। एक इंटेलेक्चुअलिज्म मिलेगा कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म के लोग होते हैं, लेकिन फिर क्या वक्त के साथ ना थोड़ी सी जो तब्दीलियाँ आती हैं, मतलब लोग उस चीज़ से, किताबों से, पोइट्री से, लिटरेचर से, वो उस तरह का ताल्लुक मेरा ख्याल है बरकरार नहीं रख पाए अनफॉर्चुनेटली, और वो सिर्फ उधर के साथ नहीं हुआ, ये कराची के साथ भी हुआ है सेम टू सेम ना तो ये चीज़ है तो हमें देखना चाहिए इस मामले में हमें सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में कि भाई हम नहीं पढ़ लिख रहे हम आगे नहीं बढ़ रहे तो इस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए
2: चीज़ अगर कम हो तो फिर जो है ना वो इंसान को फिक्र करनी चाहिए
0: एग्जैक्टली तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया बस टाइम खत्म हो गया
1: इसके बारे में तो इस्लाम में भी कोई फोर्स नहीं है कि लड़कियां तालीम कर सकती है
0: फोर्स नहीं मतलब
1: जी
0: जी आप क्या सवाल कुछ हम मतलब बात आपकी समझे नहीं सही तरह से क्या कह रहे हैं
1: मैं कह रहा हूँ कि मतलब इस्लाम में भी ऐसा नहीं है कि तालीम मतलब उस इस्लाम में भी कोई फोर्स नहीं है लड़कियों के ऊपर कि वो तालीम हासिल करें
2: फोर्स नहीं है लेकिन कहा यह गया है कि तालीम जो है ना वो हर मर्द औरत के ऊपर फर्ज है
0: और फिर दूसरा ये कि हमें जो नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है
2: तालीम तो तालीम नॉलेज
0: तालीम तालीम है और वक्त की तालीम है जो तालीम मिलनी चाहिए तो वो तो है अब हमारे पास क्योंकि वक्त नहीं बचा है तो इस वजह से हम इंशाल्लाह ताला बाद में इसके हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे ठीक है मोहम्मद ईसा बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का थैंक यू जी थैंक यू अच्छा ये असमत आफरीदी का मैसेज आया हुआ और ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं ये जल्दी से मैं मैसेज पढ़ लूँ यार ये कहाँ चला जाता है अच्छा जी ये कह रहे हैं कि नॉर्दर्न के पी के और साउदर्न के पी के में एजुकेशन के हवाले से बहुत फ़र्क है नॉर्दर्न के पी के बहुत आगे तो ये इनका कहना है चले जी खैर मतलब इंशाल्लाह कभी हम बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में और तालीम अलबत्ता दोनों के लिए ज़रूरी है भाई मतलब ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से और ये जब भी हम बात करें ना कोई चीज़ भी तो मैं कहती हूँ आप अपना नाम ले दो किसी का भी नहीं लो इस्लाम का नाम ना किसी ऐसी चीज़ के साथ ना लिया करें जो कि हमें 100% नहीं मालूम क्योंकि फिर होता है क्या कि गलत बात हमारे मज़हब के हवाले से फैलती है जो कि नहीं फैलनी चाहिए इस्लाम में हर तरह का हक मौजूद है हर जायज़ हक दिया गया दोनों को दिया गया चलिए जी इसके साथ ही
2: हम इजाज़त लेते हैं अपना ढेर सारा ख्याल रखें और ये याद रखें क्या याद रखें माविश
0: क्या
2: कि तालीम इम्पोर्टेंट है
0: और लोग क्या कहेंगे नहीं पढ़ना चाहिए नेगेटिवली नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन हाँ पॉजिटिवली पढ़ना चाहिए जैसे अभी आखिर में बात होगी
2: पॉजिटिव चीज अगर कम हो रही है ना तो उसके लिए वाकई में फिक्रमंद होना चाहिए उसके लिए भी ये फिक्रमंद नहीं हो कि लोग क्या कहेंगे उसके लिए फिक्रमंद होंगे अपना फ्यूचर कहाँ जा रहा है
0: एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है चले जी इसी के साथ हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। समीन, आज की दुआ है मूसा अलैहिस्सलाम की, जो हमें जहालत और नादानी से बचने की तलकीन करती है। ये दुआ मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कही जब उनकी कौम ने गायें ज़बह करने के हुक्म के बारे में गैर जरूरी सवाल शुरू कर दिए और जिद में आ गए। इस मौके पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين, اعوذ بالله, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, ان اكون من الجاهلين, कि मैं जाहिलों में शुमार हो जाऊँ, यानी बेवकूफ़ी, जिद और नाफरमानी करने वालों की राह इख्तियार करूँ। इस दुआ में इस बात की तरफ इशारा है कि जहालत सिर्फ इल्म की कमी नहीं बल्कि हक वाज़ह होने के बावजूद हट धर्मी करना और अल्लाह के हकाम के सामने सरकशी करना भी जहालत है। तो यूं इस दुआ के कई अहम पहलुओं में एक तो यह है कि अल्लाह की पनाह सबसे बड़ी हिफाजत है, मजीद जहालत सिर्फ लाइल्मी नहीं बल्कि जिद, सरकशी और बिलावजह सवालात भी जहालत में शामिल हैं। इसी तरह इल्म के बावजूद दुआ ज़रूरी है, इसी तरह मुसलमान को जहालत से दूर रहना चाहिए। इस तरह यह दुआ हमें यह सबक देती है कि हमें हर हाल में अल्लाह से यह दुआ करते रहना चाहिए कि वह हमें जहालत, हट धर्मी और नाफरमानी से बचाए और इल्म, हिकमत और इताअत की राह पर कायम रखें। आइए हम सब मिलकर यह दुआ पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन।

0: का हिस्सा बनाते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Qatar National Health Strategy. Health for all. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath. FM 107. Dil se desi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Listeners, agar subah ka aagaaz acha ho to pura din khushgawar guzarta hai. आप खुश रहते हैं, आपका मूड अच्छा रहता है और सुबह को खुशगवार बनाने का सबसे आसान तरीका है हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना। अक्सर अफराद समझते हैं कि वर्जिश का मतलब है जिम जाना या घंटों आप रनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि सिर्फ 5 से 10 मिनट की जो हल्की सी स्ट्रेचिंग है या फिर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है या फिर ये है कि लाइट वॉक है, वो भी आपके जिस्म को एक्टिव बना सकती है और आपका मूड खुशगवार कर सकती है। सुबह के वक्त ताज़ा हवा में चलने से ऑक्सीजन जिस्म में ज्यादा मकदार में दाखिल होती है, जिससे हमारा दिमाग तरोताज़ा रहता है और ज्यादा फोकस करने में मदद मिलती है। जो आप काम करना चाहते हैं उसमें ज्यादा बेहतरी आती है। रिसर्च की जाती हैं और रिसर्च के मुताबिक सुबह की वर्जिश दिल की सेहत को बेहतर बनाती है, हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको कम करती है और ब्लड प्रेशर जो है उसको मतवाजन रखती है। इसी तरह हमारा जो ब्लड शुगर है उसको भी काबू में रखने में मददगार है। सबसे अहम बात यह है कि वर्जिश हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत असरअंदाज होती है, हमारा जो जहनी दबाव है उसको कम करती है और मूड खुशगवार बनाती है। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है कि एक बुज़ुर्ग, वो जो मैं देख रही हूँ कि पिछले 20 साल से रोज़ाना सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट वॉक करते हैं। उनकी उम्र 70 साल है, मगर आज भी वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और खुशबाश हैं और बहुत सारे जो सेहत के मसाइल हैं जो कि आम इस उम्र में हो जाते हैं, उनसे भी वो दूर हैं। उनसे जब उनकी अच्छी सेहत और खुशगवार जिंदगी का राज पूछा गया तो मुस्करा दिए और मुस्करा कर कहा कि सेहतमंद जिंदगी का नुस्खा है कि रोजाना की एक्सरसाइज। तो लिसनर्स, अगर आप और हम चाहते हैं कि दिन भर चाको चौबंद रहें और तो फिर सुबह की जो वर्जिश है, जो एक्सरसाइज है, उसको मामूल बना लीजिए। कल से नहीं, आज से ही आगाज करेंगे। हेल्थ फॉर ऑल,
1: Qatar National Health Strategy, Health for All, FM 107, Dil Se Desi.
3: Qatar ka pehla Desi Radio Station, FM 107, Dil Se Desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, घर में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना एक अहम सेफ्टी रिक्वायरमेंट है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना भी बेहद जरूरी है। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी सेफ्टी को बढ़ाती है। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले आपको फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप समझना जरूरी है। हर फायर एक्सटिंग्विशर

0: अलग-अलग टाइप्स की आग के लिए डिजाइन होते हैं, जैसे कि ड्राई केमिकल, फोम, वाटर बेस्ड या CO2 एक्सटिंग्विशर। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एक्सटिंग्विशर आपके पास है वो आपके घर की सेफ्टी नीड्स को पूरा करता हो। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते वक्त एक सिंपल एक्रोनिम पास का ध्यान रखें, PASS, जिसका मतलब होता है P फॉर पुल, यानी सेफ्टी पिन को खींच कर निकालें। दूसरा है A, यानी एम, नोजल को आग के बेस की तरफ फोकस करें, ना कि आग के ऊपर। नंबर 3 है S, जो के है स्क्वीज, हैंडल को धीरे से स्क्वीज करें ताकि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट रिलीज हो। और चौथा है दोबारा से S, यानी स्वीप, नोजल को साइड टू साइड घुमाते हुए आग पर स्प्रे करें जब तक आग पूरी तरह से बुझ ना जाए। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले ये भी जरूरी है कि आप इमरजेंसी नंबर या लोकल फायर डिपार्टमेंट का कॉन्टेक्ट नंबर हाथ में रखें, और किसी भी बड़े हादसे से बचने के लिए आप सभी को फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दें। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है। आपके जहन में वजारत दाखला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है? वजारत दाखला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं? तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम, पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107। नया जमाना और अनप्लग गाने, दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें, छोटी सी कहानी हो या तरक्की के किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से।
1: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद RJ फजील, संडे टू थर्सडे 6 PM टू 7 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update.
3: Assalamualaikum, welcome to Tech Update. मैं दूँ हवाला कबीर FM 107 पे एंड अब वक्त है जल्दी जल्दी अपडेट देने का। तो मैं आपको दो वेबसाइट्स बताऊंगा आज जो बड़ी कमाल की हैं एंड उनसे आपका काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है, बस आपको सब्र की जरूरत है। अगर आपके पास सब्र है तो बता देता हूँ आपको। शुरू करते हैं पहली दो पावरफुल वेबसाइट से और फिर आऊंगा खबरों पे, बिकॉज व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस आपके लिए मुझे लगता है कि एप्पल का आईफोन रिलीज हो चुका होगा। बट लेट्स बिगिन विद द वेबसाइट्स। सबसे पहले बात करूंगा एक वेबसाइट की जिसका नाम है QWEN। ये चाइनीज वेबसाइट है, AI है, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे चाइनीज ही निकल आते हैं। QWEN, अगर आपको इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन देखना है और आपको जल्दी करना है, मेरा मतलब फ्री में करना है मोस्टली, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा सब्र चाहिए तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इमेज जनरेशन में, लेकिन काफी सिनेमेटिक काम हो जाएगा। इमेज जनरेशन से लेकर वीडियो जनरेशन दोनों यहाँ पर होते हैं, पर अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, आपको सब्र चाहिए। अगर आपके अंदर सब्र है तब तो इस AI पे जाइए, आपका काम हो जाएगा। QWEN या क्वेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली वेबसाइट की तरफ। अगली वेबसाइट का नाम है, इसको अब मैं कैसे पढ़ूंगा, HUNWAN वीडियो। मैं स्पेल आउट कर देता हूं, HUNYUAN, HUNYUAN, HUNYUAN AI। अब ये वाला AI क्या करता है, ये टेक्स्ट टू वीडियो और इमेज टू वीडियो क्रिएट करता है। अगेन थोड़ा टाइम लगेगा जनरेशन में, लेकिन जो रिजल्ट है वो बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही कमाल का निकलेगा। तो अगर आपको जल्दी नहीं है और आपके पास है टाइम, आप आराम से बैठ के निकाल सकते हैं इमेज और वीडियो, तो फिर आपके लिए ये बनी है, एंड गो फॉर इट, ठीक है। अब जरा अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ना चाहूंगा जिसका नाम है, मैं आपका इसका नाम मैं कैसे बताऊं आपको, ओके लेट मी ट्राई, osirisai.live। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, अब मैं स्पेल आउट कर देता हूँ, osirisai, osirisai.live। जब इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने पूरा ग्लोब आ जाएगा। उसमें कई सारी एक्टिविटीज होंगी, उसमें कुछ एक्टिविटीज ब्लू मार्कर से होंगी, ग्रीन मार्कर से होंगी, रेड मार्कर से होंगी, इसमें सब बताएगा आपको। और आप जो मेजर सैटेलाइट जो हैं वो भी आप इसके जरिए देख सकते हैं। आप CCTV कैमरास कई जगहों पे जो ओपन AI एक्सेसिबल है वो आप देख सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की और बहुत ही यूनिक किस्म की वेबसाइट है, सो ट्राई दिस वन आउट, आई एम प्रीटी श्योर आपको कुछ अलग किस्म की वेबसाइट मिलेगी। टाइम पास के लिए आराम से देख सकते हैं आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से खबरों की तरफ। तो टेक न्यूज में सीधी सीधी बात ये है, सब सारे के सारे टेक आपको महंगे होते हुए नजर आएंगे। आईफोन वालों ने यानी एप्पल वालों ने बहुत टाइम से कोशिश करी थी कि वो अपने जो मेजर जो फ्लैगशिप फोन है उसके प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, स्पेशली प्रोज के और प्रो मैक्स के, वो $1000 के आसपास रहेगा, यानी कतरी रियाल में बात करूं तो वही 3500-4000 के आसपास रहेगा। पर अभी वो थ्रेशहोल्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है विद द लॉन्च ऑफ एप्पल फोल्ड एंड एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड। और जैसे मैंने कहा था, वही रिजल्ट आया जो एप्पल का फोल्ड फोन है उसका जो रिव्यू है वो ऐसा ही है जैसा मैंने सोचा था। उसमें एक हद तक मेहनत की जा सकती है और उसमें सैमसंग ये वॉर जीत चुका है अगर फोल्डेबल्स की बात की जाए, और फॉलोड बाय उसके बाद जो नंबर आएगा हुआवी का आएगा। अभी एप्पल, आई डोंट थिंक सो एक आम आदमी इतना ज्यादा दीवाना होगा एप्पल के फोल्ड के लिए, हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है उस पर, बट द प्राइसिंग ऑन इट इज अ लिटिल टू मच, ठीक है वो बात दूसरी है। बट जब पूरी तरह से मैं रिव्यू करूंगा एप्पल का तो बहुत खुल के करूंगा, वो आप सुनेंगे कुछ दिनों में। बट इसके अलावा जो बाकी टेक है वो महंगा होता चला जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये टेक अभी नहीं लेता, सस्ता हो जाएगा जब मैं ले लूंगा, तो आई हाईली डाउट दैट। हम उस जमाने में जी ही नहीं रहे जहां पे चीज अभी आई है तो सही है, बाद में सस्ती होगी तो ले लेंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी गैजेट्स ये महंगे ही होने वाले हैं अभी, बिकॉज ऑफ द रीजन जो मैंने आपको बताया, मेमोरी का खर्चा, चिप्स का खर्चा। ऑलराइट, सो ये थी टेक अपडेट, मैं दूहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिए, आप बेहद बेहद जरूरी हैं।
0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-888-806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। देसी। क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। आरजे ए फॉर अमिता के साथ AI लॉक्ड पर, एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI अनलॉक्ड, आरजे ए फॉर अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको हर रोज इत्तला करता रहता हूं, बताता रहता हूं। और आज का एक ऐसे ही जो स्कैम है या कहे फ्रॉड है, वो बहुत ही चालाकी से भरा हुआ है। ऐसे स्कैम इतने ज्यादा हो गए कि लोगों को सिर्फ मिलियन का नहीं बल्कि बिलियन का नुकसान हो रहा है, और ये क्यूमुलेटिव यानी कि मिलाकर इतना नुकसान है। और ये रिपोर्ट भी आजकल सोशल मीडिया पे आपको पढ़ने को मिलती होगी, और ये है स्कैम, वर्कप्लेस गिफ्ट कार्ड स्कैम। कैसे काम करता है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। वर्कप्लेस गिफ्ट कार्ड स्कैम का जो मेन मकसद है वो कॉर्पोरेट या किसी भी ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज को अपना शिकार बनाना है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स कंपनी के हायरार्की या सीनियोरिटी लेवल का पूरा फायदा उठाते हैं। स्कैमर सबसे पहले आपके ऑफिस के मैनेजर, बॉस, सीईओ या किसी भी बहुत ही क्लोज कोवर्कर का नाम और डिटेल्स ना वो पता करते हैं। फिर वो एक नया अनजान ईमेल आईडी या फोन नंबर यूज करके आपको टेक्स्ट या मेल भेजते हैं, जिसमें डिस्प्ले नेम आपके उसी बॉस या मैनेजर का होता है जो आपके असली में बॉस है। जब आप मैसेज देखते हैं तो आपको लगता है कि आपके सीनियर लेवल के बॉस हैं और आपको याद किया गया है। मैसेज में स्कैमर्स बहुत ही चालाकी से एक झूठी स्टोरी बनाते हैं। वो लिखता है कि मैं अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, क्लाइंट प्रेजेंटेशन में बिजी हूँ, कॉल नहीं उठा सकता, मुझे तुमसे एक बहुत अर्जेंट छोटा सा फेवर चाहिए। इसके बाद वो आपसे कहते हैं कि कंपनी के किसी बड़ी क्लाइंट को गिफ्ट देने के लिए या फिर किसी एम्प्लॉई रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए मार्केट से या ऑनलाइन जाकर महंगा गिफ्ट कार्ड खरीदो क्लाइंट के लिए। तो आपसे वो कुछ खरीदने को नहीं कहता, लेकिन गिफ्ट कार्ड खरीदने को जरूर कहता है, क्योंकि गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है कैश के लिए। वो आपसे कहेंगे कि उन गिफ्ट कार्ड को खरीद कर उनके पीछे का स्क्रैच ऑफ पिन जो है वो नंबर तुरंत टेक्स्ट मैसेज कर दो और फोटो खींचकर मुझे या तो भेज दो। वो आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जैसे ही उनकी मीटिंग खत्म होगी, कंपनी आपके इस पर्सनल खर्चे को तुरंत रिइंबर्स कर देगी, क्योंकि एम्प्लॉयज अपने बॉस को मना नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि ये ऑफिस का काम है। वो जल्दी में अपने पास से हजारों रुपए का खर्च कर देते हैं, ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं और पीछे का जो कोड है वो बता देते हैं, पिन बता देते हैं, और हैकर के पास वो पिन जब पहुंच जाता है गिफ्ट कार्ड के जरिए, तो वो गिफ्ट कार्ड को रिडीम करके गायब हो जाते हैं। और बाद में रियल बॉस से पूछने पर पता चलता है कि उन्होंने तो ऐसा कोई मैसेज किया ही नहीं है। लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए सॉल्यूशन है। कुछ चार ये सॉल्यूशंस हैं जो मैं बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आपका कोई स्टोर है, कोई ऑफिस है, किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, इस तरह के फ्रॉड से आप बच सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। ये मैंने आपको हर तरह के या नए जमाने के जो नए स्कैम होते रहे हैं हर बार बताया है। अगर आपको ऐसा कोई भी मैसेज आता है तो उनके पर्सनल टेक्स्ट या अनजान ईमेल का रिप्लाई करने के बजाय ऑफिस के ऑफिशियल कम्युनिकेशन टूल जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम है, स्लैक है, ऑफिशियल कंपनी की ईमेल्स एड्रेस है, ये सारे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बॉस को पर्सनल कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। कई बार मैसेज भी यानी कि पर्सनल मोबाइल भी उनका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो आप डायरेक्ट कॉल करें। डायरेक्टली जब आप मैसेज करेंगे तब वहां से आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा तरीका है कंपनी पॉलिसी को समझें। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा कर रखें, कोई भी जेन्युइन और लीगल कंपनी कभी भी अपने किसी एम्प्लॉय को टेक्स्ट मैसेज पर बिजनेस का सामान अपने पर्सनल पैसों से खरीदने के लिए नहीं बोलता है। ऑफिस के खर्चे के लिए हमेशा कॉर्पोरेट कार्ड या ऑफिशियल प्रोसीजर होता है। उसके अलावा तीसरा तरीका है पिन नंबर सीक्रेट रखें। अगर आपने खुदा ना खास्ता गिफ्ट कार्ड खरीद भी लिया है ना, एक बार अगर आपने स्क्रैच ऑफ पिन की फोटो किसी को भेज दी तो समझ लीजिए आपका पैसा चला गया। इसलिए कभी भी किसी को या किसी के कहने पर भी पिन नंबर टेक्स्ट ना शेयर करें, अगर आपने गिफ्ट कार्ड खरीद भी लिया है तो। चौथा तरीका है एचआर को रिपोर्ट करें। ऐसे किसी भी सस्पिशियस ईमेल या एसएमएस को तुरंत अपनी कंपनी के आईटी सिक्योरिटी सेल या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करें, ताकि पूरी कंपनी को अलर्ट किया जा सके। अगर ऐसा है कि आपको मैसेज किया गया है तो आम तौर पे सिर्फ आपको नहीं, आपके जैसे कंपनी में और भी एम्प्लॉयज को आम तौर पे टारगेट किया जाता है और लोग भी लिस्ट में स्कैमर्स के होते। तो दोस्तों इसी के साथ उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा कि आजकल के स्कैमर्स फ्रॉडस्टर्स किस तरह से काम कर रहे हैं और आपको स्कैम करने के लिए तैयार बैठे हैं। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल नए जमाने के एक नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी
0: स्कैम अलर्ट, मैक्सिमम म्यूजिक मैक्सिमम फन
1: ऑन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों फुटबॉल में हैट्रिक करना किसी भी स्ट्राइकर के लिए खास अचीवमेंट होती है। एक मैच में 3 गोल स्कोर करना ही मुश्किल काम है, लेकिन सोचिए अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ चंद सेकेंड्स के अंदर 3 गोल्स कर दे। या आज हम आपको एक ऐसे फुटबॉलर की कहानी सुना रहे हैं जिन्होंने फुटबॉल की तारीख में सबसे तेज हैट्रिक का रिकॉर्ड अपने नाम किया। नाम है एलेक्स टोर। इंग्लैंड के एमेच्योर फुटबॉलर एलेक्स टोर के नाम फुटबॉल की तारीख की सबसे तेज तरीन

हैट्रिक का रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड 8 अप्रैल 2013 को बनाया गया जब टोर अपनी टीम रॉसन स्प्रिंग की तरफ से मिडहॉल संडे लीग में विन गार्डन्स के खिलाफ खेल रहे थे। मैच शेफील्ड के लोकल संडे लीग फुटबॉल का था। रॉसन स्प्रिंग ने इस मैच में विन गार्डन्स को 1-7 से शिकस्त दी। लेकिन मैच की सबसे खास कहानी टीम की 7 वाली विक्ट्री नहीं बल्कि टोर के वो 70 सेकेंड्स थे जो फुटबॉल की रिकॉर्ड बुक्स का हिस्सा बन गए। टोर ने मैच के 11th मिनट में पहला गोल स्कोर किया। अभी ऑपोजिशन को संभालने का मौका ही नहीं मिला था कि टोर ने सिर्फ 30 सेकेंड बाद यानी 11 मिनट्स और 30 सेकेंड्स पर दूसरा गोल कर दिया और फिर आया वो लम्हा जिसने इस हैट्रिक को हिस्टोरिक बना दिया। सिर्फ 40 सेकेंड बाद 12 मिनट और 10 सेकेंड्स पर टोर ने अपना तीसरा गोल स्कोर किया यानी 3 सिर्फ 70 सेकेंड्स में। सोचिए एक तरफ डिफेंडर्स को पहले गोल के बाद अपनी स्ट्रेटेजी समझने का वक्त नहीं मिला और दूसरी तरफ टोर मुसलसल अटैक करते रहे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये फुटबॉल में फास्टेस्ट हैट्रिक का रिकॉर्ड है लेकिन एलेक्स टोर के लिए ये कोई पहली एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी। इस हिस्टोरिक हैट्रिक से सिर्फ 3 पहले टोर ने पेनिस्टन चर्च के खिलाफ भी एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। उस मैच में उन्होंने सिर्फ 3 में हैट्रिक कंप्लीट की थी जबकि रॉसन स्प्रिंग ने पेनिस्टन चर्च को 7-0 से हरा दिया था। यानी टोर ने चंद दिनों के अंदर 2 हैट्रिक्स किए और दोनों में उनकी स्कोरिंग एबिलिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है, क्या प्रोफेशनल फुटबॉल में भी किसी खिलाड़ी ने इतनी तेज तरीन हैट्रिक की है? वेल, इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें तो इस कैटेगरी में रिकॉर्ड सादियो माने के नाम है। 2015 में साउथैम्पटन की तरफ से खेलते हुए माने ने एस्टन विला के खिलाफ सिर्फ 2 और 56 सेकेंड्स में 3 स्कोर किए। माने की परफॉर्मेंस प्रीमियर लीग की तारीख में एक लेजेंडरी मोमेंट बन गई। उन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल के हाईएस्ट लेवल पर अपनी इनक्रेडिबल फिनिशिंग स्पीड और मूवमेंट का सबूत दिया। लेकिन एलेक्स टोर का रिकॉर्ड एक डिफरेंट वजह से खास है। उनकी 72nd हैट्रिक एक एमेचर संडे लीग मैच में हुई थी और इसीलिए दोस्तों ये कहानी हमें याद दिलाती है कि फुटबॉल में कभी कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोमेंट्स किसी बड़े स्टेडियम या इंटरनेशनल टूर्नामेंट में नहीं बल्कि लोकल फुटबॉल ग्राउंड पर भी हो सकता है। एलेक्स टोर शायद दुनिया भर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या सादियो माने जैसी शोहरत ना रखते हों लेकिन फुटबॉल रिकॉर्ड्स में उनका नाम एक खास वजह से हमेशा जिंदा रहेगा। 3 70 सेकेंड्स और फुटबॉल की तारीख का एक अनफॉरगेटेबल रिकॉर्ड। दोस्तों फुटबॉल में अक्सर कहा जाता है कि रिकॉर्ड्स टूटने के लिए बनाए जाते हैं लेकिन एलेक्स टोर का 70 रिकॉर्ड अब तक इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई स्ट्राइकर उनसे भी तेज 3 स्कोर कर सके। सवाल यह है कि क्या कोई फुटबॉलर कभी 70 सेकेंड से भी कम वक्त में हैट्रिक कर पाएगा? यह रिकॉर्ड शायद टूट जाए लेकिन जब तक नहीं टूटा एलेक्स टोर का नाम फुटबॉल की फास्टेस्ट हैट्रिक के साथ जुड़ा रहेगा। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। फुटबॉल के मैदान पर कुछ रिकॉर्ड्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वो ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो खेल की तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। एलेक्स टोर की 72nd हैट्रिक भी ऐसा ही एक मोमेंट है। अगली बार फिर एक नए और दिलचस्प स्पोर्ट्स अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट. मैं हूं आपकी आरजे महावश. इस पांच मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की. यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है. आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें. कतर की सकाफत में खजूर को खास मकाम हासिल है. ये सिर्फ एक मीठा फल नहीं बल्कि मेहमान नवाजी, खानदानी मेल जोल और रिवायती दस्तरखान की खूबसूरत अलामत है. जब किसी मेहमान के सामने कहवे के साथ खजूर रखी जाती है तो इस छोटी सी पेशकश में बहुत सी मोहब्बत और अपनायत शामिल होती है. खजूर का ताल्लुक उस इलाके की जमीन और मौसम से पुराना है. खजूर के दरख्त गर्मी और खुश्क माहौल में भी परवरिश पा सकते हैं, इसलिए ये फल सदियों से लोगों की ग़िज़ा और रोज़मर्रा जिंदगी का हिस्सा रहा. इसकी किस्में, जायके और रंगों में मुख्तलिफ खूबसूरती देखी जा सकती है. कतरी घरों में मेहमान आए तो उनके इस्तकबाल में अरबी कहवा और खजूर पेश करना प्यारी रिवायत समझी जाती है. पहले खजूर का जायका और फिर कहवे की खुशबू एक दिलकश एहसास पैदा करती है. इस पेशकश का मतलब सिर्फ मेहमान को कुछ खिलाना नहीं होता बल्कि उसे इज्जत और तवज्जो का एहसास देना भी होता है. खजूर रमजान के महीने में भी खास अहमियत रखती है. अफ्तार के वक्त खजूर दस्तरखान पर नजर आती है और लोग उसे शुक्रगुजारी और खुशी के साथ खाते हैं. रमजान में खाना शेयर करना, रिश्तेदारों से मिलना और जरूरतमंदों का ख्याल रखना भी समाजी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है. कतरी रिवायती दस्तरखान में खजूर मुख्तलिफ अंदाज में शामिल की जा सकती है. कुछ लोग उसे सादा पसंद करते हैं जबकि कुछ लोग इसे मिठाइयों और दूसरे खाने की अशिया में इस्तेमाल करते हैं. हर अंदाज में खजूर अपना मीठा जायका और खूबसूरत पहचान कायम रखती है. खजूर के दरख्त का ताल्लुक भी पुरानी जिंदगी से है. इसके पत्ते और शाखें मुख्तलिफ दस्तकारी के कामों में इस्तेमाल होती आई हैं. टोकरियां, चटाइयां और घर के इस्तेमाल की छोटी छोटी अशिया खजूर के पत्तों से बनाई जा सकती हैं. इसी तरह खजूर सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि हुनर और रोजगार का जरिया भी रही है. खजूर की देखभाल के लिए मेहनत, सब्र और तजुर्बा दरकार होता है. दरख्त को पानी देना, उसकी निगरानी करना और फिर फल तैयार होने तक इंतजार करना, ये सब तवज्जो मांगता है. इससे हमें ये दर्स मिलता है कि कुदरत की नियमतों के लिए मेहनत और सब्र दोनों जरूरी हैं. आंदानी मुलाकातों में खजूर की पेशकश अपनायत बढ़ाती है. बच्चे जब बुजुर्गों के साथ बैठकर खजूर और कहवे का लुत्फ लेते हैं तो उन्हें सिर्फ एक खाने का तजुर्बा नहीं होता, वो मेहमान नवाजी, गुफ्तगू और खानदानी रिश्तों के आदाब भी सीखते हैं. खजूर का तोहफा देना भी खुशी और दोस्ती का इजहार हो सकता है. अच्छे अंदाज में दी गई छोटी सी पेशकश रिश्ता मजबूत कर देती है. इसके जरिए इंसान दूसरे को बताता है कि वो उसकी कदर करता है और उसकी खुशी चाहता है. आज कतर में खजूर मुख्तलिफ बाजारों, दुकानों और सकाफती प्रोग्रामों में आसानी से मिल जाती है. मुख्तलिफ इलाकों की खजूरें जायके, बनावट और मिठास के हवाले से अलग हो सकती हैं. लोग अपनी पसंद के मुताबिक उनका इंतखाब करते हैं. जदीद शादियों और तकरीबात में भी खजूर को रिवायती खूबसूरती के साथ पेश किया जाता है. खास इंतजाम या सादा दस्तरखान, दोनों में खजूर मेहमान नवाजी की प्यारी याद दिलाती है. इसकी मौजूदगी महफिल में रिवायत का एक रंग भर देती है. खजूर हमें सादगी की खूबसूरती भी सिखाती है. इंसान की खुशी हमेशा मुश्किल या महंगी चीज से नहीं बनती. कभी एक छोटी सी रिवायती पेशकश, एक प्याला कहवा और अच्छी गुफ्तगू भी मुलाकात को खूबसूरत और यादगार बना देती है. कतरी सकाफत में खजूर का हुसन इस बात में है कि ये गुजरे हुए वक्त اور آج کی زندگی کے درمیان رابطہ قائم کرتی ہے. یہ ورثے کی یاد بھی دلاتی ہے اور مہمان کے لیے محبت کا اظہار بھی کرتی ہے. تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کا پیغام یہ ہے کہ کھجور ایک پھل سے بڑھ کر مہمان نوازی اور اپنائیت کی علامت ہے. اس کی مٹھاس ہمیں شکر گزاری، صبر اور دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا درس دیتی ہے. چھوٹی سی کھجور میں قطر کی روایتی زمین اور مہمانوں کی عزت کی ایک خوبصورت کہانی چھپی ہوتی ہے. تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں. یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے. میں ہوں آپ کی آرجے مہوش. اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے. اللہ حافظ.

0: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाया, थमने ना पाया। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
2: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपके आरजे महविश खान और शो है स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट्स। और इसमें मैं एक दफा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहती हूं। यकीनन आप लोग जानते हैं कि ये वो शो है जहां हम अल्लाह ताला के बरगजीदा पैगंबरों की जिंदगियों से सिर्फ वाकयात नहीं सुनते, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन वाकयात का हमारे आज के साथ क्या ताल्लुक है। गुज़िश्ता एपिसोड्स में हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जाना। आज हम एक ऐसे नबी की दास्तान सुनेंगे जिनका नाम आते ही हमारे जहन में एक बहुत बड़ा वाकया आता है। एक कश्ती, एक अजीम तूफान और एक ऐसा नबी जो अपनी कौम को बरसों बल्कि सदियों तक अल्लाह की तरफ बुलाता रहा। जी हाँ, आज की हमारी दास्तान है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल के साथ आगाज करना चाहती हूँ। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आप किसी को एक अच्छी बात समझाएं वो ना माने, आप दोबारा समझाएं वो फिर भी ना माने, आप तीसरी बार कोशिश करें वो आपका मजाक उड़ाए, आप फिर भी कोशिश करें, और ये सिलसिला एक साल नहीं, दस साल नहीं, सौ साल नहीं, बल्कि सैकड़ों साल तक जारी रहे, तो क्या आप हिम्मत हार जाएंगे? क्या आप कहेंगे बस अब बहुत हो गया, या आप अपने मकसद पर कायम रहेंगे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें इसी सवाल का जवाब देती है। उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, रात को भी, दिन को भी, तन्हाई में भी और सबके सामने भी। कुरान हमें बताता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उससे डरो और मेरी अताअत करो। यानी पैगाम बहुत वाज़े था, अल्लाह एक है, इबादत सिर्फ उसी की होनी चाहिए और इंसान को अपने रब के सामने जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह से क्यों दूर हुई? उन्होंने बुतों को क्यों मानना शुरू किया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें किस तरह समझाया? और फिर वो वक्त कैसे आया जब अल्लाह ताला ने उन्हें कश्ती बनाने का हुक्म दिया? और सबसे बढ़कर, हम आज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सबर कैसे सीख सकते हैं?

उनका काम पैगाम पहुंचाना था और यही उनकी अजमत थी। यहां एक बहुत अहम सबक है, किसी शख्स की बात को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं करना चाहिए कि वो हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं। आज भी हम कभी कभी सच को देखने से पहले ये देखते हैं कि बात कहने वाला कौन है, उसका ओहदा क्या है, उसके पास कितना पैसा है, वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है, उसके कितने फॉलोअर्स हैं। लेकिन दीन हमें ये सिखाता है कि हक को हक होने की वजह से पहचाना जाए, ना कि इसलिए कि उसे कहने वाला कोई मशहूर बंदा हो। हजरत नूह अलैहि सलाम की कौम के 62 लोग एक और भी एतराज करते थे, वो हजरत नूह अलैहि सलाम के साथ मौजूद गरीब और कमजोर लोगों को देखते और कहते, क्या हम ऐसे लोगों के साथ बैठे जो इतने गरीब हो? यानी उनके नजदीक इंसान की कदर उनके ईमान और किरदार से नहीं बल्कि उनकी समाजी हैसियत से थी। लेकिन हजरत नूह अलैहि सलाम ने ईमान वालों को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा कि ताकतवर लोग उनसे नाराज थे। ये बहुत बड़ा उसूल है। अल्लाह के नजदीक इंसान की कदर उसकी दौलत, लिबास, ओहदे या शोहरत से नहीं होती। ईमान और तकवा असल मेयार है। जरा आज की दुनिया को देखिए, कभी स्कूल में बच्चे किसी दूसरे बच्चों को इसलिए कम समझते हैं कि उसके पास महंगा फोन नहीं, कभी माशरे में किसी शख्स को इसलिए ज्यादा अहमियत दी जाती है कि उसके पास दौलत है, कभी किसी की बात सिर्फ इसलिए ज्यादा सुनी जाती है कि उसका ओहदा बड़ा है। हजरत नूह अलैहि सलाम की कौम का रवैया हमें खबरदार करता है, हक को स्टेटस से मत नापो और इंसान को भी स्टेटस से मत नापो। अब हम हजरत नूह अलैहि सलाम की दास्तान के एक ऐसे हिस्से तक पहुंचे हैं जिसे सुनकर इंसान वाकई हैरान रह जाता है। कुरान करीम सूरह अनकबूत में फरमाता है कि हजरत नूह अलैहि सलाम अपनी कौम में 1000 से 50 साल कम रहे, यानी 950 साल। कुरान का ये बयान हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। 950 साल, हम अपनी जिंदगी में चंद साल की मुश्किल से थक जाते हैं। एक शख्स को एक इम्तिहान में नाकामी हो जाए तो वो कहता है मुझसे नहीं हो पाएगा। किसी कारोबार में चंद माह नुकसान हो जाए तो इंसान मायूस हो जाता है। किसी रिश्ते में कुछ मुश्किलात आ जाएं तो हम सोचते हैं कि अब कुछ बेहतर नहीं हो सकता। और हजरत नूह अलैहि सलाम वो सदियों तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। कुरान हमें भी ये बताता है कि उनकी दावत के बावजूद उनकी कौम की बड़ी तादाद ने इनकार किया, तो फिर हजरत नूह अलैहि सलाम की कामयाबी क्या थी? ये सवाल यकीनन बहुत अहम है। क्या कामयाबी सिर्फ ये है कि आपके साथ हजारों लोग खड़े हों? नहीं, कभी कामयाबी ये होती है कि आप हक पर कायम रहें, चाहे आपके साथ बहुत कम लोग हों। हजरत नूह अलैहि सलाम की कामयाबी ये थी कि उन्होंने अल्लाह की जिम्मेदारी पूरी की, उन्होंने पैगाम पहुंचाया, उन्होंने कोशिश की और उन्होंने सबर किया। नतीजा अल्लाह के हाथ में छोड़ दिया। यही सबर है। हजरत नूह अलैहि सलाम ने अपनी कौम को सिर्फ अजाब से नहीं डराया, उन्होंने उम्मीद भी दिलाई। उन्होंने फरमाया अपने रब से मगफरत तलब करो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। फिर उन्होंने बताया कि इस्तग़फार और अल्लाह की तरफ रुजू के नतीजे में अल्लाह आसमान से बारिश भेज सकता है, माल और औलाद में इजाफा दे सकता है और बागात और नहरें अता कर सकता है। ये आयात हमें एक बहुत खूबसूरत तवाज़ुन सिखाती हैं। इस्लाम में सिर्फ खौफ नहीं, उम्मीद भी है। सिर्फ अजाब का जिक्र नहीं, अल्लाह की रहमत का जिक्र भी है। सिर्फ ये ना करो नहीं बल्कि वापस आ जाओ भी है। और इस्तग़फार सिर्फ जबान से इस्तग़फारुल्लाह कहने का नाम नहीं, सच्ची तौबा का मतलब है गलती को पहचानना, उस पर

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: स्टूडियो की घड़ी में बज गए भाई 1:31।
2: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: हाँ हाँ क्या देखिए स्टार्टिंग करी है आज मैंने गाने के साथ नाजिया, क्या कहती है गाना लगा दूं या आपसे बात करवा दूं?
3: पहले माइक
1: तो खोलिए। माय बैड अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी है नाजिया, खैरियत से?
3: अच्छा
1: ये इधर हज़्ब-ए-रिवायत ये चला नहीं दे

0: मैं गाने का बटन दबा बैठा।
1: मेरा मतलब ये था कहने का, मतलब आप चाहें तो माइक बंद ही रखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको शोर करना है।
0: I'm very sorry Miss Nazia.
1: No, you are always.
0: अच्छा मैं, मेरी खत्म हो गई आज के लिए, जितनी थी मैंने बचा के रखी थी आज पूरी हो गई है। नाजिया कैसी है, खैरियत से है, तबीयत वगैरह कैसी है आपकी? आज मुझे आप बेहतर लग रही है माशाल्लाह से, तबीयत के हिसाब से अगर बात करूँ तो।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप फौरन टोक दीजिए, अगले पल मैं फिर भी मार
0: रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला भाई आपको सेहतियाब रखे, और मुझे भी अगर कोई छुट्टी वुट्टी लेनी है तो मैं ले सकता हूँ ना आराम से। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ आपकी तबीयत खराब रही तो कैसे काम
1: चलेगा।
0: तो भाई सभी को कहेंगे वेलकम अहलन व सहलन, और पूरे पूरे एक घंटा मैं और नाजिया आपके साथ बने रहने वाले हैं। बहुत टाइम है अपने पास बातचीत करने का, बहुत ज्यादा,
1: और आप तो जितना चीख सकते हैं
0: उतना चीख।
1: एक बात बताइए, बचपन में क्या हालत में माइक लेके पैदा हुए थे?
0: देखिए वो निकल के मैं बड़ा हुआ तो माइक भी देखिए निकल के बड़ा हो गया और सामने आ गया।
1: नहीं आपकी आमद से ऐसा क्यों लगता है शोर शुरू हो गया?
0: अरे ये जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया, यहाँ पे कॉलर जुड़ गए, उनसे बातचीत शुरू ही कर देते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे। हाँ उन्हीं से शुरुआत करेंगे, उन्हीं से शोशा जो है उसको छेड़ेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: अहलन व सहलन, कैसे हैं नसीम भाई हमारे साथ? लग तो वही रहे हैं
1: नसीम भाई, है ना?
2: लग तो रहा है, वैसे मैं कुछ
1: बोलूं
0: उनको भी लग रहा।
1: अरे वही है मैं चुप रहूंगा।
0: कैसे हैं नसीम भाई, खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कहाँ हैं नसीम साहब इस वक्त आप?
1: घर
2: मैं अलामी रोड में,
1: अल अहली रोड में। जी चलो थैंक गॉड आपने कहा, नहीं मैं घर पर हूँ।
0: नहीं कहाँ पर है अल अहली रोड, ये वैसे मैं जानना चाहूंगा।
1: अल अमीर के बगल में,
0: अल अमीर रोड पे हैं।
1: अल अमीर का है अलसद के बगल
0: में। नहीं नहीं मैं जानना चाहता हूँ ट्रैफिक का हाल अहवाल कैसा, क्योंकि मुझे आज
1: सेलिया के बगल में
0: जो है ट्रैफिक वो थोड़ा हल्का लगा है। तो नसीम भाई क्या हाल चाल है उधर ट्रैफिक का?
1: आप आ गए थे अंदर,
2: आवाज़ तो ठीक है मगर आपका नहीं लग रहा है।
0: आपका कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
1: आपका हल्का नहीं लग रहा है
0: ट्रैफिक
1: आपकी तरह।
2: कुछ हाल का पता नहीं।
0: अच्छा हाल का बनिया, हाल अल्लाह का शुक्र है भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जब आप लोगों के साथ जुड़ जाते हैं तो इस वक्त तो आके हाल और भी अच्छा हो जाता है हमारा। तो और कैसा गुजरा अभी तक का दिन, अच्छा गुजरा आपका? आज कुछ शेर वगैरह लेके नहीं आए क्या? हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल सुना दीजिए। अब आज पहली कॉल आपकी हो रही है तो
1: टॉपिक क्या पूछना चाहिए कि नहीं?
0: हाँ वो भी पूछेंगे आगे, शेर सुन ले पहले क्या कहते हैं। अच्छा। नसीम भाई इरशाद इरशाद
2: कहते हैं कि मेरा नहीं किसी और का है।
1: अच्छा
2: अजीब जुल्म करती है तुम्हारी ये आदत,
0: आंखें या आदत,
2: अजीब जुल्म करती है तुम्हारी ये यादें सोचूं तो बिखर जाऊं ना सोचूं तो किधर जाऊं।
0: अरे हल्का था भाई, वाह वाह वाह वाह, मतलब अच्छा है, अच्छा है, हल्का फुल्का शेर था ताकि तबीयत हमारी जरा सा अच्छी हो जाए। तो नसीम भाई
1: हल्की हुई नहीं,
0: आप अगर तंज वाला सुनना चाहते तो नाजिया को सुना दी, नाजिया को।
1: क्यों आप ही ने कहा हल्का, मैं तो भारी कह रही थी, आपने फट से बोल दिया हल्का। अब एक तंज वाला इनके लिए हो जाए।
0: नहीं नहीं कल सुनेंगे, कल इंशाल्लाह ताला नसीम भाई अच्छा वाला लेके आइएगा, तंज वाला सुनाइए।
1: क्या होती है?
0: रुक जाती है कुछ।
2: तुम्हारी बातें मुझे सर,
0: हाँ जी जी सर,
2: तुम्हारी बातें कभी कभी मुझे चुप सी जाती है।
1: ये आपके लिए सर है
0: भाई।
2: मुझे अच्छा कहूँ तो अच्छा लगता है, बुरा कहूँ
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय। हुआ शेर, ये क्या हुआ शेर के साथ? गिर गए मोबाइल, गिर गया लग रहा है नसीम भाई का हाथ से। नसीम भाई
2: अच्छा
0: है साथ में। नसीम भाई वाकई बड़ा अच्छा शेर था यार, ये तो बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये नाजिया के ऊपर कितना सेट बैठता है, क्या बात है। तो चलिए हैं,
1: ताज़ा और आपके लिए था।
0: बहुत अच्छा था,
1: ताज़ा से शेर इनके
0: ताज़ा जितना था उतना ही अच्छा था। तो नाजिया क्या कहती है, छोड़ दिया जाए बात कर ली जाए?
1: अब कौन सा घंटा
0: आ गया।

0: बहुत टाइम है, घंटा
1: घंटा है
0: भाई।
1: अल्लाह हाफिज तक आपने नहीं क्या कह रहे हैं जी से?
0: नहीं कुछ कह रहे हैं,
2: बोल रहा था और कुछ है तो बता तो जरा, तेरे आगे मैं सर झुकाता हूँ।
0: आए है नहीं ऐसा मत करें भाई, ये तो किसी के आगे नहीं झुकाना चाहिए, अल्लाह ताला हम सबको मान में रख के। आज है भाई वर्ल्ड बाबर डे, आज हमारे नाई भाई बिल्कुल यही वाली आवाज आई है, आज हमारे जो नाई हैं, हेयर ड्रेसर जो हैं, सलून वाले जो हैं, वर्ल्ड बार्बर डे है आज, उसको पूरी दुनिया में। हाँ जी
1: कह रहे, पहले बताइए क्या डे है आज।
0: हाँ नसीमा ही समझे, जो हमारे नाई हजरात हैं जो बाल वगैरह ड्रेस करते हैं सलून वाले, हाँ आज उनका सेलिब्रेशन होता है आज के दिन बरोज 16 सितंबर 2026, और पूरी दुनिया भर में उनकी जो कारकर्दगी है जिनकी वजह से हम अच्छे लगते हैं देखने में,
1: कहां लग हमें
0: पाते हैं? मतलब मेरे अलावा जो भी जाते हैं निकल के आते हैं, मतलब जैसे जाती हैं मैडम नादिया की अगर मैं बात करूं, सलून जाते वक्त कुछ और दिख रही होती हैं, आते वक्त ऐसा लगता है। मैं तो ढूंढ रहा था, मैंने कहा किधर कौन भाई, क्यों एक बार ले गई मुझे कि भाई जरा मुझे वहां तक छोड़ दो, 5 मिनट में मैं आ रही हूँ। मैंने इनको लिफ्ट भी दी और लौटते में मेरी गाड़ी में बैठने लगी, मैंने कहा मैडम एक्सक्यूज मी कौन है आप, मैं पहचाना ही नहीं यार, वाकई यार ये तो
1: भाई उस दिन आप काला चश्मा लगाए हुए थे
0: भाई, तारीफ
1: ना आपकी आंखों का, मतलब दुग्गल भाई आज दिख नहीं रहा ये प्रॉब्लम।
0: तो एनी हाउ नसीम भाई, आज इस खास दिन की मुनासिबत से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको अपना पहला हेयर कट याद है, या पहले आप किस तरीके से हेयर कट करवाते थे, या जो भी आपकी याद हो।
2: ये तो बड़ा अजीब सवाल है, पहला हेयर कट
0: याद हो? मुझे याद है मतलब जो अब आपने होश संभाला, और क्या वो मजबूरी में कटवाया जाता था?
1: मुझे बहुत सही लगा, पहला हेयर कट हमें कैसे याद हो?
0: कुछ कह रहे हैं
1: पहला हेयर कट नहीं होता, पहला मुंडन होता पूरे भाई साहब।
0: नहीं मतलब जब से आपने होश संभाला और उसमें कुछ जिद हुई, कुछ बहस हुई भाई, होती है, वालदेन कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे, और बच्चा जो है लड़का स्पेशली कह रहा होता ऐसे नहीं ऐसे। हम मुझे याद है यार, मेरे तो वो कहते हैं ना ऊपर से कटोरी रख के और चारों तरफ से बाल उड़ा दिए जाते थे, और जो बचा वो हमारा चला गया। तो ऐसी कुछ याद आपकी है जो आप शेयर करना चाहते हैं आज के दिन की मुनासिबत से? अच्छा आपने हेयर स्टाइल कभी कुछ अच्छे रखे हैं? तेरे नाम कभी बने हैं आप, कभी शाहरुख खान बने हैं,
1: कभी मेरे नाम,
0: कभी तेरे नाम, इंटरवल के बाद वाला बने हो आप,
1: कभी इनके नाम कभी उनके नाम
0: बने?
2: तेरे नाम से पहले वाले,
0: पहले, अच्छा
1: पहले, पहले इंटरवल से पहले,
0: इंटरवल से पहले वाले, मतलब वो लंबी लंबी जुल्फे हुए बीच की मांग, अब बेटे कितने कर रहे हो, लग रहे होंगे नसीम भाई, है वो फोटो है आपके पास, जिनके पास अगर वो फोटो है तो
2: ऐसा ऐसा कुछ हाल नहीं था, बल्कि मेरे सर के बाल
0: जो
2: एकदम बिल्कुल छोटा छोटा कर दिया जाता।
0: तो आप तो कह रहे हैं पहले वाला सलमान खान था मैं तेरे नाम का?
2: मेरे नाना साहब से अल्लाह
0: बोले के जाते थे बाल कटवाने,
1: अरे वो खुद घर में ही काट देते थे। हाँ ये भी तो होता था ना,
0: हाँ मैंने भी
1: कोविड में तो बहुत हुआ।
0: जी जी जी
2: मैं बोल रहा हूँ, मेरे नाना साहब थे
0: जी,
2: अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए।
0: अरे मतलब ऑनलाइन नहीं रहे, चलिए भाई दोबारा अगर कनेक्ट हो जाता असली मुद्दे पे तो वो इतनी देर बाद आए थे। देखते हैं अभी कोई और जुड़ गया हमारे साथ। हेलो सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई मैं फजल बात कर रहा हूँ।
0: फजल भाई,
1: फजल जी कैसे हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। बार्बर डे तो सही कहा आपने, मुंडन से होता था, लेकिन मुझे याद है बचपन में जब हम हेयर कट करके आती तो हमारी वालदा कहती कि अब तुम इंसान के बच्चे हो।
1: ये वाकई है
3: मुझे समझ नहीं आता था, मैं तो पहले से इंसान
0: मतलब अल्लाह ताला सबके वालदेन को अच्छा रखे और जो नहीं है भाई अल्लाह ताला, मगर उनका ये कहना अब तुम इंसान के बच्चे लग रहे हो,
1: इंसान लग रहे, ये वाले बिल्कुल सही लड़के तो, भाई को तो यही कहती थी लड़की,
0: ये मेरे ख्याल में तो कोई इससे बचा नहीं होगा इस डायलॉग
1: सबकी अम्माओं ने ये कहा।
0: इट्स नॉट अबाउट अम्मा, अब्बा तो नहीं कहते थे, अब्बा तो इंसान का बच्चा लगने देना।

0: तो एक चीज सिखाई गई थी, जीरो कॉस्ट मार्केटिंग, इसमें अच्छा। पैसा नहीं खर्च होता, दिमाग खर्च होता है। तो अपना एक रियाल खर्च मत करें, हजार रियाल का दिमाग खर्च करें। कैसे
1: कैसे
0: देखिए, आज बहुत सारे टूल्स हैं, हमको फ्री AI टूल्स मिली हुई हैं, इनको यूज करके पता करें कि आपको आपको कस्टमर पकड़ने के लिए या बिजनेस पकड़ने के लिए कैसे क्या चीज करनी हो।
2: तो हम ये बिजनेस की तरफ क्यों चले गए, बाल कटवाते कटवाते एकदम से बड़े हो गए हम।
1: ये कह रहे बाल कटवाते में बहुत अच्छे आइडियाज आ सकते हैं।
2: अच्छा, तो वो बता रहे हैं कि मेरे ये आते हैं,
1: आते रहते हैं।
2: अच्छा, भाई किसी को कंसल्ट करना है तो फजल भाई के पास चले जाए, जिस वक्त वो बाल कटवा रहे हो आपको अच्छी राय और मशवरा मिल जाएगा। बहरहाल फजल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी ही अच्छी बात करी आपने शुरुआत में ही सर,
1: और ये कभी आपकी बात पूरी होने नहीं देंगे, यकीन रखिएगा।
2: नहीं, अब मैं बिजनेस के मामले से क्या इनसे बात करूँ उस वक्त बैठ के,
0: ये मैं ये बोलना चाह रहा था कि देखिए, एक रियाल मत खर्च करें लेकिन हजार रियाल का दिमाग खर्च करें।
1: अब वो सर्वर भाई पे नहीं है।
2: आरा बहुत तेज, आरा कमेंट बहुत तेज, रोकना पड़ रहा है जी। हाँ, मैं आपकी बात,
0: हर हर जगह लागू होता है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस लाइफ हो या जॉब हो, आप एक रियाल मत खर्च करें लेकिन हजार रियाल का दिमाग जरूर।
2: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाजिया इतनी बिजनेस की बात करिए ना, हमने बैठ बैठ के पब्लिक समझती है, नाजिया बैठी है तो बिजनेस की बात करनी ही पड़ेगी, वरना हमारा जो सवाल है ना वो अधूरा रह जाएगा। तो मैं दिखाऊं कि मैं भी जानता हूँ। खैर बहरहाल बहुत बहुत मजेदार बात फजल साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मेरे हिसाब से सरवर भाई महा इंटेलिजेंट आदमी।
2: अरे वाह, ये आप दूसरी तरफ से हाथ लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है।
1: नहीं, एक महा इंटेलिजेंट है, महा महा।
0: आपकी क्या क्या इंटेलिजेंट है मैं आपको बताता हूँ। आपकी हंसी, आपकी कन्वर्सेशन स्किल, और जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो ना साहब, हम तो आपके शहदाई हैं
2: सर। ये तो आप की जरा नवाजी है, और आपकी बर्दाश्त है जो आप कर रहे हैं, बर्दाश्त है एक्चुअली जो आप कर रहे हैं, और मोहब्बत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। भाई बहुत अच्छी बात कही आपने, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। क्या कहती है, मैसेजेस की तरफ बढ़ा जाए, ब्रेक की तरफ बढ़ा जाए, या दूसरे कॉलर जो है।
1: मैं तो चाहती हूँ आप ब्रेक लें, ज़बान पे ब्रेक लीजिए।
2: अच्छा, एक मिनट लेता हूँ, ये किधर गया, अच्छा इधर है, कहाँ से शुरुआत करूँ।
1: अरे ये तो थोड़ा अंडा ले तो कम कीजिए।
2: अच्छा ये खुला रह गया। शहजादा सलीम हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हमें आपके साथ FM 107। बाकी तो दूसरा मैसेज सुबह का लग रहा है मुझे, कबीर भाई के शो का। देखो लो शहजादा भाई, उन्होंने आपका मैसेज नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत दिनों बाद आपको सुन रहा हूँ। वाह, गाड़ी खराब थी सर, तो इसकी वजह से 3-4 दिन आपको नहीं सुन पाया। ओ माई गॉड, मोहम्मद AK तजाक।
1: अच्छा एक चीज और मुझे यहाँ पे सर्वर याद आती है, जैसे आज वर्ल्ड बार्बर्स डे है आज,
2: जी जी,
1: तो पुराने टाइम में मुझे ये याद पड़ता है कि जो बार्बर्स होते थे वो सिर्फ बाल ही नहीं काटते थे, वो छोटी मोटी सर्जरीज भी करते थे, लोगों के दांत निकालना, मतलब इस तरह की चीजें पहले होती थी और
2: आज भी होती है ना दिया।
1: अच्छा आज भी हो रहे हैं,
2: आज भी होती है पुराने शहरों में, पुराने गाँव में आज भी लोग उनकी मदद लेते हैं, और भी खिदमात हैं जो वो अंजाम देते हैं। आपने भी देखा होगा यहाँ पर भी, अगर आपको मसल्स अपने रिलैक्स वगैरह करने हैं तो उस हिसाब से भी वो आपको सपोर्ट करते हैं।
1: नहीं, आज तो
2: कहते हैं भाई बादल आए आए मजे। अच्छा बादल आ रहे हैं और उनके मजे आ रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। जासिम भाई हैं हमारे साथ, जासिम बशीर, चलिए साहब बादल आ रहे हैं। नाजिया इज इट, जरा वेदर चेक करिएगा, आपको रिपोर्ट देनी भी है।
1: अभी तक तो मुझे तो नहीं,
2: कहते हैं वीकेंड आ गया, वाह कौन है हमारे साथ।
1: ये तो सच है कि हर वेंसडे में एक अलग खुशी होती है, लग रहा होता है कि जो थर्सडे में भी नहीं होती। जो
2: हमारे साथ सऊदी से जुड़े नाजिया, उन्होंने नाम नहीं लिखा, अपना नाम लिखते यार, तो और सऊदी से हमारे साथ जुड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, दोनों को सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: उस्मान उरक जई हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक कॉल और फिर हम एक छोटा सा ब्रेक भी लेंगे। हेलो सलाम वालेकुम।
3: पाजी ब्रेक नहीं लेना हैगा, हाले
2: गाबा है हमारे साथ है ना। नहीं ले रहे भाई, नहीं ले रहे। देखिए कॉल उठा दी आपकी, और गाबा भाई थैंक यू मत कहना, बस बाकी दुआएं दे देना यार, ठीक है।
3: मेहरबानी जनाब,
1: मेहरबानी, थैंक यू, धन्यवाद।
2: कैसे हैं गाबा साहब, और क्या हालचाल हैं आपके?
3: हाल चाल है जी, 4x4
2: 4x4 क्या बात है, ऑफ रोड हो रहे हैं आज, हाल चाल खैरियत तो है?
3: नहीं नहीं नहीं, आप वो गाना बहुत सुनते हो ना, 4x4
2: अच्छा वैसे ही हो रहे हैं आज हाल चाल।
1: सरवर भाई आप उन्हें मैसेज भी भेज रहे हैं।
2: अच्छा।

0: किसी और को भेज रहे हैं, क्या बात है यार, मल्टी मल्टी टैलेंटेड देखिए आप।
1: कभी-कभी आप ले आए कि जखल
0: आदाब, बहुत शुक्रिया। तो गावा भाई क्या कहते हो, कभी तेरे नाम बने थे या शाहरुख खान बने थे
1: या अपने नाम?
0: अपने नाम
2: सरवर भाई यकीन मानिए, मैं ना आज से अगर 15-20 साल आप पीछे जाओ ना, तो मेरा रंग भी थोड़ा सा सांवला था उस टाइम।
0: अब गोरे हो गए आप, ये क्या हो रहा है इस आदमी के साथ भाई?
1: सर्वर आपके साथ उल्टा हो रहा
2: है भाई, पता नहीं
0: उम्र जा रही, आदमी गोरा हो रहा है
1: और आपके साथ उल्टा हो रहा है।
0: हम तो खैर
1: पता करिए क्या कर रहे
0: हैं भाई, ये क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है?
2: मैंने वो क्रीम लगा ली ना जिसकी एड बहुत आती है,
0: ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अच्छा चलिए, तो आपका रंग जो है थोड़ा कम था, वो एक्चुअली जाहिर बात है जब लड़कपन होता है, भागा दौड़ी चल रही होती है, तो धूप में इतना ज्यादा हम लोग भाग रहे होते हैं, लड़कों की स्पेशली बात करी जाए तो वो टैन हो जाते हैं।
1: सर भाई आप नहीं भागे,
0: नहीं अच्छा
1: आपके पीछे लोग भागे पकड़ने के लिए,
2: शुरू से ही ऐसे थे सर
1: भाई, शुरू डे वन से चल रहे हैं।
0: अब सोचिए आप एक बच्चा पैदा
1: हुआ,
0: ये बात कहीं और जा रही है, तो मैं अब बच्चा पैदा हुआ और पैदा होती साक शाक नाजिया उनके घर में सामने हो, तो अब आप बताइए वो बच्चा कैसा निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा?
2: क्या बात
0: भाई, तो बताओ यार वो हेयर स्टाइल बताओ जो रखा लाइफ में और जिसकी वजह से आपको तारीफ भी हुई या फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ी।
1: अच्छा एक चीज और बताइए, हर कोई लाइफ में मैंने देखा है जितने भी बॉयज रहते हैं या जितने भी मेल्स हैं वो कभी ना कभी मुस्टैचेस अपनी रखते हैं, ठीक है? नहीं वो तो आपके भी हैं, ज्यादा बड़ी हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि फिर वो कभी ना कभी उसे कटवाने का भी शौक होता है, सबसे छुपने का बहुत होता है
0: लड़कों के अंदर, चौधरी बनने की बहुत ज्यादा एक ख्वाहिश होती है,
1: जब वो कटवाते हैं तो बहुत छुपते हैं और बड़ी अपने आप में इंसल्ट फील होती है, कुछ होता है इस तरह का भी क्या?
0: शुरू में तो ऑब्वियसली, हाँ शुरू शुरू में तो ऑब्वियसली जब वो कहते हैं ना वो कच्ची मुझे आ रही होती है, उस वक्त जरा सा शर्म आती है।
1: बाबा जी आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आपने पूरा क्लीन करा लिया प्लेस और फिर छुप के घूम रहे, मतलब निकल ही नहीं रहे घर में, छुपे बैठे?
2: ये नाजिया जी पता क्या है, ये जो मूंछों की शुरुआत होती है ना, सबसे पहले पहले तो बंदा अभी नॉर्मल ही रहता है, जब जवानी आती है ना बंदे पे, बंदा थोड़ी बहुत दुनियादारी देखता है, तो मैडम एक शौक अंदर से आता है बंदे को मूंछे रखने का।
1: अच्छा, अच्छा
2: हमारी तरफ तो मैडम इतना ट्रेंड है ना मूंछों का, आप यकीन मानिए भी बंदे अपनी इज्जत पे ले जाते हैं मैडम मूंछों को।
1: अच्छा
2: हाँ जी, हमारे वहाँ पे तो मूंछों को इज्जत के साथ में जोड़ा जाता
0: है। बिल्कुल ये है वाकई, सही कह रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो मैडम मैंने भी बिल्कुल रखी थी, बिल्कुल आप यकीन मानिए भी, जैसे कि छोटा नींबू है ना वो भी आप उसके ऊपर रख सकते थे, उस हिसाब की मैंने मूंछे रखी थी किसी टाइम में।
1: सही,
2: तो अभी मेरी मजबूरी है, मेरी वाइफ को पसंद नहीं है, तो उसी वजह से मेरे को ठीक नॉर्मल सा रहना पड़ता है।
0: इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा और
1: आपका बनता भी नहीं है कुछ कहना,
0: नहीं मतलब मैं इसमें कोई कमेंट भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ
1: फैमिली
0: बात है, इसलिए हाँ बिल्कुल नहीं कहूंगा,
1: आलू की तरह है।
0: बाकी वो समझ तो गए हैं, खैर गाबा भाई के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को मद्देनजर रखते हुए,
1: मुझे नहीं समझता।
2: मगर सरोवर भाई आप लोगों ने ना यार थोड़ा सा करंट लगा दिया है अभी, जैसे उसको हम लोग लगाते हैं ना रॉकेट को, रॉकेट ऊपर जाके हवा में
0: क्यों,
2: अभी स्पार्क लग गया है मेरे में दोबारा,
0: अब रखनी पड़ेगी आप।
1: दिखाइएगा भी हमको अपनी पिक्चर भेजिएगा,
0: आज खासम खास दिन भी है तो आज ही अगर आप इस
1: और
0: बात
1: सर्वर भाई
0: कर लेंगे तो
1: कोशिश करेंगे, खुद तो अपनी मूंछ साफ नहीं, हम लोग मिलके साफ करें फिर, ये अलग ही
0: मूंछे हो तो नथु लाल जैसी हो वरना ना हो आपको याद है। चलिए साहब गावा भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत निकाला आपने और अच्छी अच्छी बातें करी, थैंक यू सो मच।
1: थैंक
2: यू जी, चलो 5 मिनट हो गए सर्वर भाई, ज्यादा बात करने का फिर फायदा नहीं है ना,
0: बिल्कुल सही बात है।
2: एक्चुअली पता क्या है सरवर भाई, पिछले 10-15 साल में जैसे हमारे वहाँ पे ट्रेंड चला ना बाहर जाने का, तो माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुई हमारे वहाँ से, तो वहाँ पे ना स्पेशली इस चीज का कोर्स करवाया जाता था जी, सैलून से रिलेटेड काम का।
1: अच्छा
2: तो वो मैडम इतने ज्यादा उसके सेंटर खोले ना, इतने ज्यादा महंगे सेशन थे उसके, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा भी कमाया लोगों को ट्रेनिंग देके, और जिन लोगों ने बाहर जाके ये काम किया उनके लिए भी मैडम ये जीवन भर का रोजगार बन गया।
1: हाँ ये तो आपने सही कहा, बहुत ही ज्यादा लोग इसमें जो है वो ठीक ठाक पैसे कमाते हैं,
0: अल्लाह ताला सब।
2: मैडम बॉलीवुड वालों का है वो, जो बॉलीवुड

0: बहुत फेमस बंदा है आलिम हकीम करके.
1: अच्छा मुझे तो जावेद याद पड़ता था. जावेद अभी
0: जावेद जी भी हैं. वो भी बहुत फेमस.
2: वो टाइम टाइम की बात है ना, ये 80s की बात कर रही हैं आप, अपने टाइम की बात कर रही
1: हैं. अभी तक बंदा है भाई जान.
2: अल्लाह ताला उनको हयात दे, वो तो उनके पोते चल रहे हैं ना. आप उन्हीं की बात कर रही हैं, जावेद साहब की खुद की.
1: जावेद साहब की खुद की कर रही हैं. अच्छी बात. आज आपने क्या मुझे नहीं कटवाई है?
2: नहीं भाई, वो आपके टाइम पे थे. मैं कहना चाह रहा हूँ 80s में जावेद साहब ने काम खुद शुरू किया था. जावेद हबीब साहब
1: वो दो अलग है क्या?
2: नहीं, जावेद हबीब
0: उनकी ब्रांचेस बहुत हैं अभी. अरे भाई बहुत ब्रांचेस,
1: उनकी ब्रांचेस बहुत है. वो 80s के नहीं, अभी भी जवान ऐसे दिखते हैं.
2: ओके नादिया, ओके ओके
1: भाई, आपकी एक तो इन्फॉर्मेशन
2: नाजी चेक करेंगे फौरन. एनी हाउ गावा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई, थैंक यू सो मच.
1: बेचारी कुछ कह रहे थे, उनकी नहीं सुनी इन्होंने.
0: टाइम लगा तो जरूर देखना आलिम हकीम करके.
2: आलिम हकीम
0: और भी बहुत बंदे हैं. उसके एक हेयर कट का मेरे ख्याल से 2-3 लाख रुपया है सर्वथा.
2: सही सही सही. और ये तो आप अभी की बता रहे हैं.
1: क्या 2 लाख?
2: ये मार्केट प्राइस हबीब साहब की जो है वो भाई 12-15 साल पहले भी थी.
1: 2 लाख तो नहीं थी.
2: बिल्कुल थी, बिल्कुल थी. वो आपके लिए और मेरे लिए नहीं थी ना. शाहरुख खान जाएंगे तो 20 रियाल में थोड़ी देख आएंगे जावेद को. आप सुनिए
1: जी, नहीं 20 में नहीं थे उनके. इस वाला आप कभी हबीब गए ही नहीं है.
2: अल्लाह बचाए, मैं क्यों जाऊँ हबीब भैया. अल्लाह काहे को 2 लाख बढ़ाऊंगा मैं. मेरा भाई वैसे इतने दोस्त मेरे प्यारे बिना 20 रियाल लिए काम करे दे रहे. ओके गाँव भाई, इजाजत. इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा बात होगी. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.
0: दोनों भी ऐसे ही शो को 4x4 अपडेट की.
2: थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.
1: आप भी खुश
2: रहिए. थैंक यू सो मच. ओके देन, तो ये थे गाबा भाई हमारे साथ.
1: एक चीज और होती है सर्वर, जब बाल आप कोई कटवाते हैं, कोई भी हेयर स्टाइल कोई भी अडॉप्ट करता है या, तो वो उसकी पर्सनालिटी को भी दिखाने लगता है.
2: हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात.
1: वो मैं पता चल रहा होता है कोई लंबे लंबे बाल रखे तो आपके दिमाग में अलग ही है कि मैं जो उसकी पर्सनालिटी कहने का मतलब ये है कि जो बाल आपके जो हेयर स्टाइल आप कैरी करते हो उससे दूसरे लोग जो है वो हाँ इन्फ्लुएंस होते हैं. वो आपकी पर्सनालिटी को वैसे परसीव कर रहे होते हैं.
2: वाह.
1: तो जो लोग छोटे छोटे रखते थे वो लगता था कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं.
2: हाँ अच्छा,
1: पढ़ने वाले बच्चे.
2: मेरे बाल छोटे.
1: नहीं आपको तो गंजा
2: नेचुरली थे.
1: आपको गंजा
2: नेचुरली थे.
1: आपको तो गंजा.
2: अस्सलाम वालेकुम भाईजान, प्रोग्राम आपका जबरदस्त चल रहा है. आरजे का मतलब क्या है?
1: रेडियो
2: जो आप लोगों का नेम के आगे लगा रहता है, प्लीज अपडेट. सरताज है हमारे साथ. बताइए नादिया, अच्छी तरह समझाइए.
1: सर साहब आप समझाइए.
2: बिल्कुल सही कहा नादिया ने. रेडियो जॉकी इंग्लिश का वर्ड है, दो वर्ड हैं ये. तो ये आरजे उसकी शॉर्ट फॉर्म है. रेडियो से मतलब आर से रेडियो और जॉकी से जे लेके और फिर उसको जोड़ दिया गया है. जैसे वीजे होते हैं, आरजे होते हैं, डीजे होते हैं, आपने सुना होगा. तो डिस्क जॉकी वगैरह, वीडियो जॉकी, इस तरीके से हम आरजे रेडियो जॉकी. अस्सलाम वालेकुम सर भाई, आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करना चाहता हूँ. नादिया देखिए यार. ओ ख्वाजा भाई, अरे यार ये तो पुलिस में है यार खाजा भाई.
1: तो मैं भी चाहूंगी.
2: हाँ देखिए वाकई
1: मेरा भी दिल है कि आप.
2: मैं तो मजाक करना चाह रहा था कोई खाजा भाई का नाम लेके. मैं बिल्कुल नहीं कर रहा. यस सर, सलूट के साथ पैर उल्टा वाला पटकता हुआ जमीन पे खाजा भाई, जरूर मिलेंगे. ओहो,
1: मैं सारी फाइल भी खोल.
2: मैं ब्रेक लेने वाला था. लुक हु इज हियर. सोचिए कौन होगा हमारे साथ.
1: कबीर. सोचना क्या है?
2: मतलब थिंक ऑफ द कबीर अपीयर्स. एक्चुअली कहते हैं मैंने शक्तिमान की कॉस्ट्यूम पहनी है, तेरे नाम वाला लुक लिया है, आवारापन वाली जैकेट और बाल रखे हैं और कलयुग वाले रेड हाइलाइट्स भी करे हैं, तो ये मेरे लिए सवाल है भाई. देखिए कबीर साहब,
1: कलयुग वाले सही याद दिलाए.
2: आप
1: कलरफुल हेयर.
2: वो क्या है, वो एक सेइंग है ना कि हंस चुगेगा दाना, कौवा मूर्ति खाएगा, कुछ है ना पुरानी सेइंग है. नहीं याद आ रही हिंदी में है ना नादिया को, इसलिए याद नहीं आ रही. मगर कबीर साहब आप जो करें.
1: मुझे तो वो याद है कि वो कौवा भी अपनी
2: है कौवे से मिला रही है आप
1: अपनी चाल और अब...
2: कबीर साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी करें वो अपने आप में एक स्टाइल है भाई. आप स्टाइल आइकन है यार. आप कैसी बातें कर रहे हैं. बस ये बात है कि मुझसे आप हमेशा 19 ही रहेंगे और 19 ही दिखेंगे. तो ये तो यार यू नो यार व्हाट आई मीन टू से. नदीम महर साहब हमारे साथ हैं भाई, अल्लाह ताला खुश रखे. बड़ी मारूफ और मशहूर शख्सियत दोहा कतर की, हमारे सीनियर, हमारे उस्ताद मैं कह सकता हूँ. और कहते

0: यहाँ पर एक वॉइस नोट भेजा है उन्होंने,
1: सुनते हैं
0: तो देखते हैं हम। और कहते हैं बाल अपने बढ़ाते हैं किस वास्ते दीवाने, क्या शहरे मोहब्बत में हजाम नहीं होता।
1: यही पूछा जा रहा है सवाल।
0: भाई वाह नदीम भाई वाह, और इससे अच्छा मैसेज आपका क्या ही हो सकता है। और आपका मैसेज आया हमें बड़ा अच्छा लगा नदीम, एक भी गाना हम अभी तक नहीं चला पाए। कहते हैं सर भाई आप भी रख लो मूछे, आपकी बात हो रही नहीं है, तौफीक की ही बात हो रही है, आप समझ रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, नाजिया मैम कैसे हैं आप दोनों, मेरे बेटे का हेयर स्टाइल देखो, मैं इनका अब्बू हूँ, अब इस हिसाब से अंदाजा लगा लो मेरा हेयर स्टाइल कैसा होता रहता होगा। मुमताज अहमद, और ये कितना प्यारे हैं यार, माई गॉड यार, ये देखिए छोटा मुमताज,
1: अरे वाह वाकई कितना प्यारा है,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, इनका नाम भी लिख देते और बाल
1: प्यारा,
0: बड़े ही सिल्की से लग रहे हैं इनके।
1: अच्छा,
0: मुमताज
1: सिल्की
0: भाई
1: होने के साथ ये वाला अम्मा का कट होता था सबको आगे ले,
0: ये कटोरा कट है भाई, ये
1: कटोरा नहीं है, ये आगे लाना,
0: ये
1: बबीता
0: बबीता कहती हूँ, मशहूर था ना साधना, साधना कट भी होता था यार, याद है मुझे,
1: मतलब आपकी लड़कियों वाले भी
0: कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, गुड मॉर्निंग नाजिया जी और सर भाई कैसे हैं आप दोनों, होप वेल, वेलकम टू एनर्जी यार, दिल से।
1: अरे ये तो यूसुफ जी,
0: नहीं नहीं पूरा पढ़ना पड़ेगा, कह रहे हैं मैं केस कर दूंगा तुम्हारे ऊपर किसी भी दिन अगर मेरा मैसेज आ गया तो।
1: बिल्कुल सही,
0: कहते हैं मैंने जी आफ्टरनून नहीं, मुझे याद नहीं कि हेयर कट कोई खास स्टाइल से किया होगा अभी तक, यानी अभी तक भी मेरा हेयर स्टाइल सिंपल है, बस सिंपल मीन्स साइड से एक तरफ से मांग निकाल के बस अभी तक है वैसे ही, मतलब सर भाई बिग ईयरफुल कबीर भाई के बारे में कुछ नहीं गलत ना कहें, वरना कबीर भाई के फैंस आपको छोड़ेंगे नहीं, सो बी केयरफुल, यूसुफ भाई कहते हैं। भाई मेरे पास नाजिया है और इससे ज्यादा
1: नहीं, मैं हूं ही नहीं, मैं तो भाग जाऊंगी
0: पूरा हवा उधर उधर कहने में भाग जाऊंगी। वाह नाजिया इतनी, ये क्या बात हुई,
1: यही आपको मुझसे उम्मीद थी, मैंने साबित किया।
0: दिस इज कम कम, ओ कम कम भाई, व्हाई आर यू सेंडिंग दिस कम कम मैसेज, प्लीज कॉल अस मिस्टर कम कम, मत कर हुस्न पे नाज, i10 4 दिन की मस्ती, तेरा हुस्न उस वक्त तक है जब तक रंग गोरा करने वाली क्रीम सस्ती है। बिल्कुल इसी तरह देख लो, i10 4 लिखा हुआ कम कम भाई का मैसेज है, कम कम समझ में आ रहा है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई कहते हैं, यार एक्सक्यूज मी प्लीज, हु इज दिस, मिस्टर मकसूद आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं कबीर की आवाज लग रही है आपको मेरी, ये आप मुझे किससे मिला रहे हैं, आप ये देखें जरा प्लीज, बहुत लंबा मैसेज है यार, पढ़ने में शाम हो जाएगी।
1: नहीं पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए,
0: नहीं नहीं पढ़ूंगा पढ़ूंगा, मगर मुझे ब्रेक का इशारा हो रहा है और नाजिया अगर ये ब्रेक नहीं लिया गया ना तो परेशानी भी हो सकती है। एक मैसेज उसके बाद आगे, ये लंबा वाला मैसेज बाद में पढ़ूंगा मैं। कहते हैं यहाँ आ जाते हैं, एमबीबी के पास आ जाते हैं, कहते हैं नाजिया मैम,
1: हाँ जी
0: केम छो मजामा
1: मजामा,
0: आपको और तमाम लिसनर को गुड आफ्टरनून कतर एमबीबी,
1: वेरी गुड आफ्टरनून,
0: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कहते हैं वसूली जी, अच्छा यहाँ मैंने कहा कि यार मुझे सलाम नहीं कह रहे,
1: आपको ही वसूली जी कहा जा रहा है।
0: और कहते हैं कवा मोटी हैंड्स दाना, यार मैं कुछ मैंने गलत तो नहीं पढ़ दिया,
1: पढ़ा है,
0: I am sorry, मुबीन भाई का मैसेज है यार, इसको डीकोड करने में किसी दिन सजा ना हो जाए भाई। सलाम बोथ ऑफ यू, हेयर स्टाइल तो बचपन से ही शौक रहा है और मैट भी बहुत मार होगा, मार भी बहुत खाई है बालों पर, प्लीज मेरा टेक्स्ट पढ़ लीजिए, मोहम्मद हमारे साथ,
1: मोहम्मद जी सही है। और सबसे पहले पहले तो पिटाई बालों से ही होती थी,
0: नहीं हेयर स्टाइल अच्छा भी है,
1: अरे हाँ
0: है ना, मैं दिखा भी दिया मैंने नादिया को,
1: वॉल्यूम है, वॉल्यूम है बालों में,
0: वॉल्यूम तो हमारे पास भी, देखिए अभी चलाता हूँ
1: आपका तो गायब है,
0: ये देखो

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: दो बज के दो मिनट, दो दो आप दो हम दो और FM 107 मिला नहीं, मजा नहीं आया।
0: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: भाई जल्दी से, अब मूड तो हमारा था गाना चलाने का, बट यहाँ पर कॉलों का सिलसिला भी शुरू हो गया और मैसेजेस भी हैं। नाजिया, कॉल, मैसेज, वेदर अपडेट, गाना, क्या जो आप कह दें मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मैं गाना लगाओ, आप कहती है
3: कॉल ले लेता हूँ।
2: देखिए यहाँ पर कोई हमारे साथ जुड़ गया। हेलो,
4: अस्सलाम
2: वालेकुम व
3: रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
4: और क्या हाल चाल है जनाब, खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसे हैं? हमारे साथ जैज भाई हैं, तला भाई हैं, इनमें से कोई एक है। ना जैज भाई है ना तला भाई, कोई नया है,
3: कोई और भाई है। आपका नाम?
4: अरे जैज।
3: अरे जैज भाई, अच्छा, अरे जैज है, जैज नहीं, अरे
4: जैज। नफन बड़े हो गए क्या?
2: नहीं, मैंने तो आपसे शुरू में यही कहा, मैंने कहा या तो जैज भाई है या तला भाई है। कैसे है जैज साहब, खैरियत से हैं? कैसा गुजरा अभी तक का दिन आपका? नहीं है,
3: चले गए।
2: चाय वगैरह पी रहे हैं? मैं बीच में पहले एक चुस्की ली, सुस्की की तरह, और फिर बात करी। तो जैस भाई,
3: गाड़ी आगे पीछे
2: पार करके हमसे बात करें। उनको मानो बिल्कुल। मेरे ख्याल में सभी लिसनर्स हमारे इस बात का ख्याल रखते भी हैं और जरूरी है इस बात का ख्याल रखना। तो जैस भाई, आज का मौजू जो है, अभी तक आपने प्रोग्राम
3: बाल बच्चे मतलब।
2: तो आप नहीं, हेयर स्टाइल की बात हो रही है, आप शेयर कर सकते हैं अगर आपने कभी कोई ऐसी याद है। हाँ बिल्कुल, कोई याद है आपकी ऐसी, या कोई ऐसी बात आप बताना चाहते हैं। आज एक्चुअली वर्ल्ड्स बाब डे है, तो वो हम मना रहे हैं बहुत बचते हुए।
3: इतने झूठे लग रहे हैं ना बाब।
2: मौजू यही है कि आपको कोई याद है आपके अपने जो हेयर ड्रेसर हैं,
3: हेयर ड्रेसर हैं,
2: उनसे आपके कैसे ताल्लुकात हैं, और क्या आज तक आप
4: दोनों जो है ना, आप दोनों अपनी खिचड़ी पकाओ पहले। तो
2: नहीं, आज तक आप वापस जाते हैं जब अपने मुल्क, तो आप उन्हीं के पास जाते हैं जहां आप आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, या जो भी है, जो यादें हैं, या
3: अच्छा,
2: जो
3: आप ऐसे पूछ रहे हैं कि आपका कोई फेवरेट हेयर स्टाइल रहा है, कोई स्टाइलिंग?
2: बहुत सारे सवाल है हमारे पास।
3: हाँ, मतलब
4: नहीं, सिंपल, जहाँ जो है जैसी कटिंग मिल जाए बस करा लेते हैं।
3: अच्छा, कुछ भी ऐसा नहीं कि ऐसा हो वैसा हो, कुछ भी नहीं, जैसा उसने काट दिया,
2: कोई नखरे नहीं?
4: ना ना भाई, सुनना।
2: अच्छा अच्छा, कभी आपने बाल अपने हाईलाइट वगैरह कराए हैं, नीले, पीले, काले, जैसे कबीर भाई का?
3: काले तो है।
4: कुछ नहीं भाई, आज तक कोई कलर वालर कुछ भी नहीं कभी।
2: अच्छा, तो क्या करते हैं, मतलब जाते ही नहीं है सैलून? क्या मसला है, रिपेंजल बन गया?
4: सैलून जाते हैं भाई, कटिंग कराते हैं।
2: अच्छा, मतलब नॉर्मल जाके बैठ जाते हैं और कहते उनसे कुछ नहीं है, वो उनको खुद मालूम है क्या करना है। एक्चुअली जैज आ गया है, जैज आ गया तो अब क्या करना है उनको पता?
3: जैज कट।
2: ये तो 3 साल हो गए, मतलब पीछे अगर हम बात करें इंडिया की, तो वो जहाँ आप जाते थे, आज जब इंडिया जाते हैं तो उनके पास जाते हैं?
4: ना भाई साहब, पता चल गया कि यार ये बिजी है, दूसरा खाली बैठा, उसके पास चले जाओ,
3: चलिए सही करा इनके लिए। अच्छा, कोई ये नहीं है, कंपल्शन नहीं है। हाँ, ये की शॉप पे
2: टेंशन, ये टेंशन है मेरी लाइफ में भी।

0: है भाई
1: आपकी, तो भाई, बहुत सारी
2: है यार। सरवर भाई आपकी काहे की टेंशन है?
0: के साहब उन्हीं को ही कहूंगा जो बाल काटेंगे वही काटेंगे, मतलब मेरे बाल जो भाई हैं।
2: इससे तो नादिया बाजी ने नोच दिया।
0: अब जैसे बैठा जैसे हमारे, हाँ ये बात भी सही है यार, ये यार मेरे दिल की बात कह दी यार जयंत भाई, बहुत बात
1: ये आते ही ये बात कहने हैं, ये आते कहते मेरा आग लगा के मुझे ऐसे नहीं जाऊंगा।
0: अब जैसे मेरे हैं,
2: आज मैंने कुछ भी नहीं कहा,
1: वही तो मैं कह रही हूँ माशाल्लाह आप जब भी कहते हैं बहुत ही अच्छा कहते।
0: तो साहब सुहेल, अरे सुन लो यार मैं नाम लेना चाह रहा हूँ उनका, जो मेरे मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं और जो मुझे ग्रूम करके इतना हसीन और हैंडसम बनाते हैं, बस मैंने कभी गुरूर नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो है वो उनका नाम है सुहेल भाई एक्चुअली, तो मैं उनका नाम लेना चाह रहा था और
1: खुश
0: रख के हाँ जरा चुका हर बात बताने वाली थोड़ी होती है यार, हद हो गई। खैर चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया जयंत भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए।
2: आज सरवर भाई आज मैं बताऊँ, आज जो है ना खैर खबर आपकी लेनी थी मगर आप पब्लिक की खैर खबर ले रहे हैं।
0: अच्छा कुछ मुझसे गलती हुई है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं भाई,
0: तक
2: यही है कि
0: नाखून
2: काटे हैं निकालते हैं
0: कटवाए
2: हैं
0: कटवाए हैं। अच्छा पूरे ग्रूमिंग डे बनाया जा रहा है क्या? हमें नहीं पता, हम तो खाली बार बार डे समझ रहे हैं। अरे यार मैं साफ सुथरा रहता हूँ, टीचर बचपन से, अरे भाई जो टीचर नादिया ये करती है, हम ऑफिस आने से पहले हमें सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, यहाँ तक के पैरों के भी नाखून चेक कर लेती है भैया, ये ऐसी है, ऐसी बात नहीं है। साफ सुथरे। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया जयंत भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल आपसे बात होगी। नादिया अब अल्लाह हाफिज भाई, अब तो गाना बनता है यार, एक गाना तो प्रोग्राम में चलना ही चाहिए, सारा भी उधर से देख रही है मैं झक झक के, ये लोग कब गाना चलाएंगे, कितना बोलते हैं। फहीम अब्दुल्ला सैयारा का रीमिक्स सुनिए, डीजे नोनी। हाय हाय हाय हाय क्या बीट दी है यार जबरदस्त। एंजॉय कीजिए ट्रैक इस वक्त, एनर्जी आर में सर्वर नाजी आपके साथ है, ओनली ऑन एफएम 107।

0: फहीम भाई यार। कश्मीर से जो लोग होते हैं उनकी आवाज वाकई बड़ी खूबसूरत होती है। अच्छा पढ़े लिखे भी ज्यादा होते हैं मेरे ख्याल में, मतलब ये डॉक्टर वगैरह कश्मीरी जो हैं हमारी तरफ तो बहुत है भाई अलीगढ़ में, तो खूबसूरत तो होते ही होते हैं।
1: नहीं, और लोग भी पढ़े लिखे
0: मुझे देख के भी लोग कहते हैं कि आप कश्मीर से हैं सरूर भाई।
1: नहीं, पूछते कश्मीर के पीछे बैठे थे सरूर भाई।
2: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर।
1: आपसे तो बहुत बार लोगों ने पूछा और वादियों के पीछे बैठते थे।
0: कौन सा ऐसा दिन होगा जब आप मेरी खूबसूरती का जो मतलब ये बर्दाश्त कर पाएंगे, मुझे तो लफ्ज भी नहीं मिल रहा है।
1: सरूर भाई जिस दिन मेरी आंखें काम करना मेरा साथ देना छोड़ दे
0: दोबारा मैसेज किया है, कहते हैं अच्छा? और हाँ मैंने इलेक्ट्रिक ब्लू भी स्ट्रीक्स कराए हैं, हिम्मत है तो करके दिखाओ कोई लड़का। अरे अल्लाह मोर बन के टहल रहा आदमी, मोर बन के टहल रहा, बताओ हमारे बस की कहाँ है मोर बनेंगे, जबकि मोर भी मेल होता है, वो जो परवर फैलाता है वो होता मेल ही है।
1: नहीं सर भाई आप
0: क्रो यार, मोर से इंस्पायर बताइए
1: और आप क्रो से,
0: मतलब अल्लाह तेरा चुका
1: आपने ब्लैक रख रखे है ना, सही किया क्रो से।
0: अब तो स्किन भी वैसी होती जा रही है। हाय अच्छा हेलो हेलो
3: सलाम अलैकुम।
1: अरे ये तो तौफीक ठीक है,
0: ये इनका FM 107
1: आवाज कितनी अच्छी है।
0: ये नींद के बाद हो जाती है जब आप 3 घंटे तुम्हें
1: नहीं जो भी आवाज वाकई बहुत अच्छी है।
3: आप लोग प्रोग्राम नींद का टाइम होता ना, प्रोग्राम थोड़ा जल्दी करो ना।
0: अच्छा इंशाल्लाह ताला कल आप बता दीजिएगा कितने बजे रखना है, डेली उसी हिसाब से रख लेंगे। तो इसमें क्या बात हो गई, वाकरा के लोगों से मैं ज्यादा बहस करता नहीं हूँ एक्चुअली,
1: बनती नहीं है,
0: बनती नहीं मुझे मालूम, माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं
1: आपकी बनती बहुत,
3: आपके पास बैठी है ना इसलिए बोल रहे हैं।
0: नहीं मैं नाज़िया आर यू फ्रॉम वाकरा रियली
3: तमाम
0: हाँ वाकई वाकरा तमाम
1: तमाम
0: क्यों याद आया इनको वाकरा के नाम पे कुछ कहना चाहती है मगर कह नहीं पा रही है, ठीक है और फिर बात कर लूंगा मैं। तो तौफीक भाई क्या कहते हैं आज के मौजू के ऊपर,
3: बालों के बारे में ना।
0: हाँ हेयर कट आपको अपना कोई याद है या अभी भी आप स्टाइलिश बने घूमते हैं जैसे हमारे कबीर साहब जो हैं, मोर बने टहल रहे हैं आज की डेट में भी
3: वो तो कपड़े में छुपा रहा है ना बाल पूरा।
0: हाँ नहीं नहीं अब तो उन्होंने अपना जो कपड़ा है जो बैंडाना है वो उतार फेंका है और एक नई तरीके से आए हैं पब्लिक के सामने और नई जुल्फे और मतलब क्या ही कहने उनके।
1: सरवर भाई आप भी अपना हेयर स्टाइल बदल
3: दीजिए।
0: कबीर भाई फोटो भेजना, अरे यार आपने कबीर भाई से मुलाकात ही नहीं करी, इसका मतलब बहुत दिनों से देखा नहीं आपने। ओहो
3: कपड़ा उतार के करेंगे तो जुम्मे को जाऊंगा खाला डर है।
0: अरे भाई नए सीजन में नए हिसाब किताब से आए बिल्कुल ही उड़े, जब जब जुल्फे तेरी हो रहा है गाने चल रहे हैं उनके हाथी, चलिए खैर उनसे भी मिलिएगा। तो आप क्या कहते हैं,
3: मैं तो आर्मी में रह चुका हूँ,
0: मुझे बड़ा अच्छा लगता
1: है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आर्मी क्रू कट,
0: मतलब मजबूरी भी है खैर मगर
3: मुझे आर्मी कट पसंद है, बस मशीन मारो 2 नंबर 2.5 नंबर ऐसा शेडों में डिजाइन थोड़ा कर दो।
1: सबसे अच्छा हेयर स्टाइल मुझे पता है वही लगता है मुझे, अगर कोई मुझसे पूछे तो एक अलग ही एक शराफत है।
0: अरे तो कल से करवा लिए काम
1: भाई, आप आपके मामले में तो मुझे वो वाला कट पसंद है जो पुलिस काटती है पकड़ने के बाद ले जाती
0: है, मुझे तो भाई मांग निकाली जाती है।

0: रख के बाकायदा खबरदार इधर से उधर हो गए बाल अगर।
1: अच्छा सर्वर भाई का एक और मसला है, बालों को बैठा लो फिर खड़े सीधे बैठते ही नहीं।
0: वॉल्यूम वॉल्यूम कह रहे थे
1: वॉल्यूम
0: वॉल्यूम
2: लगा के
0: सुलाता है। अब मेरे ख्याल में साहब तो अभी भी
1: यंग है माशाल्लाह।
0: नहीं वो तो है ही माशाल्लाह, मगर कोई ऐसा शौक नहीं है उनको जुल्फे जुल्फिकार बनने का या
2: आर्मी कटिंग मेरे लिए हमें पसंद है,
1: सबसे अच्छा है, बताए सबसे अच्छा है, बेस्ट है।
2: तीन चार सैलून में जाता हूँ मैं, सीधा बैठ के अलग कटिंग करो, मेरा आंखें बंद करके वो काम कर रहे खुद।
0: अच्छा
1: अच्छा, ये चुपचाप बैठ जाते हैं, वो अपने हिसाब से काट लेता है।
0: ओके
1: हाँ ये भी अच्छा, देखो कुछ लोग इतने सिंपल होते हैं, कोई मसला ही नहीं है,
0: इतने सिंपल हो रहे हैं।
2: सरवर भाई को मैं सिखाऊंगा।
0: अच्छा हाँ नहीं अरे मैं मुझे बेहतरीन कटिंग आती है,
1: इनको तीन चार बार सिखा दीजिए मैं बाल निकल लिए।
0: अच्छा नहीं ये सोना सिखाएंगे वहाँ जाके दुकान पे जाके सोना करे सिखाऊंगा। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है,
2: मशीन है अभी फोटो भेजता
0: हूं। मशीन की जरूरत नहीं है भाई, जबरदस्त हेयर ड्रेसर हूँ मैं, आप क्या बात कर रहे हैं, कोई ऐसा काम है जो मैंने छोड़ा है यार, कोई नहीं
2: तो मैं तो मेरे ऊपर स्टाइल बना रहा, तुम्हारा स्टाइल
0: मैं बनाऊंगा ना। आपने चालबाज देखी है, चालबाज में श्रीदेवी मेकअप करती है, उसका क्या नाम है,
1: वही तो मैं कह रही हूं, आप इनसे
0: तौफीक भाई कितने प्यारे लगेंगे।
1: देखो कहाँ रह चुके हैं, ये याद रखो कहाँ का बैकग्राउंड है।
0: हाँ नहीं मैं माजरत चाहता हूँ तौफीक भाई, अगर मैंने ज्यादा मजाक कर दिया है तो मैं माजरत
2: कर लो,
0: मोहब्बत है भाई की।
2: मेरा सर आपका डिजाइन,
0: अरे मेरा भाई कैसा तौफीक भाई, अरे, पैसे
1: अरे
0: पैसा।
1: भाई इनको कुछ नहीं आता, कभी मत कटवाइएगा।
0: आदाब नाजिया, बहुत शुक्रिया दर्रा नवाजी के लिए,
1: सारा आपके बाल
0: खराब, बहुत शुक्रिया सारा को याद कर रही है नाजिया इस वक्त,
1: सारा को तो मैं हर वक्त याद करती हूँ।
0: तौफीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का भाई, मोहब्बत
1: मोहब्बत
0: इतना इतने पैसों में इतना ही गेम चल रहा है आज के लिए, दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करना है हमें। एक अभी ले रहा हूँ मैं, आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। ये क्या हो गया नाजिया, मैसेज चलते चलते
1: एग्री कीजिए।
0: अच्छा वाकई मैं क्यों करूँ, आप कीजिए कम से कम भाई मैसेज, हमारा मोबाइल जो है वो बेचारा
1: ओ,
0: बंद हो गया है,
1: डरपोक है
0: नाजिया। नहीं ये तो खुल ही नहीं रहा, प्लीज हेल्प
1: की तरह हो गया।
0: हाँ वाकई यार, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम,
1: ये लीजिए ये लीजिए।
0: अहलेन अहलेन, कौन है हमारे साथ?
3: हमारा भाई कैसा, पैसा ही पैसा।
0: अरे ये वो आसिफ भाई, आसिफ भाई कैसे हैं आसिफ भाई, खैरियत से?
3: बस आपकी दुआ सर। आज क्या हो गया भाई, एकदम एनर्जी फुल, एकदम लेवल पे दिख रही है आज मेरे को।
0: यार नाजिया शो में मौजूद हो तो कैसे, आप बताइए एनर्जी कैसे ना हो। नाजी तारीफ करिए मैंने आपकी, आप इसको डोंट टेक इट अदर वे। आज मैं अच्छा वाइज यार, चलो ठीक है दोनों तरफ से एक ही, जितनी दिक्कत है हूं बोल के जाऊंगा। आसिफ भाई, आसिफ भाई, आसिफ भाई क्या बोलते हैं, आसिफ भाई कैसा था
3: नंबर
0: स्टाइल अपना, अभी कैसा रखा हुआ है आसिफ भाई? यार हमारे पास काश कुछ फोटो आए तो है, ऐसी बात नहीं है। अभी क्या लंबी जुल्फे हैं छोटी हैं?
3: अपना हेयर स्टाइल पूरा कबीर भाई के ऐसा भाई, एकदम लंबे बाल,
0: अच्छा
1: नीले पीले
0: कलरफुल,
3: हाँ कलरफुल।
0: अजी यार नीले तो नहीं करवाऊंगा आपने।
1: अच्छा,
0: ये
1: आसिफ जी मुझे सच में बताइए, जो लोग नीले और इस तरह के कलर्स कराते हैं उसे क्या क्या पीछे सोच क्या होती है?
3: बहुत खूबसूरत लगता है पहली बात तो बंदे लोग
1: ये सोच लेके जाते हैं।
0: वाह
1: हाँ, ये वही सोच
0: रहे होते हैं। कहूं कि मैं खूबसूरत क्यों नहीं लग रहा हूँ, मुझे अब नीला पीला होना पड़ेगा, लाल तो मैं हुई अपनी अम्मा का,
1: वो तो मैं लाल तो आपको कर ही सकता
0: हूँ। हाँ वो भी है, मगर कुछ अब नाजिया करवाना पड़ेगा।
3: नहीं भाई मैं सरोवर भाई एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम पैसा खर्चा करवाते ना अपने बालों के ऊपर तो अलग खूबसूरती नजर आती है
1: भाई, वो बदसूरती तो नहीं लगती?
3: अरे नाजिया बहन ऐसा मत बोलो बहन,
0: नहीं
1: नहीं मतलब कोई लोग ऐसे तो नहीं कहते ये क्या करा लिया आपने, जो मतलब एक कुछ बहुत ही अलग सा नहीं हो जाता जो लोग नीले और पीले और हरे जैसे करा लेते, तो मैं वाकई जानना चाहती हूँ क्या सोच क्या होती है पीछे।
3: बहन हम तो फिर भी थोड़े थोड़े ही करवाते हैं, आप लोग तो उससे भी ज्यादा करवाती हो।
1: अरे मैं तो
0: अब बात कहीं और जाती हुई है,
1: पूछना चाह रही हूँ जो भी कराते हैं
0: बच्चों बुजुर्ग दोस्तों।
3: और एक बात, मेरी दादी ना सरोवर भाई की ऐसी सेम सेम है,
1: कटोरा,
3: हाँ कटोरा
1: रख के काट दिया घर पे।
0: दादी करती थी ऐसा?
3: जी सरोवर भाई,
1: मैं दादी जो है वो कटोरा रख के कटोरा,
0: हाँ वही जो हमारे साथ होता था। मेरे ख्याल में तो ये सभी के साथ होता है, हर लड़के के साथ हुआ है ऐसा, शुरुआत में तो होता ही ऐसा है। तौफीक भाई ने आपके लिए फोटो भेजा है, और नीचे उन्होंने सारे अपने चीजें भी भेजी हैं,
1: लेकिन

0: के बाल अच्छे हैं।
1: तो आसिफ भाई,
0: भाई आपके
1: आपका मैसेज भी है यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कह रहा था ना कि हमें फोटोज आना शुरू हो गए हैं और रिजवान है यहाँ पर बड़े
0: अच्छे बाल किसके आ रहे हैं।
1: हाँ भाई रिजवान साहब एक से एक जुल्फे यार क्या बात है
0: भाई, इतने इतने
1: आसिफ भाई आप भी अपना फोटो भेजने का भाई देखेंगे हम कैसी हैं आपकी जुल्फे। सब सब खैर है भाई, सब खैर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए आसिफ भाई।
2: थैंक यू, दो से तीन बार ट्राई किया आपको कॉल, अभी आपने पिकअप कर लिया, मैं तो नमाज पढ़ूंगा।
1: थैंक यू सो मच भाई, आपने वक्त निकाला, जरूर अल्लाह ताला कबूल फरमाए भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
0: अच्छा एक चीज और भी है सरवर, हम जो मिस कर रहे हैं बात वो ये कि कई बार ऐसा भी होता था पहले भी और आज भी, जो जो हेयर कट या बार्बर का जो भी सलून है ना
1: जी,
0: वो एक सोशल गैदरिंग या फिर एक मतलब आपस में बात करने का एक हब पॉइंट भी होता था। बहुत सारे लोग जितना भी डिस्कशन करना है, मुझे याद है अपने कजिन जो ब्रदर्स होते थे वो कहते थे कि अरे ये बात यहाँ, अरे यहाँ नहीं करते, वहाँ मिलते हैं वही बाबर की शॉप पे और सब वहीं पे
1: डिस्कशन होगा लंबा
0: लंबा। तो इस तरह से जो बाबर्स होते ना उनको हर एक घर के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया रहते ही था कि किसके घर में क्या चल रहा है।
1: बेहतरीन यार, एक से एक, एंड यू वोंट बिलीव दिस इज कम कम बाय विद अस, देख रहे हैं
0: बाल तो
1: बिल्कुल है। भाई मेरा जॉनी इब्राहिम का छोटा भाई लग रहा है एकदम यहाँ पे कम कम भाई मेरा। पहले मेरा बाल उतना लंबा था कि जब मैं चलाता था तो लड़क लड़क जा होता था। इतने मतलब बाल में इतना बन था कि लड़खड़ा जाते थे मेरे ख्याल में कम कम भाई।
0: ये कह रहे हैं कि आप जबान लड़ाते हैं ये बाल लड़ाते हैं।
1: वाह, कहते अरे वेलकम वाले भाई साहब कैसे हैं, नाजिया जी आप भी कैसी हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: मोहम्मद हुसैन हमारे साथ, वेलकम वाले भाई साहब। अभी कुछ कबीर भाई का इशू हो सकता है और तो कोई नहीं है मेरी लाइफ में यहाँ पर। ये गालबन अरफाज अरबाज भाई हैं जिन्होंने फोटोज भेजी हैं अपनी, बहुत सारी हमें, लुकिंग हैंडसम एंड स्मार्ट, कह रहे हैं छपरी लगते हैं, उनको छपरी बोलते हैं। मैंने बड़े बाल रखे थे बचपन में मेरा, अच्छा इनके पापा ने बहुत मारा था मुझे, डांट देते थे कहते हैं। ओ कौन है हमारे साथ 786 मोहम्मद अब्बास, अच्छा जी अब्बास भाई। फाइन सर्वर ब्रो, फाइनली सर्वर भी,
0: क्या मतलब
1: यार? ये तो आपको डीकोड करना पड़ेगा, ये लिखा है तो मेरे ख्याल में आपसे मुताल्लिक होगा ये मैसेज, कि आपने मुझे डांट वांट मार के खामोश कर दिया है, एंड समथिंग लाइक
0: सर्वर भी,
1: फाइनली सर्वर भी कहते हैं, क्या बात होगी यार,
0: सर्वर डाउन है आज।
1: जैनी तर्रार है हमारे साथ, यही लिखा हुआ है, रियाज है हमारे साथ, रियाज भाई ने कैची भेज दी है यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं कुछ मैसेज, चौधरी साहब सलाम टू बोथ ऑफ यू। सर्वर भाई
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: आपका भाई मुदस्सर पाकिस्तान में कुछ इस तरह जिंदगी गुजार रहा था। ओए होए चौधरी भाई लग रहे हैं बिल्कुल, क्या हो यार जबरदस्त भाई, एक से एक फोटोज मैसेजेस, एक कॉल लेते हैं मैसेजेस,
0: एंड आई थिंक ये लास्ट ही हो गया।
1: हां बिल्कुल, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
3: मेरा नाम मोहम्मद अकरम।
0: मोहम्मद अकरम जी,
1: कैसे हैं अकरम भाई, खैरियत से?
3: ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आज का सब्जेक्ट बहुत अच्छा दिखा मुझे हेयर कट के बारे में।
1: अच्छा दिखा इसलिए क्योंकि बाल दिखते ही हैं, क्या बात है, तो क्या कहना चाहते हैं?
0: उड़ते भी हैं सर मिर्ज़ा, उड़ते भी हैं।
3: जैसा कि मैं अब एक ही बार बार के पास जाता हूँ, बच्चों को भी लेके जाता हूँ, तो ना मेरा अच्छा। नंबर बोलते 3435 बस, उससे हट के कुछ भी नहीं। तो कभी कभी ये लोग मिरर भी लेके आके बताते हैं ना पीछे के बाल कैसे कटे ये सब, तो मैं वो यानी कि आराम से धोके उठता हूँ आराम से,
0: नंबर टू नंबर
3: यानी कि वो कभी बहुत जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ना 80% तो मैं आईना तो देखता नहीं हूँ, मुझे अच्छा। मालूम है बाल कैसे छोटे।
1: अरे आप आईना ही नहीं देखते?
0: इन्हें पता है
3: मुश्किल से देखता हूँ।
1: नहीं मतलब वहाँ जाके नहीं देखते सैलून में, या वैसे ही नहीं देखते?
3: नहीं सलून में तो वो सामने जो है शीशा बस वही है, उसके बाद तो घर में इधर
1: तो उसमें क्या करते हैं उस वक्त, पेपर वेपर लगा देते हैं
3: उतना ही काफी हो जाता है।
1: नहीं देखते क्यों नहीं, आईना क्यों नहीं? अब तो मुद्दा ये हो गया भाई, एक घंटा और चाहिए,
0: आईना क्यों नहीं देखते?
1: क्यों नहीं देख रहे शीशा, वजह क्या है? टूट जा रहा
3: है छोटे ना, उसको देखना क्या है, कंघी क्या करेंगे क्या?
1: अच्छा मैंने कहा माशाल्लाह इतनी खूबसूरती नूर निकल रहा है, अपना आदमी अपने आप को ही नहीं देख पा रहा है, शीशा टूटे जा रहा है, मैं ये समझ रहा था
3: बाघ इतने छोटे रहते देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मुझे मालूम बस ऐसा है ना, हाथ बस
0: सर भाई यही आपको भी करना
1: है। बेहतरीन, बालों की टेंशन ही नहीं रही लाइफ में,
0: सही करा आपने।
3: हेयर कट का मजा जब आया था COVID-19 में,
0: हाँ ये सही कहा आपने,
3: और जबरदस्त हजाम बंद थे, सब बंद थे, मेरे वाइफ को बोला था मेरे बाल कट करने के लिए।
1: अच्छा भाभी हो क्या बात है,
0: पार्ट टाइम सब बंद, मैं खुद
3: वो भी पहली बार है ना
1: यार, आप पहले बता देती मैं यार میں نے زبردستی پریشان ہوا,
0: جس کا کاٹا اس کا میں بتاؤں گی اس نے کیا کہا.
1: میں بالکل پریشان ہو گیا,
0: کیا کہا کٹنے کے بعد.

0: स्प्रे कर करके जो बाल काटे काटे काटे सब हो गया बराबर। हाँ वो बाल गीले होने से बाल भी कम दिख रहे थे, लेकिन जब सुबह उठ के नहा के जब मैं ऑफिस के बाल सूखना शुरू हुए ना एकदम मुर्गे के जैसे सामने से निकल के वो नहीं आते वो साइड से, और क्या बोलते हैं वो लेडीज स्टाइल नहीं होता कि सामने के बाल ना कर्ल हो गया आपके ना पीछे, परेशान हो गया। अब जो मेरा सीनियर है मुझे ऐसा देख रहा है, बोलता है अक्रम तुम मिरर में देखे, मेरा नहीं जाके देख के आओ।
1: आपसे आगे बात करें बट टाइम की तंगी है। जरूर जरूर आप डेली हमारे साथ जुड़िए, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक हम खिदमत में हाजिर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। तो खातिनो हजरात, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यहाँ पर खूब सारे मैसेजेस रह गए, आप लोगों की कॉल भी हम नहीं ले पाए जो रह गए, तो मैं जल्दी जल्दी नाम कह देता हूँ, मैसेज तो नहीं पढ़ पाऊंगा। फराज अहमद साहब है हमारे पास, अरबाज भाई हैं हमारे पास, रियाज भाई हैं हमारे पास, ये कौन है, हसन एंड हुसैन के पास से मैसेज है हमें, बड़े अच्छे, कोई बेटे का शायद मैसेज था। यहाँ पर अब्दुल जब्बार भाई हैं, हैंडसम मैन, क्या बात है यार, बिल्कुल ये तो वो लग रहे हैं, वो सालार वाला हीरो कौन है, बाहुबली, क्या नाम है उसका नादिया, यार याद नहीं रहता, जो भी है उससे मिल रहे हैं, प्रभास। तो फिलहाल अली मिर्जा और महक अली के साथ छोड़े जा रहे हैं आप लोगों को सतरंगिया, तो भाई एंजॉय कीजिए ये ट्रैक आज के लिए। मुझे और नादिया को इजाजत दीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपका दिन आगे भी अच्छा गुजरेगा। कोशिश तो हम दोनों की यही रहती है, उल्टी सीधी बातें कर करा के आप लोगों को फंसाने की कोशिश भी करते हैं, इंशाल्लाह ताला। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ कर दिए, अभी और बेटर चलिए भाई, देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से।

0: सोचने लगता है, पता नहीं कैसे जवाब देंगे, कहीं नाराज ना हो जाएं, कहीं बात का गलत मतलब न ले लें, बेहतर है उनसे कुछ कहा ही ना जाए। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि वो कौन शख्स है जिस पर आग हराम कर दी जाती है? हर वो शख्स जो लोगों के करीब रहने वाला, नरम मिजाज और मामलात में आसान हो। आला कुल करीबिन हय्यिन सहलिन। तो यहाँ तीन अल्फाज हैं, करीब, हय्यिन, सहल। अब इन तीन अल्फाज में एक मोमिन की पूरी माशरती शख्सियत सिमट आई है। आइए एक एक लफ्ज को समझते हैं। पहला वस्फ करीबिन, लोगों के करीब, ऐसा शख्स जो लोगों से करीब हो। तो ये दरअसल दिल और रवैये की कुर्बत है, ऐसा शख्स जिससे बात की जा सके, जिसके पास बैठा जा सके, जिससे मशवरा लिया जा सके। मुल्ला अली कादिर रहमतुल्लाह इस मफहूम की वजाहत इस तरह करते हैं कि लोगों के साथ बैठना, उनसे मेल जोल रखना और अपनी इस्तेआत के मुताबिक उनके साथ लुत्फ व मोहब्बत से पेश आना। यानी मोमिन लोगों से कटा हुआ, हर वक्त तेवरी चढ़ाए, दूसरों को अपने से कमतर समझने वाला इंसान नहीं होता। उसके अंदर उन्स होता है, लोग उसके करीब आ सकते हैं। अब सामिन इकराम, अपने आप से पूछिए, क्या मेरे करीब तरीन लोग मुझसे आसानी से बात कर सकते हैं? क्या मेरा बच्चा अपनी गलती मुझे बता सकता है? या वो पहले ये सोचता है कि अगर अब्बू को बताया तो बहुत गुस्सा करेंगे? क्या आपका शरीक हयात अपनी परेशानी आपके सामने रख सकता है? क्या आपका छोटा भाई या बहन आपसे मशवरा कर पाता है? क्या दफ्तर में आपके मातहत शख्स को कोई गलती हो जाए तो वो उसे छुपाने के बजाय आपको बताने की हिम्मत रखता है? बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी की बहुत सी तलखियों का सबब हमारा रद्द अमल होता है। मसला छोटा है लेकिन रद्द अमल बहुत बड़ा। किसी ने फ़ोन का जवाब देर से दिया, हमने फौरन नतीजा निकाल लिया, उसे मेरी कोई कदर नहीं। किसी ने दावत नहीं दी, उसने जानबूझकर मेरी बेइज्जती की है। किसी ने गुफ्तगू में एक नामुनासिब लफ्ज़ कह दिया, हमने पूरा ताल्लुक उसे एक लफ्ज़ के हवाले कर दिया। तो हय्यिन इंसान हर चीज़ को अपना अना का मसला नहीं बनाता। वो जानता है कुछ बातें समझाने की होती हैं, कुछ माफ़ करने की और कुछ नज़रअंदाज कर देने की। तीसरा वस्फ है सहलिन, यानी मामलात में आसान, ऐसा शख्स जिसके साथ मामलात करना आसान हो। खरीदो फरोख में आसान, लेन देन में आसान, अपना हक मांगने में महज़ब, दूसरे का हक अदा करने में कुशादा दिल। यानी जैसा कि मुल्ला अली कादिर रहमतुल्लाह ने इसका माना बयान किया है कि वो खरीदने, बेचने, हक अदा करने और अपना हक तलब करने में नरम और कुशादा मामला हो। यहाँ एक और बात समझने की ज़रूरत है कि सहल मिजाज होना कमज़ोर होना नहीं। नरम होने का मतलब ये नहीं कि हर गलत बात मान ली जाए। करीब होने का मतलब ये नहीं कि हदूद ख़त्म हो जाए। आसान होने का मतलब ये नहीं कि हक व बातिल में फ़र्क ना रहे। एक मोमिन नरम भी हो सकता है और उसूल पर मजबूत भी। वो कह सकता है कि नहीं, ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन इज्जत के साथ वो अपना हक मांग सकता है बदतमीज़ी के बगैर। वो किसी की गलती दुरुस्त कर सकता है उसे जलील किए बगैर। यही खूबसूरती है, उसूल मजबूत हो, मिजाज नरम हो। अल्लाह ताला हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करने, उसे समझने और मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगियों में उन्हें नाफिज करने की तौफीक अता फरमाएं। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपर व सुन्नत के आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों फुटबॉल में हैट्रिक करना किसी भी स्ट्राइकर के लिए खास अचीवमेंट होती है। एक मैच में 3 गोल स्कोर करना ही मुश्किल काम है, लेकिन सोचिए अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ चंद सेकेंड्स के अंदर 3 गोल्स कर दे। या आज हम आपको एक ऐसे फुटबॉलर की कहानी सुना रहे हैं जिन्होंने फुटबॉल की तारीख में सबसे तेज हैट्रिक का रिकॉर्ड अपने नाम किया। नाम है एलेक्स टोर। इंग्लैंड के एमेच्योर फुटबॉलर एलेक्स टोर के नाम फुटबॉल की तारीख की सबसे तेज तरीन हैट्रिक का रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड

8 अप्रैल 2013 को बनाया गया, जब टोर अपनी टीम रॉसन स्प्रिंग की तरफ से मिडहॉल संडे लीग में विन गार्डन्स के खिलाफ खेल रहे थे। मैच शेफील्ड के लोकल संडे लीग फुटबॉल का था। रॉसन स्प्रिंग ने इस मैच में विन गार्डन्स को 1-7 से शिकस्त दी। लेकिन मैच की सबसे खास कहानी टीम की 7 वाली विक्ट्री नहीं, बल्कि टोर के वो 70 सेकेंड्स थे जो फुटबॉल की रिकॉर्ड बुक्स का हिस्सा बन गए। टोर ने मैच के 11th मिनट में पहला गोल स्कोर किया। अभी ऑपोजिशन को संभालने का मौका ही नहीं मिला था कि टोर ने सिर्फ 30 सेकेंड बाद यानी 11 मिनट्स और 30 सेकेंड्स पर दूसरा गोल कर दिया। और फिर आया वो लम्हा जिसने इस हैट्रिक को हिस्टोरिक बना दिया। सिर्फ 40 सेकेंड बाद 12 मिनट और 10 सेकेंड्स पर टोर ने अपना तीसरा गोल स्कोर किया, यानी 3 सिर्फ 70 सेकेंड्स में। सोचिए, एक तरफ डिफेंडर्स को पहले गोल के बाद अपनी स्ट्रेटेजी समझने का वक्त नहीं मिला और दूसरी तरफ टोर मुसलसल अटैक करते रहे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये फुटबॉल में फास्टेस्ट हैट्रिक का रिकॉर्ड है, लेकिन एलेक्स टोर के लिए ये कोई पहली एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी। इस हिस्टोरिक हैट्रिक से सिर्फ 3 पहले टोर ने पेनिस्टन चर्च के खिलाफ भी एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। उस मैच में उन्होंने सिर्फ 3 में हैट्रिक कंप्लीट की थी, जबकि रॉसन स्प्रिंग ने पेनिस्टन चर्च को 7-0 से हरा दिया था। यानी टोर ने चंद दिनों के अंदर 2 हैट्रिक्स किए और दोनों में उनकी स्कोरिंग एबिलिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है, क्या प्रोफेशनल फुटबॉल में भी किसी खिलाड़ी ने इतनी तेज तरीन हैट्रिक की है? वेल, इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें तो इस कैटेगरी में रिकॉर्ड सादियो माने के नाम है। 2015 में साउथैम्पटन की तरफ से खेलते हुए माने ने एस्टन विला के खिलाफ सिर्फ 2 और 56 सेकेंड्स में 3 स्कोर किए। माने की परफॉर्मेंस प्रीमियर लीग की तारीख में एक लेजेंडरी मोमेंट बन गई। उन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल के हाईएस्ट लेवल पर अपनी इनक्रेडिबल फिनिशिंग स्पीड और मूवमेंट का सबूत दिया। लेकिन एलेक्स टोर का रिकॉर्ड एक डिफरेंट वजह से खास है। उनकी 72nd हैट्रिक एक एमेचर संडे लीग मैच में हुई थी, और इसीलिए दोस्तों ये कहानी हमें याद दिलाती है कि फुटबॉल में कभी कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट्स किसी बड़े स्टेडियम या इंटरनेशनल टूर्नामेंट में नहीं बल्कि लोकल फुटबॉल ग्राउंड पर भी हो सकता है। एलेक्स टोर शायद दुनिया भर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी या सादियो माने जैसी शोहरत ना रखते हों, लेकिन फुटबॉल रिकॉर्ड्स में उनका नाम एक खास वजह से हमेशा जिंदा रहेगा। 3 70 सेकेंड्स और फुटबॉल की तारीख का एक अनफॉरगेटेबल रिकॉर्ड। दोस्तों, फुटबॉल में अक्सर कहा जाता है कि रिकॉर्ड्स टूटने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन एलेक्स टोर का 70 रिकॉर्ड अब तक इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई स्ट्राइकर उनसे भी तेज 3 स्कोर कर सके। सवाल यह है कि क्या कोई फुटबॉलर कभी 70 सेकेंड से भी कम वक्त में हैट्रिक कर पाएगा? यह रिकॉर्ड शायद टूट जाए, लेकिन जब तक नहीं टूटा, एलेक्स टोर का नाम फुटबॉल की फास्टेस्ट हैट्रिक के साथ जुड़ा रहेगा। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। फुटबॉल के मैदान पर कुछ रिकॉर्ड्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वो ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो खेल की तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। एलेक्स टोर की 72nd हैट्रिक भी ऐसा ही एक मोमेंट है। अगली बार फिर एक नए और दिलचस्प स्पोर्ट्स अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें।

Assalamualaikum, welcome to Tech Update. मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे, and अब वक्त है जल्दी जल्दी अपडेट देने का. तो मैं आपको दो वेबसाइट्स बताऊंगा आज जो बड़ी कमाल की हैं, एंड उनसे आपका काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है. बस आपको सब्र की जरूरत है. अगर आपके पास सब्र है तो बता देता हूं आपको. शुरू करते हैं पहली दो पावरफुल वेबसाइट से और फिर आऊंगा खबरों पे, बिकॉज व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस आपके लिए मुझे लगता है कि एप्पल का आईफोन रिलीज हो चुका होगा. बट लेट्स बिगिन विद द वेबसाइट्स. सबसे पहले बात करूंगा एक वेबसाइट की जिसका नाम है QW

0: Quen, Quen, ये चाइनीज वेबसाइट है, ए आई है, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे चाइनीज ही निकल आते हैं. क्यू डब्ल्यू ई एन. अगर आपको इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन देखना है और आपको जल्दी करना है, मेरा मतलब फ्री में करना है मोस्टली, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा सब्र चाहिए, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इमेज जनरेशन में, लेकिन काफी सिनेमेटिक काम हो जाएगा. इमेज जनरेशन से लेकर वीडियो जनरेशन दोनों यहाँ पर होते हैं. पर अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, आपको सब्र चाहिए. अगर आपके अंदर सब्र है तब तो इस एआई पे जाइए, आपका काम हो जाएगा. क्यू डब्ल्यू ई एन, क्विन या क्विन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली वेबसाइट की तरफ. अगली वेबसाइट का नाम है, इसको अब मैं कैसे पढ़ूंगा, हुन वन वीडियो. मैं स्पेल आउट कर देता हूं, एच यू एन वाई यू ए एन, हुन यूएन, एच यू एन वाई यू ए एन, ए आई. अब ये वाला ए आई क्या करता है, ये टेक्स्ट टू वीडियो और इमेज टू वीडियो क्रिएट करता है. अगेन थोड़ा टाइम लगेगा जनरेशन में, लेकिन जो रिजल्ट है वो बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही कमाल का निकलेगा. तो अगर आपको जल्दी नहीं है और आपके पास है टाइम, आप आराम से बैठ के निकाल सकते हैं इमेज और वीडियो, तो फिर आपके लिए ये बनी है, एंड गो फॉर इट. ठीक है, अब जरा अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ना चाहूंगा, जिसका नाम है, मैं आपका इसका नाम मैं कैसे बताऊं आपको. ओके, लेट मी ट्राई, ओ श्री साई डॉट लाइव. मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, अब मैं स्पेल आउट कर देता हूँ, ओ एस आई आर आई एस ए आई, ओ श्री साई डॉट लाइव. जब इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने पूरा ग्लोब आ जाएगा. उसमें कई सारी एक्टिविटीज होंगी, उसमें कुछ एक्टिविटीज ब्लू मार्कर से होंगी, ग्रीन मार्कर से होंगी, रेड मार्कर से होंगी, इसमें सब बताएगा आपको. और आप जो मेजर सैटेलाइट जो हैं वो भी आप इसके जरिए देख सकते हैं. आप सीसीटीवी कैमरास कई जगहों पे जो ओपन एआई एक्सेसिबल है वो आप देख सकते हैं. ये बहुत ही कमाल की और बहुत ही यूनिक किस्म की वेबसाइट है. सो ट्राई दिस वन आउट, आई एम प्रीटी श्योर आपको कुछ अलग किस्म की वेबसाइट मिलेगी. टाइम पास के लिए आराम से देख सकते हैं आप. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से खबरों की तरफ. तो टेक न्यूज में सीधी सीधी बात ये है, सब सारे के सारे टेक आपको महंगे होते हुए नजर आएंगे. आईफोन वालों ने यानी एप्पल वालों ने बहुत टाइम से कोशिश करी थी कि वो अपने जो मेजर जो फ्लैगशिप फोन है उसके प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, स्पेशली प्रोज के और प्रो मैक्स के. वो $1000 के आसपास रहेगा, यानी कतरी रियाल में बात करूं तो वही 3500-4000 के आसपास रहेगा. पर अभी वो थ्रेशहोल्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है विद द लॉन्च ऑफ एप्पल फोल्ड एंड एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड. और जैसे मैंने कहा था, वही रिजल्ट आया जो एप्पल का फोल्ड फोन है उसका जो रिव्यू है वो ऐसा ही है जैसा मैंने सोचा था. उसमें एक हद तक मेहनत की जा सकती है और उसमें सैमसंग ये वॉर जीत चुका है अगर फोल्डेबल्स की बात की जाए, और फॉलोड बाय उसके बाद जो नंबर आएगा हुआवी का आएगा. अभी एप्पल, आई डोंट थिंक सो एक आम आदमी इतना ज्यादा दीवाना होगा एप्पल के फोल्ड के लिए, हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है उस पर. बट द प्राइसिंग ऑन इट इज अ लिटिल टू मच. ठीक है, वो बात दूसरी है, बट जब पूरी तरह से मैं रिव्यू करूंगा एप्पल का तो बहुत खोल के करूंगा, वो आप सुनेंगे कुछ दिनों में. बट इसके अलावा जो बाकी टेक है वो महंगा होता चला जाएगा. अगर आप सोच रहे हैं कि ये टेक अभी नहीं लेता, सस्ता हो जाएगा जब मैं ले लूंगा, तो आई हाईली डाउट दैट. हम उस जमाने में जी ही नहीं रहे जहां पे चीज अभी आई है तो सही है, बाद में सस्ती होगी तो ले लेंगे. बिकॉज टेक्नोलॉजी गैजेट्स ये महंगे ही होने वाले हैं अभी, बिकॉज ऑफ द रीजन जो मैंने आपको बताया, मेमोरी का खर्चा, चिप्स का खर्चा. ऑलराइट, सो ये थी टेक अपडेट. मैं दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिए, आप बेहद बेहद जरूरी हैं.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.
3: स्कैम अलर्ट. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको हर रोज इत्तला करता रहता हूं, बताता रहता हूं. और आज का एक ऐसे ही जो स्कैम है या कहे फ्रॉड है वो बहुत ही चालाकी से भरा हुआ है. ऐसे स्कैम इतने ज्यादा हो गए कि लोगों को सिर्फ मिलियन का नहीं बल्कि बिलियन का नुकसान हो रहा है, और ये क्यूमुलेटिव यानी कि मिलाकर इतना नुकसान है. और ये रिपोर्ट भी आजकल सोशल मीडिया पे आपको पढ़ने को मिलती होगी, और ये है स्कैम, वर्कप्लेस गिफ्ट कार्ड स्कैम. कैसे काम करता है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। वर्कप्लेस गिफ्ट कार्ड स्कैम का जो मेन मकसद है वो कॉरपोरेट या किसी भी ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज को अपना शिकार बनाना है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स कंपनी के हायरकी या सीनियोरिटी लेवल का पूरा फायदा उठाते हैं। स्कैमर सबसे पहले आपके ऑफिस बॉस, सीईओ या किसी भी बहुत ही क्लोज कोवर्कर का नाम और डिटेल्स ना वो पता करते हैं, फिर वो एक नया अनजान ईमेल आईडी या फोन नंबर यूज करके आपको टेक्स्ट या मेल भेजते हैं जिसमें डिस्प्ले नेम आपके उसी बॉस या मैनेजर का होता है जो आपके असली में बॉस है। जब आप मैसेज देखते हैं तो आपको लगता है कि आपके सीनियर लेवल के बॉस हैं और आपको याद किया गया है। मैसेज में स्कैमर्स बहुत ही चालाकी से एक झूठी स्टोरी बनाते हैं। वो लिखता है कि मैं अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, क्लाइंट प्रेजेंटेशन में बिजी हूँ, कॉल नहीं उठा सकता, मुझे तुमसे एक बहुत अर्जेंट छोटा सा फेवर चाहिए। इसके बाद वो आपसे कहते हैं कि कंपनी के किसी बड़ी क्लाइंट को गिफ्ट देने के लिए या फिर किसी एम्प्लॉई रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए मार्केट से या ऑनलाइन जाकर महंगा गिफ्ट कार्ड खरीदो क्लाइंट के लिए। तो आपसे वो कुछ खरीदने को नहीं कहता लेकिन गिफ्ट कार्ड खरीदने को जरूर कहता है क्योंकि गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है कैश के लिए। वो आपसे कहेंगे कि उन गिफ्ट कार्ड को खरीद कर उनके पीछे का स्क्रैच ऑफ पिन जो है वो नंबर तुरंत टेक्स्ट मैसेज कर दो और फोटो खींचकर मुझे या तो भेज दो। वो आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जैसे ही उनकी मीटिंग खत्म होगी कंपनी आपके इस पर्सनल खर्चे को तुरंत रिइंबर्स कर देगी क्योंकि एम्प्लॉयज अपने बॉस को मना नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि ये ऑफिस का काम है। वो जल्दी में अपने पास से हजारों रुपए का खर्च कर देते हैं, ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं और पीछे का जो कोड है वो बता देते हैं, पिन बता देते हैं और हैकर के पास वो पिन जब पहुंच जाता है गिफ्ट कार्ड के जरिए तो वो गिफ्ट कार्ड को रिडीम करके गायब हो जाते हैं। और बाद में रियल बॉस से पूछने पर पता चलता है कि उन्होंने तो ऐसा कोई मैसेज किया ही नहीं है। लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए सॉल्यूशन है। कुछ चार ये सॉल्यूशंस हैं जो मैं बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आपका कोई स्टोर है, कोई ऑफिस है, किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, इस तरह के फ्रॉड से आप बच सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। ये मैंने आपको हर तरह के या नए जमाने के जो नए स्कैम होते रहे हैं हर बार बताया है। अगर आपको ऐसा कोई भी मैसेज आता है तो उनके पर्सनल टेक्स्ट या अनजान ईमेल का रिप्लाई करने के बजाय ऑफिस के ऑफिशियल कम्युनिकेशन टूल जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम है, स्लैक है, ऑफिशियल कंपनी की ईमेल्स एड्रेस है, ये सारे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बॉस को पर्सनल कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। कई बार मैसेज भी यानी कि पर्सनल मोबाइल भी उनका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आप डायरेक्ट कॉल करें। डायरेक्टली जब आप मैसेज करेंगे तब वहां से आप कन्फर्म कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा तरीका है कंपनी पॉलिसी को समझें। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा कर रखें। कोई भी जेन्युइन और लीगल कंपनी कभी भी अपने किसी एम्प्लॉय को टेक्स्ट मैसेज पर बिजनेस का सामान अपने पर्सनल पैसों से खरीदने के लिए नहीं बोलता है। ऑफिस के खर्चे के लिए हमेशा कॉर्पोरेट कार्ड या ऑफिशियल प्रोसीजर होता है। उसके अलावा तीसरा तरीका है पिन नंबर सीक्रेट रखें। अगर आपने खुदा ना खास्ता गिफ्ट कार्ड खरीद भी लिया है ना, एक बार अगर आपने स्क्रैच ऑफ पिन की फोटो किसी को भेज दी तो समझ लीजिए आपका पैसा चला गया। इसलिए कभी भी किसी को या किसी के कहने पर भी पिन नंबर टेक्स्ट ना शेयर करें अगर आपने गिफ्ट कार्ड खरीद भी लिया है तो। चौथा तरीका है एचआर को रिपोर्ट करें। ऐसे किसी भी सस्पिशियस ईमेल या एसएमएस को तुरंत अपनी कंपनी के आईटी सिक्योरिटी सेल या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करें ताकि पूरी कंपनी को अलर्ट किया जा सके। अगर ऐसा है कि आपको मैसेज किया गया है तो आमतौर पर सिर्फ आपको नहीं, आपके जैसे कंपनी में और भी एम्प्लॉयज को आमतौर पर टारगेट किया जाता है और लोग भी लिस्ट में स्कैमर्स के होते। तो दोस्तों इसी के साथ उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा कि आजकल के स्कैमर्स, फ्रॉडस्टर्स किस तरह से काम कर रहे हैं और आपको स्कैम करने के लिए तैयार बैठे हैं। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल नए जमाने के एक नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी स्कैम अलर्ट।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाया, थमने ना पाया। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107, दिल से देसी।
3: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
2: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है,

0: डायरेक्शन में जा रहे हैं।
1: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड वेलकम टू फ्यूचर करियर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे और मजे में होंगे। आपके लिए फ्यूचर करियर की एक और एपिसोड लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ। ये वो शो है जहाँ हम बात करते हैं उन करियर्स की जो हमारी दुनिया का मुस्तकबिल शेप कर रही हैं, और साथ ही ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज से हम खुद को उन करियर्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं हूं आपकी आरजे महावश। आज हम एक ऐसी फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं, लेकिन अचानक पता चलता है कि आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। या फिर सोचिए कि आपके फोन में मौजूद पर्सनल फोटोग्राफ्स, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी और के हाथ लग जाए, और सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, एक पूरी कंपनी का कंप्यूटर नेटवर्क भी अचानक बंद हो सकता है। एम्प्लॉयज अपना काम नहीं कर सकते, कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन इनएक्सेसिबल हो सकती हैं, और साइबर क्रिमिनल्स कंपनी से पैसे का मुतालबा कर सकते हैं। ये सब सिर्फ मूवीज की कहानियां नहीं है, आज की डिजिटल दुनिया में साइबर थ्रेट्स एक रियल चैलेंज है। हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर स्टोर करते हैं। बिजनेसेस भी अपना बहुत सा डेटा कंप्यूटर्स और क्लाउड सिस्टम्स में रखते हैं। हॉस्पिटल्स के पास पेशेंट्स का सेंसिटिव डेटा मौजूद होता है, बैंक्स के पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास इम्पोर्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, और एनर्जी और टेलीकम्युनिकेशंस जैसे सेक्टर्स डिजिटल सिस्टम्स पर हैवीली डिपेंड करते हैं। जितनी ज्यादा हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगी, उतनी ही ज्यादा जरूरत होगी उन प्रोफेशंस की जो इस टेक्नोलॉजी को सेफ रख सके, और यहीं से आता है हमारा आज का करियर, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का काम सिर्फ हैकर्स को रोकना नहीं होता, उनका असल काम डिजिटल सिस्टम्स, नेटवर्क्स, इंफॉर्मेशन और ऑनलाइन सर्विसेज को थ्रेट से प्रोटेक्ट करना होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइबर सिक्योरिटी एक सिंगल जॉब नहीं है, इस फील्ड में डिफरेंट टाइप्स के करियर्स हैं। आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, आप इथिकल हैकर या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं, आप सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी SOC एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप डिजिटल फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी की फील्ड में जा सकते हैं, या फिर साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बनकर ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी के साथ इन्वेस्टिगेशंस, पजल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, तो साइबर सिक्योरिटी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन हो सकती है। दुनिया भर में ऑर्गेनाइजेशंस अपने डिजिटल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जरूरत महसूस कर रही हैं, और ये डिमांड सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज तक महदूद नहीं रही। बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नमेंट, टेलीकम्युनिकेशन या फिर एनर्जी और ऑलमोस्ट हर डिजिटल इंडस्ट्री में साइबर सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट हो चुकी है। टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन सर्विसेज और कनेक्टेड डिवाइसेस नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही हैं, लेकिन साथ ही नए सिक्योरिटी चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा करियर फील्ड बन गया है जहां लर्निंग कभी खत्म नहीं होता। आपको न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखना होता है, नए थ्रेट्स को समझना होता है और कंटिन्यूसली अपनी स्किल्स

मूव करनी होती हैं। अब आते हैं अपनी क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अगर आपके पास साइबर सिक्योरिटी की स्किल्स हो तो क्या आप एक साइबर डिटेक्टिव बनना पसंद करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस को ऑनलाइन थ्रेट से प्रोटेक्ट करे? क्या आपको सस्पिशियस एक्टिविटीज इन्वेस्टिगेट करना इंटरेस्टिंग लगेगा? क्या आप पजल्स सॉल्व करना और प्रॉब्लम्स की रूट कॉज फाइंड करना इंजॉय करते हैं? क्या आपको टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पसंद है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप ऐसे करियर का हिस्सा बनना चाहेंगे जहां आपकी स्किल्स लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटेक्ट करने में डायरेक्टली काम आए? आज के एपिसोड के एंड तक शायद आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए। तो चलिए टेक्नोलॉजी की दुनिया में एंटर करते हैं और डिस्कवर करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी करियर्स असल में क्या होती हैं, इन करियर्स के बारे में कौन सी एजुकेशन और स्किल्स जरूरी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फील्ड को कैसे चेंज कर रही है और कतर में यंग लोगों के लिए इस फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला मेजर सेगमेंट, जॉब्स फॉर टुमारो। तो वेलकम बैक टू फ्यूचर करियर। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एक ऐसे करियर फील्ड को जो हमारी इंक्रीजिंगली डिजिटल दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, साइबर सिक्योरिटी। और जैसे कि मैंने कहा, साइबर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ हैकर्स को पकड़ना या कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉम्प्लिकेटेड कोड्स देखना नहीं है। इस फील्ड में बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्रोफेशनल्स काम करते हैं। कुछ लोग साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करते हैं, कुछ अटैक्स को डिटेक्ट करते हैं, कुछ अटैक होने के बाद एविडेंस इन्वेस्टिगेट करते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को पहले से प्रिपेयर करते हैं कि अगर कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम आए तो उसका रिस्पॉन्स कैसे दिया जाए। तो चलिए देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन से एक्साइटिंग करियर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की। आप इस प्रोफेशनल को किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिजिटल सिक्योरिटी टीम का एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर समझ सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का बेसिक काम ये होता है कि सिस्टम्स और नेटवर्क्स को मॉनिटर करना और देखना कि कहीं कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर, नॉर्मली एक एम्प्लॉय कतर से अपने ऑफिस सिस्टम में लॉगिन करता है, लेकिन अगर वही अकाउंट अचानक दुनिया के किसी और कोने से लॉगिन होने की कोशिश करे या एक ही अकाउंट से अनयूजुअल नंबर्स में फाइल्स एक्सेस की जा रही हो तो सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट जनरेट कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम होता है कि वो इस अलर्ट को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करे। वो ये डिटरमाइन करने की कोशिश करता है कि क्या ये नॉर्मल एक्टिविटी है या किसी ने अकाउंट कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, क्या सिस्टम में मैलवेयर इंटर हुआ है, क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेस की गई है और अगर थ्रेट रियल हो तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। इस करियर में ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको डिटेल्स नोट करनी होती है, प्रॉब्लम्स को लॉजिकली ब्रेक डाउन करना होता है और प्रेशर के वक्त काम रहकर डिसीजन लेना होता है। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, रिस्क असेसमेंट और सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को इम्प्रूव करना शामिल हो सकता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल सिर्फ कंप्यूटर्स के साथ काम नहीं करता, उसे मैनेजमेंट को भी तो समझना पड़ता है ना कि प्रॉब्लम क्या है, रिस्क कितना है और ऑर्गेनाइजेशन को क्या एक्शन लेना चाहिए। इसलिए अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ एनालिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन दोनों इंजॉय करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट एक स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब आ जाते हैं दूसरे करियर की तरफ। हमारा दूसरा जो करियर है वो एक ऐसे करियर पर जो स्टूडेंट्स को अक्सर सबसे ज्यादा एक्साइटिंग करता है और वो है एथिकल हैकर। नाम सुनकर शायद आपके जहन में हैकर का इमेज आए, एक डार्क रूम, कंप्यूटर स्क्रीन्स और सीक्रेट कोड्स। लेकिन एथिकल हैकर का काम बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में होता है। एथिकल हैकर लीगल

0: फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के साथ सिक्योरिटी वीकनेसेस फाइंड करता है। सिंपल वर्ड्स में वो सिस्टम्स को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि क्रिमिनल हैकर उसे बाद में ना तोड़ सके। इसे आप घर की सिक्योरिटी चेक करने वाले प्रोफेशनल की तरह समझ सकते हैं। अगर आप अपने घर के दरवाजे, विंडोज और लॉक चेक करते हैं कि कोई आसानी से अंदर तो नहीं आ सकता, तो एथिकल हैकर डिजिटल एनवायरनमेंट में कुछ इसी तरह का काम करता है। वो वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, नेटवर्क्स और सिस्टम्स को टेस्ट करता है। वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, फिर ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि वीकनेसेस कहाँ हैं और उसे कैसे फिक्स किया जा सकता है। इस फील्ड में क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नेचुरली ये सोचना होता है कि सिस्टम में वीकनेस कहाँ हो सकती है। इस प्रोसेस को दूसरे तरीके से एक्सेस किया जा सकता है क्या? एक अटैकर इस सिस्टम को किस एंगल से टारगेट कर सकता है? एथिकल हैकर का गोल डैमेज करना नहीं होता, गोल होता है डैमेज से पहले वीकनेस आइडेंटिफाई करना। और इसीलिए इस प्रोफेशन में स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपके पास पावर स्किल्स होंगी, लेकिन उन स्किल्स का यूज लीगल और रिस्पॉन्सिबल वे में करना होगा। अगर आपको पजल्स, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टिगेशन पसंद है, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपके लिए पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग फील्ड हो सकती है। और अब बात करते हैं एसओसी एनालिस्ट यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट की। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स को आप एक ऑर्गेनाइजेशन का साइबर सिक्योरिटी कमांड सेंटर समझ सकते हैं। यहाँ सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स डिफरेंट सिस्टम से आने वाले अलर्ट्स को मॉनिटर करते हैं। सोचिए, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स, अकाउंट्स, सर्वर्स और डिजिटल सर्विसेज यूज हो रही हैं। हर वक्त बहुत सारा डिजिटल एक्टिविटी डेटा जनरेट हो रहा है। हर अलर्ट का मतलब साइबर अटैक नहीं होता, लेकिन अगर हंड्रेड्स या थाउजेंड्स अलर्ट आ रहे हों, तो किसी ह्यूमन के लिए हर चीज मैनुअली चेक करना डिफिकल्ट हो सकता है। एसओसी टीम सिक्योरिटी टूल्स और टेक्नोलॉजीज की मदद से सस्पिशियस एक्टिविटी आइडेंटिफाई करती है। अगर कोई सीरियस थ्रेट डिटेक्ट हो, टीम इन्वेस्टिगेट करती है और जरूरत पड़ने पर इंसिडेंट रिस्पॉन्स करती है। एसओसी एनालिस्ट का काम कुछ हद तक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह समझा जा सकता है। जिस तरह एयरपोर्ट में कंट्रोलर्स मल्टीपल फ्लाइट्स के मूवमेंट मॉनिटर करते हैं और हर अनयूजुअल सिचुएशन पर एक्शन लेते हैं, इसी तरह एसओसी टीम्स डिजिटल एनवायरनमेंट को मॉनिटर करती हैं और पॉसिबल सिक्योरिटी थ्रेट्स पर रिस्पॉन्स देती हैं। एसओसी एनवायरनमेंट्स में टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एनालिस्ट अलर्ट इन्वेस्टिगेट कर सकता है, दूसरा प्रोफेशनल टेक्निकल एविडेंस चेक कर सकता है और इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स टीम थ्रेट को कंटेन करने में हेल्प कर सकती है। हेल्थ केयर, बैंकिंग, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशंस और गवर्नमेंट जैसे सेक्टर्स में सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट हो सकती है।
1: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
2: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
1: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। अपने करियर का अगला कदम समझकर उठाइए।
0: और अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर साइबर अटैक हो चुका हो तो फिर क्या? अटैक होने के बाद साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का काम खत्म नहीं होता। यहाँ एंटर होता है डिजिटल फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट। डिजिटल फॉरेंसिक्स का मतलब है कि डिजिटल एविडेंस को साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करना, बिल्कुल क्राइम इन्वेस्टिगेशन की तरह। लेकिन यहाँ क्राइम सीन डिजिटल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि उसके सिस्टम से कॉन्फिडेंशली फाइल्स जो हैं वो एक्सेस हुई हैं, और अब इन्वेस्टिगेशन टीम को समझना है अटैक कब हुआ, सिस्टम में एंट्री किस तरह हुई, कौन सा अकाउंट यूज हुआ, कौन सी फाइल्स एक्सेस की गई, क्या इन्फॉर्मेशन कॉपी या ट्रांसफर हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। डिजिटल फॉरेंसिक्स स्पेशलिस्ट अवेलेबल डिजिटल एविडेंस को एग्जामिन करता है। इस करियर में टेक्नोलॉजी के साथ इन्वेस्टिगेशन स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मिस्ट्री सॉल्व करना पसंद है, डिटेल्स ऑब्जर्व करना पसंद है, और किसी इवेंट की सीक्वेंस रिकंस्ट्रक्ट करना इंटरेस्टिंग लगता है, तो डिजिटल फॉरेंसिक एक फैसिनेटिंग करियर हो सकता है। यहाँ पेशेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर क्लू ऑब्वियस नहीं होता, कभी छोटी सी डिजिटल डिटेल पूरी इन्वेस्टिगेशन को चेंज कर सकती है। अब टेक्नोलॉजी का एक और मेजर एरिया, क्लाउड कंप्यूटिंग। आज बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस अपना डेटा और एप्लीकेशंस ट्रेडिशनल फिजिकल सिस्टम्स के बजाय क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर यूज करती हैं। लेकिन क्लाउड पर डेटा होने का मतलब ये नहीं है कि सिक्योरिटी की जरूरत खत्म हो गई। एक्चुअली सिक्योरिटी और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ काम करते हैं क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। इनका फोकस क्लाउड एनवायरनमेंट्स को सिक्योर रखना होता है। वो एक्सेस कंट्रोल्स चेक करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि राइट पर्सन को राइट इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिले। वो सिक्योरिटी रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के मेजर्स डेवलप करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्लाउड सिस्टम में सेंसिटिव कस्टमर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो हर एम्प्लॉय को उस इंफॉर्मेशन का कंप्लीट एक्सेस देना सेंसिबल नहीं होगा। क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ये इंश्योर करने में हेल्प करता है कि एक्सेस प्रॉपरली कंट्रोल्ड हो। इस फील्ड में क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, नेटवर्किंग, आइडेंटिटी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग वैल्यूएबल होती हैं, क्योंकि क्लाउड टेक्नोलॉजी का यूज डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एक्सपैंड हो रहा है। क्लाउड सिक्योरिटी एक इम्पोर्टेंट स्पेशलाइजेशन बन रही है। और अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट की। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास नेसेसरीली अपनी लार्ज साइबर सिक्योरिटी टीम नहीं होती। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल एक्सपर्ट से एडवाइस लेती हैं। साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को समझने में हेल्प करता है कि उसके सिक्योरिटी रिस्क क्या हैं और उन्हें रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स और प्रोसेस का असेसमेंट कर सकता है। वो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिकमेंड कर सकता है। एम्प्लॉयज के लिए सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग सजेस्ट कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को रेलेवेंट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने में गाइड कर सकता है। इस करियर की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ टेक्निकल नॉलेज के साथ पीपल स्किल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करना, आपको क्लाइंट को ये भी समझाना है कि प्रॉब्लम क्यों इम्पोर्टेंट है और सोल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ प्रेजेंटेशंस, कम्युनिकेशंस, टीम वर्क और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंजॉय करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग आपके लिए सूटेबल हो सकता है। तो अब तक हमने 6 डिफरेंट करियर पाथ्स देखे। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकर, SOC एनालिस्ट, डिजिटल फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट, क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। लेकिन साइबर सिक्योरिटी की दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती। इस फील्ड में सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और भी बहुत से स्पेशलाइज्ड रोल्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर आप साइबर सिक्योरिटी चूज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पूरी जिंदगी एक ही टाइप का काम करें। आप एक्सपीरियंस के साथ स्पेशलाइजेशन चेंज कर सकते हैं। आप टेक्निकल रोल से मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं या मैनेजमेंट और बिजनेसेस अंडरस्टैंडिंग के साथ साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में मूव कर सकते हैं। इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी को सिर्फ कंप्यूटर जॉब कहना इस फील्ड को बहुत छोटा समझना होगा। ये टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, कम्युनिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग का कॉम्बिनेशन है। अब सवाल पैदा होता है, क्या साइबर सिक्योरिटी आपके लिए है? एक क्विक सेल्फ चेक। अगर आपको टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग लगती है, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, इंजॉय करते हैं, अगर आप व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, अगर आप डिटेल्स नोटिस करते हैं, अगर आप न्यू टेक्नोलॉजीज सीखने के लिए रेडी रहते हैं, और अगर आपको चैलेंजिंग सिचुएशंस में सॉल्यूशंस फाइंड करना पसंद है, तो साइबर सिक्योरिटी एक्सप्लोर करना वर्थ कंसिडरिंग हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, साइबर सिक्योरिटी में सक्सेसफुल होने के लिए आपको स्कूल से ही कंप्यूटर जीनियस होना जरूरी नहीं, आपके पास तजस्सुस होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कंटिन्यूसली सीखने की विलिंगनेस चाहिए। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, थ्रेट्स चेंज होंगे, टूल्स चेंज होंगे, और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को भी अपने स्किल्स अपडेट करने होंगे। यही इस करियर का चैलेंज भी है और इसी में इसका एक्साइटमेंट भी है। तो अगर आप फ्यूचर के लिए एक ऐसा करियर एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंटिन्यूस लर्निंग हो, तो साइबर सिक्योरिटी को अपनी लिस्ट में जरूर रखिए। लेकिन अब सवाल ये है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं, तो स्कूल के बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए? क्या कंप्यूटर साइंस डिग्री जरूरी है? क्या साइबर सिक्योरिटी की स्पेशलाइज्ड डिग्री बेटर है, या क्या सर्टिफिकेशंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए चलिए मूव करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, करियर टू कैंपस, प्रिपेयरिंग फॉर अ साइबर सिक्योरिटी करियर। करियर टू कैंपस। तो वेलकम बैक टू फ्यूचर करियर। आपने अब तक सुना कि साइबर सिक्योरिटी में कितने डिफरेंट करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, अगर एक स्टूडेंट आज डिसाइड करे कि मुझे फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है, तो वो शुरू कहाँ से करे? क्या स्कूल में ही कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना जरूरी है? क्या यूनिवर्सिटी में सिर्फ साइबर सिक्योरिटी डिग्री ही करनी होगी? क्या प्रोग्रामिंग आनी चाहिए? और क्या यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ सर्टिफिकेशन भी जरूरी होती है? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी की प्रिपरेशन यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि स्कूल से ही शुरू हो सकती है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो अपने बेसिक कंप्यूटर स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें। कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, डेटा क्या होता है, नेटवर्क्स क्या होते हैं, वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस कैसे कम्युनिकेट करती हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चंस समझना आपके फ्यूचर लर्निंग के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर सकता है। अगर स्कूल में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या प्रोग्रामिंग जैसे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो उन्हें सीरियसली कंसिडर करें। अगर आपके स्कूल में साइबर सिक्योरिटी का सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस करियर को परस्यू नहीं कर सकते। आप इंडिपेंडेंट लर्निंग के थ्रू बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में एंटर करने का एक कॉमन पाथवे कंप्यूटर साइंस हो सकता है। कंप्यूटर साइंस डिग्री में स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम्स, डेटाबेसेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स साइबर सिक्योरिटी के लिए यूजफुल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप नेटवर्क्स को समझते हैं, तो आपको ये समझने में आसानी होती है कि नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स किस तरह अफेक्ट करते हैं। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स को समझते हैं, तो आप सिस्टम्स की सिक्योरिटी रिस्क को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और प्रोग्रामिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर के वर्किंग प्रिंसिपल्स समझने में हेल्प करता है। इसीलिए कंप्यूटर साइंस सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का पाथवे नहीं, इसी फाउंडेशन के बाद आप साइबर सिक्योरिटी की डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस की तरफ मूव कर सकते हैं। आजकल यूनिवर्सिटीज में स्पेशलाइज्ड साइबर सिक्योरिटी डिग्री प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। इन प्रोग्राम का फोकस डायरेक्टली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और डिजिटल प्रोटेक्शन पर होता है। स्टूडेंट्स नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, डिजिटल फॉरेंसिक्स, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और एथिकल हैकिंग जैसे एरियाज स्टडी कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी श्योर हैं कि साइबर सिक्योरिटी ही आपका करियर इंटरेस्ट है, तो स्पेशलाइज्ड डिग्री एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी चूज करते वक्त सिर्फ डिग्री का नाम देखना है ना, नहीं

0: कोर्स स्ट्रक्चर भी चेक करना चाहिए. क्या यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल लैब्स ऑफर करती है? क्या स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट मिलते हैं? क्या इंटर्नशिप अवेलेबल है? क्या यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप रखती है? और क्या स्टूडेंट्स को करंट साइबर सिक्योरिटी टूल्स और टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपोजर मिलता है? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक प्रैक्टिकल फील्ड है. सिर्फ थ्योरी पढ़ना और रियल सिस्टम के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना, दोनों एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं. एक और रूट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी. आईटी प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स को सिस्टम्स, नेटवर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं. आईटी बैकग्राउंड के बाद स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइज्ड कर सकता है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि करियर पाथवे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता. हो सकता है कि एक स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट करे, कोई आईटी से करे, कोई साइबर सिक्योरिटी की डिग्री ले. अगर कोई पहले नेटवर्किंग या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस गेन करके बाद में सिक्योरिटी फील्ड में आए तो ये भी चलेगा. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को समझकर अपना पाथवे चूज करे. अब एक कॉमन क्वेश्चन, क्या साइबर सिक्योरिटी के लिए प्रोग्रामिंग आनी जरूरी है? आंसर है, प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत यूजफुल हो सकती है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के हर रोल में प्रोग्रामिंग का लेवल सेम नहीं होगा. कुछ रोल्स में कोडिंग और स्क्रिप्टिंग का यूज ज्यादा होता है, कुछ रोल्स में नेटवर्किंग, मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन या रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसलिए अगर आपको प्रोग्रामिंग अभी डिफिकल्ट लगती है तो साइबर सिक्योरिटी का आइडिया रिजेक्ट मत करें. बेसिक प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करें. पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिगनर्स के लिए एक यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है. गोल ये नहीं है कि आप स्कूल में ही प्रोफेशनल प्रोग्रामर बन जाएं. गोल ये होना चाहिए कि आप लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करें और समझें कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रोसेस करता है. अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर. यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पॉसिबल हो तो इंटर्नशिप्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जरूर एक्सप्लोर करने चाहिए. टेक्नोलॉजी कंपनीज, टेलीकम्युनिकेशंस, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट रिलेटेड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स, ये सब. तो अगर हम आज के सेगमेंट को एक सिंपल रोड मैप में कन्वर्ट करें तो स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह हो सकता है. स्कूल में टेक्नोलॉजी फंडामेंटल्स, फिर कंप्यूटर साइंस आईडी या फिर साइबर सिक्योरिटी जैसे एकेडमिक पाथवे, उसके साथ प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल लैब्स, प्रोजेक्ट्स और कंपटीशन, इंटर्नशिप एंड रियल वर्ल्ड एक्सपोजर. अब आ जाते हैं इस तरफ कि कतर में साइबर सिक्योरिटी का करियर किस तरह से रेलिवेंट है. आप जानते ही हैं कि कतर एक रैपिडली डिजिटलाइजेशन इकोनॉमी है. ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज, डिजिटल बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, क्लाउड सिस्टम्स और कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर. टेक्नोलॉजी का यूज डिफरेंट सेक्टर्स में कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है और जहां टेक्नोलॉजी होती है वहां सिक्योरिटी की जरूरत भी होती है. और साथ ही आ जाता है ये मामला कि अगर आप कतर में स्कूल या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. सबसे पहले टेक्नोलॉजी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करें, कंप्यूटिंग नेटवर्क्स को समझें, बेसिक प्रोग्रामिंग सीखें, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस डेवलप करें, ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज और प्रैक्टिकल लैब्स एक्सप्लोर करें. अगर स्कूल या यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशंस, कोडिंग क्लब्स या साइबर सिक्योरिटी एक्टिविटीज हैं तो उनमें जरूर पार्टिसिपेट करें. जी लिसनर्स, तो ये था हमारा आज का शो. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इंजॉय किया होगा और आपको कुछ ना कुछ अपने करियर के हवाले से जरूर समझ में आया होगा. इसी के साथ मैं आपसे लूंगी इजाजत. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: यस नाउ वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप द रिक्वेस्ट शो पर वापस से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. तो फिर सोचा कि कौन सा गाना आप सुनने वाले हो, वो कौन सा गाना था जिसने आपके स्टाइल में चार चांद लगा दिए एंड ना कि सिर्फ वो गाने का ऑडियो बल्कि उसका वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा. चलें सोचें और अपने फेवरेट गाने मुझसे शेयर करें जिन गानों ने आपके स्टाइल को और बढ़ाया, आपको और ज्यादा स्टाइलिश बनाया. सो 666-22-107 पर अपने नाम के साथ बता दो जल्दी से कौन सा गाना सुनना चाहते हो एंड व्हाई, या किसी खास को डेडिकेट करना चाहते हो. ठीक है, अभी सबसे पहली रिक्वेस्ट की तरफ हम चलते हैं जो कि है आसिफ की एंड द सॉन्ग इज ओहो. ये म्यूजिक सुनते ही अपने आप ग्रूव करने का दिल करता है कि नहीं. आहा, इस गाने के बाद फिल्मी दुनिया में लकी अली बहुत पॉपुलर हुए और जिस तरह से ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस था वो बड़ा हिट हुआ और उसमें एक स्टाइल था जो कि ट्रांसपेरेंट टी शर्ट का था जिन्होंने ऋतिक ने पहन के यू नो परफॉर्म दिया था. दैट वॉज अ हिट. तो एक पल का जीना फ्रॉम द मूवी कहो ना प्यार है पूरा मैं आपको सुनाऊंगी और उसके बाद उमर की रिक्वेस्ट पर भाई जान का गाना ओहो माशाल्लाह. आपको बताना चाहते हैं कि जब हम इस गाने में सलमान को देखते हैं ना, मतलब वो शर्ट और उसके ऊपर वो चेक सा बड़ा सा रुमाल जिन्होंने गर्दन पे बांधा होता है, ओहो क्या ट्रेंड में आया था. हालांकि ये ट्रेंड्स हमारे आंखों के सामने होते हैं लेकिन जब कोई खास सेलिब्रिटी इसे फॉलो करता है ना, उफ तो मज़ा ही आ जाता है. सो यस, ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आने वाले हैं और आप अपने चॉइसेस के बारे में सोचें. वो गाने जिन्होंने आपके स्टाइल में चार चांद लगाई आप यहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं. और अभी लेट्स एंजॉय लकी अली का ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक एक पल का जीना. स्टे ट्यून्ड टू FM 107.

0: आप सुन सकते हैं FM 107. लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ.
1: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी. इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर.
2: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ.
3: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, feeling of missing out, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है. पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो FOMO एवर अगेन. सुनिए कथा 2026 RJ फजील के साथ. रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी. आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
4: हां जी, वेलकम वंस अगेन FM 107. सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. द रिक्वेस्ट शो की खासियत की आपके अपने पसंदीदा गाने आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पर बस रिक्वेस्ट करके प्ले करवा सकते हैं. वेल, आज का जो थीम है बड़ा कमाल का है. वो कौन से गाने हैं जिनके वीडियोस देखकर आपने अपने स्टाइल में चार चांद लगाई, आपने उस तरह के बाल कटवाए, उस तरह के कपड़े पहने, औरों को इम्प्रेस किया और काफ़ी खुश खुश फील किया. सो यू कैन डेडिकेट दो सॉन्ग्स और उसकी स्पेशल चीज़ें भी आप बता सकते हो. ठीक है, सो 666-22-107 पर अपने नाम के साथ जरूर शेयर करो. और अभी जो रिक्वेस्ट आई है, आई शुड टेल यू, बड़ी कमाल की हैं. और ये 90s और अर्ली 2000s का दौर था, जब वो कहते हैं ना, लेसेस, डिफरेंट वाइब्रेंट कलर्स, शिफॉन साड़ीज, लेदर जैकेट्स, वो जो ट्रेंड था ना, मतलब मुझे लगता है कि वो एवरग्रीन ट्रेंड था जो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ. तो चलिए उन गानों को इंजॉय करते हैं. HM हनीव सिकदर, जो कि मदीना खलीफा में रहते हैं, और वहाँ से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कुछ कुछ होता है सॉन्ग की. यस, कुछ कुछ होता है फिल्म भी अपने आप में काफ़ी स्टाइलिश फिल्म थी, है कि नहीं. तो चलिए ये गाना पूरा पूरा मैं आपको सुनाऊंगी, और उसके बाद जहीर की रिक्वेस्ट पर ये गाना, उफ, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट.
5: खुली हो या हो बंद,
4: और उसमें जो वो परफॉर्मेंस होता है, मतलब कितने सारे उसमें यंगस्टर्स थे, हैं कि नहीं, वो सारे स्टार्स का परफॉर्मेंस, मोहब्बत फिल्म का ये गाना, इट्स सुपर फेवरेट. तो चलिए ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आ रहे हैं, और आप भी अपनी रिक्वेस्ट जल्दी जल्दी करो 666-22-107 पर अपने नाम के साथ. और अभी वॉल्यूम बढ़ाओ, थोड़ा नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स में खो जाओ, इंजॉय करो ये ब्यूटीफुल रिक्वेस्ट. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हां जी माय देसी ऑडियंस, वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। क्या बात है, द रिक्वेस्ट शो पर एक से बढ़कर एक क्या रिक्वेस्ट आ रही है। मतलब समझ में आ रहा है कि आप सब फिल्मी दुनिया को बड़ा फॉलो करते हैं, है कि नहीं। चलिए हम अपनी अगली रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद फारूक की रिक्वेस्ट है और कहते हैं कि अमिता ये जो पर्टिकुलर सॉन्ग है, चलो इस गाने की थोड़ी सी धुन प्ले करी जाए। कहते हैं इस गाने में स्पेशली हमारी कैटरीना कैफ का लिबास बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत था और वो बड़ी प्यारी सी लग रही थी। सो यस, मुझे भी याद है सैयारा ये गाना है, कैटरीना कैफ का ब्लैक सूट एंड देन हर इनोसेंस, उफ आई सो लव्ड इट। सो एक था टाइगर फिल्म का ये गाना, पूरा पूरा आपको मैं आगे सुनाने वाली हूँ। और उसके बाद बिलाल की रिक्वेस्ट पर एक गाना है, बड़ा ही प्यारा सा गाना है, जिसमें सलमान, प्रीति जिंटा एंड रानी मुखर्जी का ग्रेट कॉम्बिनेशन था। हर दिल जो प्यार करेगा का टाइटल ट्रैक काफी दिल को छूने वाला है। हाँ चलिए, ये दोनों ही गाने पूरे पूरे आपकी राहों में आ रहे हैं और आप जो एकदम इत्मीनान से बैठे हैं और सोच रहे हैं मेरी प्लेलिस्ट कब प्ले होगी, मेरा फेवरेट गाना कब बजेगा, तो सिर्फ सोचे नहीं, अगर सिर्फ जहन में रिक्वेस्ट है तो तुरंत भेजें हमें 666-22107 पर अपने नाम के साथ और हम यहाँ पर प्ले करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ा लो अगर अभी तक हौले हौले सुन रहे हो। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सकें।

0: क्योंकि आप मैटर करते हैं।
1: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी।
2: Absolute cinema.
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: हां जी माय देसी ऑडियंस, वेलकम वंस अगेन। द रिक्वेस्ट शो पर मजे मजे की रिक्वेस्ट आ चुकी है और अब हम अगली रिक्वेस्ट प्ले करने वाले हैं। ये वो गाना है जो कि अपने हाई पिच नेजल टोन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और हिमेश रेशमिया एंड इमरान हाशमी का ग्रेट ग्रेट कॉम्बिनेशन। सो वहीद अहमद की रिक्वेस्ट है एंड ही जस्ट लव दिस सॉन्ग। सो डेफिनेटली ये गाना पूरा पूरा आप इंजॉय करने वाले हैं एंड आई एम वेरी सर्टन कि इस गाने को सुन के ना एक अलग ही फील आता है कि नहीं। उसके बाद रिजवान का मुझे मैसेज है, उनका कहना है कि अमिता देखो, वैसे तो मैं फ़ैन सलमान खान और संजय दत्त जी का हूँ, लेकिन धूम फिल्म देखने के बाद मैंने अपने बालों को लंबा कर लिया।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हां जी, वेलकम वंस अगेन, एफएम 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी फॉर अमिता। और कौन सा गाना है जो आप सुनना चाहते हैं, जिसने आपकी जिंदगी को बदल के रख दिया, आपकी स्टाइल में चार चांद लगाए, आपके वार्डरोब में और नए नए कपड़े लेकर आया, तो कौन सा गाना है? डू शेयर विथ मी 666-22-107 पर। वैसे भी हमारे शो का बिल्कुल आखिरी पड़ाव चल रहा है, तो थोड़ा सा आपका फिल्मी नॉलेज टेस्ट करेंगे। तो क्विज टाइम पर अब हम एक ऐसा गाना आपको सुनाने वाले हैं बीच से, जहां पर दो एक्ट्रेसेस ने परफॉर्मेंस दी है बिल्कुल स्टनिंग रेड एंड वाइट हैवी सिल्क साड़ी में और ट्रेडिशनल बंगाली ज्वेलरी है। और फुल हाई एनर्जी क्लासिकल डांस है। Yes, ये गाना कौन सा है? हाँ, तो गेस कीजिए ये गाना कौन सा है। अगर आपने पहचान लिया तो ये गाना पूरा पूरा आपका हो जाएगा, है कि नहीं? सो 666-22-107 666-22-107 इज आर नंबर, अपने नाम के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अभी एक आखिरी रिक्वेस्ट प्ले करने का वक्त आ चुका है। सो जैनब की रिक्वेस्ट है, वो अपनी फैमिली के नाम ये गाना करना चाहती हैं और बहुत ही खूबसूरत गाना है, सो डेफिनेटली हम ये गाना प्ले करेंगे। और राबिया जी के लिए भी मैं ये गाना प्ले करना चाहती हूँ और उनकी फैमिली के लिए भी, सो डू एंजॉय इट।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से
1: Yes, now welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी A for Amita और quiz time पर हमने आपको एक गाना बीच से सुनाया. तो मैंने कहा जल्दी से पहचानो ये गाना कौन सा है. मैं बताना चाहती हूँ इस पर्टिकुलर गाने के वीडियो के लिए यू नो जो सेट बना था फिल्मी सेट दैट वॉज 25 million रुपीज का. Yes, and the song is Dola Re Dola. क्या बात है. तो हमारी लिसनर्स ने बिल्कुल पहचान लिया. आइए जल्दी से हम देखते हैं जिन्होंने हमें सही जवाब दिए. फलक ने हमें सही जवाब दिया. कुछ लोग निम्बुड़ा निम्बुड़ा कह रहे थे बट नो इट्स नॉट निम्बुड़ा निम्बुड़ा. इट्स डोला रे डोला फ्रॉम द मूवी देवदास. ठीक है. रिजवान ने भी हमें सही जवाब दिया. मोहम्मद यूसुफ खान ने भी हमें सही जवाब दिया है. यूसुफ शमीम ने हमें सही जवाब दिया है. अदील ने हमें सही जवाब दिया है. अप्पू ने सही जवाब दिया है. भाई नाम जरूर लिखा करो. सैयद फिरोज ने भी हमें सही जवाब दिया है. मोहम्मद ने सही जवाब दिया है. प्रिंस ने सही जवाब दिया है. वाओ लाइक हमारे सारे लिसनर्स काफी फिल्मी हो रहे हैं. इम्तियाज अली ने भी सही जवाब हमें दे ही दिया है. और भी हमारे लिसनर हैं जिन्होंने नॉन स्टॉप हमें सही जवाब दिए हैं. तो आपके लिए ये गाना अब हो जाता है. तो इंजॉय करें डोला रे डोला. और अभी आप मुझे दीजिए इजाजत क्योंकि वक्त हो गया है मेरे जाने का. तो जाने से पहले कहना बनता है कि हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

हम बात करते हैं घर की, रिश्ते की, पेरेंटिंग की और फैमिली बॉन्ड के बारे में। वेल, हर रोज हम एक नए टॉपिक को लेकर आते हैं और फिर उस पर आपसे बात करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। छोटे मोटे जो घर से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जो रिश्तों से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, उन्हें हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो हर घर का एक बड़ा मसला है और आज का टॉपिक है मैनेजिंग स्क्रीन टाइम विदाउट आर्ग्यूमेंट। यानी बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे मैनेज करें बिना गुस्से, बिना रोज रोज के आर्ग्यूमेंट्स के। देखिए, आज के इस डिजिटल दौर में स्क्रीन हर जगह है। मोबाइल फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, गेमिंग कंसोल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, स्मार्ट टीवीज हैं। बच्चों की पढ़ाई भी स्क्रीन्स पर है, एंटरटेनमेंट भी स्क्रीन्स पर है और दोस्ती भी स्क्रीन्स के जरिए हो रही है। कई पेरेंट्स रोज ये सेंटेंस कहते हुए सुनाई दिए जाते हैं कि बस करो, बहुत हो गया, इतनी देर तक गेम खेलते हो, सोने का वक्त हो गया, कोई होश ही नहीं, अब पता नहीं क्या क्या। और इसका नतीजा क्या होता है? आप फ्रस्ट्रेटेड और बच्चा शायद थोड़ा नाराज, या वक्ती तौर पे उसने फोन रखा और फिर पिक कर लिया। अब ऐसे में घर का माहौल खराब होता है और अक्सर इसका इल्जाम जो है वो फीमेल्स के ऊपर जाता है कि तुम बिजी रहती हो, तुमने बच्चे की सही तरीके से तरबियत नहीं की। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है फादर्स का, क्योंकि वो जब आते हैं इस तरह का माहौल टेंस्ड वाला देखते हैं तो भी साख्ते ही मुंह से निकल जाता है। देखिए, स्क्रीन टाइम का डिस्कशन कब और कैसे आर्ग्यूमेंट में तब्दील हो जाता है ये हमें भी नहीं पता चलता। और ये वाकई बड़ा, मैंने जो वर्ड यूज किया ना, फ्रस्ट्रेटिंग है, वाकई है। आज का सवाल इसके बरक्स है, क्या स्क्रीन टाइम सिर्फ फोन छीन लेने से कंट्रोल हो जाएगा? क्या घर में स्ट्रिक्ट रूल्स लगाना एक प्रॉपर सोल्यूशन है या कोई और बेहतर तरीका भी है? जब ये सवाल मेरे जहन में आए और मैं जब इस टॉपिक पे बात करने की सोच रही थी और मैंने सोचा कि वाकई क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे एक बुक नजर आई और ये बुक है द आर्ट ऑफ मैनेजिंग स्क्रीन टाइम। बड़ी अच्छी बुक है, कभी कभी आपको मौका मिलता है तो जरूर पढ़िएगा। अगर नहीं मिलता है तो उसके जो बेस्ट पावरफुल टेकअवेज है वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और शुरुआत ही इस बुक की इस तरह से है कि टेक्नोलॉजी एक टूल है, जैसे एक नाइफ यानी जो चाकू है किचन में खाना भी बना सकता है और दूसरी तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है, वैसे ही स्क्रीन सीखने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए भी यूज हो सकती है। और अगर इसमें बैलेंस क्रिएट किया जाए तो कम से कम चैलेंज क्रिएट होंगे। वहीं पर पेरेंट्स को इस बुक में, जिस बुक का मैंने जिक्र किया, यू नो द आर्ट ऑफ मैनेजिंग स्क्रीन टाइम, बड़ा अच्छा एक वर्ड पेरेंट्स के लिए यूज किया गया है और वो है पुलिस का। यहाँ बुक के मुताबिक पेरेंट्स को जो है ना वो पुलिस ऑफिसर कहा गया है और कहा गया है कि आपको ना घर में पुलिस ऑफिसर बनने की जरूरत नहीं है। और हम अक्सर कहते हैं हिटलर ना बनो, है ना, लेकिन चलिए यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहा गया है, बल्कि ये कहा है कि आपको पुलिस ऑफिसर बनने की जरूरत नहीं है, कोच बनिए। अब देखिए डिफरेंस समझिए, पुलिस ऑफिसर पकड़ता है जबकि कोच गाइड करता है। पुलिस ऑफिसर शायद पनिश करता है जबकि कोच ट्रेन करता है। और जब आप पेरेंट्स कोचिंग अप्रोच अडॉप्ट करते हैं तो बच्चा ज्यादा कोऑपरेट करता है, बिलीव मी, ज्यादा कोऑपरेट करता है। स्क्रीन टाइम का असल गोल मोबाइल कम करवाना नहीं है बल्कि बच्चों को सेल्फ कंट्रोल सिखाना है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि असल जिंदगी में हम हर वक्त उनके साथ तो नहीं होंगे ना, हर वक्त उन्हें गाइड कर पाएंगे, बहुत सारे डिसीजन उन्हें अकेले ही लेने हैं। लेकिन हमने जो रहनुमाई उनकी बचपन में की होगी, शायद वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले करेगी जिसके बाद वो हर फैसला सही सोच समझ के साथ अच्छी सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए कर पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो जब मैं इस बुक को देख रही थी तो मुझे समझ में आई, वो है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोल करना नहीं बच्चे को जो है वो, ना उसे स्क्रीन टाइम कम करवाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रिश्ता, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना। अक्सर पेरेंट्स स्क्रीन प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतना फोकस डाल देते हैं कि उनके रिश्ते डैमेज हो जाते हैं। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के साथ रूल्स को इम्पोज करना आसान हो जाता है, वहीं पर अगर वीक रिलेशनशिप है तो वही रूल्स जंग बन जाते हैं। जब बच्चे महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है

तो वो भी पेरेंट्स की बात सुनने लगते हैं। इसीलिए स्क्रीन टाइम डिस्कशन पनिशमेंट नहीं है, ये कन्वर्सेशन और हेल्दी कन्वर्सेशन होनी चाहिए। आज इस शो में हम बात करेंगे कि स्क्रीन टाइम आर्ग्यूमेंट्स क्यों होते हैं, पेरेंट्स का क्या रोल है, बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करें, फैमिली रूल्स कैसे बनाए जाएं और कैसे टेक्नोलॉजी को फैमिली एनिमी नहीं एक फैमिली हेल्पर बनाया जा सकता है। तो चलिए आज इसी टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आपके घर में ये इशू है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्क्रीन टाइम पर अपना वक्त ज़ाया करता है, घर में टेंशन हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या चाहिए, तो मैं यहीं से शुरुआत करूँगी कि करना क्या है। सबसे पहले मैं कुछ प्रैक्टिकल पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज की बात करूंगी और उसमें कुछ रूल्स होते हैं। जो सबसे पहला रूल है वो है कनेक्शन का। आई थिंक जैसे मैंने शो स्टार्ट किया है तब से मैं कनेक्शन की बात कर रही हूँ और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसे बार बार मैं इसलिए भी दोहरा रही हूँ कि शायद हमारे और आपके जहन में ये फिट हो जाए। ऐसे तो हम कनेक्शन कहते हैं हमारा है, सबसे है, सब कुछ है, लेकिन वो कनेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक सॉलिड कनेक्शन है। वो कह देने से, समझ लेने से नहीं, महसूस करने से होगा। जब बच्चे गेम खेल रहे हों या फिर वीडियोस देख रहे हों, हम अचानक जाकर कहें कि बस बंद करो, तो रेजिस्टेंस नेचुरल है। आप इमेजिन कीजिए कि आपका कोई बहुत ही फेवरेट कोई पाकिस्तानी ड्रामा आ रहा है, फॉर एग्जांपल जंजीरे आ रहा है, एकदम क्लाइमेक्स वाला माहौल है और आप देखना पसंद कर रहे हैं, और इसी बीच कोई आपसे जो है वो टीवी का रिमोट छीन ले या वो बंद कर दे, तो अचानक आपको कैसा लगेगा? बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा ना। बस यही समझना है, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए सबसे पहले जो मैंने बात की वो है कनेक्शन की और फिर करेक्शन की। जाकर उस बच्चे से पूछिए क्या देख रहे हो, किस लेवल तक पहुंच गए अगर गेम खेल रहा है तो, क्या इंटरेस्टिंग गेम है क्या, दो तीन सवाल, और बच्चे को महसूस होता है कि पेरेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे ही बच्चे को ये बात महसूस होती है कि पेरेंट्स जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनका डिफेंसिव मोड कम हो जाता है और इस मोड को ट्रिगर नहीं करना है, कम करना है। ये सबसे पहला रूल है। वहीं दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपकी क्लियर एक्सपेक्टेशंस। देखिए अक्सर आर्ग्यूमेंट्स इसलिए होते हैं कि रूल्स क्लियर नहीं होते। आज एक घंटा खेला बच्चे ने, कल तीन घंटा, और परसों कोई लिमिट ही नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फैमिली स्क्रीन एग्रीमेंट बनाइए, आर्ग्यूमेंट नहीं। और एग्रीमेंट में आप लिख सकते हैं कि भाई होमवर्क पहले, डिनर के वक्त नो फोन्स, बेडरूम में स्क्रीन नहीं, वीकेंड स्क्रीन टाइमिंग अलग रहेंगे, वीकडेज स्क्रीन टाइमिंग अलग रहेंगे, और जो रूल्स हैं उन्हें सब फॉलो करेंगे। इस तरह से आप भी फॉलो करेंगे और बच्चा भी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात या तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है वार्निंग्स देना। अचानक स्क्रीन बंद करवाना बड़ा मुश्किल है और बच्चा जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, ज्यादा जो है वो प्रोवोक हो जाता है। वार्निंग्स दीजिए, स्लो ट्रांजिशंस, 10 मिनट पहले वार्निंग, 5 मिनट वार्निंग, 2 मिनट्स वार्निंग। ये तरीका इमोशनल रेजिस्टेंस को कम करता है, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर की। एक और चौथा रूल जो मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है मॉडल व्हाट यू वांट। बच्चे सुनते नहीं हैं, देखते ज़्यादा हैं और हमेशा पता नहीं होता कि वो हमें कैसे कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स खुद हर वक्त फ़ोन पर हों तो बच्चे से फ़ोन कम यूज़ करने का कैसे कहेंगे? मान लीजिए कहते भी हैं तो बच्चे के जहन में ये मैसेज फीक जाता है। फैमिली को रोल मॉडल चाहिए, पेरेंट्स भी स्क्रीन डिसिप्लिन फॉलो करें उसके बाद कहें। पांचवा और बहुत ही पावरफुल तरीका, और ये बड़ा ही प्रैक्टिकल और बड़ा इम्पॉर्टेंट रूल है, वो है रिप्लेस का। रिप्लेस नॉट जस्ट रिमूव। रिमूव कर देते हैं हम चीज़ों को, छीन लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, डांट देते हैं, जो कि तरीका सही नहीं है। हमें बेहतर अल्टरनेटिव्स देने हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिमूव करेंगे, छीनेंगे, तो रिजल्ट होगा फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, आर्ग्यूमेंट, और भी हो सकता है बच्चा बहुत हाइपर हो जाए। लेकिन अगर हम रिप्लेस करेंगे तो शायद उस तरह का रिएक्शन ना आए। अब हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? स्पोर्ट्स से, ड्राइंग से, कुकिंग से, आर्ट एक्टिविटी है, कोई अच्छी कन्वर्सेशन है, स्टोरी टाइम है, या कोई और हेल्दी अल्टरनेटिव आपके जहन में है तो वो। इससे बच्चा जो है थोड़ा सरल वे में उस चीज को एक्सेप्ट करता है। छठा और एक और इम्पॉर्टेंट रूल,
वो है डोंट यूज स्क्रीन्स एज रिवॉर्ड. एंड दिस आई रिपीट, डोंट यूज स्क्रीन्स एज रिवॉर्ड, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी मदर्स सेइंग कि ये काम कर लो फिर तुम्हें फोन मिल जाएगा. प्लीज स्टॉप सेइंग दिस, प्लीज फॉर गॉड सेक. ये स्क्रीन की वैल्यू को बढ़ा रहा है बच्चे के दिल में कि वाह रिवॉर्ड मुझे मिलेगा वो भी स्क्रीन के फॉर्म में, यानी इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है. स्क्रीन एक बहुत ही नॉर्मल एक्टिविटी या ब्लू नॉर्मल एक्टिविटी होनी चाहिए. इट जस्ट कुड बी एन एक्टिविटी, नॉट एट ऑल अ रिवॉर्ड. इसलिए इसे वैल्यूएबल चीज हरगिज मत बनाइए. कोशिश कीजिए कि ये स्टेटमेंट या ये सेंटेंस आपकी जबान से ना निकले. सातवां और एक और पावरफुल रूल जो मुझे लगता है सबसे पावरफुल है वो है सेल्फ रेगुलेशन. माफ कीजिएगा, फाइनल गोल जो है वो फोन पर कंट्रोल करना नहीं है बल्कि बच्चे को सेल्फ कंट्रोल सिखाना है, जिससे बच्चा खुद डिसाइड करने लग जाता है कि अब स्क्रीन टाइम बहुत हो गया. ये स्किल लाइफ के हर मोड़ पे उसके काम आती है. और जब बच्चे देखते हैं कि पेरेंट्स उन्हें इस तरह से गाइड कर रहे हैं कि वो उन्हें डोमिनेट नहीं कर रहे, तो ये स्किल बच्चे नेचुरली डेवलप कर लेते हैं. याद रखिए, कभी भी डिसिप्लिन डर से नहीं आएगा, डिसिप्लिन कनेक्शन से, रिलेशनशिप से आएगा. अब इतनी सारी चीज़ें तो मैंने आपको टिप्स दी बताई और मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल बातें मैंने रखी. कोई ऐसा कोई लेंदी चीज़ नहीं बताई जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो. अब हमें और आपको बच्चों को टाइम टू टाइम फैमिली की इम्पोर्टेंस, टुगेदरनेस की इम्पोर्टेंस भी समझानी है. स्क्रीन के साथ बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें फैमिली मेंबर्स के बीच भी गुड बैलेंस क्रिएट करना है. स्क्रीन फैमिली को दूर भी कर सकती है और करीब भी ला सकती है. डिफरेंस सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं. फैमिली के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल हैबिट्स हैं, जैसे स्क्रीन फ्री डिनर्स, रोज सिर्फ 30 मिनट्स, कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ और सिर्फ फैमिली. और रिसर्च भी यकीन मानिए ये कहती है कि फैमिली मील्स कम्युनिकेशन और इमोशनल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. वहीं फैमिली एक्टिविटी नाइट्स, हफ्ते में एक नाइट कोई अच्छा सा गेम, कोई अच्छी सी स्टोरी, कोई कुकिंग चैलेंज, क्विज नाइट, ये चीजें कहने को एक्टिविटीज हैं, लेकिन ये मेमोरीज क्रिएट करती. वहीं पर टेक टॉक टाइम जी हाँ, महीने में एक बार फैमिली मीटिंग. बच्चों से पूछिए ऑनलाइन क्या सीखा. ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें डरा देना है टेक्नोलॉजी से, नहीं, टेक टॉक टाइम होना ही चाहिए, टेक के बारे में बात होनी चाहिए. पूछिए आपने क्या सीखा, जिससे बच्चा ये समझे कि जो टेक्नोलॉजी, जो गैजेट्स उसके हाथ में है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, वो एक पावरफुल लर्निंग टूल भी है. क्या पसंद आया, किस चीज़ ने तुम्हें परेशान या डिस्टर्ब किया, ये ट्रस्ट कैसे स्ट्रॉन्ग होगा आपका और आपके बच्चे के बीच आपको पता ही नहीं चलेगा. यानी को छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग. वहीं पर शेयर्ड स्क्रीन एक्सपीरियंस, कभी कभी साथ में मिलकर डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, कोई एजुकेशनल वीडियो देख लीजिए, और हाँ स्पोर्ट्स देखिए, बच्चों को स्पोर्ट्स में तो कितना इंटरेस्ट आता है. स्क्रीन को कनेक्शन का टूल बनाइए, सेपरेशन का नहीं. यहाँ एक और छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और जितने भी बच्चे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं तो उनके साथ भी. और ये कहानी है एक फैमिली की, अहमद और सारा. इस फैमिली के दो बच्चे थे, अली इनके वालिद साहब का नाम और हानिया इनकी अम्मा का नाम. घर में रोज मोबाइल को लेकर झगड़ा होता. पापा कहते फोन रख दो, और बेटा कहता बस 5 मिनट, और वो 5 मिनट 30 मिनट कम बन जाते पता ही नहीं चलता. मम्मी नाराज, बच्चे नाराज, हर रोज टेंशन. एक दिन पेरेंट्स ने अपनी अप्रोच चेंज करने का फैसला किया. उन्होंने फैमिली मीटिंग रखी, सब ने मिलकर उस मीटिंग को अटेंड किया. अब ये मीटिंग की कामयाबी पेरेंट्स ने बच्चों के ऊपर डाली, कहा कि मीटिंग प्लान करो, मीटिंग कैसे कोऑर्डिनेट करनी है वो करो, और मीटिंग का एजेंडा भी तुम ही शेयर करो. अब मीटिंग का एजेंडा जो रखा गया वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइम था, फैमिली टाइम. यहाँ पर उन्होंने लिखा ST वर्सेस FT, स्क्रीन टाइम वर्सेस फैमिली टाइम. अब इस मीटिंग में बातचीत स्टार्ट हुई. अब क्योंकि बच्चों ने खुद ने मीटिंग अरेंज की थी,
और उनको एजेंडा भी फैमिली टाइम दिया गया था. अब डिबेट जो थी स्क्रीन टाइम वर्सेस एफटी यानी फैमिली टाइम पर थी. पेरेंट्स ने कहा कि हम जो है वो स्क्रीन टाइम के प्रो बात करेंगे, मतलब स्क्रीन टाइम के फेवर में बोलेंगे. बच्चे बड़े हैरान थे और मजबूर भी थे क्योंकि अब उनके पास एक ऑप्शन था, वो था फैमिली टाइम पर बोलने का. तो बस बच्चों ने ढूंढा फैमिली टाइम के बारे में, खकोड़ा निकाला क्या बेस्ट पॉइंट्स हो सकते हैं. अच्छा, इस मीटिंग को एक तरह का हेल्दी कंपटीशन भी रखा गया कि भाई एक डिबेट होगी और पेरेंट्स वर्सेस बच्चे, कौन जीतता है कौन हारता है. तो पेरेंट्स ने भी अपने आप में तैयारी दिखाई भरपूर. जो भी स्क्रीन टाइम से रिलेटेड पॉइंट्स हो सकते हैं बेस्ट, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स रखे जाने थे. ये कहा गया था कि नेगेटिव कुछ भी नहीं रखेंगे, दोनों तरफ से दोनों पक्ष जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स रखेंगे. अब पेरेंट्स ने जो था वो स्क्रीन टाइम को लेकर बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स रखने शुरू कर दिए. इधर बच्चों ने भी भरपूर रिसर्च की, फैमिली टाइम, फैमिली वैल्यू, फैमिली टुगेदरनेस, बॉन्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतनी बातें बच्चों ने कही कि एक मोड़ आया कि जो पेरेंट्स थे वो स्क्रीन टाइम के बारे में बहुत सारे प्रोज जो है वो गिना ही नहीं पा रहे थे, वो चुप हो गए. और बच्चों ने इतनी अच्छी तैयारी की थी क्योंकि उनके दिमाग में ये नहीं था कि स्क्रीन टाइम उनका फेवरेट होने के बावजूद, उनके दिमाग में ये था कि हमें जीतना है. तो फैमिली टाइम ने उन्हें जितवा दिया. और इतने सारे प्रोज एंड कॉन्स जब उन्होंने देखे पढ़े तो उन्हें समझ में आया कि वाकई फैमिली टाइम इज फार बेटर देन स्क्रीन टाइम. और इस तरह से इस एक्टिविटी ने, कम मीटिंग ने, कम डिबेट ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया. तो ये कहानी भी, ये छोटा सा इंसिडेंट कहना चाहिए, कहानी तो नहीं, ये छोटा सा इंसिडेंट हमें और आपको ये सिखाता है कि जब फैमिली एक टीम बन जाए तो स्क्रीन टाइम प्रॉब्लम रहती ही नहीं है, आसानी से चीजें सॉल्व हो जाती हैं. दोस्तों, आज हम स्क्रीन टाइम की उस रियलिटी की बात कर रहे हैं जो हमारी और आपकी जिंदगी का एक बहुत अटूट हिस्सा बन चुका है. चाहे या हम ना चाहें, हम इस चीज को मानते हैं कि सोशल मीडिया एप्स और गेम्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो बार बार चेक किए जाएं. हर नोटिफिकेशन, हर नया वीडियो, हर गेम रिवॉर्ड ब्रेन को कहीं ना कहीं टेम्परेरी सही लेकिन एक्साइटमेंट तो देता है. अब इस एक्साइटमेंट को बच्चे कितनी जल्दी एडिक्शन में बदल लेते हैं ये भी हमें समझाने की जरूरत नहीं है. ये चीजें बहुत कॉमन हो चुकी हैं, इसलिए पूरी तरह से बच पाना बड़ा मुश्किल है. एडल्ट्स भी कई बार जो है वो इस एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, बट दैट्स ओके. लेकिन कोशिश ये है कि हम इसे पूरी तरह से ना बचें लेकिन इसे रिड्यूस करें. अब रिड्यूस, पहले तो स्क्रीन टाइम के नुकसान आप जानते ही जानते हैं, आई थिंक मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए. चलिए क्विक से मैं आप सबके लिए कर भी देती हूँ कि कई बार आपने और हमने देखा है कि बच्चा जो है वो पूरी पूरी रात जागता है और शायद पूरे पूरे दिन सोने लगता है. इससे इसकी बड़ी वजह है उसका स्क्रीन टाइम. स्क्रीन टाइम का जो सबसे बड़ा और पहला नुकसान है वो है स्लीप प्रॉब्लम्स. बच्चों का जो स्क्रीन की जो ब्लू लाइट है वो ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी दिन है और बॉडी स्लीप हार्मोन कम प्रोड्यूस करती है और रिजल्ट क्या होता है, नींद लेट आती है, सुबह उठना मुश्किल हो जाता है. इससे बच्चों की स्कूल परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है. मतलब कोई भी बच्चा जो सुबह से शाम तक या अच्छा खासा टाइम स्क्रीन को दे रहा है, स्कूल थका हुआ जाएगा तो क्या वो उस तरह से पढ़ पाएगा, सीख पाएगा? नहीं. इसको, इस स्लीप पैटर्न को सुधारने में काफ़ी लोगों को महीने भी लग जाते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्क्रीन टाइम का. उसके बाद हमने देखा है कि स्क्रीन टाइम के चलते बच्चों में जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो कितनी कम हो जाती हैं. आजकल बच्चे जो है बॉडी मूवमेंट को पसंद ही नहीं करते, उन्हें रनिंग, साइकिलिंग या कोई दूसरा स्पोर्ट को वो थक जाते हैं या करना ही नहीं चाहते. ये सिर्फ फिटनेस की बात नहीं है, इमोशनल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के लिए भी ज़रूरी है. इसीलिए 5 घंटे ई गेम्स खेलने से अच्छा है कि आप उसे किसी भी फुटबॉल एकेडमी को ज्वाइन करवा दें. पहले तो वो रिलक्टेंट था लेकिन कुछ हफ्तों बाद की जो रिलक्टेंस है वो कम हो जाएगी और शायद फुटबॉल उसे पसंद आने लगे. तो मैंने एग्जाम्पल दिया, हो सकता है इसके अलावा कोई और स्पोर्ट हो जो आपके जहन में हो, जो आपको लगता है आपके बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है बाय द टाइम, तो वो भी आप फॉलो करवा सकते हैं. वहीं पर एक फैमिली कम्युनिकेशन एक्टिविटी मैंने आपके साथ शेयर की, ये तो होनी ही चाहिए. आजकल पेरेंट्स बिजी हैं, शायद उस तरह से टाइम ही नहीं दे पाते, तो बच्चों के साथ वो कनेक्शन जो बिल्ड होना चाहिए वो नहीं होता. अब स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई. ये चीज़ याद रखिए कि इसे ग्रेजुअली रिड्यूस किया जा सकता है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमारी और आपकी जो है वो आज के टाइम की ज़रूरत भी है. अब
बहुत सारी बातें तो हमने आपके साथ शेयर की, वहीं पर आप और हम इन

0: चीजों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं या कर पाते हैं, ये देखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मैंने बहुत सारे आपको टिप्स दिए और अभी मुझे एक चीज और याद आ गई कि एक बड़ी अच्छी टिप किसी ने, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी और वो कहती हैं कि एक फैमिली चार्जिंग स्टेशन हो, यानी घर में एक कॉमन चार्जिंग एरिया, नाइट टाइम पर सब डिवाइसेस वहां रखें, सिर्फ बच्चे ही नहीं पेरेंट्स भी। तो जब घर का रूल सबके लिए सेम होता है तो बच्चा भी फेयर फील करता है और वाकई कोऑपरेट भी करता है। एक और किस्सा मैं आपको सुनाऊंगी और ये शायद मेरे नेबर्स का किस्सा है। एक फैमिली थी और उनके तीन बच्चे। यहाँ पर ये फैमिली, मेरा मतलब उनके जो पेरेंट्स थे, वो हर रोज स्क्रीन टाइम को लेकर परेशान रहते, हर रोज उनके घर में टेंशन और आर्ग्यूमेंट्स होते। एक दिन उन्होंने सोचा कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। बच्चों को पनिश करके देख लिया, छीन के देख लिया, छुपा के देख लिया, बट कुछ भी जो है उसने वर्क नहीं किया। अब इन्होंने सोचा कि कुछ नहीं तो एक चांस और देते हैं, बच्चों के साथ बैठ के ओपन कम्युनिकेशन। इस ओपन कम्युनिकेशन ने बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन टाइम के पॉजिटिव बात और उन बातों के बीच बीच में अपनी बात कहना कि मेरे साथ मैं जो था वो आज मैं सिंपली ऐसी स्क्रीन स्क्रॉल करता रह गया और एक मीटिंग थी मैंने मिस कर दी, उसकी जो स्टार्ट थी वो मैंने मिस कर दी, उसके बाद मुझे ना डांट पड़ी। तो इस तरह से कोई भी और ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो, या अगर आप क्रिएट कर सकते हैं कुछ और आपने छोटा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया हो, तो वो बीच बीच में बताने से क्या होता है कि जब बच्चा लगातार अपनी बात अच्छी कह रहा हो, आपने जहां उसने पॉज लिया वहां आपने उस बात को कही, तो उससे बच्चे के समझ में आता है कि ओ मेरे अब्बा जो कि इतने बड़े हैं, इन्हें भी देखना और फोन लेना और स्क्रॉल करना इतना पसंद है, लेकिन उसके बाद इन्हें लगातार इसकी वजह से एम्बैरेसमेंट का शिकार होना पड़ा। तो बच्चे को एक ना चाहे मैसेज मिलना शुरू हो जाता है कि मैं थोड़ा मोहतात रहूं, और ये ना चाह के जो मैसेज मिलता है ये बड़ा स्ट्रांग होता है। जब आप चाह के मैसेज चाहते हैं पहुंचे, तो वो शायद एक नसीहत बच्चे जो है ना वो उतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन अगर आप यूं ही बातों बातों में अपनी स्टोरीज के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने इंसिडेंट्स के थ्रू बच्चे तक बात पहुंचाते हैं, तो बच्चा उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ये है 20-20-20 रूल। आई स्ट्रेन अवॉइड करने के लिए सिंपल रूल भी आप याद रख सकते हैं। हर 20 मिनट बाद 20 सेकेंड्स के लिए 20 फीट दूरी से आप इन चीज को देखिए, ये आइस को रिलैक्स करती है। अगर बच्चे स्टडी या स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो उन्हें भी ये हैबिट सिखाई जा सकती है। वहीं जब बच्चे ये स्किल सीख लेते हैं तो पेरेंट्स को हर वक्त मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे अपने आप उन चीजों से जो है वो वैल्यूबल एक्सट्रैक्शन निकाल लेते हैं। एक और मैं आपको बात बताऊं, एक टीचर की बात, और उन्होंने एक बार बच्चों से बड़ा इंटरेस्टिंगली पूछा कि बच्चों बताओ तुम सबके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूबल चीज क्या है। बहुत सारे बच्चों ने कहा मेरी साइकिल, किसी ने कहा मेरा मोबाइल, किसी ने कहा मेरा गेमिंग डिवाइस। टीचर ने इतने सारे आंसर्स जमा करे और फिर मुस्कुराकर कहा सबसे वैल्यूबल चीज है दोस्तों टाइम। अगर टाइम चला गया तो वापस नहीं आता। क्लास के एक बच्चे ने उस दिन घर जाके अपना टाइम चेक करा कि मैं कितने घंटे जो है वो स्क्रीन पे निकाल रहा हूँ, और उसे पता चला कि वो हफ्ते में लगभग 25 घंटे गेम्स पर स्पेंड करता है। उसने डिसाइड किया कि हर दिन सिर्फ 30 मिनट कम करेगा, सिर्फ 30 मिनट, और एक साल के अंदर उसने डजंस बुक रीड कर ली, स्पोर्ट्स वो ज्वाइन कर सका, नए दोस्त बने, और उसने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास तो इतना ज्यादा वक्त था। ये छोटी सी इंसिडेंट हमें और आपको ये याद दिलाता है कि स्क्रीन टाइम को कम करना सिर्फ मोबाइल कम करना नहीं है, बल्कि जिंदगी को ज्यादा भरपूर बनाना है। देखिए, स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट का मतलब टेक्नोलॉजी से जंग करना नहीं, बैलेंस क्रिएट करना है। टेक्नोलॉजी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, ये डिपेंड करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अपने बच्चों को सिर्फ रूल्स मत दीजिए, रीजन समझाइए, सिर्फ लिमिट मत कीजिए, अल्टरनेटिव्स दीजिए, सिर्फ कंट्रोल मत कीजिए, कनेक्शन क्रिएट कीजिए। याद रखिए, बच्चों को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो है आज के दौर में लेटेस्ट मोबाइल। शायद उनकी पढ़ाई से रिलेटेड और भी सारी चीजें हैं, उन्हें लेटेस्ट ऐप की भी जरूरत है, उन्हें, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मैंडेटरी है वो है आपका कनेक्शन। आप अपना वक्त, अपनी मोहब्बत, अपनी तवज्जो बच्चों को दें। जब स्ट्रांग होती है फैमिली, जब बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, तो रिश्ते हेल्दी होते हैं। स्क्रीन टाइम नेचुरली अपनी जगह पर कम होने लगता है, खत्म नहीं, कम। आप बच्चों को समझाएं कि टेक्नोलॉजी को सर्वेंट की तरह ट्रीट करें, उसे अपना मास्टर ना बनाएं, और यही सक्सेसफुल डिजिटल पेरेंटिंग का राज भी है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: होती है और कई दफ़ा स्क्रीन सिर्फ एक सिम्टम होता है, एक सिंबल होता है। असल मसला रिलेशनशिप गैप का है। जैसे मैंने इनिशियली आते ही आपसे एक बुक का जिक्र किया था, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग स्क्रीन टाइम, तो ये बुक हमें ये भी याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी को डिमोनाइज करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ बाउंड्रीज और बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। बच्चे हमारी बात सुनते हैं तब जब उनका हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। हमारी मिसाल हम खुद बनते हैं। अगर हम रिस्पॉन्सिबल डिजिटल हैबिट्स दिखाएंगे तो वो उसे अडॉप्ट करेंगे, और अगर हम बिजी हैं अपनी दुनिया में और चाहते हैं कि हमारे बच्चे परफेक्ट हों तो बड़ा मुश्किल है। हमें रिस्पेक्ट से बात करनी है, रिस्पेक्ट से उनकी बात सुननी है, उन्हें मौका देना है, उन्हें सही और गलत टीच करना है, और ये सारे काम करने के लिए पेशेंस भी चाहिए। अपने बच्चे के साथ 15 मिनट बैठिए, उसे पूछिए कि आज आपने क्या किया। शायद वो 15 मिनट किसी भी ऐप, गेम या सोशल मीडिया से ज़्यादा वैल्यूबल साबित होंगे, क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आपका साथ, पेरेंट्स की तवज्जो, उनकी मोहब्बत। बस मुझे लगता है आज के लिए बहुत ही खूबसूरत सी बात हमने की, कोशिश की कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी, और किस तरह से हम और आप अपने फैमिली के बॉन्ड को और ज़्यादा मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बस मैं चाहूँगी कि आज हमने जो भी बातें की उन सबको धीरे धीरे हम और आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, और ये चीज़ें हमारी और आपकी लाइफ का एक बुनियादी हिस्सा बने, जहाँ से हमारी और आपकी फैमिली एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बने, मिसाली फैमिली बने, और बच्चे ऐसे बने जो वाकई दूसरे बच्चों के लिए भी एक ट्रू एग्जाम्पलर हो। बस इसी खूबसूरत पैगाम के साथ अब मैं यानी नाजिया आपसे इजाज़त लूँगी। फैमिली मैटर में हम जो हैं वो एक और नए टॉपिक को अगले वीक एक्सप्लोर करेंगे। तब तक हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमसे जुड़ सकते हैं आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर। हम आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिलते हैं FM 107 के नाम से। हम FB पे हैं, इंस्टा पे हैं, एक्स पे हैं, यूट्यूब पर हैं। इसके अलावा अगर किसी तरह का कोई आपका फीडबैक है या कुछ और आप कहना सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ जुड़िए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 666-22-107। और तब तक के लिए खुश रहिए, कनेक्टेड रहिए, और अपने घर को मोहब्बत, समझ और बैलेंस के साथ मजबूत बनाए रखिए। इट्स मी नाजिया, सी यू नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: फैमिली मैटर्स, क्योंकि हर फैमिली मैटर्स।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: नगर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी,

नीतू जट नू पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी

वो यही रो रहे होते कि अरे आज है कल चले जाएंगे, और फिर जब वो कल नहीं जाते तो देखते हैं अरे वो जो पिछले जमाने में पैसे खर्च करे थे 10 साल पहले, वो अगर होते तो हम सर्वाइव कर जाते बढ़िया। लेकिन जो जिंदगी है, जिंदगी का थप्पड़ बहुत तेज पड़ता है भाई साहब, और जिंदगी का थप्पड़ जब गाल में पड़ता है तो दिल पर असर होता है, टांगों में उसके रुक्स दिख रहे होते हैं, टांगों पे हमारे यू नो बहुत धीमे चलना शुरू हो जाते हैं, तो वो सारी परेशानी जो है हमारी जिंदगी में आ रही होती है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि लग्जरी खरीदते हैं जब बहुत ज्यादा पैसा होता है, या फिर आप उसे पैसा यानी कि सेव करते हैं, जो आपके पास मनी है, जो अमाउंट आया है कहीं से, स्कैम करके नहीं, स्कैम के लिए अलग शो करता हूँ मैं। तो आप पैसा बचाने वालों में से हैं या फिर उन पैसों से लग्जरी खरीद लेने वालों में से हैं, ये आप बताएं। नंबर 8666221107। मतलब कई बार तो ऐसी छोटी चीज भी होती है, जैसे अगर आपका काम मोबाइल से हो रहा है, लैपटॉप की जरूरत नहीं है, पैसा है लेकिन लैपटॉप खरीदने के लिए, तो आप क्या करेंगे, मोबाइल से ही काम करेंगे या फिर नहीं यार वो बड़ी स्क्रीन की जरूरत होती है, काम थोड़ा आसान हो जाता है, होता है ना कि कई बार आप ऑब्वियसली लैपटॉप से काम करते हैं तो आसान हो जाता है, नोट्स बनाना आसान हो जाता है, टाइपिंग करना आसान हो जाता है, बट मोबाइल में आपका एक छोटी सी स्क्रीन पर ऐसा आंख गड़ा कर देखते रहो दिमाग खराब होता है। ठीक है, ऐसी मिसाल के तौर पर अगर आपका ऑफिस आपका घर थोड़ा सा नज़दीक है तो आप सोचते हैं कि अरे छोड़ो यार कौन कार से जाए, पैदल चले गए, या फिर आपने जाने के लिए, जैसे हमारे कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त लोग हैं, वो सिंपल सा काम करते हैं कि ऑफिस आने के लिए सुबह जो है कैब वगैरह कर लेते हैं और शाम को वो पैदल वापस घर निकल जाते हैं, तो बड़ा सही है, उनको कार की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई पास में ही है, तो वो कार नहीं खरीदते, पैसा है भाई के पास। उन्हीं में से एक और लोग हैं, वो भी घर के पास में ही रहते हैं, ऑफिस के बहुत करीब में रहते हैं, लेकिन उनके पास कार है। तो अलग अलग लोगों ने सोच अपनी रखी हुई है, अलग अलग सोच बनाई हुई है, तो ऐसे ही है कि पैसा है तो लग्जरी खरीद ली, किसी के पास पैसा है तो लग्जरी नहीं खरीदी की जरूरत ही नहीं है यार। तो आप किस किस्म के शख्स हैं, क्या लग्जरी खरीदते हैं या फिर उन पैसों को बचाते हैं, और आप वही करते हैं जो जो आपका काम चल रहा है बस, है ना, जरूरत ही नहीं है यार लैपटॉप क्यों खरीदे अगला आदमी, तो वो आपको जवाब देना। नंबर है 666221107, 6662217। आते हैं हल्के हाथ से मैसेज की तरफ। मोबाइल भाई साहब ढूंढना एक अलग ही मेहनत का काम है, कहीं किनारे ये छुपा रहता है। ओके, मैसेज सबसे पहले यूसुफ भाई का है, सही टाइम पे आ गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, कैसे हैं? फिर शेख इरफान कासमी का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, टाइपिंग कर रहे हैं अभी भी कुछ। ओके, मैसेज आ गया है, कहते हैं पैसे आते हैं क्या, हमने तो हमेशा जाते हुए देखे हैं, आते हुए कभी नहीं देखा। हाँ, तो आप वो वाले आदमी जो लग्जरी खरीद ले रहे हैं, है ना, तो कुछ ऐसे घर होते हैं जिनमें एसी की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी एसी होती है। जैसे मैं जब मुरादाबाद में एक जगह काम करता था तो उनके ग्राउंड फ्लोर पे ऐसा ठंडा रहता था, तो भाई वो हमेशा कंबल, गर्मी के वक्त पे मैं गया था रेंट पे घर लेना था, अरे गर्मी का वक्त था लेकिन उनका नीचे का जो मकान था अंडरग्राउंड भयंकर ठंडा था, कंबल बाकायदा रखा हुआ था, कोई ऑलरेडी रह रहा था रेंट पे, और उन्होंने बाकायदा बताया अरे एसी की ज़रूरत नहीं है और बड़ा ठंडा करता है, लेकिन फिर भी एसी लगी हुई थी उनके यहाँ। तो वही है कि यार ठंडा है तो एसी क्यों, लेकिन फिर भी लोग लगा रहे हैं। और जबकि सही में जब अंडरग्राउंड गए तो मुझे ठंडक का एहसास हुआ। आप वही वाले आदमी हैं यार कि अरे पैसा आया खर्च कर दो, ठीक है, आप वाला नहीं है कि छोटा शोरबा नहीं बड़ा ही दो, फिक जाएगा और चलेगा, बड़ा ग्लास चाय का 5 रियाल वाला, हाँ, तो वो वाले आदमी हैं आप। बाकी कहते हैं आते हुए कभी देखा नहीं, पहले आते जाएं फिर देखेंगे, उससे कहाँ छुपाना है। छुपाने वाला काम तो स्कैमर करते हैं, और स्कैमर से अलर्ट करता हूं मैं एफएम 107 पे। ओए होए, हल्के हाथ से प्रमोशन। यही करना चाहिए। बाकी मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी दुआ है, बस आप पूछ लेते हैं ना, सलाम करने के बाद खैरियत हो जाती है यार, फिर खैरियत हो ही जाती है। बाकी लिखा है भाई, सेविंग बहुत ज़रूरी है, बेहतर ये है कि पैसा हो तो बिजनेस में लगा दो या फिर प्रॉपर्टी खरीद लो। मेरे पास पैसा तो है, इतना नहीं है कि मैं बिजनेस में लगा सकूं, और इतना भी नहीं है कि प्रॉपर्टी खरीद सकूं। भाई इसे गरीबी कहते हैं क्या? क्या इसी को ब्रोक कहते हैं? ये कैसा पैसा है भाई कि मैं ना प्रॉपर्टी खरीद पा रहा हूं ना बिजनेस में लगा पा रहा हूं? ये किस तरह की अमीरी है, ये किस तरह की सेविंग कर रहा हूं, ना लग्जरी है ना।

प्रॉपर्टी है ना बिजनेस है। अलग जमाने का गरीब हूं मैं, मेरे लिए एक अलग सा किताब लिखी जाएगी कि फजील एक अमीर आदमी था भाई साहब, बहुत लग्जरी आइटम खरीदता नहीं था, बहुत पैसे बचाया उसने। अच्छा तो क्या क्या करा उसका पैसे जो उसके पास थे हाथों में, उसने कोई बिजनेस किया होगा फिर बाद में? नहीं, सब बिजनेस करने लायक तो पैसे नहीं थे। अच्छा अच्छा, तो प्रॉपर्टी ले ली माशाल्लाह है, कितने की ली? नहीं, प्रॉपर्टी भी ले नहीं पाया। तो उन पैसों को करा क्या? कुछ नहीं, अपने घर के ऊपर बस एक चार दीवारी खड़ी करके लिंटर डलवाया, वो भी लोन पे। आसिफ अंसारी के पास लेकिन भरपूर पैसा है भाई। भाई आपने तो बिजनेस भी किया लग रहा है, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर ही दिया है, और हमसे पूछ रहे सब खैरियत। ये गलत मैसेज हो गया भाई, ये मुझे तन्हाई की तरफ ले जाएगा। बाकी इकबाल साहब का मैसेज है, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाएं। पैसा आएगा तो देखेंगे। लग रहा है इकबाल भाई हमारे ही वाले कैटेगरी में है कि घर के ऊपर एक घर और बनवा दो, बस वही पैसा है हमारा। मुबीन साहब ने कहा है, चले शुक्र है डैश के चक्कर में खर्चा नहीं किया। भाई साहब शादी हो गई है, अब डैश के चक्कर में क्या खर्चा करना। अब डैश से ज्यादा तो बीवी करा रही है खर्चा। अस्सलाम वालेकुम। ये मुबीन भाई भी अलग किस्म के इंसान है, पहले ये जवाब लिखते उसके बाद सलाम करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, फजील जी गुड इवनिंग, कतर वालों को भी हमारी तरफ से सलाम सलाम। फिर एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आई विल गो फॉर लग्जरी। आए हाय क्या बात है। अच्छा ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि लग्जरी हर किस्म के अलग लोगों में दिमाग में लग्जरी अलग होती है। जैसे एक वक्त था भाई जब मेरे घर कूलर पंखा हुआ करता था, हमारे लिए लग्जरी वही थी, हमारे लिए वो लग्जरी नहीं थी, हमारे लिए एसी होना लग्जरी थी। फिर मैं अपने जीजा जी के घर में गया तो वहां पर देखा एसी है, ओहो ये अमीर आदमी है, तो फिर भी दहेज लिया इसने। मतलब मैं कहा अरे अमीर आदमी है, फिर तो मुझे अच्छा लगा। मैं कहा हमारे घर भी एसी, हमारे भी लग्जरी होगी, फिर हमारे घर एसी आ गई। मैं कहा यार ये तो लग्जरी नहीं है। फिर वो सेंट्रलाइज्ड होता है जिनके, हमने कहा अरे यार इसमें ज़्यादा पैसा लगता है, ये लग्जरी है। फिर अब जिस जगह में रह रहा हूँ वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन अब वो ठंडी नहीं कर रही है, ये कैसी लग्जरी है भाई, हमें लग्जरी फील ही नहीं हो रही है, ये क्या है लग्जरी। तो वो लग्जरी फील हो नहीं पा रहा है बस। जब तक अपने पास नहीं तब तक लग्जरी है ना। अब मतलब ऐसा चार पहिया मेरे पास जो है, जो वाली है वो बढ़िया वाली है, लेकिन इंडिया में रह के तो मैं चार पहिया ही नहीं सोच सकता था। अब यहाँ पर रह के जो चार पहिया वो भी 4x4 मेरे लिए तो लग्जरी है, इंडिया में नहीं है। सो दैट डिफर्स के आप वक्त वक्त पे आपकी लग्जरी एक्चुअली चेंज होती रहती है। बाकी कुछ लोग लग्जरी पे इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का होता है कि नहीं भैया हम तो थोड़े ऐसे ही रहते हैं। फिर आपने देखा नहीं जो जिनके पास एकदम से पैसा आता है फिर कुछ दिन बाद वो एकदम से गरीब हो जाते हैं। तो समझ नहीं आता बेटा, लग्जरी इतनी ले ली, कार ले ली और लोन चुका रहे। और फिर बाद में यही वो लोग होते हैं जो कार बेच के अपना बाकी का जो लोन दूसरों से दोस्तों से लिया है वो चुका रहे होते हैं, और जमाने भर में जलील भी हो रहा था थोड़ा। अपने अपने तरह से लोग लग्जरी है। बाकी यूसुफ भाई का मैसेज है, फजील बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा पैसा आएगा तो थोड़ा सेव करके, थोड़ा जरूरत के आइटम्स लेने के बाद और कुछ बाकी रहा देन लग्जरी। आए आए लग्जरी बिल्कुल आखिर में आना चाहिए, ये कहना यूसुफ भाई का, कि पहले मैंडेटरी जो चीज जिससे आपका काम ही ना चले, है ना। जैसे मुझे लगता है कि जब मैं 2022 में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था, ये वाला बता भी चुका हूँ, तो शूज़ होते हैं भाई, शूज़ तो 100 रियाल के भी हैं, 50 रियाल के भी हैं, 500 रियाल के भी हैं, 1000 रियाल के भी हैं, 30-40 रियाल के भी हैं, इवन 10 रियाल के भी हैं कई जगह पे। लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा चलना होता है तब आपको इन्वेस्ट करना होता है, तब आपको लग्जरी चाहिए, उस लग्जरी में ही आपका काम हो सकता है। तो भाई उस वक्त मुझे 5-7 किलोमीटर चलना पड़ता था क्योंकि कवरेज वगैरह होती थी, तो मैंने 500 रियाल का एक जूता लिया था, आज भी वो जिंदा है। लेकिन भाई उसमें चलने के बाद, उस लग्जरी वाले शूज में चलने के बाद मुझे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर लगता ही नहीं था कि मैं चलाऊं, बहुत ही ज्यादा पैर आपका सुकून में रहता था, वरना मेरे ऐसा लग रहा है भाई फफोले पड़ जाएंगे यार सस्ते वाले शूज में। ये होता है, लेकिन कैसे होता है आई डोंट नो। फिर उसके बाद एक और ये मैसेज है, नाम तो नहीं लिखा है, ये कैसा नाम है, FD लिखा है प्रोफाइल पे, एग्री सबकी लेवल ऑफ लग्जरी अलग है, बहुत सच बोल दिया आज। ओ

बाकी दिन तो आपका पता नहीं फजील जी, लेकिन आज थैंक यू सो मच। बाकी आपका नाम होता तो सही है था, बाकी लिखा तो एफडी है, मैं एफडी के नाम से क्या ही पढ़ूंगा। उसके अलावा एक और ये मैसेज है कि इस भाई का, तौफीक साहब ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अमीन भाई लिखा है, मेरी आवाज़ क्या अमीन भाई से मिलती जुलती है, मे बी। इमदाद मलक नाम है इनका, सलाम भाई सब, मेरा नाम इमदाद साहब, मेरा नाम इमदाद मलक है, पैसा है तो जहां है। भाई ने पूरी कहावत ही चेंज कर दी। हमारे अब्बा कहा करते थे एक जमाने में, पूरी दुनिया भी कहा करती थी, जान है तो जहान है, भैया इंसान हेल्दी रहेगा तो पैसा कमा लेगा। इनने चेंज कर दिया कि भैया पैसा है तो जहान है। एक अलग ही लेवल का आदमी था। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे हमारे इमदाद भाई के। फिलहाल शान की आवाज में एक ये खूबसूरत सा ट्रैक एफएम 107 पे। और आज का सवाल ये है कि आपके पास पैसा आएगा तो आप लग्जरी में लगाएंगे, या फिर पैसा सेव करके आप उसी तरह से रहना प्रेफर करेंगे जैसे रह रहे हैं, लग्जरी की ऐसी कोई खास नीड है नहीं। पैसा सेव करो, पैसा सेव या फिर लग्जरी पे इन्वेस्ट, आपका क्या मानना है? नंबर है 666-22-107, यहां पर आके आप बता सकते हैं। दिल से देसी

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.
1: Anytime, anywhere.
0: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: आप सुन रहे हैं Unplugged Evening with RJ Fazil.
3: Only on FM 107, दिल से देसी.
4: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का. 6:27 हमारे स्टूडियो की घड़ी में. और सवाल आज का जो किया था उस पर आते हैं वापस. सवाल बड़ा सिंपल सा था. सवाल ये कि आपके पास अगर पैसा आ जाए भरपूर बढ़िया वाला, तो क्या करेंगे आप? जैसी लाइफ चल रही है वैसे जीता रहेंगे, पैसे को बैंक अकाउंट में और फिर अमीर होने का शौक. पैसा अकाउंट में होता है इंसान के चेहरे पे एक अलग चमक होती है भाई साहब. मुल्तानी मिट्टी क्या ही काम करेगा, महंगे से महंगा मेकअप का प्रोडक्ट क्या ही काम करेगा. जो अकाउंट में कुछ पैसे होने पर जो काम करता है, चेहरे पे एक लालिमा आती है भाई साहब. अरे कश्मीर के लोगों का वो गाल इतना लाल नहीं होता. जिसके अकाउंट में पैसे हों उसके गाल को चेक कर लो भाई साहब. केसर कुछ नहीं करता, मुझे ये पता चला है, लेकिन केसर बेचने वाले के पास, जिसके पास पैसा होता है ना, वो असली गाल में चमक आती उसके. मैं इतनी दिन से ये परेशान था कि वो केसर की खेती करने वाला इतना कैसे चमक रहा है. लोग ऐसा समझते थे कि अरे वो केसर खाता है, केसर को खाने में डालता है, केसर की चाय पीता है, केसर पानी में डालकर पीता है, इसलिए वो चमक रहा है. ऐसा नहीं है, वो केसर बेच के चमक रहा है बाबू. तुमको क्या लग रहा है? तो जरूरी है कि केसर, जरूरी है कि इंसान के अकाउंट में पैसा हो, फिर चेहरे पे एक अलग सी चमक आती है. सो आज सवाल यही था.

0: कि पैसा जो है अगर आपके पास आ जाए तो आप लग्जरी खरीदेंगे उस पैसे से, बढ़िया कार महंगी वाली या एक नॉर्मल कार जो आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे वही काफ़ी है, या फिर आप जो है वो पैसा बचाएंगे, सेव करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी वगैरह पे, वो सब तो खैर अलग बात है। तो आपको जवाब देना है, नंबर है 666-22107। एक भाई का मैसेज है और कॉन्ट्रैक्टिंग में है ये ABC। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ूंगा नहीं कि कौन सा ये कॉन्ट्रैक्टिंग है, लेकिन सलाम अलैकुम, आपने बाकी बातें नहीं लिखी हैं, अगर लिख देते तो बढ़िया होता। बाकी एक और ये मैसेज है, इनका नाम है फलक, इन्होंने कहा कि सब की लेवल ऑफ लग्जरी अलग है। आगे लिखा है, जब अल्लाह दे तो आपकी लाइफस्टाइल में दिखना चाहिए। हाँ, ये बात तो मैंने सुनी भी है, जब अल्लाह दे तो आपकी लाइफस्टाइल में दिखना चाहिए, बट इंटेंशन शो ऑफ की नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इफ आई गेट रिच, मैं तो खर्च करूंगी, इन्वेस्ट करूंगी, क्योंकि कहीं सुना था बुरे दिन के लिए पैसा बचाना बुरे दिन को इनवाइट करने जैसा। ओ क्या बात है, किसने कहा था ये वाला? ये तो कर्री लाइन है, ये वाला तो स्टेटस पे आना चाहिए भाई, ये वाली लाइन स्टेटस पे होनी चाहिए, ये कि बुरे दिन के लिए पैसा बचाना बुरे दिन को इनवाइट करता है। मैं आज अपने WhatsApp पे यही स्टेटस लगा दूंगा फिर। बाकी ऑल्सो डॉक्टर इसरार ने कहा है, पैसा है और अल्लाह पर तवक्कुल है, तो तवक्कुल पैसे पर है, रब पर नहीं। आए आए, ये वाला भी स्टेटस पे और पहाड़ों, मतलब ये वाली लाइन ना, बुरे दिन के लिए पैसा बचाना बुरे दिन को इनवाइट करने जैसा, ये तो पहाड़ आएंगे ग्रीन ग्रीन एकदम बढ़िया वाले, है ना, वो कश्मीर और पाकिस्तान के खूबसूरत पहाड़ और ग्रीनरी है एकदम कर्री, और ये वाली लाइन पीछे म्यूजिक, और म्यूजिक भी KGF का, आतिफ असलम का गाना, भाई साहब मजा नहीं आ जाएगा, वायरल हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, ये वाली स्टेटस लगा दे रहा भाई, ये वाला वायरस नहीं वायरल कर दे। बाकी एक और ये मैसेज है, भाई अक्षय कुमार वाला पैसा ही पैसा है क्या, जो 20 डेज में डबल, फिर तो कुछ अंगिनत में भी डिजर्व करता है। आने दो भाई, आने दो, रुकना नहीं चाहिए, ज़रूरत हो कुछ आप रख लेना, चांद पर लैंड कर लेंगे, एलोन मस्क के साथ मीटिंग फिस करें। अरे मेरा भाई, इतनी भी अमीरी क्या हो गई यार, इतना तो देखो भाई, सोच में भी टैक्स होना चाहिए, किसी एक बड़े ही स्मार्ट आदमी ने कहा था, सोच पे टैक्स होना चाहिए। इंसान कितनी आगे तक चला जाता है भाई साहब। अरे मैं तो ये कहूंगा कि रुको जरा, सबर करो, ऐसा क्या भयंकर सोच ले रहे। फिर उसके बाद एक और मैसेज है, हाय गुड इवनिंग फजील भाई, गुड इवनिंग मेरा भाई, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और एक और भी मिसाल है कि अगर पहाड़ पे भी जाओ साथ में पैसा लेके जाओ, पहाड़, मैं सही पढ़ रहा हूँ ना भाई, पहाड़ी लिखा ना, PAHARH, पैसा जरूरी है और पैसे से मोहब्बत नहीं करनी, जस्ट फॉर जरूरत। ओ आय हाय, ये तो गहरी वाली बात है, पैसे से मोहब्बत नहीं करनी। बाकी कुरैशी साहब, ये तो गहरी वाली बात लिख रहा, ये वाली भी लाइन लिख दूं क्या, पहाड़ों पे नहीं, ये वाला ज्यादा हो जाएगा। कुछ चीजें फिर वायरल नहीं होती ना, फिर वो फिर बन के रह जाती है वीडियो। लेकिन ये बात काफ़ी हद तक सही है कि पैसा इन्वेस्ट करना सही है, और मिसाल जो दी है कि पहाड़ पर भी जाओ तो साथ में पैसा लेकर जाओ, तो हम तो वैसे भी पहाड़ जाते हैं तो पैसा इतना खर्च हो जाता है भाई साहब, हमारी लग्जरी ख़त्म हो जाती है। हम वो गरीब लोग हैं जो घूमने के लिए पहाड़ों में जाते हैं, और पहाड़ों में सब चीज़ महंगी होती है, तो ये वाली ये बात किसने कही मेरे को पता नहीं, कि पहाड़ पर जाओ तो पैसा लेकर जाओ, भाई मजबूरी है, पहाड़ पर जाएंगे तो पैसा लेके जाना पड़ेगा। बाकी एक और ये मैसेज है, सलाम, बहुत सारे मैसेज है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बिन भाई छोटा लिखा करो मेरा भाई, मैं जिस दिन अगर ये अलाउ हो गया कि हाँ आप ऑडियो चला सकते हैं, तभी मैं आपके बारे में बात करूंगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और फिर ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम खत के बारे में आज बात करेंगे, और ये खत बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये खत आज हम लग्जरी पर, क्योंकि सवाल किया है तो लग्जरी पर खत भी होगा। FM 107 पे थोड़ा सा इंतजार और फिर खत के बारे में बातें। FM 107 दिल से देख सही।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
3: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: सो ऊपर वाला ना नेमत देता है अपने तरीके से, और हर इंसान जो डिजर्विंग है, जो जितना संभाल सकता है उतना ही देता है, खुदा उतना बोल

कुछ नहीं देते हैं या उतना सब कुछ नहीं देते हैं जो इंसान जो शख्स संभाल ना पाए। सो वैसे ही आज आपको जो लग्जरी मिली है या जो पैसा है आपके पास, उसको लेकर अगर एक खत लिखना हो, है ना, अपनी लग्जरी को एक खत लिखना हो तो क्या लिखेंगे? डियर लग्जरी, वट एवर, फिर जो भी आप लिखना चाहें अपने दिल से। और अगर आप अपने पैसों पे लिखना चाहते हैं कि डियर मनी प्लीज डबल हो जाओ, जिस दिन तुम डबल होगी तो मेरे दिल से निकलेगी आवाज, बाकी हम तो पैसा डबल कर पा रहे हैं। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा, सबसे आसान तरीका है एक का दो, दो का चार और हजार का 2000 रियाल बनाने का, वो है पैसे को शीशे के सामने रख दो भाई। हम तो ऐसे ही बना रहे हैं भाई, हमारा पैसा ऐसे ही डबल हो रहा है, या फिर थोड़ा सा रुक जाते हैं, इंतजार कर लेते हैं तो सैलरी आ जाती है, उसमें खुश हो जाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे भाई साहब, 30 तारीख को मेरे चेहरे पे जो चमक रहती है, कश्मीर में रहने वालों की क्या चमक होगी गाल की भाई, जितनी चमक मेरे चेहरे पे रहती है, कसम से। हाँ, ये चमक सिर्फ 10 दिन की है, वो अलग बात है। फिलहाल नेहा बजिन की आवाज में दिल दिया गलना FM 107 पे, बाकी खत लिखना आपको डियर लग्जरी, डियर मनी, व्हाटएवर, और फिर अपने दिल की बात उस लग्जरी से या उन पैसों से। FM 107 पे ये गाना नेहा बसिन की आवाज में, दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है। कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है।
2: मेरा मुस्कुराना, नजर यूं झुकाना, मेरे लिए है बस, मेरे लिए है।
1: तो कभी नए सपने दिखाता है। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं द रिक्वेस्ट शो। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो, या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

0: शो सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
2: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
0: हाँ जी हबीबी दिल से देसी एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। 6:47 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और खत लिखना था आपको अपने लग्जरी के लिए और अपने पैसों के लिए जो आपके पास है। सर अगर आपको लेट हो गया हो या फिर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो अब रहने दो भाई, अब हो गया आपका लग्जरी ख़त्म हो चुका है। अभी आप जो है बस सुने, लोगों के खत आए हुए हैं और ये खत हैं उनके पैसों को लेकर या फिर उनके लग्जरी को लेकर। ठीक है, सवाल मैं बता देता हूँ ताकि कुछ तो ऐसा कनेक्ट हो आपको, कहकर अरे ये क्या बातें हो रही हैं पता नहीं चल रहा। तो मैं आपको बता दूँ, सवाल ये था कि आप क्या किस चीज़ को तरजीह देते हैं, लग्जरी को या फिर आप तरजीह देते हैं पैसे को सेव करना, है ना, अपने पास पैसा रहना चाहिए बाबू, आप किस बात को तरजीह देते हैं। रिजवान भाई का मैसेज है, हाय डियर मनी कहाँ गायब हो, कोई नाराजगी है? क्या हमसे हमें भी तो मिलो कभी प्लीज, रिजवान भाई ने कहा है। भाई रिजवान भाई, आपके दिल की बात एक्चुअली में ये सबके दिल की बात है, बस सब लिख नहीं पा रहे हैं। बाकी ये बात तो काफ़ी हद तक सही है कि सब यही कह रहे हैं, डियर मनी क्या हो गया है, तुम क्यों इतनी दूर दूर रहती हो, कोई नाराजगी है क्या, जेब में हाथ डालते हैं तो जेब फटी हुई है, सिलवाई थी उसके बाद भी तुम नहीं रुक रही हो जेब में। क्या हो गया है माजरा। लेकिन पैसा अगर तुम कहीं पर भी हो, आओ गले से लग जाओ। एक तुम ही तो हो जिसको मैं दूसरे पहले नंबर पे रखता हूँ गले लगाने को लेकर, ये रहा नहीं जाता। भाई तू मुझे पैसा दे तो देख, दे कर तो देख, मैं दुखी होने का नाटक भी नहीं करूँगा। ये बात किसी और बात को लेकर कहा है, ये खत नहीं है। लेकिन ABC ट्रेडिंग वाले भैया जो भी हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग वाले भैया, इन्होंने ये बात लिखी है, भाई तू मुझे पैसा देख कर तो देख। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा दोस्त है, मेरा रिलेटिव है जो उधार मांगने की कोशिश कर रहा है। खैर भाई, पैसा बोर दिन के लिए रखना, बुरे दिन के लिए रखना, ओके सॉरी मेरी गलती है, पैसा बुरे दिन के लिए रखना, बुरे दिन को इनवाइट करना जैसा है। आई एम सॉरी बट ये सोच और बात तवक्कुल के खिलाफ के गेहूं जमा करने वाला वाक्या से हमें सबक हासिल करनी चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमा करने वाले वाक्य से हमें सबक, भाई हम शेख साहब आप ऑडियो ही भेज देते बढ़िया हो जाता। फिर उसके बाद देखो और ये मैसेज है साजिद भाई का, साजिद भाई का भी मैसेज, मुझे

मुड़े, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. उनने ख़त लिखने में ज़्यादा यू नो बात नहीं करी, कहाँ गए उनके मैसेज, भाई ने कहीं तो लिखा था, अरे यहीं तो था. ये मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि अच्छा खासा था फिर गायब हो जाता है. हाँ ओके, साजिद भाई ने लिखा, डियर पैसा तुम रुका तो करो, हम तुम्हें हम तुम्हें मखमल के रबड़ में बंद करके लग्जरी देंगे. अरे भाई हाय हाय, देखो ये क्रिएटिविटी मुझे बहुत पसंद आती है कि डियर पैसा तुम रुको. अब देखो पैसे को उस हिसाब से बात करनी है, उसको भी लग्जरी देनी, तो मखमल के रबड़ से बांधेंगे ये और फिर लग्जरी देंगे. क्या बात है साजिद भाई, वन पॉइंट. अकील साहब ने भी मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. डियर लग्जरी तुम दोनों कहाँ, डियर लग्जरी तुम दोनों कहाँ, लग्जरी और पैसा तुम दोनों कहाँ खो गए हो, मेरे पास आओ. फिर एक और ये मैसेज है, इनका नाम है मोहसिन. डियर बैंक अकाउंट तुम्हें हर महीने भरते हैं, फिर तुम खाली कैसे हो जाते हो और लग्जरी भी नहीं ले पा रहा हूँ. भाई ये वाला तो मेरे साथ भी हो रहा है, हर महीने भरता हूँ लग्जरी होता है, फिर 10 दिन में मैं गरीब हो जाता हूँ. ये वाली गरीबी हम सब के जिंदगी में, अल्लाह करे ये वाली गरीबी कम हो जाए. फिलहाल एक और मैसेज, डियर पैसे आ जाओ, जहर जहर खान है मुझे, जहर खान है मुझे. क्या एजे क्या नाम है भाई, मोहम्मद ए के तजाक, ये क्या लिखा है, पैसे आ जाओ जहर खाना है मुझे. इतने कम तो पैसे नहीं होंगे, इतने तो होंगे कि मतलब खा सको खाना खा सको, इतने तो होंगे मेरा भाई, ये मत किया करो. फिर उसके बाद एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, पैसा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. अरे ये तो आपने इंश्योरेंस ही करा लिया मेरा भाई. हाँ तो इंश्योरेंस करा लिया है, फिर प्रीमियम भरते रहो, जिंदगी रही तो नहीं, जिंदगी नहीं रही तो कोई और यूज कर जाएगा. दोस्तों पाकिस्तान के कई लोगों को, कई भाइयों को, या बांग्लादेश के, या इंडिया को छोड़ के कई और मुल्क के लोग हमें सुन रहे होंगे. ये जो लाइन इन्होंने बोली है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है बेचती, उसकी टैगलाइन है कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. जिंदगी के साथ तो आप पैसा देते हैं, जिंदगी के बाद पैसा मिलता है, वो भी आपके फैमिली मेंबर को. तो भाई साहब इसमें नुकसान ही है, बाकी नहीं, फैमिली मेंबर के लिए तो अच्छा है. बाकी इसी के साथ आपके खत मुकम्मल हुए और अच्छा लगा आपने जिस तरह से खत लिखे. और ये लिखा किस भाई ने था, अंसारी जुल्फकार. फिलहाल तुलसी कुमार की आवाज में छोड़े जा रहा हूं आपको, ये बेहतरीन सा ट्रैक सुनिए एफएम 107 पे. कुछ देर में आपके लिए न्यूज बुलेटिन शेयर की जाएगी यहीं से शाम 7 बजे से. इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे, तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी.

पड़ सकता है। याद रखिए, चंद लम्हों की सहूलत दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अपनी गाड़ी को सिर्फ मुकर्रर की गई पार्किंग वाली जगहों पर ही पार्क करें और ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें। वजारत दाखिला का कहना है कि आपका जिम्मेदाराना रवैया न सिर्फ आपकी हिफाजत को यकीनी बनाता है बल्कि दूसरे रोड यूजर्स की सलामती में भी अहम किरदार अदा करता है। ट्रैफिक कानून की पाबंदी महफूज और मुनज्जम मुआशरे की जमानत होती है। वजीर दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अलसानी ने अपने जर्मनी के दौरे के दौरान जर्मनी के फेडरल वजीर दाखिला अलेक्जेंडर डॉब्रिंट से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताबुन के रिश्तों का जायजा लिया गया और खासतौर पर अमनियत के शोबे में इन रिश्तों को मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर बातचीत की गई। इसके अलावा दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के कई अहम मौजूदात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद वजीर दाखिला और लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अलसानी और उनके जर्मन हम मनसब ने दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ट्रेनिंग और तजुर्बात के तबादले के शोबे में सिक्योरिटी कोऑपरेशन से मुतालिक एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए। सामईन, स्कूल बस सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि हमारे बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी है। जब स्कूल बस बच्चों को छोड़ने या उतारने के लिए रुककर अपना स्टॉप साइन जाहिर करती है तो उसे किसी भी तरफ से ओवरटेक करना या क्रॉस करना इंतहाई खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बच्चे अचानक सड़क पर आ सकते हैं और बड़ी स्कूल बस की वजह से उन्हें देखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब स्कूल बस रुके और स्टॉप साइन को जाहिर करे तो अपनी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर रोक दें और बस के दोबारा चलने का इंतजार करें। याद रखें कि आपका ये चंद सेकंड्स का इंतजार किसी बच्चे की जिंदगी के लिए बेहद अहमियत रखता है। वजारत दाखिला का कहना है कि ऐसे मौकों पर बस के दोबारा चलने तक रुक जाएं और ये भी याद रखें कि आपका ये छोटा सा एहतियात भरा कदम हमारे बच्चों की हिफाजत और रोड सेफ्टी में बड़ा किरदार अदा करता है। सामईन, हमारे बच्चों को सड़क पर हिफाजत के उसूल सिखाना उनकी जान की हिफाजत करता है और उनमें ट्रैफिक सेफ्टी का शऊर पैदा करता है। याद रखिए, सड़क हमेशा मुकर्रर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। उन्हें ये भी बताइए कि सड़क पार करने से पहले अच्छी तरह देख लें और यकीन कर लें कि रास्ता गाड़ियों से खाली है। इसके अलावा सड़क पार करते वक्त हर तरफ से आने वाली गाड़ियों पर नजर रखें और पूरी तवज्जो के साथ चलें। मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए या किसी और चीज में मशगूल होकर सड़क पार करना खतरनाक हो सकता है। वजारत दाखिला का कहना है कि आइए मिलकर अपने बच्चों को ट्रैफिक सेफ्टी की आदतें सिखाएं ताकि वो हर रोज महफूज तरीके से स्कूल जाएं और घर वापस लौटें। बच्चों की हिफाजत हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुख्तलिफ शोबों में कतरी ख्वातीन की शिरकत को फरोग देने की कोशिशों के तहत मिलिट्री इदारों के लिए अफसर और दीगर रैंक्स के उम्मीदवारों के इंतखाब की मुश्तरका कमेटी अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए है। कमेटी का मकसद काबिल और बासलाहियत ख्वातीन को मिलिट्री और सिक्योरिटी तालीम और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में शामिल होने के मौके फराहम करना है। वजारत दिफा, यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तआवुन से टेक्निकल इंस्टीट्यूट डिप्लोमा प्रोग्राम पेश कर रही है। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन से तस्दीक शुदा है और इसका मकसद आर्म्ड फोर्सेस की जरूरियात के मुताबिक टेक्निकल महारत रखने वाली कतरी ख्वातीन को एकेडमिक तालीम, अमली ट्रेनिंग और मिलिट्री डिसिप्लिन के जरिए तैयार करना है। दूसरी जानिब वजारत दाखिला 2 साल डिप्लोमा इन पुलिस साइंस प्रोग्राम पेश कर रही है। इसका मकसद ख्वातीन को एकेडमिक और अमली ट्रेनिंग के साथ पुलिसिंग और सिक्योरिटी से मुतालिक ऐसी मालूमात और महारत फराहम करना है जो उन्हें अपनी जिम्मेदारियां पेशवराना और मुअस्सर अंदाज में अदा करने में मदद दें। वाज़े रहे कि कमेटी अपने पहले साल में इंतखाब और दाखिले के अमल को यकसा और शफाफ मयारों के मुताबिक बनाने पर काम कर रही है। इससे बराबर मौकों को फरोग मिलेगा, कौमी सलाहियतों को मुतवज्जे किया जा सकेगा और मिलिट्री और सिक्योरिटी शोबों में कतरी ख्वातीन की शिरकत को मजीद मजबूत बनाया जा सकेगा। सामीन, अपने मोबाइल एप्स और डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम को बाकायदगी से अपडेट करना साइबर जुर्म से बचाव में अहम किरदार अदा करता है। अपडेट्स न सिर्फ आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस बेहतर बनाती है बल्कि उन कमजोरियों को भी दूर करती है जिनका फायदा उठाकर साइबर मुजरिम आपका डेटा चुरा सकते हैं या आपकी मालूमात तक गैर कानूनी रसाई हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, मोबाइल एप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हमेशा लेटेस्ट

वर्जन पर अपडेट रखें, सिर्फ मुतबर और ऑफिशियल सोर्सेज से अपडेट डाउनलोड करें, जरूरी सिक्योरिटी अपडेट्स को नजरअंदाज ना करें, अपने अहम डेटा का बैकअप भी बाकायदगी से लेते रहें। वजारत दाखिला का कहना है कि आपकी आगाही और एहतियात ही आपकी डिजिटल हिफाजत की सबसे बड़ी ताकत है। साइबर सिक्योरिटी का ख्याल रखें और अपनी मालूमात को महफूज बनाएं। वजीर दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अलसानी की तरफ से वजारत दाखिला के असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी फॉर सिक्योरिटी अफेयर्स शेख नाइफ बिन फाले बिन सऊद अलसानी ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के शहर लैंग यूंग गैंग में मुनक्किद ग्लोबल पब्लिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन फोरम 2026 में शिरकत की। ये शिरकत बैनुल अक्वामी तआवुन को मजबूत बनाने, तजुर्बात के तबादले और पब्लिक सिक्योरिटी और सेफ्टी के शोबे में दुनिया भर के बेहतरीन तजुर्बात से फायदा उठाने की कोशिशों का हिस्सा है। फोरम की साइडलाइंस पर शेख नाइफ बिन फाहले बिन सऊद अलसानी और उनके हमरा वफ्त ने सिक्योरिटी एग्जीबिशन का भी दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी के मैदान में ताजा तरीन टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन का जायजा लिया। इस मौके पर एडवांस्ड सॉल्यूशंस और जदीद टेक्नोलॉजीज के बारे में मालूमात भी हासिल की गई, जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस को सपोर्ट करने और पब्लिक सिक्योरिटी और सेफ्टी निजाम की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने 6 से 10 सितंबर तक मुनक्किद किए गए एविएशन सिक्योरिटी स्क्रीनिंग कोर्स का अख्तिताम कर दिया है, जिसमें जीसीसी ममालिक के अफसरान ने शिरकत की। कोर्स के दौरान स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स, एयरपोर्ट्स पर इस्तेमाल होने वाले जदीद डिवाइसेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और एयरपोर्ट सिक्योरिटी से मुतालिक बैनुल अक्वामी कानून और स्टैंडर्ड्स पर तफसीली ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग प्रोग्राम में एयरपोर्ट का फील्ड टूर भी शामिल था, जहां शिरका ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। इसका मकसद अमली मालूमात और महारत में इजाफा करना और मुख्तलिफ शोबों में काम के तरीकाकार और जिम्मेदारियों से आगाही फराहम करना था। इंतखाबी तकरीब में असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल जायद राशिद अल नुआइमी के साथ कई अफसरान ने इसमें शिरकत की। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزیہ شفیق اور ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر اسلے بھنڈارا آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سنس پروگرام ہیلتھ گائیڈ اور ہم اس امید کے ساتھ یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے, اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے. موسم آہستہ آہستہ تھوڑا بدل رہا ہے مگر گرمی بہت زیادہ ہے, ہیومیڈیٹی بھی ہے, تو اس میں آپ کو اپنی خوراک کا بھی خیال رکھنا ہے, پانی بھی کتنا پینا ہے, یہ بھی گاہے بگاہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پیک آورز ہیں دھوپ کے, ان میں بھی آپ کوشش کیجیے کہ کم سے کم جو ہے وہ باہر آپ جائیں. چلیے سر, ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں تو آج بھی ایک بہت اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں, اور سکن جو کہ بہت ہی اہم ہے, ہر جو آرگن ہے, ہر عضو جو ہے وہی اہم ہے, مگر ہم جب سکن کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے جو نکات ہیں وہ سامنے آتے ہیں. کبھی کسی کے جو ہے وہ ایکنی ہے, کبھی کوئی اور بہت سارے نشانات ہیں, کبھی ہیئر گروتھ جاتا ہے, کبھی یہ کہ اور بھی بے شمار جو مسائل ہیں وہ ہوتے ہیں سکن کے, مگر یہ کہ اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہے. مگر آج ہم جو ایک اسپیسیفک بات کریں گے لیزر ٹریٹمنٹ کی, اور لیزر کی وجہ سے جو علاج کیے جاتے ہیں, آج اسی پر ہم فوکس کریں گے کہ کون کون سی ایسی سکن کی پرابلمس ہیں جنہیں لیزر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور کیوں ہوتی ہے, کتنا اس کا بینیفٹ ہے, اور یہ کہ اس کی احتیاط کیا ہے, ان سب پر بات کریں گے. تو لسنرز, آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان, تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ندا کفایت جو کہ اسکن اسپیشلسٹ ہیں. میں ویلکم کروں گی اپنے تمام لسنرز کے ساتھ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فوزی, آپ نے انوائٹ کیا,
0: اور ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ کہ آپ اپنے بزی اسکیڈول میں سے ہمارے ساتھ ہیں, اور آج بہت اہم موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اور لسنرز, آپ اپنے اس پروگرام میں آ سکتے ہیں, اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 4433477 پر, اور اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پر جوائن کیجیے. کوئی بھی سوال ہو تو ٹیکسٹ میسج کیجیے, تو آپ کو پھر ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں اس کا جواب ضرور دیں گی 6662107. اور اگر آپ کیو ایم سی ناؤ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے.
2: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وت ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107, دل سے دیسی.
0: لسنرز, جیسا کہ آج میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے لیزر ٹریٹمنٹ کیا ہے, اور یہ کہ کب استعمال ہوتا ہے, کون سی ایسی اسکن پرابلمس ہیں جن کے لیے اسے استعمال ہونا چاہیے, یا یہ کہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو زیادہ پیمپر تو نہیں کرتے کہ جو لیزر ٹریٹمنٹ ہے وہی ضروری ہے. بہرحال ان سب پر بات ہوگی. جی ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ لیزر ٹریٹمنٹ کیا ہے. پرابلمس ہم پوچھیں گے ہی آپ سے کہ کون کون سی اسکن پرابلمس ہیں ان میں ہوگی, اور اس کے علاوہ کیا ہمیں احتیاط جو ہے وہ کرنی ہے.
1: جی دیکھیے, بیسیکلی لیزر جو ہے وہ خاص قسم کی فوکسڈ لائٹ کو کہتے ہیں
0: جی,
1: اور وہ لائٹ جب اسکن کے اندر جاتی ہے تو اسکن کے مختلف خلیوں کو جا کے وہ افیکٹ کرتی ہے. تو ہم لیزر کے اس ایکشن کو جو ہے یوٹیلائز کرتے ہیں کہ ہم اس سے جو ہے اسکن کے پرابلمس کو سالو آؤٹ کر سکیں.
0: جی,
1: تو اس میں بیسیکلی آپ کی ایکسپرٹیز بہت ضروری ہے. جو بندہ کر رہا ہو اس کو پراپر نالج ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کس پرپز کے لیے کر رہا ہوں, اور اس سے امپروومنٹ کتنی آنی ہے. انڈیکیشنس تو بہت ساری ہیں اور مشینز بھی بہت ساری اویلیبل ہیں, لیکن سم ہاؤ لوگوں کو بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی کہ کس پرپز کے لیے کون سی لیزر درکار ہے.
0: جی,
1: تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے.
0: جی جی ڈاکٹر صاحب, یہ بہت اہم ہے کیونکہ ڈفرینٹ ٹائپس کی کچھ پیشنٹس میں بتاتے ہوئے ہمیں ملتے بھی ہیں کہ ہاں یہ جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتی ہے, مگر یہ کہ میں اپنے لسنس کے ساتھ ساتھ ہوں, میرے نالج میں بھی ضرور اضافہ ہوگا کہ کس وقت کون سے جو ٹریٹمنٹ ہے یا جو لیزر مشین جن کی آپ نے بات کی ہے وہ زیادہ اہم ہے. جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کون سی ایسی پرابلمس ہیں جن کے لیے جو لیزر ٹریٹمنٹ ہے وہ ہونا چاہیے.
1: جی دیکھیے لیزر جو ہے بیسیکلی کوئی 10 سے 15 سال سے آلموسٹ ایف ڈی اے اپروڈ ہیں کچھ خاص پرابلمس کے لیے. اب ہم ان پرابلمس کا ذکر کرتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ اسکن کے اوپر آپ کی ہیں پگمنٹیشن,
0: جی
1: تو اس کے لیے ایف ڈی اے اپروڈ لیزرز موجود ہیں. اگر آپ کی اسکن پہ کچھ اسکارز ہیں, آثار ہیں, جیسے ایکنی ہوتی ہے, دانے نکلتے ہیں اس کے بعد نشان رہ جاتے ہیں,
0: جی
1: تو ان کو ہم لیزر سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح اگر جسم پہ اور کسی قسم کے نشانات ہیں, جیسے کوئی آپریشن ہوا اس کا نشان ہے, کوئی چوٹ لگی ٹراما ہوا اس کا نشان ہے, کوئی اسٹریچ مارکس ہیں گروتھ کی وجہ سے, ان سب کو ہم لیزر سے ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ چھوٹے موٹے اسکن کی آؤٹ گروتھس ہوتی ہیں, جیسے کہ مول ہو گیا یا کوئی فریکل ہو گیا یا اسکن ٹیگز ہو گئے, ان سب کو بھی ہم لیزر کی مدد سے ٹھیک کر سکتے ہیں. اور کچھ برتھ مارکس ایسے ہیں جو یا سرجری یا لیزر سے ٹھیک ہوتے ہیں, وہ اس کے علاوہ کریمز یا نارمل میڈیکیشن سے نہیں ٹھیک ہو سکتے.
0: جی
1: تو یہ کچھ میجر انڈیکیشنز ہیں لیزر کی, اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں. اور ایک ناٹ ٹو مینشن کہ ناٹ یہ جو غیر ضروری بال ہیں ان کے لیے لیزر بہت زیادہ افیکٹو ہے.
0: ٹھیک ٹھیک, جو ہیئر ریموول کے لیے بہت زیادہ
1: لیزر
0: ٹھیک ہے. جی اور یہ کچھ سال پہلے جیسے کہ مختلف جو استھیٹک مارکیٹ میں دیکھا گیا کہ اس میں 38% تک جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں پورے اس میں, تو یہ بہت بڑی ایک رینج ہے.
1: اور یہ فگر جو ہے یہ انکریز ہو رہا ہے ہر سال.
0: جی ٹھیک ٹھیک,
1: کیونکہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے لوگوں میں اور اسی وجہ سے جو ہے, اور ان کی اویلیبلٹی بھی زیادہ ہے, ان مشینز کی ان اکوپمنٹ کی اب اویلیبلٹی بھی زیادہ ہے
0: جی,
1: اور ہر کسی کے لیے یہ ایکسیسیبل بھی ہے.
0: جی جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے جیسے ہیئر ریموول کی بات کی تو اس میں پوچھا ہی چاہوں گی کہ کچھ لوگوں کو یہ کمپلین ہوتی ہے کہ کوئی اتنی افیکٹو نہیں ہے, یا کچھ دیر کے بعد جو دوبارہ ہیں وہ اسی طرح سے گروتھ شروع ہو جاتی ہے, تو یہ کیا ہے؟
1: جی دیکھیے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کن بالوں کی بات کر رہے ہیں. کچھ چہرے کے غیر ضروری بال ہوتے ہیں جو سافٹ ہوتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں جو اسٹرانگ ہیئر ہوتے ہیں, یعنی موٹا اور کالا بال. اگر موٹے اور کالے بال ہیں تو اس کی پہلے وجہ معلوم کرنا ضروری ہے. موسٹ کیسز میں وجہ کوئی نہ کوئی ہارمونل نکلتی ہے. اگر ہارمونل وجہ ہو تو اس کا سائڈ بائی سائڈ علاج ضروری ہے. اور موٹے بال پہ لیزر بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے, ہر سیشن میں آپ کو 10 سے 15% امپروومنٹ ملتی ہے, اور جو ٹوٹل امپروومنٹ ہوتی ہے آفٹر 8 سے 10 سیشن آپ لگا لیں, ایک ایوریج انسان کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں, تو امپروومنٹ جو ہوگی وہ 90% تک ہو سکتی ہے. بس شرط یہ ہے کہ آپ کے ہارمونس یا کوئی اور ایسا پرابلم سائڈ بائی سائڈ نہ چل رہا ہو جس کی وجہ سے جو ہے دوبارہ سے بالوں کو جو ہے کوئی ایک سگنل مل رہا ہو جس سے وہ گرو کر جائیں. باریک بال, بالکل پتلے بال, فائن بال, براؤن کلر کے بال, ان کے لیے جس کو رواں ہم کہتے ہیں, ان کے لیے لیزر بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہے. تو اس لیے جب کروانا ہو کسی نے تو اس کو یہ مد نظر رکھنا ہے کہ میں نے صرف اپنے اس چہرے کے اس حصے سے لیزر کرانی ہے جہاں پہ موٹا اور کالا بال ہے, کیونکہ وہی رزلٹ دے گا, باریک بال جو ہے وہ نہیں جائے گا, اس لیے اس پہ لیزر کرانے کا بالکل فائدہ نہیں ہے.
0: ٹھیک ٹھیک, تو اس میں جیسے عام جیسے زبان میں ہم پوچھیں آپ سے کہ یہی کہا جاتا ہے کہ اچھا فیس جو لیزر ہے وہ, تو اس میں بھی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس کون سے ایریاز جو ہیں وہ اسپیسیفک ہیں جن پر آپ کرتے ہیں, یا پورے فیس کی جیسے
1: کہ؟ جی بالکل, اسی لیے یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر ہی ڈیسائیڈ کرے کہ کتنے ایریا پہ لیزر کرنا ہے جو افیکٹو ہوگا.
0: جی
1: بعض دفعہ ہمارے پاس بچیاں آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ جی مجھے پورا ہی کرا دیں, میرا پورا ہی کر دیں, میں فیس کا لیزر کر رہی ہوں تو میں کیوں ایک پورشن کا کراؤں, میں پورے چہرے پہ کیوں نہ کرا لوں. تو اس سے ہم ان کو جو ہے منع کرتے ہیں, کیونکہ فار ٹو ریزنس, ایک تو یہ کہ موٹے بال پہ ہی ریزلٹ آنا ہے, باریک بال پہ نہیں آئے گا. دوسرا, اگر باریک بال پہ لیزر ہوتی رہے گی تو آپ کو انیسیسری ایک ایکسپوجر مل رہا ہے ایک چیز کا, آپ کی اسکن تھوڑی ڈیمیج ہو سکتی ہے. اور سم ٹائمز اگر آپ اس طرح ریگولر کرتے رہیں تو جیسے 8 سے 10 سیشن کے بعد باریک بال جو ہے وہ خود اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی گڑبڑ ہے اگر لوگوں کو یہ نہیں اویئرنیس, یا اگر کرنے والا بندہ نہیں ایکسپلین کر پا رہا ڈاکٹر یا لیزر ٹیکنیشین کہ بھائی یہاں پہ لیزر کرانے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو
0: ایسا ہوتا ہے؟
1: جی بالکل, اگر باریک بال پہ 8 سے 10 سیشن یا اس سے بھی زیادہ لیزر کے چل رہے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ بال اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی ایک چیز کی.
0: جی
1: इसलिए हमें इस चीज का बहुत ख्याल रखना है ताकि बच्ची आगे जाकर सफर ना करें जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें चाहे हम उसको 80% ठीक करें 90% ठीक करें लेकिन हम उन्हें एक नए प्रॉब्लम में ना डालें
0: जी
1: तो ये हमारा ये बहुत मेजर रोल है इस चीज को डिसाइड करने में कि फेस के किस एरिया पे आपको लेजर कराने का फायदा है और किस पे नहीं
0: ठीक तो इसमें कोई एज लिमिट है कि कब किस एज में ये ट्रीटमेंट जो है हो सकता है या नहीं जैसे अगर हम फेस की हम बात करते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो फोकस है वो फेस का ही होता है जी
1: देखिए क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है इस सेंस में कि इसको हम एज से रिलेट ज़रूर करते हैं अगर बहुत छोटी एज की बच्ची है या बच्चा है मोस्टली बच्चियाँ ही कराती हैं तो उसमें हम पहले एक चीज़ ये एडवाइस करते हैं कि क्योंकि लेज़र थोड़ा अनकंफर्टेबल है उससे हीट होगी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी तो वो बच्चा मूव करेगा लड़की या बच्ची मूव करेगी तो इतने छोटे में हम एडवाइस नहीं करते यानी कोशिश करते हैं हम के 16 साल 17 साल या 18 साल इनके करीब ही एजेस हों तो हम लेज़र को स्टार्ट करें इससे कम में नहीं करनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज की लिमिट है उसमें ये है कि अगर बाल ब्लैक कलर का है
0: जी
1: तो लेज़र से वो ट्रीट होगा अगर एज ऐसी है या अगर किसी की ग्रेइंग ऑफ हेयर जल्दी शुरू हो गई है तो जो बाल ग्रे हो जाएगा उस पे लेज़र काम नहीं करेगी तो इसलिए ब्लैक जब तक बाल है उम्मीद है कि ये लेज़र से चला जाएगा तो इसलिए एक इसमें एज बनती है यानी 30s 40s के में करा लें तो बेहतर है आप 50 या उसके करीब जाके कराएंगे तो सिर्फ जो बाल काला होगा वही आपको अच्छा रिजल्ट देगा वही ख़त्म होगा वाइट या जो ग्रे होना स्टार्ट हो गया वो रिजल्ट नहीं देगा
0: अच्छा तो उसके लिए फिर आप कुछ और ऐड करते हैं उसमें
1: जी एक और ट्रीटमेंट होता है उसमें बाल के नीचे जो जड़ है वहाँ पे एक बारीक सी नीडल डाल के उसको एक करंट से जलाया जाता है उस बाल की रूट को जो वाइट या ग्रे होता है तो ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है जी इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं तो उसकी रूट को जला देते हैं तो वो बाल भी फिर शेड हो जाता है ख़त्म हो जाता है और अगर अगली दफ़ा आए भी तो वो बहुत ही बारीक सा आता है तो ये इसके भी 2-3 सेशन कराने से काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है सफ़ेद बालों पर लेकिन अगर बाल बहुत ज़्यादा हैं तो ये करना ज़रा मुश्किल है क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर 1000 बाल है तो एक एक बाल की रूट में जाके उसको अलग से नीडल से टारगेट करना इसमें टाइम भी बहुत दरकार है इसमें बहुत फोकस चाहिए करने वाले को और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत चाहिए तो इसलिए बेहतर है कि अगर किसी के चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल हैं तो वो उसका इलाज जल्दी शुरू करें ना कि उसको लटकाएँ कि भाई हम लेट एज में जाके स्टार्ट करेंगे तब फ़ायदा नहीं होगा उतना जितना कि अर्ली एज में करने का होगा
0: ठीक इसमें डॉक्टर साहब आपने कुछ मशीन्स का ज़िक्र किया कि जैसे कि हम समझते हैं कि सारी जो लेज़र्स कर रहे हैं वो एक ही फ्रीक्वेंसी एक ही उस पर है क्या ऐसा है या जैसे आपने कहा कि डिफरेंट उसमें हो सकती हैं
1: देखिए लेज़र जब करनी है तो उसमें जिस चीज़ का सबसे पहले ख्याल रखना है वो ये है कि स्किन कलर कौन सा है
0: अच्छा
1: हमें जो है हमारे इंसानों के तकरीबन 6 स्किन कलर्स हैं जो कि डिफाइंड हैं
0: जी
1: जिनमें बहुत फेयर से लेके बहुत डार्क तक आते हैं और अमूमन जो एशियंस हैं या जो अरब हैं ये तकरीबन दरमियानी स्किन टाइप्स के लोग हैं तो इसलिए स्किन कलर का सबसे पहले ख्याल रखना है और दूसरा बाल की थिकनेस का
0: अच्छा ठीक
1: तो बेस्ट रिजल्ट के लिए अगर किसी का स्किन कलर बहुत फेयर है
0: जी
1: और उसके बाल का कलर बहुत ब्लैक है
0: जी
1: तो इसको रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा इसके लिए कोई भी मशीन हम यूज़ कर लें इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आएगा
0: जी
1: लेकिन जो जिसका स्किन कलर डार्क है उसका बाल का कलर भी डार्क है तो कम अच्छा रिजल्ट आएगा या जिसकी बहुत फेयर स्किन है और बालों का कलर भी ब्राउन है तो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आएगा
0: अच्छा
1: तो इसलिए स्किन कलर और हेयर कलर इंपॉर्टेंट है इन्हीं के बेसिस पे हम मशीन डिसाइड करते हैं मशीन्स में कुछ वेवलेंथ्स होती हैं
0: जी
1: कुछ वेवलेंथ्स जो हैं वो डार्क कम्प्लेक्शन के लिए होती हैं और कुछ वेवलेंथ्स जो होती हैं वो फेयर कम्प्लेक्शन के लिए होती हैं तो वो हम देख के फिर डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सी वाली वेवलेंथ को सिलेक्ट करना है
0: अच्छा ठीक ठीक इसमें इसी तरह जो डिफरेंट जो नाम हैं या फ्रीक्वेंसीज हैं वो उस पर डिपेंड
1: जी
0: डॉक्टर साहब जो घर में जैसे कि लेज़र करती हैं बच्चियों के पास होती हैं लेज़र्स जी तो वो उसका क्या है वो पूछना चाहूँगी
1: जी जो घर में लेज़र होती है बेसिकली उस मशीन को कहते हैं IPL वो एक IPL. लाइट का ट्रीटमेंट है वो लेज़र नहीं है
0: अच्छा.
1: तो लाइट से मुराद ये है कि वो बेसिकली हीट है जो कि अंदर जाके स्किन में बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत डैमेज करेगी, वो हेयर के लिए सिलेक्टिव या स्पेसिफिक नहीं है।
0: अच्छा।
1: लेकिन जो हम लेज़र करते हैं जो क्लिनिक्स में की जाती है वो एक फोकस्ड लेज़र होती है जिसने सिर्फ डायरेक्ट जाके बाल की रूट को डैमेज करना है और आसपास की स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाना। तो इसलिए जो घर वाली लेज़र्स हैं वो अगर इफ़ेक्ट उनका 2% है तो क्लिनिक वाली या जो प्रॉपर वाली लेज़र है उसका इफ़ेक्ट जो है वो तकरीबन 15% है, यानी इसमें एक बहुत बड़ा चेंज है। घर वाली लेज़र की जा सकती है लेकिन वो मैं रिकमेंड करती हूँ अगर आपने कुछ लेज़र के सेशन ले लिए, मैं आपके बाल बहुत कम रह गए हैं तो अब आपको है कि मैं नहीं जा सकती कहीं पे करवाने के लिए और मैं अगर कुछ घर में करना चाहूँ तो मेंटेनेंस के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मोटे थिक बालों के लिए अगर आप स्टार्ट में ही अब घर वाली लेज़र जिसको IPL कहते हैं वो शुरू करेंगे तो आपको मायूसी होगी।
0: ठीक इसलिए मगर और उसमें भी टाइम का होता है, टाइम पीरियड के कितने वीक्स के बाद आपको करनी है, जैसे आपके ये सेशंस हैं वो कितनी देर के बाद आप रिकमेंड करते हैं कि जो पेशेंट है वो आए, और या ये है कि डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस एंड हेयर।
1: बेसिकली हेयर की ग्रोथ कुछ लोगों की बहुत स्पीडी होती है, कुछ लोगों की हेयर ग्रोथ जो है वो स्लो होती है, तो इसलिए एक बंदे का दूसरे बंदे से डिफरेंट होता है। जब हम लेज़र करते हैं तो वो बाल जो हैं वो सारे डैमेज हो जाते हैं, वो जल जाते हैं, वो गिर जाते हैं, फिर नए बाल आते हैं। वो जब नए बाल आते हैं तब अगले सेशन के लिए हम मरीज को बुलाते हैं, जो कि किसी में 3 वीक्स होता है टाइम, किसी में 4 वीक्स होता है, किसी में 5 वीक्स होता है। तकरीबन 1 से 1.5 माह के बाद जो है ना हम अंदाजन अगला सेशन करते हैं।
0: ठीक इस तरह से जो है ये डिपेंड करता है कि क्या क्या जो है किस तरह से हम लेज़र, इसलिए ये क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि हमारे आम जो है वो भी करते हैं और एज और बच्चियाँ जो हैं, जैसे कि आपने कहा कि IPL है ये स्पेसिफिक लेज़र ट्रीटमेंट नहीं है, मगर उसमें भी कुछ जो हैं ख़वातीन वो शिकायत करती नज़र आती हैं कि उनमें बर्निंग भी हो गई है या इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हैं, तो वो क्या है, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं?
1: देखिए लेज़र स्पेशली अगर हेयर रिमूवल की ही हम बात करें तो उसमें अगर बर्न होता है तो उसमें 3-4 मेजर रीज़न्स होती हैं। एक तो ये कि अगर करने वाले ने प्रॉपर वेवलेंथ ही नहीं सिलेक्ट की या प्रॉपर सेटिंग्स ही नहीं रखी, यानी करने वाले का उतना तजर्बा नहीं था, तो फिर तो बर्न का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर एक एक्सपीरियंस बंदा कर रहा है तो बर्न का चांस ना होने के बराबर है, ना होने के। समटाइम्स मरीज ने स्किन के ऊपर कुछ लगाया हुआ होता है, कोई क्रीम कोई लोशन, उसने उसको साफ़ नहीं किया और या उसने कहा मैंने कुछ भी नहीं लगाया और हमने भी उसको क्लीन नहीं किया, तो इस सिचुएशन में स्किन ज़रा सेंसिटिव हो जाती है, वो धूप में जाएंगे तो उनको उस जगह पर कुछ निशान आ सकते हैं
0: जी।
1: तो इसलिए मरीज की तरफ से थोड़ी बहुत कोताही इस तरह से हो सकती है कि वो कुछ कोई घर में कोई क्रीम लगा रहा था जो उसने हमें नहीं बताया और क्रीम ऐसी थी जो स्किन को सेंसिटिव कर रही है, तो तो ये एक रीज़न हो सकती है मरीज़ की साइड से।
0: ठीक है,
1: लेकिन करने वाले की साइड से ज़्यादा होती है क्योंकि करने वाले का ही मेन फॉल्ट होता है अगर उसको करनी नहीं आती तो।
0: ठीक, और इसके अलावा हिस्ट्री पर भी डिपेंड करता होगा ना कि आप जैसे पूछते हैं कि क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, किस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहूँगी, कौन सी ऐसी क्रीम्स हैं कि अगर हम कोई पहले इस्तेमाल कर रहा है तो कब उसे छोड़नी है? और
1: इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रीम है वो है ये रेटिनॉइड्स या ट्रेटिनोइन या स्किन की क्रीम जो कि बेसिकली एक्ने के लिए इस्तेमाल होती है, हर वो क्रीम जिसमें रेटिनॉल या रेटिनॉइड या एक्रेटीन ये सब चीज़ें शामिल हों, ये सब जो है बेसिकली स्किन को बारीक करती हैं, ऊपर से डेड स्किन को उतारती हैं, स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव हुई होती है, तो ये ऐसी क्रीम है जो कि लाजमी आपने लेज़र कराने से 1 हफ्ता पहले बंद करनी है।
0: ठीक
1: इसी तरह कुछ पीलिंग क्रीम्स होती हैं जो तकशीर कर रही होती हैं, यानी स्किन को ऊपर से डेड स्किन को रिमूव कर रही होती हैं।
0: अच्छा,
1: ये वाली क्रीम्स भी आपने कम से कम 7-10 दिन पहले लेज़र कराने से बंद करनी होती हैं। उसके अलावा कुछ वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं जिनमें विटामिन सी है या ग्लूटाथायोन इस तरह की कंपाउंड शामिल हैं। हाइलुरोनिक एसिड इतना मसला नहीं करता क्योंकि वो एक मॉइस्चराइजर का काम करता है,
0: क्योंकि ये बहुत आम इन्हेजी
1: हर दूसरी बच्ची के पास 10 किस्म के सीरम्स आपको मिलेंगे जो खुद से लगा रही होंगी, तो आपने अपनी स्किन को पहले ही वीक कर लिया होता है, फिर वो लेज़र के असरात को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए हमने ये सब चीज़ें बंद करवानी होती हैं।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे सिर्फ अभी ये बाकी तो और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मगर इस पर इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हाई जो हैं वो तादाद में ऐसे पेशेंट्स हैं आपके पास आते भी होंगे कि ये मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा हैं जी। इसमें उससे पहले तो आपने बता दिया ये क्रीम्स हैं और वो, और मगर ये पोस्ट ऑप नहीं या ट्रीटमेंट जो लेज़र जो ट्रीटमेंट है उसके बाद क्या क्या एहतियात जो है वो करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है
1: जी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि एक या दो क्रीम्स आपको बताई जाती हैं लगाने के लिए, ताकि अगर कोई आपको हल्की फुल्की रेडनेस है, कोई जलन है, कोई आपको हीट वाली फीलिंग है स्किन के अंदर, तो आप वो यूज़ करें जिनमें अमूमन मॉइस्चराइज़र होता है और कोई माइल्ड सा स्टीरॉयड होता है
0: जी,
1: ताकि अगर कोई रिएक्शन है लेज़र का तो वो एक आध दिन में या एक आध घंटे के अंदर ही ख़त्म हो जाए और मरीज़ को कोई प्रॉब्लम ना हो।
0: ठीक है,
1: तो पहली चीज़ तो ये कि ये जो क्रीम्स बताई जाएँ वो इस्तेमाल की जाएँ, और दूसरा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है धूप से बचना।
0: अच्छा,
1: यानी जिस एरिया की लेज़र कराई है उस पर अगर चेहरा है और अगर धूप पे निकलना है तो पहले अच्छे से लेयर सनब्लॉक की लगाएं, और उसके अलावा भी अगर कवर कर सकते हैं फेस को किसी भी चीज़ से, हाथ में कुछ पकड़ के अगर आपने धूप में से वॉक करनी है, सनग्लासेस पहन के, कोई स्कार्फ से, कैप से, हैट से, किसी भी चीज़ से आप उस एरिया को कवर्ड रखें ताकि आपको वहाँ पर कोई रिएक्शन ना हो। इस तरह से अगर रिएक्शन हो तो वो थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन होती है यानी स्किन का कलर डल हो जाता है।
0: ठीक,
1: तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एहतियातें हैं, अगर ये कर ली जाएँ तो 80-90% जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। उसके अलावा भी हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी यानी स्वेटिंग वाला काम नहीं करना।
0: अच्छा,
1: आपने कोई स्टीम वाला ट्रीटमेंट नहीं लेना, हीट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं।
0: जी जी, कितने दिनों तक?
1: फर्स्ट 1 वीक के जाते हैं ज़्यादा।
0: अच्छा, 1 वीक के लिए, ठीक है। इसमें नुकसान भी पूछना चाहूँगी, पेशेंट को जैसे लेज़र किया है तो क्या फील होता है, जैसे पेशेंट डिफरेंट होते होंगे ना, तो ये ज़रा बताइए
1: जी। अगर मोटा बाल है
0: जी,
1: तो लेज़र जब अंदर जाएगी स्किन के अंदर तो फील ऐसे होगा जैसे सुई चुभी है, लेकिन बेसिकली सुई होती नहीं है क्योंकि लेज़र की एक बीम है वो उस तरह से नहीं है कि वो कोई स्किन को उस तरह से डैमेज करेगी हमें अंदर जाती हुई दिखेगी, लेकिन अंदर जाके एक फीलिंग सुई चुभने की आएगी। और उसके अलावा जब वो बाल फटता है, बाल की रूट फटती है लेज़र एब्जॉर्ब होने के बाद, तो उस टाइम पर आपको चुभन और हीट फील होती है
0: जी।
1: तो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है अगर बहुत थिक बाल हैं तो।
0: अच्छा,
1: लेकिन जिनके थोड़े से नॉर्मल मीडियम थिकनेस वाले बाल हैं उनको, उनके लिए इतनी अनकंफर्टेबल नहीं होता। और जितने जैसे जैसे बारीक होते जाएंगे बाल उतनी ही पेन भी कम होती जाएगी। तो यानी पहला सेशन
0: जी
1: उस शख्स का या उस खातून का जिसके बहुत थिक बाल हैं उसमें वो दर्द को ज़रूर एक्सपेक्ट करे कि होगी, लेकिन उसके लिए कुछ कूलिंग ट्रीटमेंट होते हैं, मशीन्स के अंदर भी कूलिंग आती है।
0: अच्छा,
1: और उसके अलावा बाद में आइस पैक लगा सकते हैं, साथ में चिल्ड एयर ब्लो करने वाली मशीन्स भी होती हैं हमारे पास, ताकि जो है हीट को हम कोल्ड से बैलेंस कर सकें।
0: ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर, मैंने पूछा था कि कितना जो टाइम पीरियड है वो भी आपने क्या डिपेंड करता है कि थिकनेस कितनी है। वैसे आमतौर पर कुछ बच्चियाँ 2 वीक्स पे भी कर रही होती हैं तो जो उनके घर पर करते हैं, तो ये पूछना चाहूँगी कि उनका ख्याल ये है कि जल्दी जो है वो रिजल्ट जो है उनके सामने आए।
1: घर पे अगर कर रहे हैं और ख़ुद से कर रहे हैं तो अगर आपने एक सेशन किया है और अगर आपने प्रॉपर सेशन किया है, विच मीन्स कि आपने कोशिश की है कि मैं सारे बालों को टारगेट करूँ, तो कम अज़ कम आपने 1 मंथ वेट करना है।
0: अच्छा,
1: जो पिछले लेज़र का ट्रीटमेंट का जो इफ़ेक्ट है उसमें फील होगा आपको कि कुछ बाल कम हुए हैं या कुछ बाल गिरे हैं, तो आपको उन गिरे हुए बालों को वापस आने का टाइम देना चाहिए। जो पहले थिक था बाल वो अगली दफ़ा जब आएगा वो बारीक होकर आएगा, जब वो आएगा तब अगला लेज़र का सेशन करने का फ़ायदा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हर हफ्ते आप करते रहें, हर 2 हफ्ते करते रहें, एक दफ़ा करें, प्रॉपर करें और फिर महीने के बाद करें।
0: ठीक ठीक, इस तरह से। यानी आपके जहन में कोई भी और सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं डॉक्टर साहिबा से। हमारे साथ हैं डॉक्टर निदा कफायत जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बर्थ मार्क्स की बात की तो हम उस पर अब जाएंगे, मगर ये कि हमारे लिसनर हैं, नाम तो इन्होंने नहीं लिखा, सलाम कह रहे हैं आपको।
1: वालेकुम
0: सलाम। और कह रहे हैं कि उनका बर्थ मार्क है जो कि सर पर, जो कि मोटा और ब्लैक

0: हो गया है, सर के ऊपर है, और क्या उसे हम लेज़र करवा सकते हैं?
1: जी, इसके हिसाब से मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि ये बालों के यानी कवर्ड एरिया के अंदर है, इसके अंदर से बाल भी होंगे, तो ये एक आउट ग्रोथ टाइप चीज़ है जो सर के अंदर है,
0: ठीक है।
1: और अगर ये बाय बर्थ है तो दो तीन इसके नाम हैं, उन्हीं में से कोई होगा। इसका डिपेंड करता है कि साइज़ कितना है, अगर साइज़ छोटा है
0: जी
1: तो फिर इसको लेज़र से बर्न कर दिया जाएगा, तो वो वहाँ पे हल्का फुल्का कोई निशान रह जाएगा लेकिन ये ख़त्म हो सकता है,
0: ठीक है।
1: अगर ये बड़ा है, इसमें डिपेंड करता है साइज का, यानी अगर ये सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इतने वाले जो हैं इनको हम इजीली लेज़र से कर सकते हैं,
0: ठीक है।
1: लेकिन अगर बड़ा है, जैसे मिसाल के तौर पे 10 इंच का है या कुछ मतलब बहुत बड़ा साइज़ है, उसमें फिर लेज़र का उतना फ़ायदा नहीं होता।
0: अच्छा।
1: उसमें हमें सर्जन को या प्लास्टिक सर्जन को स्पेशली इन्वॉल्व करना होता है मशवरा करने के लिए कि भाई वो किस हद तक इस पर काम कर सकते हैं। समटाइम्स वो नहीं कर पाते उसको ठीक, तो फिर हमें उसको लेज़र से ही इम्प्रूव करना होता है, यानी वी सिट टुगेदर एंड वी डिसाइड कि उनसे कितना फ़र्क पड़ेगा और हमारे ट्रीटमेंट से कितना फ़र्क पड़ेगा।
0: ठीक,
1: तो बड़े जो है ट्रीट करने मुश्किल होते हैं, जितना छोटा होगा उतना लेज़र से ट्रीट करना ईजी होगा।
0: ठीक ठीक, इसलिए ये डिपेंड करता है। तो अब वो क्या करें, आप क्या कहेंगे कि
1: वो मशवरा करें ज़रूर किसी लेज़र वाले डॉक्टर से जो लेज़र करते हों, और वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर देगा जो भी है
0: जी। मगर आपका ये ख्याल है कि डिपेंड्स ऑन द साइज और थिकनेस क्या है उसकी,
1: बिल्कुल।
0: और आप वो जैसे ही कंसल्ट करेंगे तो आपको बता देंगे कि लेज़र जो है किस हद तक वो बेनिफिशियल है उसके लिए।
1: जी,
0: डॉक्टर साहब, हमारे एक लिसनर हैं, पूछ रहे हैं कि उनकी बेटी हैं और 17 इयर्स की, और उनके बाल जो हैं वो बहुत गिर रहे हैं, तो क्या इसमें कोई लेज़र ट्रीटमेंट की कोई
1: बाल अगर नहीं? गिर रहे हैं तो बालों को रीग्रो करने के लिए कुछ वेवलेंस हैं, यानी कुछ लाइट के ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं
0: जी,
1: कुछ वेवलेंस लाइट की ऐसी हैं, जैसे रेड लाइट है उसको कहते हैं फोटोडायनेमिक थेरेपी भी, तो इनसे जो है कुछ सेशंस में जाके बालों की ग्रोथ इम्प्रूव होती है
0: जी।
1: लेकिन इसमें मैजिकल रिजल्ट नहीं है, हमें पहले वजह मालूम करनी चाहिए कि वजह क्या है जिसकी वजह से बच्ची के बाल कम हैं। जो वजह है उसको ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है, वजह ठीक होगी तो हो सकता है ऑटोमेटिकली बाल आ जाए। और इस केस में लाइट या लेज़र का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, वो मेन ट्रीटमेंट नहीं है।
0: ठीक। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब आपने वजह बताई, जैसे कि 17 इयर्स है, बहुत यंग है, तो आपके ख्याल में क्या कोई डाइट डेफिशिएंसी हो सकती है या कुछ
1: जी? इस एज में हमें सबसे पहले जो है ना बच्चे का आयरन लेवल्स चेक करने हैं, विटामिन डी चेक करना है, और एक थायराइड को हार्मोन है वो चेक करना है, उसके अलावा विटामिन B12
0: जी।
1: तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये चेक करा लें, मोस्ट लाइकली इन्हीं में से कहीं ना कहीं गड़बड़ निकलेगी, और अगर निकलेगी तो उसी को ही अगर हम उसको इम्प्रूव कर फोकस करें कि हम इसको इम्प्रूव कर लेंगे तो हो सकता है कि अगले 3 महीनों में हेयर फॉल खुद ब खुद बेहतर हो जाए।
0: ठीक ठीक, इसलिए सब जो रूट कॉज है उसको जानना, जैसे टेस्ट कराने जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया हमें कि कोई भी ट्रीटमेंट जो लेने से पहले आपको टेस्ट जो हैं वो कराने ज़रूरी हैं, बाकी उसके बाद फिर वो चलता है, बाकी लेज़र की जो प्री और पोस्ट है वो अलग अलग है जी। डॉक्टर साहब, बर्थ मार्क पर ही हम दोबारा थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे कि और कौन कौन से बर्थ मार्क्स जो होते हैं या कोई स्पेसिफिक एरिया पे होते हैं, किस तरह से आप हमें बताएंगे?
1: देखिए, बर्थ मार्क्स तो बॉडी पे कहीं पे भी हो सकते हैं, और बर्थ मार्क्स ऐसा नहीं है कि वाकई वो बर्थ पे मौजूद हों। बर्थ मार्क्स कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़ी लेट एज में आके अपेयर होते हैं, जैसे 7-8 साल, 10 साल, 11-12 साल में भी आ जाते हैं, तो स्किन के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि विद एज नुमाया होनी शुरू हो इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ, उन सबको ही बर्थ मार्क्स कहते हैं।
0: अच्छा, ठीक है।
1: ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वो होते हैं जो विजिबल एरियाज पे हों, जैसे चेहरे पे है, हाथ पे है, गर्दन पे है, सर पे है, जो विजिबल एरियाज पे होंगे उनका जो प्रेशर है या उनका जो जो सोशल इम्पैक्ट है बच्चे के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होता है, और फैमिली पे भी ज़्यादा होता है। तो इसमें भी डिपेंड करता है उनके उनका कलर किस तरह का है, कुछ होते हैं जो ब्लैक होते हैं, कुछ होते हैं रेड होते हैं, कुछ जो हैं वो बिल्कुल ब्राउनिश या ग्रीनिश से कलर के होते हैं या ब्लूइश से कलर के होते हैं। जो उभरे हुए होते हैं उनका इलाज फ़र्क है, जो स्किन के अंदर होते हैं उनका इलाज फ़र्क है, लेकिन इसमें 2-3 किस्म की लेज़र्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं। रेडनेस की लेज़र अलग होती है,
0: ब्राउनिश होते हैं, कुछ ब्लैक
1: ब्राउनिश की अलग है।
0: अच्छा।
1: और अगर कोई ब्लूइश या ग्रीनिश कलर्स हैं तो उनकी लेज़र अलग होती है।
0: ठीक।
1: और कुछ ऐसा जैसे जिन साहब ने पहले बताया कि मेरे सर में है और वो कुछ ग्रो कर रहा है, अगर वो साइज़ में बड़ा है, वो ग्रो कर रहा है, वो ब्लैक
0: ठीक भी है,
1: तो उसको तो पूरे के पूरे को ही बर्न कर दिया जाता है, यानी समझ लें उसको जलाने की पूरी कोशिश

0: नज़र से जो है वो इलाज उसका किया जा सकता है। अब हम कुछ और आगे चलेंगे, मुख्तलिफ और भी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं स्किन के लिए, जैसे कि एंटी एजिंग है, रजी, वो भी डॉक्टर साहब बहुत आम है, सुनने में भी आता है, वो क्या है, उसमें क्या करते हैं आप?
1: देखिए, जैसे स्किन एज करती है, वो बेसिकली कुछ हमारे सन डैमेज से एज कर रही होती है, कुछ हमारे अपने स्ट्रेसेस से एज कर रही होती है, अगर हमारा खाना पीना प्रॉपर नहीं, स्लीपिंग प्रॉपर नहीं, तो ये सब चीज़ें हमारे चेहरे के ऊपर दिखती हैं। इसमें जो एज के साथ स्किन में चेंजेस आते हैं, स्किन बारीक हो जाती है, थोड़ी लटक जाती है, स्किन में फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं, बारीक झुर्रियाँ जिन्हें कहते हैं, और पोर जो हैं स्किन के ऊपर, मसाम जो होते हैं वो खुल जाते हैं, या छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स या जिनको हम एज स्पॉट्स कहते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं स्किन के ऊपर बननी शुरू हो जाती हैं। इस सिचुएशन में भी हमारे पास बहुत सारी लेज़र्स हैं, कुछ ऐसी लेज़र होती हैं जो बिल्कुल जो है माइल्ड सी होती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो ज़रा स्ट्रॉन्ग लेज़र्स हैं। पर्पज़ इन दोनों लेज़र्स का एक ही होता है कि इन्होंने स्किन को नए सिरे से बनने का जो है ना एक समझ लें कि स्टिम्यूलस देना है कि स्किन को हम नए सिरे से थोड़ा सा बनाएं। तो जैसे रीजुविनेशन, जी बिल्कुल, इसको रीजुविनेशन कहेंगे। तो ये किसी भी मिडल एज एंड ऑनवर्ड्स के लिए इफ़ेक्टिव हैं। अगर आपको है कि जी मैं कोई महीने के बाद कोई इवेंट है और मेरी स्किन डैमेज लग रही है, या मुझे थोड़ी सी इम्प्रूव्ड स्किन की क्वालिटी चाहिए, तो फ्रैक्शनल लेज़र कहते हैं, या फ्रैक्शनल एब्लेटिव लेज़र कहते हैं, या CO2 लेज़र भी कहते हैं, ये बहुत कॉमन लेज़र है। इसको एक सेशन भी अगर आप लेंगे तो एक दफ़ा आपकी स्किन नए सिरे से आ जाएगी। इफ़ेक्ट काफ़ी विजिबल होता है, यानी हफ्ते 10 दिन के अंदर जब स्किन हील होगी तो आपको बहुत वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। तो इसमें एक होगा कि आपकी जो बारीक झुर्रियाँ थी वो भी बहुत हद तक कम हो जाएंगी, पोर जो है वो भी श्रिंक होकर बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएंगे, स्किन का बेसिकली कलर जो है वो इम्प्रूव होगा, एक जैसी टोन की स्किन आपको दिखेगी। अगर पहले आपको पैची लग रही थी या लग रहा था कहीं से डार्क है कहीं से कम है, सरफेस स्मूथ होगा, उसमें अगर अप्स एंड डाउन्स कुछ थे तो वो सब जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। तो रिजुविनेशन में भी इसका बहुत रोल है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम कोई भी नहीं होता, वो सिर्फ फिर भी आकर लेज़र कराना चाहते हैं कि ज़रा फ्रेश दिखे स्किन। तो इसमें भी हम अमूमन एजिंग के हिसाब से डिपेंड करता है, समटाइम्स ज़्यादा सेशंस भी रिक्वायर्ड होते हैं, बट अगर एक भी कराएंगे तो आपको उसमें डिफरेंस फील होता है।
0: ठीक है, इसमें जैसे आपने कहा एज पर, एज जो है वो कितनी एज में इस तरह के ट्रीटमेंट जो है वो आप कर सकते हैं, जब पेशेंट जो कहते हैं तो?
1: जी, मिडिल एज के बाद किसी भी टाइम पर स्टार्ट कर सकते हैं, यानी 30-35 में, जब आपको फील हो जाए कि स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं जो कि आपको एजिंग वाले साइंस दे रही हैं। वो देखिए, एजिंग हर किसी की फ़र्क फ़र्क होती है, किसी की एजिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है और कुछ की 50 साल में भी नहीं होती। तो इसलिए स्किन को चेक करके उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं, और क्योंकि हर किसी की लाइफ की स्ट्रगल्स भी अलग अलग हैं, हर किसी के एक्सपोजर अलग अलग हैं। तो लेकिन ये कि इनको एज अर्ली एज 30-35 भी स्टार्ट किया जा सकता है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है।
0: ठीक ठीक, इस तरह से जी। तो सब ये तो हो गई, इसमें तो रिंकल्स जो हैं वो, फाइन लाइंस जो हैं वो, इस तरह से वो करवा सकते हैं। टैटूज भी होते हैं बार दफ़ा, तो उन्हें रिमूव करना वो भी लेज़र से करवा सकते हैं?
1: जी देखिए, कुछ टैटूज होते हैं जो कि लोगों ने शौकिया बनवाए होते हैं, और कुछ टैटूज ऐसे हैं जो कि लोगों ने जैसे आईब्रोज में करा लिए कि भाई ज़रा आईब्रोज की शेप अच्छे दिखे। अच्छा। या कुछ लोगों ने डिफरेंट कलर के, जैसे मिसाल के तौर पर रेड कलर का टैटू लिप्स पे कराने का आजकल बहुत ट्रेंड है, स्पेशली जिस एरिया में हम रह रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए इट्स लाइक कि आप उसको लुक दें मेकअप वाली, मेकअप करें। अच्छा। ना, लेकिन मेकअप वाली लुक दें।
0: अच्छा, ये भी लेज़र के थ्रू ही कर रहे हैं?
1: हम लेज़र से रिमूव करेंगे।
0: अच्छा,
1: इनको
0: रिमूव करेंगे।
1: लोग करवाते हैं, उसके ट्रीटमेंट और होता है। अच्छा, समटाइम्स ब्यूटिशियंस करते हैं, समटाइम्स उसके टैटू वाले कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, वो करते हैं।
0: अच्छा, आप
1: लेकिन हमने उनको रिमूव करना है।
0: ठीक है,
1: तो उसमें भी होता है कि बेसिकली स्किन के अंदर एक कलर डाल दिया जाता है, हमने लेज़र से उस कलर को डैमेज करना होता है और उस कलर को जो है निकालना होता है।
0: तो क्या ऐसे आते हैं आपके पास पेशेंट जो कि खुद एक दफ़ा करवा लिया और फिर उसको रिमूव भी करवाना है?
1: जी, ऐसे बहुत सारे आते हैं, ज़ाहिर है, जो करवाते हैं फिर उनको समटाइम्स पसंद आता है, समटाइम्स नहीं आता। समटाइम्स टैटू का ये मसला है कि टैटू से इंसान बोर हो जाता है कि ये मैंने क्या करा ली, या अगर कुछ टैटूज ऐसे होते हैं जो रिग्रेट के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं कि मैंने ये क्यों करवाया था, मुझे ये नहीं करवाना चाहिए था। तो करवाना आसान है, वो एक बारी में हो जाता है, लेकिन रिमूव करने में समटाइम सेशंस लग जाते हैं।
0: अच्छा, ठीक ठीक।
1: और करवाना भी पेनफुल है टैटू, और टैटू रिमूव करवाना भी पेनफुल है।
0: अच्छा
1: इट्स नॉट इजी, इट्स अनकंफर्टेबल। अगर ज्यादा काला टैटू है, जरा बड़ा

0: टैटू है तो वो पेनफुल होता है मरीज के लिए,
1: ठीक,
0: लेकिन रिजल्ट्स उसके अच्छे हैं. ब्लैक टैटू, ब्राउन या ब्लू, इस तरह डार्क कलर्स के टैटू के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. अगर किसी ने रेड, ग्रीन या येलो इस तरह के कोई डिफरेंट ऑड कलर्स करवाए हुए हैं, इनमें इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी नहीं आती.
1: अच्छा, ठीक.
0: तो जिसका अगर काला टैटू है या डार्क कलर का टैटू है और वो उससे खुश नहीं है, तो देर इज़ होप कि आपको बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाए अगर आप लेजर करवाएंगे तो.
1: बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये कि जो परमानेंट मेकअप है वो.
0: जी एग्जैक्टली, वो भी एक किस्म का टैटू ही होता है, क्योंकि स्किन के अंदर पिगमेंट डालने को टैटू कहते हैं. जो सेमी परमानेंट मेकअप भी कराते हैं उसमें भी स्किन के अंदर पिगमेंट ही डाला जाता है.
1: ठीक ठीक. तो इसमें क्या है, उसके बाद फिर स्किन जो है वो बैक टू नॉर्मल हो जाती है?
0: देखिए, हाँ, अगर टैटू को हम लेजर से डैमेज कर देते हैं तो स्किन वक्त के साथ साथ जो है नॉर्मलाइज होगी. समटाइम्स टैटू 100% नहीं जाता,
1: जी
0: 70-80% तक चला जाता है मोस्टली केसेस में. लेकिन अगर थोड़ा बहुत फेंट सा मार्क रह भी जाए तो मरीज समटाइम्स उस पर खुश ही होता है कि भाई एटलीस्ट दिख तो नहीं रहा था, वाजे तो नहीं है.
1: ठीक है जी. डॉक्टर साहब, जैसे कि जैसे बल्जिंग बाजू का लिप्स की इस तरह, तो वो भी लेज़र से करते हैं क्या है? क्योंकि ये बहुत अहम सवाल ये हमारे लिसनर्स जो है वो पूछ रहे हैं कि वो क्या करते हैं.
0: देखिए, लिप्स के अंदर जो लिप्स के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है उसको फिलर कहते हैं.
1: फिलर
0: से लिप्स बड़े होते हैं.
1: इसमें लेज़र नहीं
0: है. और अगर कलर उसमें कोई डाला है, उसके कलर को इम्प्रूव करने के लिए रेड या पिंक का कोई शेड, तो वो दैट इज़ लाइक अ टैटू.
1: अच्छा,
0: इसमें लेज़र कोई रोल नहीं है. लेजर का काम सिर्फ ये कि अगर कलर लिप्स में डाला हुआ है तो वो उसको रिमूव करेगी, उसको बर्न करेगी.
1: ठीक है. इसमें डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगी कि कितने, जैसे आपने डिफरेंट हमें जो है मसाइल भी बताए, इसके अलावा अगर कोई है तो वो भी मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि और क्या क्या हो सकते हैं. जैसे कि आपने हमें बताया कि
0: जी, दो तीन को बस टच कर दूंगी क्योंकि टाइम हमारे पास अब कम रह गया
1: है. बिल्कुल.
0: कुछ स्किन की बीमारियां हैं जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस वगैरह, और जैसे विटिलाइगो, और विटिलाइगो जिसमें स्किन सफेद कलर के निशान बन जाते हैं. कुछ मशीन ऐसी हैं लेज़र की जो इन डिजीज़ में भी काम देती हैं. तो ये वो डिजीज़ हैं जो कि लार्ज बॉडी एरिया को इन्वॉल्व बार दफ़ा कर लेते हैं, तो लेज़र इसमें भी इफेक्टिव है. तो ये कुछ प्रॉपर बीमारियाँ हैं जिनमें काम आती है लेज़र. उसके अलावा
1: सोराइसिस की जैसे लास्ट टाइम भी पूछा था, सवाल भी था हमारे लिसनर की तरफ से, तो क्या उसमें लेजर जो हो सकता है? क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल की हैं मगर कोई
0: एक्साइमर लेजर उसका नाम है, लेकिन मशीन की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि किस एरिया से मरीज ताल्लुक रखता है. वहाँ पर अगर मशीन हो तो इफेक्ट अच्छा आता है.
1: ठीक है.
0: उसके अलावा कुछ और स्कार्स, जैसे मैंने कहा स्ट्रेच मार्क्स हैं, सर्जरी कराई है उसका निशान है, जल गया था, बचपन का कोई ट्रॉमा है, स्टिचेस लगे हुए हैं, इन सब के निशान के लिए भी लेजर की जा सकती है. एक और कंडीशन होती है स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है, उसको रोजेशिया कहते हैं.
1: अच्छा.
0: पिंक चीक्स जो होते हैं बहुत सारे लोगों के होते हैं, स्पेशली वाइट स्किन या जो गोरे हैं उनकी स्किन में ज़्यादा कॉमन है. लेकिन हमारे एशियन, अफ्रीकन या मिडल ईस्टर्न इस तरह की स्किन्स में भी देखने में आती है.
1: ठीक है.
0: तो इसका भी लेजर से बहुत अच्छा इलाज है. इस कंडीशन को रोजेशिया कहते हैं, और रेड कलर की जो लेज़र होती है वो इसमें बहुत हद तक इफेक्टिव होती है.
1: अच्छा अच्छा अच्छा. उसमें जैसे आपने कहा कलर्स डिफरेंट हैं या मशीन जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो वो
0: रेड कलर की जो मशीन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है.
1: ठीक.
0: रेडनेस को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इस तरह का मरीज जो है वो बहुत अपसेट रहता है कि उसके चीक्स इतने लाल हो जाते हैं, समटाइम्स कैसे लगता है कि उनमें से ब्लड आ जाएगा. और समटाइम्स मरीजों ने जो स्टीरॉयड लगा के भी अपने चेहरे को लाल किया होता है उसमें भी जो है.
1: अच्छा, खुद से भी ऐसे करते हैं?
0: बेसिकली स्टीरॉयड का साइड इफेक्ट है कि उससे जल्द बारीक होती है तो वो लाल हो जाती है. तो उसमें भी रेडनेस वाली जो लेज़र है वो इफेक्टिव है.
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं इंफॉर्मेशन के लिए देख रही थी तो उसमें देखा मैंने कि जो ख्वातीन हैं वो 82% तक जो है वो पेशेंट एस्थेटिक ट्रीटमेंट लेज़र की तरफ जाते हैं, और जो मर्द हज़रात हैं सिर्फ 18%. तो इसमें क्या कहेंगे आप?
0: देखिए, ज़ाहिर ख़वातीन में ट्रेंड है ज़्यादा खूबसूरत दिखने का, मर्दों में कम है. लेकिन मर्दों में भी जो है रेट बहुत इम्प्रूव, मर्दों में इम्प्रूव हो रहा है रेट. मर्द भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं.
1: जी.
0: और ख़वातीन में मशीन्स या लेज़र्स के अलावा कुछ इंजेक्शंस जो हैं, इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स के भी रुझान जो है बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है.
1: जी.
0: तो अनकरीब ख़वातीन तो खूबसूरत दिखेंगे ही, मर्द भी बहुत हसीन दिखेंगे.
1: बिल्कुल जी. डॉक्टर साहब, इसमें जो सक्सेस रेट है जैसे, वो भी पूछना चाहूँगी कि क्या है, कितने, बहुत से जो मसाइल हैं उनमें कितना जो है वो बेनिफिशियल है?
0: कुछ कंडीशंस में, जैसे हमने बात की लेज़र की, एक्नी स्कार्स की, लेज़र हेयर रिमूवल में स्पेशली जो है अराउंड 80-90% है.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Hello and welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया. आज हम बात करेंगे अर्निंग ग्लोबली एंड स्पेंडिंग लोकली. कितना इंटरेस्टिंग साउंड करता है ना. देखिए आज के मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड में एक नया लाइफस्टाइल बड़ी तेजी से पॉपुलर हो रहा है जिसे हम और आप अडॉप्ट भी कर रहे हैं. इस लाइफस्टाइल को कहते हैं डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल. ये लाइफस्टाइल उस लाइफस्टाइल की तरह है जो इंटरनेट की मदद से रिमोटली काम करता है और किसी एक ऑफिस या सिटी तक महदूद भी नहीं रहता. वो दुनिया के किसी भी मुल्क से अपना काम कंटिन्यू कर सकता है. इसी कॉन्सेप्ट को अक्सर अर्निंग ग्लोबली स्पेंडिंग लोकली के नाम से जाना जाता है. दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स या फिर कंपनी से इनकम अर्न करते हैं लेकिन अपने डेली एक्सपेंसेस उस जगह के मुताबिक करते हैं जहां आप रह रहे होते हैं. डिजिटल नोमैड बनने का सबसे बड़ा फायदा फ्रीडम है. पिछली जनरेशंस को ऑफिस जाना पड़ता था लेकिन आज इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से काफी जॉब्स ऑनलाइन हो चुकी हैं. फ्रीलांस राइटर्स ग्राफिक डिजाइनर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डिजिटल मार्केटर्स ऑनलाइन टीचर्स और कॉन्टेंट क्रिएटर्स दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा यूरोप या अमेरिका की कंपनी के लिए काम कर रहा हो और किसी कॉम्पिटिटिव अफोर्डेबल कंपनी में रह रहा हो तो उसकी सेविंग पोटेंशियल काफी ज्यादा बढ़ सकती है. मिसाल के तौर पे अगर कोई फ्रीलांसर एक इंटरनेशनल क्लाइंट से $3,000 पर मंथ कमाता है और उसे ऐसी सिटी में रहने का मौका मिलता है जहाँ लिविंग कॉस्ट रिलेटिवली कम है तो उसके पास ज्यादा पैसा सेव करना और इन्वेस्ट करने का चांस बढ़ता है. और शायद इसी वजह से बहुत से डिजिटल नोमैड्स ऐसे मुल्क को पिक करते हैं जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो और इंटरनेट फैसिलिटीज अच्छी हो. लेकिन ये लाइफस्टाइल सुनने में जितना अट्रैक्टिव है उतना ही फाइनेंशियल प्लानिंग भी रिक्वायर्ड करता है. सबसे पहला चैलेंज जो इसका है वो है इरेगुलर इनकम. ट्रेडिशनल जॉब्स में तो हमारी आपकी सैलरी फिक्स्ड होती है लेकिन फ्रीलांसिंग या फिर रिमोट प्रोजेक्ट्स में इनकम हर मंथ डिफरेंट हो सकती है. कभी कम कमाया तो कभी ज्यादा कमाया और शायद कभी कुछ भी नहीं. इसलिए ये लाइफस्टाइल जो है वो बजटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल हमें और आपको सिखाता है. देखिए बजटिंग का मतलब है हम अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को प्लान करें. स्मार्ट डिजिटल नोमैड्स हर मंथ अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस जैसे रेंट है आपका फूड है ट्रांसपोर्ट है इंश्योरेंस है इंटरनेट है. लोग अपने फाइनेंसेस को दुनिया के किसी भी हिस्से से मैनेज कर सकते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ सिक्योरिटी का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स

0: करते तो आप जानते हैं। बस आपसे यही आखिर में जाते जाते कहूंगी कि डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल ट्रैवलिंग का नाम नहीं है, असल सक्सेस स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है। अगर कोई पर्सन ग्लोबली इनकम अर्न करे, लोकल लेवल पर वाइजली स्पेंड करे, रेगुलर सेविंग्स करे, इमरजेंसी फंड मेंटेन करे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करे तो फाइनेंशियल फ्रीडम की बहुत करीब होता है। लिहाजा डिजिटल नोमैड फाइनेंस का जो बेसिक रूल है वो ये है कि अर्न स्मार्ट, स्पेंड वाइजली, सेव कॉन्स्टेंटली एंड इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर। जो लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ रिमोट लाइफस्टाइल को बैलेंस कर लेते हैं वो सिर्फ दुनिया एक्सप्लोर नहीं करते बल्कि अपनी वेल्थ भी स्टेडली बिल्ड करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। एक नई टर्म आपने सीखी ली और किस तरह से उसको समझा है और कितना अप्लाई करने वाले हैं आप, ये मुझे बताइएगा जरूर 666-22-107 पर। फिलहाल आपसे इजाजत लूंगी, कल होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: उसमें कुछ एक्टिविटीज ब्लू मार्कर से होंगी, ग्रीन मार्कर से होंगी, रेड मार्कर से होंगी, इसमें सब बताएगा आपको। और आप जो मेजर सैटेलाइट जो हैं वो भी आप इसके जरिए देख सकते हैं। आप सीसीटीवी कैमरास कई जगहों पे जो ओपन एआई एक्सेसिबल है वो आप देख सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की और बहुत ही यूनिक किस्म की वेबसाइट है। सो ट्राई दिस वन आउट, आई एम प्रीटी श्योर आपको कुछ अलग किस्म की वेबसाइट मिलेगी। टाइम पास के लिए आराम से देख सकते हैं आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से खबरों की तरफ। तो टेक न्यूज में सीधी सीधी बात ये है, सब सारे के सारे टेक आपको महंगे होते हुए नजर आएंगे। आईफोन वालों ने यानी एप्पल वालों ने बहुत टाइम से कोशिश करी थी कि वो अपने जो मेजर जो फ्लैगशिप फोन है उसके प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, स्पेशली प्रोज के और प्रो मैक्स के। वो $1,000 के आसपास रहेगा, यानी कतरी रियाल में बात करूं तो वही 3,500-4,000 के आसपास रहेगा। पर अभी वो थ्रेशहोल्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है विद द लॉन्च ऑफ एप्पल फोल्ड एंड एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड। और जैसे मैंने कहा था, वही रिजल्ट आया जो एप्पल फोल्ड फोन है उसका जो रिव्यू है वो ऐसा ही है जैसा मैंने सोचा था। उसमें एक हद तक मेहनत की जा सकती है और उसमें सैमसंग ये वॉर जीत चुका है अगर फोल्डेबल्स की बात की जाए, और फॉलोड बाय उसके बाद जो नंबर आएगा हुआवी का आएगा। अभी एप्पल आई डोंट थिंक सो एक आम आदमी इतना ज्यादा दीवाना होगा एप्पल के फोल्ड के लिए, हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है उस पर, बट द प्राइसिंग ऑन इट इज अ लिटिल टू मच। ठीक है, वो बात दूसरी है, बट जब पूरी तरह से मैं रिव्यू करूंगा एप्पल का तो बहुत खुल के करूंगा, वो आप सुनेंगे कुछ दिनों में। बट इसके अलावा जो बाकी टेक है वो महंगा होता चला जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये टेक अभी नहीं लेता, सस्ता हो जाएगा जब मैं ले लूंगा, तो आई हाईली डाउट दैट। हम उस जमाने में जी ही नहीं रहे जहाँ पे चीज अभी आई है तो सही है, बाद में सस्ती होगी तो ले लेंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी गैजेट्स ये महंगे ही होने वाले हैं अभी, बिकॉज ऑफ द रीजन जो मैंने आपको बताया, मेमोरी का खर्चा, चिप्स का खर्चा। ऑलराइट, सो ये थी टेक अपडेट। मैं दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिए, आप बेहद बेहद जरूरी हैं। टेक अपडेट, टेक अपडेट, नंबर वन हिट्स म्यूजिक स्टेशन, एनी टाइम एनीवेयर।
1: यस, एनी टाइम एनीवेयर,
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।
2: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
3: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।
4: नया जमाना और अनप्लग गाने, दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें, छोटी सी कहानी हो या तरक्की के किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से।
5: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद RJ फजील, संडे टू थर्सडे 6 PM to 7 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: सोशल मीडिया पे आपको पढ़ने को मिलती होगी, और ये है स्कैम, वर्कप्लेस गिफ्ट कार्ड स्कैम। कैसे काम करता है सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। वर्कप्लेस गिफ्ट कार्ड स्कैम का जो मेन मकसद है वो कॉर्पोरेट या किसी भी ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज को अपना शिकार बनाना है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स कंपनी के हायरकी या सीनियोरिटी लेवल का पूरा फायदा उठाते हैं। स्कैमर सबसे पहले आपके ऑफिस के मैनेजर, बॉस, सीईओ या किसी भी बहुत ही क्लोज कोवर्कर का नाम और डिटेल्स ना वो पता करते हैं, फिर वो एक नया अनजान ईमेल आईडी या फोन नंबर यूज करके आपको टेक्स्ट या मेल भेजते हैं जिसमें डिस्प्ले नेम आपके उसी बॉस या मैनेजर का होता है जो आपके असली में बॉस है। जब आप मैसेज देखते हैं तो आपको लगता है कि आपके सीनियर लेवल के बॉस हैं और आपको याद किया गया है। मैसेज में स्कैमर्स बहुत ही चालाकी से एक झूठी स्टोरी बनाते हैं। वो लिखता है कि मैं अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, क्लाइंट प्रेजेंटेशन में बिजी हूँ, कॉल नहीं उठा सकता, मुझे तुमसे एक बहुत अर्जेंट छोटा सा फेवर चाहिए। इसके बाद वो आपसे कहते हैं कि कंपनी के किसी बड़ी क्लाइंट को गिफ्ट देने के लिए या फिर किसी एम्प्लॉय रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए मार्केट से या ऑनलाइन जाकर महंगा गिफ्ट कार्ड खरीदो क्लाइंट के लिए। तो आपसे वो कुछ खरीदने को नहीं कहता लेकिन गिफ्ट कार्ड खरीदने को जरूर कहता है क्योंकि गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है कैश के लिए। वो आपसे कहेंगे कि उन गिफ्ट कार्ड को खरीद कर उनके पीछे का स्क्रैच ऑफ पिन जो है वो नंबर तुरंत टेक्स्ट मैसेज कर दो और फोटो खींचकर मुझे या तो भेज दो। वो आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जैसे ही उनकी मीटिंग खत्म होगी कंपनी आपके इस पर्सनल खर्चे को तुरंत रिइंबर्स कर देगी क्योंकि एम्प्लॉयज अपने बॉस को मना नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि ये ऑफिस का काम है। वो जल्दी में अपने पास से हजारों रुपए का खर्च कर देते हैं, ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं और पीछे का जो कोड है वो बता देते हैं, पिन बता देते हैं, और हैकर के पास वो पिन जब पहुंच जाता है गिफ्ट कार्ड के जरिए तो वो गिफ्ट कार्ड को रिडीम करके गायब हो जाते हैं। और बाद में रियल बॉस से पूछने पर पता चलता है कि उन्होंने तो ऐसा कोई मैसेज किया ही नहीं है। लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए सॉल्यूशन है। कुछ चार ये सॉल्यूशंस हैं जो मैं बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आपका कोई स्टोर है, कोई ऑफिस है, किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, इस तरह के फ्रॉड से आप बच सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। ये मैंने आपको हर तरह के या नए जमाने के जो नए स्कैम होते रहे हैं हर बार बताया है। अगर आपको ऐसा कोई भी मैसेज आता है तो उनके पर्सनल टेक्स्ट या अनजान ईमेल का रिप्लाई करने के बजाय ऑफिस के ऑफिशियल कम्युनिकेशन टूल जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम है, स्लैक है, ऑफिशियल कंपनी की ईमेल्स एड्रेस है, ये सारे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बॉस को पर्सनल कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। कई बार मैसेज भी यानी कि पर्सनल मोबाइल भी उनका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आप डायरेक्ट कॉल करें। डायरेक्टली जब आप मैसेज करेंगे तब वहां से आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा तरीका है कंपनी पॉलिसी को समझें। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा कर रखें, कोई भी जेन्युइन और लीगल कंपनी कभी भी अपने किसी एम्प्लॉय को टेक्स्ट मैसेज पर बिजनेस का सामान अपने पर्सनल पैसों से खरीदने के लिए नहीं बोलता है। ऑफिस के खर्चे के लिए हमेशा कॉर्पोरेट कार्ड या ऑफिशियल प्रोसीजर होता है। उसके अलावा तीसरा तरीका है पिन नंबर सीक्रेट रखें। अगर आपने खुदा ना खास्ता गिफ्ट कार्ड खरीद भी लिया है ना, एक बार अगर आपने स्क्रैच ऑफ पिन की फोटो किसी को भेज दी तो समझ लीजिए आपका पैसा चला गया। इसलिए कभी भी किसी को या किसी के कहने पर भी पिन नंबर टेक्स्ट ना शेयर करें अगर आपने गिफ्ट कार्ड खरीद भी लिया है तो। चौथा तरीका है एचआर को रिपोर्ट करें। ऐसे किसी भी सस्पिशियस ईमेल या एसएमएस को तुरंत अपनी कंपनी के आईटी सिक्योरिटी सेल या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करें ताकि पूरी कंपनी को अलर्ट किया जा सके। अगर ऐसा है कि आपको मैसेज किया गया है तो आम तौर पे सिर्फ आपको नहीं, आपके जैसे कंपनी में और भी एम्प्लॉयज को आम तौर पे टारगेट किया जाता है और लोग भी लिस्ट में स्कैमर्स के होते। तो दोस्तों इसी के साथ उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा कि आजकल के स्कैमर्स, फ्रॉडस्टर्स किस तरह से काम कर रहे हैं और आपको स्कैम करने के लिए तैयार बैठे हैं। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल नए जमाने के एक नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी स्कैम अलर्ट।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और

0: मॉडर्न लाइफ फास्ट है, लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107, शो है ये इस्लामिक मॉडर्न लाइफ और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे महवेश खान। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। आज भी इस्लामिक मॉडर्न लाइफ में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही एक अच्छा सा लेकर आई हूँ टॉपिक। उसके हवाले से हम इंशाल्लाह आज के शो में बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि इस टॉपिक के हवाले से किस तरह से हमें इस्लाम में रहनुमाई मिलती है। तो बेसिकली बात करनी है आज हमने मेंटल हेल्थ इन इस्लाम के हवाले से। इसमें मैं आपसे मुख्तलिफ चीज़ें इसके हवाले से बताऊंगी कि कौन कौन से मिसकंसेप्शन हैं, स्टिग्मा भी अब एड्रेस करेंगे। इसके साथ ही जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव है हमारा, जिसमें एनजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल जो बर्नआउट है वो एक ग्लोबल इशू बन चुका है, तो इसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं। साथ ही कुरान हमें कैसे बताता है, किस तरह से कुरान से और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्पा से हमें ये जो इमोशनल स्ट्रगल्स हैं माई मिलती है। फिर साथ ही प्रैक्टिकल गाइडेंस जो हमारा सेगमेंट है, उसमें हम आपको दुआएं कुछ बताएंगे, कुछ जो प्रोफेशनल हेल्प है वो आपको देने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपको ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जो कि इस्लामिक माइंडफुलनेस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत नेसेसरी हैं। और आपको फिर ये सारी चीज़ें बताते हुए हम आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपका डिप्रेशन है, जो आपकी जो मेंटल हेल्थ है, इसके जो इश्यूज़ हैं, इसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो फिर चलें शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेंटल हेल्थ इंसान की मजमूई फलाह बहबूद का एक नहायत अहम हिस्सा है। ये सिर्फ ज़हनी बीमारी से पाक होने का नाम नहीं, बल्कि सुकून कल्ब, जज्बाती तवाज़ुन, दुरुस्त सोच और ज़िंदगी के मसाइल का मुस्बत अंदाज में सामना करने की सलाहियत का नाम है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इंसान की जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी सेहत तीनों को यकसां अहमियत देता है। बदकिस्मती से हमारे माशरों में ज़हनी मसाइल को कमज़ोरी ईमान या फिर रूहानी नुक्स समझ लिया जाता है। हालांकि इस्लाम इस सोच की नफी करता है और इंसान की नफसियाती कैफियत को फिक्री और काबिल तवज्जो हकीकत तस्लीम करता है। कुरान मजीद ने सुकून कल्ब के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलो कत्मिनान हासिल होता है। यह आयत वाजे करती है कि जहनी सुकून और कल्बी इत्मिनान इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और इस्लाम इसे नज़रअंदाज नहीं करता। मेंटल हेल्थ पे बात करते हुए सबसे बड़ी रुकावट वो खामोशी है जो खौफ, शर्म और गलत फहमियों से जन्म लेती है। हमारे माशरों में जहनी दबाव, इस्तराब यानी स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन का जिक्र करते ही ये समझ लिया जाता है कि शायद इंसान कमज़ोर ईमान वाला है या उसे सिर्फ सब्र की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात तो इसे जिन्नात, नज़र-ए-बद या फिर वहम करार देके असल मसले को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यही रवैया सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ये इंसान को मदद मांगने से रोकता है और उसके दर्द को मज़ीद गहरा कर देता है। इस्लाम ऐसी सोच की हौसला अफजाई नहीं करता। दीन हमें यह सिखाता है कि इंसानी जिस्म और रूह के साथ साथ जहन और दिल भी रखता है, और जैसे जिस्म बीमार हो सकता है वैसे ही जहन थक सकता है, जख्मी हो सकता है और तवज्जो का मोहताज होता है। जहनी तकलीफ ईमान की कमी नहीं, بلکہ انسانی آزمائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ غم، خوف اور بے چینی انسانی فطرت کا حصہ ہیں، اور ان کا انکار کرنا نہیں بلکہ انہیں سمجھنا اور درست طریقے سے سنبھالنا ہی اصل دنائی ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم مینٹل ہیلتھ کو کسی کمزوری یا شرمندگی کے بجائے انسانی ضرورت کے طور پہ دیکھیں۔ جب ہم غلط تصورات کو توڑتے ہیں تبھی ہمدردی، مدد اور شفا کا دروازہ کھلتا ہے۔ آج ہمیں اسی خاموشی کو توڑنے اور اس حقیقت کو قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ مینٹل ہیلتھ پہ بات کرنا نہ بے دینی ہے اور نہ کمزوری، بلکہ شعور، ایمان اور انسانیت کی علامت ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، ہم یہاں

0: लेंगे एक ब्रेक, यहाँ ब्रेक लेते हैं और थोड़ी देर में आपसे मुलाकात करते हैं। सुनते रहे FM 107 तुलसी देसी।
1: मॉडर्न लाइफ फास्ट है लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से।
0: To listeners, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 107, शो है इस्लामिक मॉडर्न लाइफ। इस्लाम में कैसा जामे और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो इंसान की जिंदगी के हर पहलू को तवाज़ुन, एतदाल और हिकमत के साथ संवारता है। ये दीन इंसान को महज ज़ाहिरी अमाल, इबादात या माशरती उसूलों तक महदूद नहीं करता, बल्कि उसके बातिन, उसके दिल, उसके जहन और उसके जज्बात को भी अपनी तालिमात का मरकज बनाता है। इस्लाम के नज़दीक इंसान सिर्फ एक जिस्म नहीं, बल्कि एहसासात, ख्यालात, खौफ, उम्मीद और ख्वाहिशात का मजमुआ है। इसीलिए जहनी सेहत, जिसे आज जदीद दुनिया मेंटल हेल्थ कहती है, इस्लाम के तस्वुर इंसानियत में एक बुनियादी और नागुज़ीर मकाम रखती है। इस्लाम इंसान को सिर्फ जिस्मानी तौर पे सेहतमंद देखना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि इंसान अंदर से मुतमईन हो, उसका दिल पुरसकून हो, उसके ख्यालात मुतवाजन हो और उसके जज्बात बेलगाम ना हो। कुरान और सुन्नत में बार बार ऐसे उसूल बयान किए गए हैं जो इंसान को जहनी दबाव, इस्तराब, खौफ और मायूसी से निकाल कर उम्मीद, यकीन और सुकून की तरफ ले जाते हैं। इस अदबार से देखा जाए तो इस्लाम ना सिर्फ जहनी सेहत को तस्लीम करता है, बल्कि इसकी परवरिश और हिफाजत को ईमान का हुसन करार देता है। जहनी सेहत का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इंसान को जिंदगी में कभी गम, परेशानी या खौफ का सामना ना हो। ये तसव्वुर खुद फितरत के खिलाफ है। इस्लाम इस हकीकत को पूरी वजाहत के साथ मानता है कि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है, उसके दिल पर असरात पड़ते हैं, वो हालात से मुतासर होता है और बाज़ औक़ात उसकी बर्दाश्त जवाब दे जाती है। असल ज़हनी सेहत ये नहीं कि इंसान को कोई दुख ना पहुँचे, बल्कि असल सेहत ये है कि इंसान दुख के बावजूद खुद को मुकम्मल तौर पर टूटने न दे, आजमाइश में भी उम्मीद का दामन थामे रखे और अपनी कैफियत को अल्लाह के सामने रख कर सहारा हासिल करे। इस्लाम इंसान को ये शऊर देता है कि गम महसूस करना कमज़ोरी नहीं, लेकिन गम में अल्लाह से मायूस हो जाना हकीकी नुकसान है। कुरान मजीद इंसान के दिल और जहन को मुसलसल खिताब करता है, मुसलसल मुखातिब करता है। कुरान दिल को सिर्फ एक जिस्मानी उजू नहीं, बल्कि सोच, एहसास और नीयत का मरकज करार देता है। दिल कभी मुतमईन होता है और कभी बेचैन, कभी मजबूत होता है और कभी कमज़ोर पड़ जाता है। यही वजह है कि कुरान इंसान को उसके दिल की कैफियत के साथ कबूल करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिलों को हकीकी सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। इस आयत का मतलब ये नहीं कि जिक्र करने वाला इंसान मुश्किलात से आज़ाद हो जाता है, बल्कि इसका मफहूम ये है कि जिक्र इंसान के अंदर वो ताकत पैदा कर देता है जिसके ज़रिए वो मुश्किलात का सामना कर सकता है। जिक्र दिल को सहारा देता है, खौफ को कम करता है और मायूसी को उम्मीद में बदल देता है, और यही जहनी सेहत की असल बुनियाद है। यहाँ पे पिछले दिनों मैंने एक लेक्चर सुना जिसमें जो स्पीकर थे वो ये बात कर रहे थे, वो बेसिकली जिक्र करते हैं ऐद अलस्त का, जहाँ अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा तमाम रूहों को जमा किया था और उनसे ख़िताब किया था। स्पीकर का कहना था कि अल्लाह ने उस वक्त एक अपनी तजल्ली दिखाई और जितने भी इंसान थे वो एक सुरूर में आ गए। फिर अल्लाह ने पूछा कि ऐ बंदो, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं? और सब जितनी वहाँ पर रूहें मौजूद थीं, सब ने इस बात का इकरार किया कि बेशक आप ही हमारे रब हैं। उसके बाद यकीनन आप लोग जानते हैं कि उसके बाद हम इस दुनिया में एक आजमाइश के लिए भेजे गए, इम्तहान के लिए भेजे गए, और यहाँ पे जो रहना है वो आर्जी है, यहाँ हमें टेस्ट के लिए भेजा गया है। इस टेस्ट के दौरान हमें वो लम्हात भुला दिए गए हैं, ऐद अलस्त भुला दिया गया है, लेकिन ये हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा है। तो स्पीकर का कहना था कि हमारी रूहें क्योंकि अल्लाह की जो एक तजल्ली है उसको महसूस कर चुकी हैं और उनका अल्लाह के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो जब कभी भी हम अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाते हैं तो हमारी रूह बेचैन हो जाती है, जिसकी वजह से इस दुनिया में हमारा दिल नहीं लग रहा होता। अक्सर सब कुछ ज़िंदगी में सेट होता है, सारे मामला ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक स्ट्रेस होता है, अंदर से एक बेचैनी होती है, एनजाइटी होती है, जिसको हम सही से कोई नाम नहीं दे पा रहे होते। तो ये सब इसी वजह से है कि अल्लाह से ताल्लुक़ रखना हमारी फितरत का तकाजा है, हमारी रूहों की तलब है, क्योंकि वो जानती हैं जो इस वक्त हम बज़ाहिर इग्नोर किए हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह से ताल्लुक़ रखने के लिए हम अल्लाह को याद रखें, उसका ज़िक्र करते रहें, उसके नामों का विर्द करते रहें। और इस्लाम इस बात से इनकार नहीं करता कि इंसान गमगीन होता है, रोता है, घबराहट का शिकार होता है और बाज़ औक़ात शदीद ज़हनी दबाव महसूस करता है। क़ुरान में बयान करदा अम्बिया कराम की जो ज़िंदगियाँ हैं वो इस हकीकत की वाज़ गवाह हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फ़राक में इस कदर गमगीन होना कि मुसलसल रोने से उनकी पेनाई मुतासर हो गई, लेकिन कुरान ने उस गम को ईमान की कमज़ोरी करार नहीं दिया बल्कि सब्र और उम्मीद की मिसाल बनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ महसूस हुआ और उन्होंने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का साथ तलब किया अल्लाह ताला से। इसी के साथ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम तन्हाई और ज़हनी दबाव का शिकार हुई और ख़ुद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी में ऐसे कई उनके लम्हात आए जब दिल बेहद रंजीदा हुआ। ताइफ का वाक़या इसकी रोशन मिसाल है, जहाँ जिस्मानी तकलीफ़ के साथ साथ शदीद ज़हनी अज़ियत भी बर्दाश्त करना पड़ी। ये तमाम वाक़यात इस बात को साबित करते हैं कि ज़हनी तकलीफ़ ईमान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इंसानी फितरत का हिस्सा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मोमिन इन कैफियात को अल्लाह से जोड़कर ताकत में बदल लेता है, जबकि ईमान से खाली दिल इन्हीं कैफियात में बिखर जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वयं हुस्ना ज़हनी सेहत के हवाले से गैर मामूली रहनुमाई फराहम करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के जज्बात को ना सिर्फ समझते थे बल्कि उन्हें अहमियत भी देते थे। जब कोई शख्स परेशान होकर आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दुख को मामूली नहीं समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर से सुनते, तसल्ली देते और उसके दिल का बोझ हल्का करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं फरमाया कि गम करना या परेशान होना ईमान की कमी है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम के वक्त मखसूस दुआएं सिखाई, सब्र की तलकीन की और अल्लाह की रहमत से उम्मीद दिलाई। ये तर्ज अमल इस्लाम के नफ्सियाती शऊर, रहमत और इंसान दोस्ती की आला मिसाल है। इस्लाम में दुआ को ज़हनी और रूहानी शिफा का एक ताकतवर जरिया करार दिया गया है। दुआ सिर्फ ज़बान से अदा किए गए अल्फाज नहीं बल्कि दिल का बोझ अल्लाह के सामने रख देने का अमल है। जब इंसान अपने खौफ, मायूसी, तन्हाई और बेबसी को अल्लाह के सामने बयान करता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम करता दुआएं, ख़ास तौर पे वो दुआएं जो गम, फिक्र, कर्ज, खौफ और दिल की बेचैनी से मुतालिक हैं, इस बात का सबूत है कि इस्लाम ज़हनी दबाव को हकीकत तस्लीम करता है और उसके अमली हल भी फराहम करता है। बदकिस्मती से बाज़ माशरों में ज़हनी बीमारी को कमज़ोर ईमान, जादू या जन्नात से जोड़ दिया जाता है, जिसके नतीजे में मुतासर शख्स मदद लेने से हिचकिचाता है। इस्लाम इस महदूद सोच की वाज़ तरदीद करता है। अगर जिस्म बीमार हो تو ڈاکٹر کے پاس جانا عین عقل اور سنت کے مطابق ہے, اور اگر ذہن یا جذبات بیمار ہوں تو ماہرین نفسیات یا پھر جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان سے رجوع کرنا بھی اسی اصول کے تحت آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی شفا بھی پیدا کی۔ اس فرمان میں جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی بیماریاں شامل ہیں۔ اسلام انسان کو زندگی میں توازن سکھاتا ہے, وہ نہ دنیا میں اس قدر گم ہونے کی اجازت دیتا ہے کہ دل سخت اور بے حس ہو جائے, اور نہ عبادت میں ایسی شدت کی تلقین کرتا ہے کہ جسم اور ذہن تھک کر ٹوٹ جائیں۔ عبادت, محنت, آرام, سماجی تعلقات اور تنہائی, سب کا ایک مناسب تناسب ہونا چاہیے۔ یہ اعتدال ذہنی صحت کو مضبوط بناتا ہے۔ اسلام میں مسکرانا صدقہ ہے, اچھے تعلقات قائم کرنا عبادت ہے, اور حلال تفریح دل کو تازگی دینے کا ذریعہ ہے, کیونکہ ایک زندہ دل ہی اللہ کی بندگی بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ اسلام ذہنی صحت کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ اسے انسانی وقار اور رحمت الہی کا حصہ قرار دیتا ہے۔ اسلام انسان کو یہ حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنے دل کی کیفیت کو دبائے نہیں, مدد مانگنے میں شرم محسوس نہ کرے, اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب ایمان, شعور, دعا اور عملی تدبیر ایک ساتھ ہوں تو ذہنی صحت مضبوط ہوتی ہے, اور انسان ایک متوازن, پرسکون اور بامقصد زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو لسنرز, یہاں لیں گے ہم ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, سنتے رہے ایف ایم 107 تلسی دیسی۔
1: ماڈرن لائف فاسٹ ہے لیکن ساتھ ہی ہے ذہنوں میں اینڈلیس کویشنز, اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کیسے بیلنس کروں فیتھ اور ماڈرن لائف کو, تو سنیے یہ شو اسلامک ماڈرن لائف, جو آپ کو دکھائے گا اسلامک گائیڈنس آج کے دور کے حساب سے۔
0: لسنرز, ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں 107 پہ شو اسلامک ماڈرن لائف۔ جب ہم ذہنی صحت کی بات کرتے ہیں تو سب سے اہم سوال یہ نہیں ہوتا کہ مسئلہ کیا ہے, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کا درست, متوازن اور دیر پا طریقہ کیا ہے۔ اسلام انسان کو صرف صبر کرنے یا خاموش رہنے کا مشورہ نہیں دیتا, بلکہ وہ انسان کو ایسے عملی راستے دکھاتا ہے جن میں روحانی سہارا, عقلی تدبیر اور انسانی شفقت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر میں ذہنی صحت کا علاج یک رخی نہیں بلکہ ہمہ جت ہے, جہاں دعا, تدبر, خود آگاہی اور پیشہ ورانہ مدد ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ تکمیل ہے۔ اسلام میں دعا کو ہمیشہ ایک طاقتور ذریعہ سمجھا گیا ہے, مگر دعا کو کبھی عمل سے الگ نہیں کیا گیا۔ دعا کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف اللہ سے مانگتا رہے اور اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جائے۔ در حقیقت دعا انسان کے اندر یہ شعور پیدا کرتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے, کہ اس کا درد سنا جا رہا ہے, اور یہ احساس خود ذہنی بوجھ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب انسان اسٹریس, ڈپریشن یا شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ دعا اس تنہائی کو توڑتی ہے اور انسان کو ایک محفوظ تعلق کا احساس دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اسلام نے ذہنی دباؤ کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کے لیے الفاظ بھی ادا کیے۔ غم, فکر, بے چینی, خوف اور دل کے بوجھ سے متعلق دعائیں دراصل انسان کو یہ اجازت دیتی ہیں کہ وہ اپنی کمزوری کو مانے, اسے چھپائے نہیں۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ, میں غم اور فکر میں تیری پناہ مانگتا ہوں, تو دراصل اپنے احساسات کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے, اور یہی تسلیم ذہنی صحت کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ لیکن اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ دعا کے ساتھ اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر جسم بیمار ہو تو دوا اور ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ذہن بیمار ہو تو پیشہ ورانہ مدد لینا بھی اس دائرے میں آتا ہے۔ ماہر نفسیات، کونسلر یا مولد سے رجوع کرنا ایمان کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ کے پیدا کردہ علم اور حکمت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسلام میں علم کو شفا کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور جدید نفسیات بھی اسی علم کا ایک تسلسل ہے۔ دعا دل کو سہارا دیتی ہے، جبکہ پیشہ ورانہ مدد ذہن کو سمت دیتی ہے، اور جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو شفا کا عمل زیادہ مضبوط اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ اس خوف کا شکار رہتے ہیں کہ اگر انہوں نے تھراپی یا کونسلنگ لی تو شاید ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا یا سمجھا جائے گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مدد مانگنا خود آگاہی کی علامت ہے، یعنی سیلف اویئرنیس، اور خود آگاہی اسلام میں ایک اعلیٰ اخلاقی قدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مشورہ لینے، تجربہ رکھنے والوں سے رہنمائی حاصل کرنے اور مسائل کو سمجھداری سے حل کرنے کی تلقین کی۔ لہٰذا دعا اور پیشہ ورانہ مدد کو ایک دوسرے کے مقابل رکھنے کے بجائے انہیں ایک دوسرے کا معاون سمجھنا ہی اسلامی حکمت کے قریب تر ہے۔ مینٹل ہیلتھ کے عملی پہلو میں ایک اور نہایت اہم تصور اسلامی ذہنی یکسائی یا پھر تدبر ہے، جدید دنیا میں جسے مائنڈ فلنس کہا جاتا ہے۔ اسلام اس کا تصور صدیوں پہلے تدبر، تفکر اور حضور قلب کی صورت میں دے چکا ہے۔ تدبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان لمحے موجود میں ہو، اپنے دل، سانس، خیالات اور احساسات سے باخبر ہو اور انہیں بغیر فیصلہ کیے محسوس کرے۔ جب انسان مسلسل ماضی کے پچھتاووں یا مستقبل کے خوف میں الجھا رہتا ہے تو اس کا ذہن بکھر جاتا ہے، اور یہی بکھراؤ اضطراب کو جنم دیتا ہے۔ اسلام انسان کو حال میں جینے کی دعوت دیتا ہے، اور یہی تدبر کی روح ہے۔ نماز خود ایک عملی گراؤنڈنگ تکنیک ہے۔ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے اور آیات کو غور سے سنتا یا پڑھتا ہے تو اس کا جسم اور ذہن ایک خاص ترتیب میں آ جاتے ہیں۔ سجدہ خاص طور پہ ذہنی سکون کا ذریعہ ہے، کیونکہ جسمانی طور پہ بھی اعصابی نظام کو پرسکون کرتا ہے، اور روحانی طور پہ بھی انسان کو عاجزی اور تحفظ کا احساس دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت اگر سمجھ کر اور تدبر کے ساتھ کی جائے تو یہ محض ثواب کا ذریعہ نہیں، بلکہ ذہنی شفا کا عمل بن جاتی ہے۔ اسلامی تدبر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان اپنی کیفیت کو پہچانے۔ اگر دل بھاری ہے تو اس بھاری پن کو تسلیم کیا جائے، اگر آنکھیں نم ہیں تو انہیں روکنے کے بجائے یہ سمجھا جائے کہ آنسو دل کا بوجھ کم کرنے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آنسو بہائے اور کبھی اس پر شرمندگی محسوس نہیں کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جذبات کو دبانا نہیں ہے، بلکہ انہیں محفوظ طریقے سے بہنے دینا ہے۔ ذہنی صحت کے لیے یہ ضروری ہے۔ اسی تناظر میں جذباتی خود رحمی یا ایموشنل سیلف کمپیشن ایک نہایت اہم اسلامی قدر ہے، جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کے ساتھ تو ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر اپنے ساتھ بے حد سخت ہو جاتے ہیں۔ ذرا سی غلطی پہ خود کو ملامت کرنا، اپنی کمزوریوں کو گناہ یا ناکامی سمجھنا، اور خود سے ایسے تقاضے کرنا جو حقیقت پسندانہ نہ ہو، یہ سب ذہنی دباؤ کو بڑھاتے ہیں۔ اسلام انسان کو اپنے نفس کے ساتھ بھی نرمی سکھاتا ہے۔ قرآن بار بار اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ذکر کرتا ہے تاکہ انسان مایوسی میں مبتلا نہ ہو۔ جذباتی خود رحمی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی غلطیوں کو نظر انداز کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود کو ایک سیکھنے والے، کوشش کرنے والے بندے کے طور پہ دیکھے۔ ना कि एक नाकाम या नाकाबिल कबूल इंसान के तौर पे। जब इंसान खुद से कहता है कि मैं कमज़ोर हूँ मगर बेवकत नहीं, मैं परेशान हूँ मगर तन्हा नहीं, तो ये जुमले उसके दिल को सहारा देते हैं। इस्लाम में अल्लाह के अस्माए हुस्ना जैसे अर्रहमान और अर्रहीम दरअसल हमें ये सिखाते हैं कि जिस रब ने हमें इतनी शफ़क़त के साथ पैदा किया है वो ये नहीं चाहता कि हम खुद पर जुल्म करें। अपने साथ शफ़क़त का एक अमली तरीका यह है कि इंसान अपनी ज़हनी थकन को संजीदगी से ले, आराम को गुना ना समझे, मदद मांगने को कमज़ोरी ना समझे और अपने एहसास को अल्लाह की अमानत समझे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ये सिखाया कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आँखों का भी तुम पे हक है और तुम्हारे दिल का भी तुम पर हक है। यह हदीस ज़हनी सेहत के तस्वुर को इंतहाई वाज़ेह अंदाज में बयान करती है। आखिरकार अमली रहनुमाई का खुलासा यह है कि इस्लाम ज़हनी सेहत के मामले में इंसान को तन्हा नहीं छोड़ता, वो दुआ के ज़रिए दिल को सहारा देता है, इल्म और पेशावराना मदद के ज़रिए जहन को सिम देता है, तदब्बुर के ज़रिए इंसान को हाल में जीना सिखाता है और ख़ुद रहमी के ज़रिए इंसान को अपने आप से नरमी का सबक देता है। जब ये तमाम अनासर एक साथ काम करते हैं तो ज़हनी सेहत महज एक तस्वुर नहीं रहती बल्कि एक ज़िंदा, मुतवाजन और काबिले अमल हकीकत बन जाती है। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान ना सिर्फ अपने दर्द को समझ सकता है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता शिफा की तरफ भी बढ़ सकता है। अब जब हम आज के शो के अख्तिताम पे आ गए हैं तो सबसे अहम बात जिसे दिल में बिठाना ज़रूरी है वो बहुत सादा है मगर गहरी हकीकत है कि आपके एहसास दुरुस्त हैं, मोतबर हैं और काबिल एहतराम हैं। जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं वो किसी कमज़ोर ईमान, नाकाफ़ी सब्र या ज़ाती नाकामी की अलामत नहीं बल्कि इंसान होने की अलामत है। इस्लाम इंसान को उसकी इंसानियत के साथ कबूल करता है, उसके बशरी तकाज़ों के साथ, उसकी कमियों के साथ, उसके दिल को बोझ को पहचानता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसके एहसास अल्लाह की नज़र में पोशीदा नहीं है। अगर आप गमगीन हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप नाशुक्रे हैं। अगर आप बेचैन हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ईमान कमज़ोर है, और अगर आप थके हुए हैं तो इसका हरगिज़ के मतलब नहीं कि आप हार चुके हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और अब आपका दिल तवज्जो, नरमी और सहारा चाहता है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह इंसान की ताकत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता, और ये वादा खुद इस बात की दलील है कि अल्लाह इंसान की कमज़ोरियों से बाखबर है और उन्हें नज़रअंदाज नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि आंसू बहाना कमज़ोरी नहीं, मदद मांगना शर्मिंदगी नहीं और दिल की बात कहना बेअदबी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रंज के लम्हात देखे, दुख महसूस किया और इन कैफियत को अल्लाह के सामने रखा। यही असवा हमें यह अतमाद देता है कि हम भी अपने एहसास को दबाने के बजाय तस्लीम करें, क्योंकि तस्लीम ही शफा की पहली सीढ़ी है। ये भी याद रखें कि आपका दर्द मुनफरद ज़रूर है मगर अकेला नहीं। बहुत से दिल इन्हीं कैफियत से गुजरते हैं और अल्लाह की रहमत इन सब के लिए वसी है। इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान टूटने के बाद भी जुड़ सकता है, कि अंधेरी रात के बाद सहर ज़रूर आती है और कि अल्लाह के हाँ ताखीर है मगर नज़रअंदाजी नहीं। अगर आप आज खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो खुद पर सख्त ना हो, अपने दिल से वैसे ही बात करें जैसे आप किसी अजीज दोस्त से करते हैं। नरमी इख्तियार करें क्योंकि अल्लाह की रहमत नरमी में छुपी होती है। जो कदम आपने आज उठाया है, चाहे वो बात करना हो, मदद मांगना हो या फिर सिर्फ सुनना हो, ये एक मजबूत कदम है। क्योंकि शिफा का सफर हमेशा छोटे और सच्चे कदमों से शुरू होता है। आखिर में खुद को ये याद दहानी बार बार करवाएं कि आपके एहसास दुरुस्त हैं, आपकी कैफियत पॉतबर है और आपका वजूद कीमती है। अल्लाह आपके दिल की धड़कनों को जानता है, आपकी खामोश दुआओं को सुनता है और आपके आंसुओं को जाया नहीं करता। आप अकेले नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं और आप ना उम्मीद होने के लिए पैदा नहीं किए गए। उम्मीद, शफा और सुकून आपके लिए भी है, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मिलेगी जरूर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।

पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार करती है और सिक्योरिटी में इजाफा करती है. कौमी हदूद और रेगुलेशन की पाबंदी करें और अदब का ख्याल रखें. पेडेस्ट्रियन रोड पर धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें. बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें अपनी नजर में रखें. आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनसे फैमिलियर रहिए. दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए.

ये इकदामात आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको तैयार रखते हैं। अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

और कोई बदतरीन उम्र की तरफ फेर दिया जाता है, ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ न जाने। और तुम देखते हो कि जमीन सूखी पड़ी है, फिर जहां हमने उस पर मी बरसाया कि यकायक वो फबक उठी और फूल गई, और उसने हर किस्म की खुश मंजर नबातात उगलनी शुरू कर दी। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है, और वो मुर्दों को जिंदा करता है, और वो हर चीज पर कादिर है। और ये इस बात की दलील है कि कयामत की घड़ी आकर रहेगी, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। और अल्लाह जरूर उन लोगों को उठाएगा जो कब्रों में जा चुके हैं।

लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और साबई और नसारा और मजूस और जिन लोगों ने शिर्क किया, इन सब के दरमियान अल्लाह कयामत के रोज फैसला कर देगा। हर चीज अल्लाह की नजर में है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह के आगे सरबसजूद हैं वो सब जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं, सूरज और चांद और तारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान और बहुत से वो लोग भी जो आजाब के मुस्तहक हो चुके हैं। और जिसे अल्लाह जलील खार कर दे, उसे फिर कोई इज्जत देने वाला नहीं है। अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। ये दो फरीक हैं जिनके दरमियान अपने रब के मामले में झगड़ा है। इनमें से वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, उनके लिए आग के लिबास काटे जा चुके हैं। उनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, जिससे उनकी खालें ही नहीं पेट के अंदर के हिस्से तक गल जाएंगे और उनकी खबर लेने के लिए लोहे के गुर्ज होंगे। जब कभी वो घबरा कर जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे, फिर उसी में धकेल दिए जाएंगे कि चखो अब जलने की सजा का मजा। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उनको अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वो सोने के कंगनों और मोतियों से आरास्ता किए जाएंगे और उनके लिबास रेशम के होंगे। उनको पाकीजा बात कबूल करने की हिदायत बख्शी गई और उन्हें खुदाए सुतूदा सिफात का रास्ता दिखाया गया। जिन लोगों ने कुफ्र किया और जो आज अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं और उस मस्जिद हराम की जियारत में माने हैं जिसे हमने सब लोगों के लिए बनाया है, जिसमें मकामी बाशिंदों और बाहर से आने वालों के हकूक बराबर हैं, उनकी रविश यकीनन सजा की मुस्तहक है। इस मस्जिद हराम में जो भी रास्ते से हटकर जुल्म का तरीका इख्तियार करेगा, उसे हम दर्दनाक अदाब का मजा चखाएंगे।

तुम्हारा तक्वा पहुंचता है। उसने उनको तुम्हारे लिए इस तरह मुसख्खर किया है ताकि उसकी बख्शी हुई हिदायत पर तुम उसकी तकबीर करो। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बशारत दे दे नेकोकार लोगों को। यकीनन अल्लाह मुदाफियत करता है उन लोगों की तरफ से जो ईमान लाए हैं। यकीनन अल्लाह किसी खाइन काफिर नेमत को पसंद नहीं करता।